0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान की जिंदगी में उतार और चढ़ाव जरूर आते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी नरमी कभी सख्ती, हालात बदलते रहते हैं। एक दिन हमारे हक में होता है तो दूसरा दिन हमारे मुखालिफ। जो दिन आपके हक में हो उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और जो दिन आपके मुखालिफ हो उस दिन सब्र का दामन हाथ से न जाने दीजिए। इसी में आफियत और भलाई है।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछे तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो है अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے, روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل و

0: किसी भी शख्स की शख्सियत साजी में माजी का बड़ा किरदार रहता है। जो शख्स अपने आबाओ अजदाद से अच्छी रिवायात और आदाब नहीं सीखता तो उसके मुस्तकबिल को बेहतर बनाना भी एक दुश्वार काम है। यानी अगर किसी के पास माजी में कुछ अच्छाई नहीं है तो उसके मुस्तकबिल में भी भलाई की तवक्कात कम होती हैं। अरबी जबान की कहावत है इल्ले मालह अव्वल मालह ताली। फसी जबान में इसका यूं तलफ्फुज़ होगा अल्लज़ी मालहू अव्वल मालहू यानी लैस लहू ताली, यानी जिसका साबिका सही नहीं उसके मुस्तकबिल की भी कोई गारंटी नहीं। ये कहावत इस बात की अहमियत को जागर करती है कि हमें अपने आबाओ अजदाद की अच्छी रिवायत को अपनाना चाहिए ताकि हम एक मजबूत और रोशन मुस्तकबिल की तामीर में हिस्सा ले सकें।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि हमारी सेहत की बुनियाद है। और अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है तो फिर जिस्मानी तवानाई, वज़न और इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त जो है वो मुतासर होती है, और फिर सेहत के बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं। कभी आपने सोचा कि आज खाने के बाद आपने आराम किया या फिर फौरन ही आप काम में लग गए? ये बहुत ही अहम सवाल है जो हमें अपने आप से करना है, या आपके जो प्यारे हैं उनसे भी ज़रूर कीजिए। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद रखने के लिए फाइबर वाली सब्जियां, फल बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से जो पोरेज है, दलिया है, दालें हैं या चावल हैं, वो अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए। पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या आपका जो हाजमा है वो ख़राब करने वाली हमारी अपनी ही आदतें होती हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा जो फ्राइड चीज़ें उन्हें पसंद करते हैं, या चिकनाई वाली जो ग़िज़ा है वो खाना भी पसंद करते हैं, मगर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देती हैं। और ये कि बहुत जल्दी जल्दी खाना, इससे भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तौर पर काम नहीं कर पाता। और इसके अलावा रात को देर से खाना, जब आप सो जाते हैं तो फिर ये खाना हजम नहीं हो पाता। एक शख्स जो कि बहुत जल्दी जल्दी खाता और तली हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद वो करता था, तो इसी तरह उसे फिर मैदे के जो मसाइल हैं वो शुरू हुए। और खाने को फिर जब उसने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया, अपनी खुराक में सब्जियाँ इस्तेमाल करनी शुरू की, पानी ज़्यादा इस्तेमाल से उसका हाजमा बेहतर होता चला गया। तो इसके लिए हमें करना ये है कि अपने खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबाइए और आराम से खाइए। सब्जियां और फल अपनी खुराक में ज़्यादा शामिल कीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए, मगर खाने के दौरान ज़्यादा पानी नहीं पीना आपको। इसी तरह रात का खाना हल्का हो, और सोने से कम से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, यानी डिनर जो आपने करना है वो आप सोने से 2 घंटे पहले कर लीजिए। बच्चों और बड़ों के लिए आप एक स्केड्यूल बना दीजिए और उन्हें ये आदत डालिए कि इस तरह से आपने अपना खाना जो है वो खाना है। ये छोटी छोटी बातें अपनाकर हम बहुत बड़े मसाइल से बच सकते हैं, क्योंकि जो हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तवानाई और सेहतमंद जिस्म का जामिन है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। साथियों, एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक कछुआ रहता था। उसका नाम टोटो था। टोटो बहुत ही सुस्त और चुपचाप जिंदगी गुजारने वाला एक कछुआ था। वो ज्यादातर दरख्तों के नीचे आराम करता रहता था और कभी कभार दरिया के किनारे चला जाता था। एक दिन वो एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, जिस पर एक परिंदे ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। परिंदा अपनी छोटी सी चोंच से टूटी फूटी लकड़ियों को जमा करके अपने घोंसले को मजबूत बना रहा था। टोटो ने इस मंजर को देखा और मुस्कुरा कर उस परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। जरा देखो तो, तुमने अपने घर के लिए कितनी मामूली चीजों को जमा किया है। ये टूटी हुई लकड़ियाँ, इनकी क्या अहमियत है? तुम्हारे पास तो कोई मजबूत और महफूज घर भी नहीं है। मुझे देखो, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मेरे पास तो अपना एक शेल है, जिसे मैं हर जगह अपने साथ ले जा सकता हूँ और मैं अपने आप को हर जगह महफूज महसूस करता हूँ। टोटो ने अपनी बात मुकम्मल की और फिर परिंदे की तरफ देखा, जिसे वो एक मामूली सा परिंदा समझ रहा था। परिंदे ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी और उसने जवाब देते हुए कहा, टोटो, तुम्हारा शेल शायद तुम्हारे लिए बहुत मुफीद हो, मगर तुम्हारा शेल तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं बना सकता। इसमें कोई और नहीं समा सकता और ना ही तुम्हारे शेल में मैं या कोई और परिंदा आराम से रह सकता है। लेकिन जरा देखो, मेरे इस घोंसले में मैं, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली सब आराम से रह सकते हैं। मेरा घोंसला छोटा है, लेकिन इसमें मोहब्बत और सुकून है और सब के लिए जगह है। टोटो परिंदे की बातों को सुनकर हैरान हो गया। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि एक घर का मकसद सिर्फ आराम दे और महफूज होना नहीं होता, बल्कि उसमें मोहब्बत, दोस्ती और ताल्लुकात भी होने चाहिए। टोटो ने दिल में सोचा, ये परिंदा तो दुरुस्त बात कह रहा है। इसका घोंसला छोटा हो सकता है, मगर वहाँ खुशी और मोहब्बत का माहौल है। मैं अपने शेल में कितना अकेला हूँ और कभी किसी को अपने साथ नहीं रख सकता। परिंदे ने अपनी बात जारी रखी और टोटो को कहने लगा, जब मैं अपने दोस्तों और खानदान के साथ होता हूँ ना, तो ये छोटा सा घोंसला भी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बन जाता है और हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। टोटो ने उसकी बातों पर गहराई से सोचा और फिर कहा, वैसे तुमने बिल्कुल सही बात की है परिंदे भाई। मैंने हमेशा अपने इस मजबूत और ताकतवर शेल पर फखर किया है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मोहब्बत और दोस्ती की ताकत कितनी अहम होती है। तुम्हारा घोंसला शायद छोटा हो, लेकिन तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो किसी भी शख्स या जानवर को चाहिए होता है। वो है मोहब्बत, दोस्ती और अच्छे रिलेटिव्स। परिंदा मुस्कुराकर बोला, यही तो जिंदगी का असल हुसन है। जब हमारे पास मोहब्बत और ताल्लुकात होते हैं, तो हमें कभी भी दुनिया में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, चाहे हमारा घर छोटा ही क्यों ना हो। टोटो ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लाना शुरू की। उसने अपनी सुस्त जिंदगी से बाहर आकर दूसरों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। वो जंगल के दूसरे जानवरों से मिलता, बातचीत करता और दोस्ती बढ़ाता। वो ये बात जान गया था कि एक छोटा सा घर या जगह जहाँ ढेर सारी मोहब्बत और दोस्ती हो, वो किसी बड़े महल से कहीं ज्यादा अहम होती है। एक दिन जब टूटो दोबारा दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, उसने परिंदे को अपने घोंसले में अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए देखा। टोटो ये बात जानता था कि वो कभी भी उनके साथ मिलकर बैठ नहीं सकता, लेकिन वो ये बात जानता था कि वो हमेशा उनके करीब रह सकता है और वो ऐसे कि वो उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत और दोस्ती की ताकत रखे।
कहानी का सबक ये है कि एक छोटा और सादा घर जिसमें मोहब्बत, दोस्ती और खुशी हो कहीं ज्यादा अहम होता है, बजाय उस बड़े से महल के जिसमें ना मोहब्बत हो, ना दोस्ती और ना ही खुशी। दोस्तों, हमेशा ये याद रखिएगा कि मोहब्बत और ताल्लुकात की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और ये वही चीजें हैं जो दुनिया में हमें सबसे ज्यादा सुकून देती हैं।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं नाज़िया आपके साथ एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज एक बहुत ही धांसू वाली इकोनॉमिक टर्म लेकर मैं आई हूँ। इस टर्म को आप सबने सुना है, एटलीस्ट मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत बार सुना है, और ये टर्म है इनकम टैक्स। रेट याद आ गई? नहीं, रेट पे बात नहीं करने वाले, लेकिन इनकम टैक्स एक्चुअली है कौन सा टैक्स? क्या हमारी आमदनी पे टैक्स लगाना जरूरी है? ये सवाल बचपन में हमेशा मेरे जहन में रहता था, फिर जब मैंने इसको डिटेल में समझा, पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, कोई भी गवर्नमेंट अगर रन कर रही है तो उसे भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आमदनी तो चाहिए, तभी तो वो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर काम करेगी। तो लिहाजा इनकम टैक्स है क्या, इस पर आज हम तफसील से बात करने वाले हैं। देखा जाए तो इनकम टैक्स एक अहम इकोनॉमिक टर्म है जो किसी भी मुल्क की फिस्कल सिस्टम का एक बुनियादी हिस्सा है। ये वो टैक्स है जो इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस अपनी इनकम पर देते हैं। इनकम टैक्स का मकसद गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है, जबकि कतर में इनकम टैक्स नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाकी बहुत सारी कंट्रीज में इनकम टैक्स है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स का मकसद है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, जो कि मुल्क के डेवलपमेंट और पब्लिक सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है। वेल, इनकम टैक्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? दोस्तों, इनकम टैक्स का असल मायना है किसी शख्स या बिजनेस की टोटल इनकम पर लगने वाला टैक्स। ये टैक्स आम तौर पर प्रोग्रेसिव होता है, यानी जितनी ज्यादा इनकम होती है उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हायर इनकम अर्नर्स पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जबकि लोअर इनकम अर्नर्स पर कम टैक्स लगेगा। वहीं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं, तो उनकी इनकम वैसे ही बहुत कम है, तो टैक्स फ्री है। इनकम टैक्स का कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि इनकम की सोर्सेस, सैलरी, कई बार बिजनेस प्रॉफिट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपकी कई बार एसेट्स। वैसे इनकम टैक्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट्स इनकम टैक्स को रेगुलेट करते हैं ताकि टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाया जा सके। जी हाँ, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी और फिस्कल स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। इसका कुछ इस्तेमाल इस तरह से भी होता है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो। इनकम टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इससे मुल्क की डेवलपमेंट और पब्लिक सर्विसेज को फंड करने में मदद मिलती है गवर्नमेंट को। वहीं पर देखा जाए तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम के जरिए गवर्नमेंट्स अमीर और गरीब के दरमियान वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स लगाने से सोशल इनइक्वालिटी को कम किया जाता है। वहीं पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है। इनकम टैक्स का इस्तेमाल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी किया जाता है। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है तो गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ाकर रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, और जब इकोनॉमी स्लो चल रही है तो टैक्स रेट को कम करके कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकती है, और ऐसा करती भी है। पर इनकम टैक्स का असर किसी भी इकोनॉमी पर इतना गहरा है कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग को भी अफेक्ट करता है। जब इनकम टैक्स रेट बढ़ते हैं तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, जो कि कंज्यूमर स्पेंडिंग को गिराता है। इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। वहीं पर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी मुतासर होते हैं। हाई इनकम टैक्स रेट बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने से रोक सकता है। अगर बिजनेसेस को लगता है कि उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो वो नए प्रोजेक्ट्स या फिर एक्सपेंशन में कम इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पर इससे टैक्स इन्वेजन भी होता है। कभी कभी हाई इनकम टैक्स रेट टैक्स इन्वेजन को बढ़ा सकता है। लोग अपनी इनकम को छुपाने या ब्लैक मनी जनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके, और ये बेहद कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। जिसे कहते हैं ना, काला धन वापस लाएंगे, समथिंग लाइक दैट। जी हाँ, वैसे एक एग्जांपल देकर भी मैं आपको इनकम टैक्स समझा ही देती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स की, मान लेते हैं, एनुअल इनकम तकरीबन 100,000 रुपीज है और उस पर 15% का इनकम टैक्स लगता है, तो उसे 15,000 रुपीज टैक्स देना होगा। और अगर किसी शख्स की इनकम 500,000 रुपीज है तो उस पर अगर 10% का टैक्स लगता है तो इस शख्स को 50,000 रुपीज जो है वो टैक्स देने होंगे। इस तरह हायर इनकम पर ज्यादा टैक्स लगता है, जो कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट दिखाता है। वहीं पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स अलग तरीके से होता है। बिजनेसेस पर भी इनकम टैक्स लगता है। वहीं पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी डिफरेंट है। बिजनेसेस पर भी इनकम टैक्स लगता है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का एनुअल प्रॉफिट अगर 50 लाख रुपए है तो उस पर टैक्स भी 30% के हिसाब से लगेगा, जो कुछ बना कुछ 1.5 लाख के आसपास। ये टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का एक अहम सोर्स भी है। वहीं पर टैक्स डिडक्शन और क्रेडिट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनकम टैक्स सिस्टम में कुछ डिडक्शंस और क्रेडिट्स भी होते हैं जो टैक्स पेयर्स को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने एजुकेशन एक्सपेंसेस या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा किया है तो वो इसे अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकता है। इससे उनका ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। वहीं पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं कुछ हद तक आपको इनकम टैक्स समझा पाई हूँ। कितना परसेंट किसके ऊपर लगता है, बिजनेस टैक्स, सैलरी टैक्स, और कुछ लोग जो है वो एक्सक्लूडेड भी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनकी सैलरी एक सर्टेन

0: स्ट्रेटजी के लिए बहुत जरूरी है। हर शख्स और बिजनेसेस को अपने इनकम टैक्स ऑब्लिगेशंस को समझना चाहिए ताकि वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बना सकें और गवर्नमेंट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर बन सकें। टैक्स चोरी ना करें, क्योंकि जो टैक्स हम पे करते हैं वही गवर्नमेंट हमारे मुल्क के डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, जिसका इस्तेमाल हमें ही करने को मिलता है। लिहाजा इस चीज का खास ख्याल रखना है कि टैक्स से बचना नहीं है और टैक्स पेयर अच्छा वाला, एक ऑनेस्ट वाले टैक्स पेयर बनना है। पहले मैं उम्मीद कर रही हूँ आज के इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को मैं भरपूर तरीके से आपको समझा पाई होंगी। पहले अभी के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाजत लूंगी, नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इकोनॉमिक टर्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। समीन, प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतों में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आज हम जिस सुन्नत पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है हिल्म या बुर्दबारी। जिंदगी में सबसे मुश्किल इम्तिहान है गुस्से और इश्तियाल के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखना। इस्लाम हमें सिखाता है कि असल ताकत लड़ाई या गुस्से के इजहार में नहीं बल्कि हिल्म और बुर्दबारी में है। यही वो खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशज अब्दुल क़ैस से फरमाया, तुम्हारे अंदर दो खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, अल हिल्म वल अनात, हिल्म और बुर्दबारी। दोस्तों, हिल्म वो वस्फ है जिससे इंसान जालिम को भी माफ कर देता है और रद्द अमल में जल्दबाजी नहीं करता, और अलानात यानी सोच समझ कर सब्र और सुकून के साथ फैसला करना। इसीलिए हमें चाहिए कि गुस्से में फौरी रद्द अमल देने के बजाय सब्र और खामोशी इख्तियार करें, दूसरों के कसूर पर माफी और दरगुजर का मामला करें। यह अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है। इसी तरह हर फैसले में ठहराव और सोच विचार को अपनाएं ताकि पछतावे से बचा जा सके। तो समीन, ये थी आज की सुन्नत हिल्म और बुर्दबारी। आइए हम भी अपनी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। उससे पर काबू, माफी का जज्बा और फैसलों में बुर्दबारी, यही वो अखलाक हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और बंदे को इज्जत बख्शते हैं।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
5: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
6: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बैटर की यानी बैट्समैन की जो क्रिकेट के आसमान का चमकता सितारा है, उस्मान ख्वाजा। जी हाँ, ये वो नाम है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उस्मान ख्वाजा 18 दिसंबर 1986 को इस्लामाबाद में पैदा हुए। जब वो छोटी उम्र के थे तो उनका खानदान ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। वहां जाकर भी क्रिकेट का जुनून उनके अंदर भरपूर था। मश्क और मेहनत का नतीजा ये निकला कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले पहले पाकिस्तानी बॉर्न बैट्समैन बन गए। जी हाँ, उस्मान का बैटिंग स्टाइल लाजवाब है। उनकी टेक्निक, उनका पेशेंस और एलिगेंट शॉट्स देखने वालों को मेहनत और हुनर का एक बेहतरीन मिक्स लगता है। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे इंटरनेशनल, हर फॉर्मेट में उनका रोल काबिले दाद है। और 2011 में उनका इंटरनेशनल डेब्यूट हुआ और तब से लेकर आज तक जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। 2022 एशेज सीरीज को कौन भूल सकता है। सिडनी टेस्ट में दो शानदार सेंचुरीज बनाकर उस्मान ख्वाजा ने अपनी जगह सिर्फ टीम में नहीं बल्कि फैंस के दिलों में भी बना ली। उनकी कंसिस्टेंसी और रेसिलियंस ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के रिलायबल ओपनर्स में शामिल कर दिया है। दोस्तों, उस्मान ख्वाजा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक मिसाल है कि मेहनत, लगन और जज्बा हो तो इंसान किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल कर सकता है। यह था आपका होस्ट मोहम्मद अमीन क्रिकेट के जज्बात के साथ। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Aap sun rahe hain Life Hacks. Apni A for Amita ke saath. Only on FM 107. Dil se desi. अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज के मजेदार लाइफ हैक्स कुछ इस तरह है। द डन लिस्ट जिंदाबाद। हाँ जी, हम सब टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, ये तो हमें पता ही है। आज एक काम करो, आज एक डन लिस्ट बनाओ। दिन के एंड में वो सारी चीजें लिखो जो आपने पूरी की, चाहे कितनी भी छोटी हो। ये आप

लिस्ट ऑफ अचीवमेंट देगा एंड परफेक्शन के चक्कर में प्रोजेक्ट जो कमिंग सून वाले थे ना मतलब वो जो बोर्ड आप लगा देते हो कमिंग सून वो बोर्ड लगाने से आप बच जाओगे एंड डन इज बेटर देन परफेक्ट सो डू ट्राई दिस इसी के साथ हाथ का जादू हाँ जी ये दूसरा लाइफ हैक है दिन भर कंप्यूटर और फोन पर हम रहते हैं और हमारे हाथ का इस्तेमाल या तो होता है या तो नहीं होता है तो हमें क्या करना है हमें ब्रेक लेना है कुछ एग्जैक्टली वो टच एंड फील वाला जो फैक्टर होता है ना वो हमें हाथों से करना है जैसे कि गार्डनिंग करनी है या फिर पुराने टी शर्ट से कोई क्राफ्ट बनाना है समथिंग जिसमें आपके हाथों का इस्तेमाल हो इससे क्या होता है कि जब आप अपने हाथों को यूज करते हैं तो आपके दिमाग का एक अलग हिस्सा एक्टिवेट होता है जो आपको रिफ्रेश कर देता है सो यस डू ट्राई दिस फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 101

0: FM 107. Time check. Right guys, time for the time check. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
0: हाँ जी सलाम आदाब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. क्या हाल चाल है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने मॉर्निंग की आपने जो है वो शुरुआत भी कर ली होगी. पता है आपको, कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी जो है एक सफ़र है, लेकिन असल में देखा जाए मैं कहती हूँ ज़िंदगी जो है वो हर रोज़ लिखी जाने वाली एक नई कहानी है. हर नए दिन के साथ नया मौका, नए अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का मौका, खुद को और बेहतर बनाने का मौका, नए इरादे लेकर आने का मौका और नए एस्टैब्लिशमेंट्स करने का मौका. आज की सुबह भी बिल्कुल ऐसे ही है, उम्मीद से भरी, रोशनी से.

0: भरी और उन तमाम लोगों के नाम जो रोज अपनी जिंदगी में छोटी छोटी कोशिशें करके एक बड़ा चेंज लाना चाहते हैं। दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त नाज़िया और आप सुन रहे हैं समा मॉर्निंग्स। पूरे 3 घंटे आपके साथ रहूंगी, बहुत सारी बातें होंगी और अगले घंटे हम जो है वो दिलचस्प वाला आज का जो टॉपिक है वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि होता यह है कि बहुत सारे लोग टॉपिक पर बात करना चाहते हैं और फिर हम जो है गेम सेगमेंट की तरफ जा ही नहीं पाते, तो आज उसका भी ख्याल रखा जाएगा। कुछ अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होंगी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज के दिन को एकदम पॉजिटिव नोट पर शुरू करने के लिए बहुत काफ़ी है। तो बस आप जहाँ भी हैं अपनी मुस्कुराहट अपने साथ कैरी कीजिए और इस दिन को एक नई सोच एक नई उम्मीद के साथ जो है वो एंजॉय कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं देन डेफिनेटली द नंबर इज 666-22107, या फिर आप मुझे अगर कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 4434-3437। वेल, आपको मेरे साथ रहना है 3 घंटे यानी 6 to 9, आप और मैं साथ में रहेंगे, बहुत सारी बातें भी होंगी। आप अपना हालचाल मुझे बताइए, कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं वो आप हमें बता सकते हैं, अगेन 666-22107। फिलहाल के लिए दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आप और हम साथ समर मॉर्निंग्स में।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: Alright guys, एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं समा मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ एंड इट्स 6:14 ऑन द क्लॉक. तो चलिए थोड़ा सा मौसम के बारे में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मौसम का हाल चाल भी जो है वो पूछ लेते हैं किस तरह का मिजाज है
1: मौसम का हाल चाल.
0: हाँ जी, तो आज कैसा रहने वाला है मौसम? वैसे तो बिल्कुल साफ आसमान है, धूप रहेगी जो कि हम और आप जानते हैं, ये बात हम रट चुके हैं. वैसे दिन का वक्त जो है वो टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, बट शोज लाइक 43 आपको फील होगा 49 जैसा. वहीं पर मिनिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा. ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 68% रहेगी और शायद इसीलिए हमें और आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है. वहीं हवा की बात करूँ तो हवा जो है वो 7 किलोमीटर पर आर है, जबकि दिन के टाइम में हवा जो है उसकी रफ्तार 14 किलोमीटर पर आर तक पहुंच सकती है. वहीं पर सनराइज की बात की जाए तो सनराइज हुआ 4:58 AM पे और सनसेट है शाम में 6:22 PM पे. वहीं पर यूवी इंडेक्स जो है वो काफ़ी हाई रहने की उम्मीद है और शायद इसीलिए अगर आप दिन के वक्त बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी और अजीब सी होती है ना इची फीलिंग, वो वाली फीलिंग होगी. और मैं कहूँगी कि आपको वापस से कि आपको अपना वाटर इनटेक जो है उसका खास ख्याल रखना है, बच्चों को धूप से बचाइए, अननेसेसरी बाहर इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है. और इफ़ इन केस आपको इमरजेंसी में जाना ही जाना है तो अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए, सन ग्लासेस कैरी कीजिए, कैप्स वगैरह लगा सकते हैं तो उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए. क्योंकि याद रखिए यहाँ कतर की जो गर्मी है ना उसमें हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पानी पीते रहिए और अपना खास ख्याल रखिए. चलिए ये तो मौसम की बात हो गई और अब जो है वो आपकी भी बात हो जाती है. यहाँ पे कुछ प्यारे से मैसेजेस हैं, जैसे मुझे तौफीक जी ने सलाम भेजा है एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद कर रही हूँ आप एकदम खैरियत से होंगे. इसके साथ हमारे साथ जो है वो तारिक जी हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे. वैसे आपकी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे हुई, हो चुकी है या अभी घर पर ही हैं आप? इसके साथ हमें मैसेज है अहमद जी का, सलाम वालेकुम अस्सलाम. हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग आपको. यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज है सऊदी अरेबिया से और इनका नाम जो है सैम है, शायद सैम है. और यहाँ पर मैम आपको सुन रहे हैं, थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह. कल भी मैं लोगों से पूछती रही किस तरह का मौसम, बताओ बताओ बताओ सऊदी में. हालांकि मुझे मतलब जाहिर है गर्मी तो है ही, बट फिर भी क्या कंपेरेटिवली बेटर लग रहा है आपको यहाँ से? अब यहाँ तो हम आपको बताएंगे ना सारी रिपोर्ट हम आपको भेज रहे हैं, यहाँ तो महसूस होती है दिन में बहुत अच्छी वाली गर्मी. तो वहाँ आप बताइए क्या हाल चाल है और कौन

सिटी से आप हमें सुन रहे हैं, अभी हमें बताइए. ओके, इसके साथ एक और भी प्यारा सा मैसेज है. ये वॉइस नोट हमें भेजा है किसी ने. ओके, इनका नाम है मोहम्मद. थैंक यू सो मच. और एक और खूबसूरत सा मैसेज हमें मिला है. ये भी चाय पी रहे हैं, अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं. अच्छा, चाय एंड कॉफ़ी की तो ये हमेशा हमारी जो है ना डिबेट चलती है. कुछ लोग जो हैं वो सुबह उनकी चाय ही उनके लिए इट्स लाइक एक शुरुआत मिलती है, उन्हें एक किक मिलता है मॉर्निंग के लिए, एक काम करने के लिए उन्हें एक एनर्जी मिलती है. वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्लैक कॉफ़ी है ना वो आपके पूरे दिन को सेट कर देती है. अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो थोड़ा इनिशियली आप उतना अच्छा इंजॉय नहीं करें, बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि आप कितना ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो. तो इसलिए कुछ टाइम में मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ब्लैक कॉफ़ी, बट मुझे फिर समझ ही नहीं आया. मैं किसी चीज़ को शुरू तो कर देती हूँ बड़े चाम से, बड़े जोश से, उसने बताया, उसने किया, वो कर रहा है, ये कर रही है, फिर उसको जो है वो मेनटेन करना या उस तरह से कंसिस्टेंट रह पाना मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है. एक चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट नज़र आए, दैन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर रिजल्ट्स आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ चमत्कार जैसा मिरेकल जैसा तो होता नहीं है कि आपने 10 दिन किया, 12 दिन किया और इंस्टेंटली आपको किसी भी चीज़ में कोई रिजल्ट्स नजर आए. हम थोड़े से इंपल्सिव और इंपेशेंट हो जाते हैं कि जल्दी से हमें रिजल्ट देखने की आदत है कि कुछ हमें जल्दी से मिल जाए, लेकिन नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ को सेट होने में और थोड़ा सा रिजल्ट्स दिखाने में टाइम लेती है. और जो चीज़ टाइम लेकर टाइम पे होती है ना वो टाइम तक टिकती भी है. ये भी बड़ी बात है. वाह, क्या क्या चीज़ें जुड़ दी. अच्छा चलिए, आज जो है वो है 27th of July, यानी मंडे का दिन. तो आज जो ये दिन है, ये दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें आज के दिन ऑब्जर्व की जाती हैं. और जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज ये वाला दिन है. ओहो, क्या बात है. आज है दोस्तों इंटरनेशनल सेफ प्लेसेस टू वर्क डे. यानी ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर वर्क प्लेस ऐसी जगह होनी चाहिए, चाहे आपका ऑफिस है या फिर आप घर में काम करते हैं, जहां आप जो है वो कंफर्टेबल महसूस करें, महफूज महसूस करें और एक अच्छा सा माहौल, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट आपको मिले, जहां आपकी सोच जो है या आपकी जो क्रिएटिविटी है वो और मज़ीद बेहतर हो सके. तो इस तरह का माहौल आज का दिन तो सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं मेंशन किया कि ये माहौल क्रिएट कैसे होगा ऑफिसेज में या फिर जहाँ भी काम कर रहे हैं लोग. लेकिन चलिए, खैर, ऑफ कोर्स आज ये दिन है तो किसी ना किसी सोच के साथ इसे एस्टैब्लिश किया ही होगा. एटलीस्ट आज जो है लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन. वैसे आज का जो टॉपिक है उस पर भी मैं आऊँगी बस अब से थोड़ी सी देर के बाद ही. और एक और दिन है जो आज सेलिब्रेट किया जाता है, वो है क्रॉस अटलांटिक कम्युनिकेशन डे. यानी आज का दिन कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है और एक बहुत ही तारीखी कामयाबी को याद दिलाता है. यह हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी और यू नो कम्युनिकेशन ने किस तरह से दुनिया को पहले से ज़्यादा करीब कर दिया है. तो ये दिन भी आज एकदम ख़ास वाला दिन है. इसके साथ एक और भी दिन है और वो है वर्ल्ड डे फॉर ग्रैंड पेरेंट्स एंड द एल्डरली. आज का दिन बुज़ुर्गों के नाम है. ये उनकी मोहब्बत, यू नो, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी भर की जो रहनुमाई है उसे अप्रिशिएट करने का दिन है. अगर आज आपके दादा, दादी, नाना, नानी या कोई और बुज़ुर्ग जो हयात है तो ज़रूर उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आज का दिन ख़ास आपके लिए. वैसे तो आप बात करते ही होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, बट अगर आज आपको मौका मिलता है तो ज़रूर बताइएगा. तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा जान के, अरे वाह, हमारे लिए भी कोई ख़ास दिन है. ऐसे तो लोग हमें उस तरह से याद ही नहीं कर पाते, मतलब हम सब इतना मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, शायद उस तरह से टाइम नहीं दे पाते. खैर चलिए, आज का जो दिन है वो बहुत ही खूबसूरत है, 27th of July. मुझे लगता है ये सिर्फ जो है वो कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है, बल्कि यही नहीं, और भी जितने डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे डेज होते हैं, ऐसी ऐसी बातें, चीज़ें निकल के आती हैं जो हमें लगता है कि हम तो इसे सोचते भी नहीं हैं. हमें तो लगता है जस्ट इट्स अ डे, अनदर डे, और इट्स अनदर वर्किंग डे फॉर अस, इट्स जस्ट अनदर जस्ट वर्किंग डे फॉर अस, जो हम जिस तरह से हम इसको लेके चलते हैं. लेकिन हाँ, जब हम ये ऑब्जर्वेंसेस पढ़ रहे होते हैं तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, हर डे को स्पेशल बनाने के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट है. जैसे आज कितना अच्छा दिन है, मतलब अपने जो वर्क प्लेस है उसकी अहमियत, उसको बेहतर करना, फिर अब बेहतर कम्युनिकेशन की बात करना और कम्युनिकेशन को बताना कि इट्स सच ए पावरफुल टूल, और फिर साथ ही हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी कदर करना, तो मतलब

0: ये दिन आज का दिन भी काफी पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करने रिस्पेक्ट करने और उनके साथ वक्त बिताने के लिए हमें और आपको मोटिवेट करता है तो बस अपना थोड़ा सा टाइम इधर-उधर से निकाल के कोशिश कीजिए कि अपने लव्ड वन के साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो जरूर स्पेंड करें फिलहाल दोस्तों यहां पे छोटा सा ब्रेक ले रही हूं वापस आऊंगी तो फिर आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करना स्टार्ट कर देंगे टॉपिक इंटरेस्टिंग है जरूर जुड़े रहिए बल्कि मैं कहूंगी आप मेरे साथ एंड यस सबसे थोड़ी देर के बाद जब मेरी वापसी होगी तो आज का टॉपिक भी होगा स्टे हुक टू एफएम 107 दिल से देसी
1: Anytime, anywhere. Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: दोस्तों मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके दरवाजों के करीब खड़े ना हों खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है दोस्तों गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस एम्बुलेंसेस फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत.

0: एक कदम हदीद टू हैबिट. हदीद टू हैबिट दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है. अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो. सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए. कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए. उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों. फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके. पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे. बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके. पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके. इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके. छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है. पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए. इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
2: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड इट्स 6:31 ऑन द क्लॉक। यहां पर कुछ और प्यारे प्यारे लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हैं वो हमें मिल चुके हैं। यहां पर मैसेज है सामी जी का, एंड सुबह बखैर एंड अगेन द हेल्दी ब्रेकफास्ट। क्या बात है, और बहुत ही टेम्पटिंग है, और आज तो कुछ तो एक्स्ट्रा आपके है। ओ, ब्लैक चिक पीस एक्स्ट्रा है, कल तो नहीं थे ये, दिस इज़ माई फेवरेट। तो चलिए आप अपना बहुत ही हेल्दी वाला, प्यारा वाला और इतना कलरफुल सा ब्रेकफास्ट इसे इन्जॉय कीजिए। इसके साथ हमारे साथ हैं सलाम कहते हुए आरिफ अंसारी जी, वालेकुम अस्सलाम। एंड जावेद बाजवा जी कहते हैं सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड फुल एनर्जी के साथ, थैंक यू सो मच एंड यू बिन ऑलवेज काइंड। ये तो मैं कहूँगी। ये कौन है भाई? कुछ लोगों के नाम यहाँ पे होते नहीं है तो मुझे समझ ही नहीं आता। आमिर है शायद, मिस्टर मो आमिर कुछ तो है। हाय, गुड मॉर्निंग का है, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको। एंड ये सुबह सुबह खाना बनाते हुए, ओहो ये क्या चीज़ बना रहे हैं आप? बाय द वे नूर जी का मैसेज है, हाँ पता नहीं, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। आप सोच रहे होंगे क्या खाने लग गई, जाने लग गई? नहीं, मैं देख रही थी कि ये है क्या, किसी ने एक वॉइस नोट भेजा है तो मुझे लगा मैं सुन लूँ। और ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है किसी की बेटी का, जो गुड मॉर्निंग कह रही हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग। नाम आप लोग लिखते नहीं है तो मुझे पता नहीं चलता है। रईस जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको। ताबिश हमें सुनते हुए, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये भाई कौन है? शाह सैयद जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, थैंक यू फॉर दिस लवली मैसेज। चलिए आज की तो मॉर्निंग के मैसेजेस की तो हमने जो है वो शुरुआत कर ली, और धीरे धीरे आपके जो मॉर्निंग के मैसेजेस हैं वो हम लेते भी रहेंगे थ्रू आउट। लेकिन आज हम बहुत अर्ली ही, थोड़ा सा पहले ही आ गए हैं अपने TTT पर, विच इज़ टी टेबल टॉक। यानी जब आप चाय पी रहे हैं और उस चाय में एक अलग वाला तड़का अगर आपको मिल जाए, आई मीन टू से एक ऐसी कन्वर्सेशन हो जो इंटरेस्टिंग भी हो और पॉजिटिव भी हो और आपके मॉर्निंग को अच्छी तरीके से सेट कर दे, तो वो बस आज के हमारे TTT में होने वाली है। आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछा जाए कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे हम लोग जो हैं वो दो चीज़ें ऑब्जर्व भी करते हैं, महसूस करते हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं? वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हैं कॉम्पिटिशन और कोऑपरेशन। स्कूल में देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेड्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हमने देखा कि टीम्स जो हैं वो अगेन वो भी उनका भी कंपटीशन चल रहा है जीतने के लिए। ऑफिस में भी हम एक दूसरे से बेहतर जो है वो किस तरह से परफॉर्म करना है, इस बेहतर परफॉर्मेंस की कंपटीशन हमारे ऑफिस में कोवर्टली कह सकते हैं चलता रहता है। तो लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंपटीशन जो है वो चल तो रहा है। कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस कॉम्पिटिशन को, मान रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ सच कॉम्पिटिशन। एंड यू नो समटाइम्स आई से दे आर हेल्दी कॉम्पिटिशन, सिर्फ हम हेल्दी कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनते हैं। तो मुझे लगा कि आज मैं आपसे, क्योंकि आज का दिन भी खास है, आज हम इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, कि ऑफिसेज में स्पेशली किस तरह से हेल्दी एटमॉस्फेयर या किस तरह से सेफ वर्क एनवायरनमेंट जो है उसे प्रमोट किया जाना चाहिए, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जो है वो कोऑपरेशन से होती है। तो बस यही दो वर्ड मिलके आज का हमारा सवाल बन गया है। आपको क्या लगता है, इस कॉम्पिटिशन बेटर देन कोऑपरेशन, और डू यू बिलीव दैट कोऑपरेशन इज़ बेटर देन कॉम्पिटिशन? क्या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुकाबला आपको लगता है ज़रूरी है, या फिर मिलकर चलना ज़्यादा खूबसूरत है? आई रिपीट, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके बता दूं कि ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी से कम्पीट करना, कॉम्पिटिशन करना ज़रूरी है, या खुद से ही कंपटीशन जरूरी है, या फिर मिलकर चलना ज्यादा खूबसूरत है? दिस इज टुडेज टॉपिक। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 4434377 पर, ये हमारा नंबर है, आपकी कॉल्स हम लेना स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कॉल करके इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, जरूर मुझे बताइए, सोचिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको क्या बेहतर लगता है, इज कॉम्पिटिशन बेटर देन कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन बेटर देन कॉम्पिटिशन, या फिर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, देन फील फ्री। तो फिलहाल मेरे साथ पहले कॉलर यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मिस आसिया।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? एंड हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। आज इत्तेफाक से सुबह सुबह ट्यून कर लिया। मैंने कहा आवाज तो मिस ना दिया की लग रही है, वरना हम तो 11 से 1 वाले सेगमेंट में होते हैं अक्सर।
0: हाँ नहीं, अब तो काफ़ी टाइम से, जून से मैं जो हूँ मॉर्निंग्स में आ गई हूँ, मतलब मैं छुट्टी पे चली गई थी तो 2-3 दिन ही रही, एंड देन नाउ अभी 19 से फिर मैं हूँ।
1: जब तक हम सर्वर भाई से एंटरटेन हो रहे थे
0: अभी तो सर्वर भाई भी छुट्टी पर हैं।
1: अभी सर्वर भाई भी छुट्टी पर हैं। आप मॉर्निंग में हैं, वो तो इत्तेफाक है कि बस फाइट फिनिश की और घर जाते हुए जो है हमने एफएम ट्यून किया, तो मैंने कहा ये तो मिस नाज़िया की आवाज है।
0: वाओ, तो चलिए कॉल करते हैं। क्यों, आपने मेरी आवाज पहचान ली एटलीस्ट, ये अच्छी बात है। अच्छा, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुकाबला जरूरी है या फिर मिलकर साथ चलना ज्यादा खूबसूरत है?
1: एक्चुअली आपका सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन किसी जगह पर मिलकर साथ चलना बहुत बेहतर रहता है और किसी किसी जगह पर मुकाबला बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, और अगर आपका आप

0: आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको मुकाबले में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा 100%। वहां आप मिलकर नहीं चल सकते क्योंकि जो जिनके साथ आप मिलकर चलने की आप प्लानिंग करेंगे वो उनके कुछ अलग आइडियाज रहते हैं, उनकी अलग कुछ मूव होती है, उनका नेक्स्ट स्टेप कुछ और होता है, आपकी एक अलग प्लानिंग है, आपका नेक्स्ट मूव अलग है और वो जो आप किसी से शेयर भी नहीं करते।
1: बहुत सही।
0: लेकिन मेरे हिसाब से तो कंपटीशन ज्यादा इंसान को सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। एक हेल्थी कंपटीशन पॉजिटिव सोच के साथ, सब्र के साथ, अपने ऊपर बिलीव करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 100% सक्सेसफुल तो फिर इंशाल्लाह हो ही जाएंगे।
1: वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। सो कॉम्पिटिशन आर इट क्वाइट हेल्दी और कहीं कहीं आपको जो है वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट, मतलब आपको किसी ना किसी के साथ कम्पीट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ इससे मुझे थोड़ा सा अपने आप को और बेहतर करना है और ये जरूरी भी होता है। दिस इज हेल्दी आल्सो, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग।
0: अगर कि आप किसी स्पोर्ट्स सेगमेंट में जाते हैं तो वहां पर टीम वर्क है, वो आप टीम वर्क किए बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते, कामयाबी नहीं मिलेगी। लाइक आप गेम खेल रहे हैं या फिर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस पर आपको टीम वर्क 100% चाहिए। वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं चलता, वहाँ टीम वर्क चलता है।
1: हाँ, टीम वर्क चलता है। बहुत ही जबरदस्त बात और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है इस टॉपिक की। थैंक यू सो मच, ग्लैड कि आप जो है आपने ट्यून इन कर लिया और सुन लिया, एंड थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, इट वाज रियली फैंटास्टिक।
0: थैंक यू मिस सादिया, थैंक यू मिस सादिया, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत
1: जजाकअल्लाह हाफिज। ऑलराइट दोस्तों, जैसा आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, आपसे पूछ ही रहे हैं, इज कॉम्पिटिशन बेटर देन कोऑपरेशन, व्हाट यू थिंक, हमें बताइए। 666-22-107 पर कॉल कीजिए, 4434377 पर। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जावेद जी? आज आप तो, आपकी अर्ली मॉर्निंग हो गई। नहीं, मॉर्निंग तो आपकी अर्ली स्टार्ट होती ही है, बट आज कॉल आपने टाइम निकाल लिया, थैंक यू।
2: बेसिकली नाजिया, सबसे पहले तो आप कैसी हैं, और उम्मीद है कि जितने भी सामीन वो भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला।
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और इंशाल्लाह हमारे जितने लिसनर्स हैं वो भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह।
2: हाँ, कोशिश तो मैं कर रहा था आज, क्योंकि आज चांस मिल गया था मुझे, आज थोड़ा मैं फ्री हैंड था और मेरे भाई ने एक पहले मतलब सबकत ले गए मुझसे, मैं फिर भी खुश हूँ कि मैं सेकंड पे आ गया।
1: तो नहीं नहीं, आप हमेशा से आप सब फर्स्ट पे, ये कंपटीशन नहीं है।
2: अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ से ये पूछूं, मैंने उस दिन आपको वो कुछ टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, मैंने वो आपको वीडियोस भेजी थी वो पेजेस के हवाले से,
1: मैंने देखी, मैंने देखी और एक शायद किसी ने मुझसे मांगा भी था तो मैंने उन्हें फॉरवर्ड भी की आपकी।
2: ओह माय गॉड,
1: तो वाकई देखा तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और मुझे खुशी भी हुई देख के कि आप किस तरह से ख्याल रखते इतने सारे पेजेंट्स का। बड़ा मुश्किल है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बट हैट्स ऑफ, आपकी अपनी इतनी हैक्टिक स्केड्यूल है, फैमिली है, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट आप बर्ड्स का भी, पिजन का ख्याल रखते हैं। ज़्यादा ज़ाहिर है टाइम तो लगता ही हर चीज़ में, टाइम देना ही पड़ता है, बट यू आर डूइंग दैट, बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह।
2: ये इनके साथ रह के ना, इनके साथ जब आप जिंदगी देखे वैसे ही अल्लाह ताला का बड़ा हसीन तोहफा है, और जब आप इनके साथ वक्त गुजारते हैं ना तो आपको जिंदगी का और भी एहसास होता है कि कितनी खूबसूरत रब ने बनाई हुई है।
1: बिल्कुल।
2: तो आज के हवाले से आपका जो टॉपिक है, माशाल्लाह टॉपिक तो पता नहीं आप कहाँ कहाँ से ला के आपने हमें किस मतलब वाले जान हमें बनाया हुआ है, कैसे कैसे
1: मुझे सोचिए कितनी मुश्किल होती होगी रोज मुझे एक टॉपिक जो है, और रोज एक नहीं 7 टॉपिक्स हमें इन रो देने होते हैं पहले, तो सोचिए कितना, और सारे लोग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कितना चैलेंजिंग है कि कुछ नया, कुछ डिफरेंट कुछ हो। बट चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक आप लोग हैं माशाल्लाह।
2: वो तो ठीक है, आप मतलब एक टॉपिक को एक लाइन दो लफ्जों में, जो उसके बाद जो हमारे दिमागों की जो मशीन काम करना शुरू करती है उसका
1: तो ये आप लोग की बताए ब्रेन एक्सरसाइज हो रही है ना, आपकी मेरी भी, हम सब मिलके कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि अब हम इसमें क्या नया ऐड कर सकते हैं, तो मजा भी आता है ना। हर कोई सोचता है कि अच्छा ये तो हमारी कॉलर ने बता दिया, तो पहले जो कॉल करेगा उसको फायदा है।
2: Exactly.
1: उसके लिए सब कुछ नया।
2: अच्छा, मैं आपके टॉपिक की तरफ आता हूँ। माशाल्लाह भाई ने बात बहुत अच्छी की थी, लेकिन हर एक इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, कंपटीशन का, कोऑपरेशन का।
1: राइट।
2: तो मैं वैसे इस चीज को समझता हूँ कि जिंदगी में

0: है कंपटीशन और कॉपरेशन जो ताउन है दोनों की अपनी अहमियत है नाजिया लेकिन अगर सिर्फ एक को तरजीह देनी हो तो मैं समझता हूँ कि वो है कॉपरेशन ज्यादा पायदार और ज्यादा फायदा मंद रास्ता होगा क्योंकि इंसान को मेहनत तरक्की और अपनी सलाहियत बेहतर बनाने की कॉपरेशन से वो बेहतर बना सकता है लेकिन जब वो कंपटीशन में आएगा तो वो मुकाबला करेगा जिसमें उसको स्ट्रेस होगा उसकी सेहत भी खराब हो सकती है उसके अंदर हसद भी पैदा हो सकता है और दूसरों को नीचा दिखाए जाने की ख्वाहिश भी पैदा होगी बहुत सी चीजें हैं अगर उसी कॉपरेशन को लेकर अगर आप चलेंगे तो वो कंपटीशन भी चलेगा और वो आपका ताउन भी साथ रहे सबके साथ
1: ये बात भी बहुत अच्छी कही हो खास करके ये जो जलन हसद और दूसरे को नीचा दिखाना ये चीज़ें भी हाँ ये तो है पॉइंट कई बार इंसान इस हद तक और इससे बहुत आगे तक चला जाता है खुद को जिताने के लिए तो जितने फाउल मींस हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करने लगता
0: है फॉर एग्जांपल देखिए ऑफिसेस में अगर मतलब फॉर एग्जांपल एक बॉस है या एक ऑफिसर है या एक सीनियर है वो अगर किसी बंदे को प्रायोरिटी देता है और काम सब इक्वल कर रहे हैं लेकिन सबके दिल में और दिमाग में ये चीज जरूर बैठेगी यार काम तो हम भी कर रहे हैं सेम छत के नीचे हैं सेम हमारा भी वो ही काम है लेकिन प्रायोरिटीज को दे रहे हैं यू विल फील इट आपको फील होगी वो चीज वहां से पैदा होगी आपकी जलन आपका हसद आपकी नेगेटिव सोच
1: बिल्कुल सही बिल्कुल और लोग आपसे कंपीट करेंगे नहीं आपने ये जो बात की उससे मैं कहूंगी कि लोग जो है ना वो आपसे कंपीट करते हैं और वो कंपीट करने के चक्कर में खुद को तो बेहतर नहीं करने की कोशिश करते हैं दे ट्राई टू पुल यू डाउन तो ये एक और जैसे आपने कहा ना नेगेटिव अप्रोच भी एक जुड़ जाती है नेगेटिव क्वेश्चन भी जुड़ जाता है सो वो जो है उस कॉम्पिटिशन को अनहेल्दी बनाता है That's true. और ये होता ही होता है ये होता ही होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके सो वेरी वेल सेड थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह थैंक यू फॉर योर कॉल इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू और हैव अ फैंटास्टिक मॉर्निंग एंड फैंटास्टिक डे अहेड अपना ख्याल रखिए बहुत ज्यादा
0: बाकी इंशाल्लाह ताला शहजादा सलीम भाई और इस भाई आएंगे जितनी बाकी हमसे जो कमियां हैं वो आगे इंशाल्लाह पूरी करेंगे
1: नहीं नहीं सब कुछ अलग अलग ऐड करें कल तो बहुत ही मजेदार था टॉपिक हर किसी ने कुछ नया ऐड किया मुझे बहुत अच्छा लगा कल मैंने उस टॉपिक को बहुत एंजॉय किया भरपूर तरीके से इंशाल्लाह आज भी इंशाल्लाह थैंक यू जज़ाकअल्लाह वंस अगेन थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिए ओके अल्लाह हाफिज आप किसके साथ जाना चाहेंगे एंड क्यों मुझे बताइए 666-222-107 पर या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रईस जी कैसे हैं
2: और हमारे जावेद भाई और सलीम भाई और तमाम हमारे
1: अभी सलीम भाई तो आए नहीं है जावेद जी से अभी बात
2: मतलब सुन रहे होंगे जहाँ भी सुन रहे होंगे हो सकता है ट्यूनिंग करके सुनते रहते हैं तो सारे लोगों को जो हमारे दोस्त लोग हैं मतलब कोई जितने भी मतलब हमारी बातों से कुछ एग्री रहते हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया और उनको मतलब सलाम और तहियात मतलब पेश करना भाई हक बनता है
1: बिल्कुल आपको याद करते रहते हैं आपके जो लिसनर फ्रेंड्स हैं
2: कोशिश करते हैं बाकी थोड़ा सीख लिया इस रेडियो के जरिए ने तो हम तो बस भाई खामोशी से रहने वाले बच्चे थे इतना ज्यादा तो हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था ना कोई इतना हमें अपने आप से बहुत बड़ा ये है कि हम बहुत ये हैं बस लोगों का सुनते सुनते आप जुड़ते जुड़ते और थोड़ा सा सीखने को मिलता है थोड़ा सा बोलने का मौका मिलता है ये भी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आदमी के लिए
1: हाँ ये तो है वाकई हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं सीखते भी और आपने सही कहा कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होता है आप अपनी बात रख पाते हैं
2: पहली बार आदमी बात करता है तो उसके अंदर कुछ अलग मतलब ये फील होता है फिर दूसरी बार तीसरी बार करते करते करते उसके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है बात करने का
1: यस यस बिल्कुल सही तो आज क्या कहेंगे क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुकाबला जरूरी है या फिर मिलकर चलना आपके हिसाब से ज्यादा खूबसूरत है कंपटीशन कोऑपरेशन

0: दोनों दोनों जरूरी है, दोनों को मतलब आपको सिचुएशन और हालात को देख के आपको फैसला करना है, कहीं पे मुकाबला भी जरूरी है और कहीं पे मिलके, लेकिन मिलके चलने में थोड़ा सा मतलब अपने आप को एहतियात बरते हैं कि मतलब वो बंदा किस लायक है अपने, मतलब किस उसको सारी चीजों को शेयर करने से पहले थोड़ा सा सोचे, नहीं तो फिर आपको पीछे से खींच के मुंह के बल गिरा देगा आपका जो पड़ोसा बाकी है ना, तो वो भी मतलब मलियामेट हो जाता है। मैंने बहुत अपने एकदम जिसको मैं एकदम खास समझ के और इतना ट्रस्ट करके ये किया, उन लोगों ने ऐसे ऐसे धोखे दिए ऐसे ऐसे कि मतलब उसको बता बयान नहीं कर सकते हैं, और बहुत अफसोस हुआ कि यार हम इस पर इतना ट्रस्ट किए और कोई बात को शेयर किए कि यार ऐसे ऐसे करके, तो वो बंदे फिर उसमें चाल चलना शुरू कर जाते हैं कि इस बंदे का कंप्लीट ना हो ये। तो ये भी थोड़ा सा आदमी को ख्याल करना चाहिए कि वो हमारे लिए किस किस हद तक है, वो हमसे मुखलिस है, उस बंदे को उसी तक वो अपनी बात को शेयर करें और ये करके मिलके चलने करने। तो फैसला तकरीबन रजिया मैंने जो फैसला लिया है, हालात सिखा देते हैं, हालात सिखा देते हैं। मान लो कुछ आदमी को खुद अगर ये करना है, अपने आप को डेवलप करना है या कुछ करना है, तो ज्यादा बहुत ज्यादा शेयर मत करो कि यार मेरे पास ये है, पैसा है, ये है, तो मैंने ये करने की प्लानिंग किया है, मैं फला जगह पे मतलब ये परचेज से लेके मतलब कोई भी मामलात में, तो फिर उसमें आदमी को नजर भी लग जाता है कि मतलब उसमें वो बुरा सोचना, उसके अंदर हसद पैदा हो जाता है। तो ये सब चीजें अगर आप देख लो पहले आगे पीछे सोच के थोड़ा सा हालात को समझ के फिर उसको, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, तो एक बैग आप कोई भी फैसला लो बस अपने खुद के ऊपर एतमाद करके, बस नहीं हालात सिखा देता है देखो कि मतलब वो किस हद तक उसमें कामयाब होगा। दूसरों के ऊपर भी नजर डालें कि वो बंदे ने ऐसा फैसला लिया था तो ऐसा किया था, उस जगह का उस माहौल का किस तरीके से वो कामयाब हुआ, आगे फ्यूचर में उसके लिए मतलब उसके लिए फायदा का सौदा हुआ या नुकसान का सौदा हुआ।
1: सही,
0: तो ये सब चीजें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उसको शेयर करके, क्योंकि मैंने जितने भी किए तकरीबन फैसले खुद लिए और वो बाद में हमारे लिए पॉजिटिव

0: है कि मतलब किस तरीके से ना कि बंदे के पास कुछ हो गया तो हम उसके हाथ, यही चीज हमारे लिए गुनाह का गुनहगारी का जरिया बन जाता है। उसमें जो अच्छाई चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उसको हम भी करने की कोशिश करें, किसी ने कोई किसी के साथ अच्छा एहसान किया या कोई मामला किया के साथ, तो हम भी कोशिश करें कि हम यार उसको, हम भी उसमें शामिल हो जाएं और अल्लाह से उसका बदला लेने का कोशिश करें, ना कि दुनियावी मामलात में। हाला इंसान का तो ये बहुत बड़ा फितरत है कि आजकल तो पहले के लोग भले गरीबी थे हालात, हम लोगों ने तो आज के 30 साल के पहले तक के लोगों को देखा है, हालांकि बच्चे थे उस टाइम तो, लेकिन फिर उससे थोड़ा आज समझ में आ रहा है कि बंदा, पहले के लोग मुखलिस थे, मतलब लोग धोखाधड़ी बहुत कम, लोगों के अंदर दुनिया की कसरत से चाहत बहुत कम थी। आज इतना कंपटीशन हो गया बंदे के पास, पैसा गाड़ी घर सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी उसके अंदर हसद और कंपटीशन इतना बढ़ चुका है।
1: सही बात है,
0: एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, बस वो इसी उसमें लगे हुए हैं कि यार। मिसाल के तौर पे मैं एक और मिसाल दूंगा, हालांकि टॉपिक चला कि मिसाल के तौर पे आज जो दहेज का मामला, इसमें लड़के वालों से कहीं ज्यादा लड़की वाले भी उसके जिम्मेदार हैं। नाजिया मैं आप शायद उत्तर प्रदेश की हैं और हम भी उसके उसपे हैं आज, समझ लो कि, तो इसमें आपको अंदाजा लगेगा कि इसमें लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसके इस कंपटीशन में लग के इसी टॉपिक पे बात है कि उसने यार इतना दिया, उसने इतना दिया, उसने इतना दिया, तो मैं इतना करूंगा। और ये जो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो परेशान हाल हैं बेचारे, उनके लिए मुसीबत का जरिया बन जा रहा है, और उसी वही बच्ची उस घर में जाकर तानो तशनी का मतलब शिकार होती है।
1: सही, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया।
0: हाँ, अल्लाह ताला ने हमसे ये सवाल करना है, तुमने माल कमाया तो तुम कहाँ पे खर्च किए? ये चीजें बहुत अहम है क़यामत के दिन। उस 4-5 सवालों में से ये सवाल भी अहम है कि बंदे का उस वक्त तक कदम नहीं हिलेगा कि मतलब वो जब तक इस सवाल का, तुम्हें इतना सेहत दिया गया, तुम्हें इल्म दिया गया, तुम्हें इतना माल और दौलत दिया गया, तो तुमने कहाँ पे खर्च किया, किस तरीके से तुमने ये किया। तो ये चीजें जो कंपटीशन में आके और हम दूसरे के लिए मुसीबत का जरिया बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी मतलब बेवकूफी है।
1: यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे कोऑपरेट किया जा सकता है कि सब लोग ये अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय कर लें। आपने बहुत अच्छा कहा, ये कंपटीशन बड़ा हिडन कंपटीशन और बहुत ज्यादा नुकसानदेह कंपटीशन है कि उसने इतनी लाविश शादी की तो मुझे उससे ज्यादा करना है। भाई किससे आप कम्पीट कर रहे हो, किसको साबित क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं।
0: ये चीजें अब मिसाल के तौर पे बंदा उसका बाप है या उसका भाई है, कोई भी है, बाहर में प्रदेश में कमा रहे हैं और मतलब उनके पास थोड़ा सा अल्लाह ताला ने दे दिया, तो उस चीज को इतना शो करने में इतना ज्यादा मतलब खाने के उसमें आइटम में और देन लेन के आइटम में इतना ज्यादा ये कर जाते हैं ना कि बेचारा जो गरीब है, जो घर पे मजदूरी करने, उसकी कमर टूट जाती है, वो समझ लो घुट के मर जाता है, और ये बहुत बड़ा अजाब है उनके लिए और उनको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। ये कोई ये ना मतलब ये करे कि मैंने दे दिया तो मैं उससे बरी हो गया, उसके जिम्मेदार आप बने हैं, आपको सोचना पड़ेगा इस मतलब है। तो लेने वाले को तो यहाँ तक मैंने हदीस सुना है कि जो जबरदस्ती किसी से ले रहे हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिस तरीके से हुकूकुल इबाद का आप माल खा रहे हो, जब तक अगर वो बंदे ने माफ कर दिया दुनिया में तब तक तो आप बरी हो, और नहीं तो आपको क़यामत के दिन बाकायदा आपके नेकियों को उठा के और उसको दे दिया जाएगा, उसकी उसकी जो बुराइयां हैं वो तुम्हारे ऊपर लाद दिया जाएगा अगर आपने गला दबा के किसी के ऊपर ये किया ज्यादती। ये बहुत बड़ा, हमारे जो मुसलमान भाई भी उसमें शामिल हैं और ही शामिल है ज्यादातर, अक्सर मैं देख रहा हूँ कि वो लोग तो मतलब भाई उनका अलग ही लेवल है, लेकिन हमारे लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, हमारे लिए एक दायरा खींचा गया, अब हम उस दायरे से बाहर फलांग के जा रहे हैं। तो ये फिर आज जगह जगह पे आज जो मस्जिदें और मदरसों को ऊपर कर रहे हैं, तो ये हम अपने अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमने मस्जिदों को कितना आबाद किया है, अपने दीन के तालीम को हमने कितना अपने ऊपर अप्लाई किया है। ये चीजें हम अपने आप को अगर इसके ऊपर गौर फिक्र करें तो शायद है कि अल्लाह ताला वो अजाब ना नाजिल करे हमारे ऊपर, तो हम खुद उसके बहुत ज्यादा जिम्मेदार बन जाते हैं।
1: सही,
0: तो हमें बहुत सोच समझ के ये करना चाहिए फैसला कि मुकाबला भी उस हद तक होना चाहिए कि जो दूसरे को नुकसान
1: देना
0: जरिया बने।
1: बहुत ही अच्छी लाइन,
0: बात को शेयर करने से पहले भी मतलब थोड़ा सा सोच समझ के ये करें। बस मैं इसी पे इतफाक करूंगा, लंबी हो जाएगी बात।
1: चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात, और जो आपने डाउरी वाली बात की उस बहुत ही अच्छी कही, शादी बेहतर करने वाली बात, तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने।
0: देखा होगा और हमारे
1: ये तो बहुत देखा
0: है, वो देख रहे हैं कि कंपटीशन में ही लोगों का कमर तोड़ा जा रहा है। आज हमारे पास साथिया हमने इतना, लेकिन वो चीजें तुम्हारे लिए, और हमारे उधर एक चलन है उसको

0: बाकायदा, वो बच्ची ने क्या लाकर अड़ोस पड़ोस के औरतों को बुला के बाकायदा दिखाया जाता, शो किया जाता है। आप बताओ
1: बताइए,
0: और भाई इतना नफरत होता है, अब
1: नहीं लाइव की एंबैरस फील कर रहा है। हाँ, कर रही
0: हूं किसको तो बोलता हूं भैया, कम से कम तुम अपने आप, मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं जाना तुम्हें देखने के लिए, क्यों जाना है भाई उसके उसके फायदे के लिए, तुम्हारे अंदर हसद तरह तरह के मतलब ये पैदा हो जाएगा, क्यों जाना है तुमने उसको उसके सामान को देखने के लिए भाई, तुमको तो क्या देगी तू, मतलब ये बहुत बड़ा समझ लो कि इतना बन गया है हमारे उसमें माहौल में माशरे में आ चुका है, तो इससे हमें बचना चाहिए इसको, अल्लाह को जवाब देना है हमें इसको, ऊपर भी डरना चाहिए बंदे को, दुनिया तक की नहीं निकाल कीजिए है।
1: सही कहा, इस तरह के कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं होने चाहिए।
0: यहीं पर ये करूंगा, तमाम लोगों को सलाम तहिया, ओके सलाम अलैकुम,
1: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पर रईस ये कि बहुत ही अच्छा बड़ा वैलिड सा पॉइंट था, काफी प्रैक्टिकल पॉइंट उन्होंने शेयर किया। हम कॉम्पिटिशन और कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं भैया?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमारे लिए बहुत मुश्किल बनाई हुई है, बहुत ज्यादा।
1: अच्छा,
2: आप ऐसे टॉपिक लेके आती हो कि हमारे जितने भी भाई साहिबान है, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, वो अपने अपने रिव्यूज उस पे देते हैं और अपने अपने जो ख्याल है उसके इजहार करते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि स्टार्ट ऐसे लेते हैं वो लोग कि हम हैरान हो जाते हैं,
1: मैं खुद इतने हैरान हूं
2: कहां से शुरू करूं,
1: हर बंदा कितना अच्छी
2: सोच, कहां से शुरू करूं और किस साइड में जाऊं।
1: आप बिल्कुल अपनी साइड से शुरू कीजिए, मेरी साइड पे आइए।
2: अच्छा, मेरा तो ये है, पहले तो जो कल वाला टॉपिक था वो मैं पूरा सुना, पूरे जितने भी कॉलर्स थे वो मैं सुन रहा था, और माशाल्लाह एक तो ये कि हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
1: हाँ, ये तो
2: ये जो हर टॉपिक है उसमें जी बहुत मजा आया था, हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है इसमें से। जैसे आज स्टार्टिंग ऐसी हुई कि बहुत वो कहते हैं ना जारहाना अंदाज से, जैसे सेवाग जो है वो स्टार्ट लेते थे ऐसे, बिल्कुल इसी अंदाज में स्टार्ट हुई। तो अभी ऐसे कि मैं जिस साइड पे जा रहा हूँ तो वो शायद थोड़ा सा अलग है इन लोगों से, और मेरे से आप कोई इतफाक भी ना करें, मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन, मुकाबला करना चाहिए।
1: अच्छा, मुकाबला करना चाहिए, ओके,
2: सिर्फ मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए अभी ये टाइम में ऐसे कि अभी मिसाल के तौर पर अभी कि एक बंदा कोई काम करना चाहता है और वो अगर किसी से मशवरा करे या शरीक होके करे तो वो जमाना भी नहीं है कि आप किसी के ऊपर भरोसा करें।
1: ये बात तो सही है, सही।
2: बस ये कि अभी मैंने ऐसे लोग भी देखे हुए हैं, मेरे साथ खुद भी हुए, लेकिन मैंने दूसरों को भी ऐसे देखे कि वो दूसरों की बहुत हेल्प करके उसको आगे लेकर के आते हैं और फिर वही जो है वो काटने की कोशिश कर रहे हैं।
1: हाँ, ये तो होता है,
2: ये मैंने बहुत ज्यादा,
1: बहुत कॉमन है,
2: बहुत ज्यादा। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उसी जगह पे तो ऐसा कोऑपरेट करना चाहिए जिधर यानी ऐसी जरूरत हो इंसानी हमदर्दी, ऐसे कामों में नहीं जैसे या आपकी जॉब है उसमें उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, या कोई ऐसा कि एजुकेशन में यानी बच्चों के लिए, बहरहाल बच्चों को चाहिए कि वो अपने से नीचे जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, लेकिन अपने लेवल के, अपने क्लास के या अपने लेवल के क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ मुकाबला करना चाहिए।
1: तो मतलब इस तरह के कॉम्पिटिशन होने चाहिए जो आपको बेहतर बनाए, या आप अपने जो गोल है उन्हें हासिल करने के लिए जो है वो मेहनत करें, तब
2: बस सिर्फ उस तरह अपने लिए अपने लिए करना चाहिए, दूसरों का तब सोचना चाहिए कि जब वो आपसे एक दो लेवल नीचे हो, यानी मतलब ये कि अगर एक एक मिसाल के तौर पर एक ऑफिस में काम करते हैं और आपकी जॉब है, आपकी जॉब एक साइड पे है उस ग्रेड का, तो जो नीचे वाले ग्रेड वाले हैं जो जिनको आपकी जरूरत है, लेकिन अगर आपके साथ जो है एक लेवल पे आने वाले जो लोग हैं उनके साथ नहीं करना चाहिए, वो फिर काटने की बहुत ज्यादा मैंने देखे
1: बहुत कोशिश करते
2: वो काटते हैं।
1: राइट, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा। और
2: नीचे गिराते नहीं है, नीचे गिराते नहीं, काटते हैं उनको,
1: काटते हैं उसकी बिल्कुल रूट्स, उसकी जड़ों को। और खास करके जो आपने स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया, मैं तो कहूंगी बहुत ही अच्छी बात कही, मतलब स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करें, और करना भी चाहिए, वो मोटिवेट भी होंगे और इम्प्रूव भी करेंगे।
2: वो तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहिए कि मेरे साथ दूसरा कौन है, अगर भाई है तो भाई।

0: तो उनको उनके मुख दरमियान भी कम्प्यूटेशन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ,
1: और जो स्पोर्ट्स में आप देखिए जितने एथलीट्स हैं वो भी तो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं कि फलाने का रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो अगर कोऑपरेट करेंगे तो फिर कैसे वो, मैं ये नहीं कहती कि अपने लिए रिकॉर्ड्स बना, लेकिन किस तरह से वो एक स्टैंडर्ड या एक बेंचमार्क जो सेट करना है वो सेट कर पाएंगे।
0: नाजिया बहन, अगर आपको याद है टेनिस में दो बहनें थी अमेरिकन थी, सेरेना विलियम्स और एक दूसरे उसका नाम मैं भूल गया, वो दोनों आपस में खुद भी जब खेलती थी तो वो ऐसे नहीं थे चलो मेरी बहन जीते और मैं हारूं या दूसरी उसके, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइनल भी खेले हुए उन लोगों ने, वो दोनों बहनों ने, और वो एक दूसरे के लिए यानी अपने लिए खेलते हैं वो लोग। ऐसा होना चाहिए कि वो स्टार्टिंग से उन लोगों ने जब भी खेला, हाँ ऐसा होना चाहिए।
1: आपने बहुत अच्छा कहा, कॉम्पिटिशन ऐसा हो जो आपको मोटिवेट करे इम्प्रूव करने के लिए।
0: जी जी जी बिल्कुल वही,
1: आप बेहतर।
0: लेकिन लेकिन अगर एक जगह में किसी को जरूरत है वो अलग बात है कि एक यानी मतलब ये नहीं कि आप उनको इतना आगे लेकर के वो कल आपको वो शुरू हो जाए ना यानी काटना शुरू हो जाए, वो नहीं। लेकिन अगर एक बंदे को जरूरत है, किसी इंसान को दूसरे को जरूरत है थोड़ी सी, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मुकाबला जरूर आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए कि मेरे पीछे या मेरे साथ में मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, जो भी है, बहरहाल आगे बढ़ना चाहिए
1: और हेल्दी वे में। ये चीज है, ये नहीं कि आप दूसरों को एकदम पुल करके कर रहे हैं, बट इन योर ओन गुड स्पेस आप इम्प्रूव कीजिए, दैट्स फैंटास्टिक।
0: और अगर नाजिया बहन इधर लास्ट बात, अभी इसमें आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं दूसरे को देख के, अपने या भाई को कजन को देख के वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यही होना चाहिए बच्चों में भी और बड़ों में भी। ये मेरे ख्याल में बड़े जो है वो इससे वो मुस्तस्ना नहीं है कि भाई वो आगे ना बढ़े, उनको आगे बढ़ना चाहिए,
1: बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए आप कंपीट कीजिए कभी ना कभी।
0: बहुत शुक्रिया, टाइम ले लिया, लेकिन बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह सारे ऐसे मैं हैरान हूँ, मैंने जो सोचा था मैं बोला शायद मैं ऐड ना करूं इसमें, इसलिए कि इतनी अच्छी बातें हुई कि बस बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: चलिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने टाइम निकाला और आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया।
1: वालेकुम अस्सलाम। सो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम और आप मिलकर एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन बेटर देन कोऑपरेशन, तो आप अपनी राय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, या फिर आप मुझे कॉल कीजिए 4434377 पर। यहाँ पर हमें कॉल्स भी आ रही है, बट अभी हमें एक बहुत ही मैंडेटरी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे तो इस टॉपिक पर आपकी जो राय है वो हम डेफिनेटली लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, हम यूं गए और बस यूं ही आए।

FM 107. Time check. Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नासिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:04 और हम अपने शो के सेकंड आवर में एंटर हो चुके हैं और आज इस टॉपिक पे बात हो रही है इज अबाउट कंपटीशन एंड कोऑपरेशन. तो आप अपनी राय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. एक कॉलर जुड़ रहे हैं इस वक्त. हेलो हेलो हाई गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम.

0: सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं नूर जी आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सो हो गई आपकी मॉर्निंग की शुरुआत, ब्रेकफास्ट वगैरह आपने कर लिया?
1: ब्रेकफास्ट तो कर लिया खजूर के साथ।
0: अच्छा खाना, अरे क्या बना क्या रहे थे आप? आपने भेजा बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या चीज है ये। फिश है, ओके ओके, अच्छा नाइस। अच्छे से आप बेसन वेसन की कोटिंग करके तल रहे हैं, गुड।
1: सवाल है?
0: हाँ जी, हाँ सवाल तो है ना। सवाल ये है कि क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको लगता है कि मुकाबला करना जरूरी है या फिर मिलकर साथ चलना ज्यादा खूबसूरत है?
1: जैसे एग्जांपल, आप किस काम में आप पहले घुसे हो? अगर आपको गेम खेलना है तो उसे पार्टनरशिप बहुत जरूरत है, अकेले आप गेम विन नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई बिजनेस करते हो तो उसमें आपको अकेले की भी जरूरत है और पार्टनर की भी जरूरत है। अगर आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो तो उसमें दो आदमी के होना जरूरी है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपको पार्टनर 90% जरूरी है। मुकाबला तो आदमी को ऐसा मुकाबला है कि खुद अकेला भी लड़ सकता है, लेकिन जिंदगी संवारने के लिए, आगे चलने के लिए आपको साथ देना जरूरी है, दो आदमी का जरूरत है।
0: मतलब मुझे लोगों के कोऑपरेशन से बढ़ना
1: नहीं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे। अगर दुनिया में एक वाहिद मुकाबला है जिंसान अकेला कर सकता है तो वो बच सकता है।
0: सही कहा।
1: वो मुकाबला क्या आप शायद समझ जाएंगे, मैं सोशल मीडिया नहीं कर सकता हूँ, मैं बोल ही देता हूँ, वो है किसी का एनकाउंटर। अगर कर दिया अकेला है तो बच सके, दो आदमी के करेगा तो 20 साल फिसल में फंस जाओगे आप। मुकाबला इसमें है ही नहीं, मतलब पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: सही, ये भी बिल्कुल
1: जरूरत है और आगे देखेंगे कैसा कैसा।
0: हाँ यानी आप कहते हैं कि दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कौन सी फील्ड है, कहाँ कंपटीशन की जरूरत है और कहाँ जो है कोऑपरेशन की, ये डिपेंड करता है। हाँ ये बात भी है,
1: मुझे तो पार्टनर की सख्त जरूरत पड़ेगी।
0: हाँ नहीं ऑफ कोर्स, आपको तो ताउन की है, कोऑपरेशन की ज्यादा जरूरत है। और नहीं, बहुत सारे काम आप देखिए, अगर आप कंपनी के लिए काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप अपने को खुद को ही अच्छा दिखाने की कोशिश करें तो क्या एक प्रोजेक्ट पे जहाँ पे 10 लोग इन्वॉल्व हैं और सिर्फ आप अपना काम तो चाह रहे हैं कि अच्छा हो जाए बाकी बेकार हो, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा? नहीं होगा, इवेंचुअली कंपनी का लॉस होगा। एंड द सेम गोज विद द टीम। मान लीजिए कि कोई एक प्लेयर ये सोचे कि सिर्फ मैं 6 बनाता रहूँ, मैं अच्छा स्कोर कर लूँ, और उसको बनाने के लिए भले से उसकी टीम हार जाए तो वो तो हार ही हुई ना। वही चीज है, तो यहाँ आपको कोऑपरेशन चाहिए।
1: एक मिनट, अजीत जी ने अगर वो एब्सेंट मार दे फिर तो कंपनी पूरा लॉस में लिया।
0: वही ना, तो आपको जो है कंपटीशन करना है बट इन अ वेरी हेल्दी एंड अ गुड मैनर। कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा इसलिए भी जरूरी है।
1: मुकाबला है जो समय देकर किया जाता है, लेकिन जब साथ में समय है तो टाइम के लिए साथ में काफी जरूरी है।
0: हाँ, जैसे हमारे लिसनर्स भी कह रहे हैं कि मुकाबला हो लेकिन हेल्दी हो, अच्छा हो।
1: जी, मैंने गेम से सीखा हूँ। एग्जाम्पल, अभी वर्ल्ड कप हुआ तो एक ऐसा मोमेंट आया कि इंसान अकेला गोल करना चाहता था, लेकिन जब धीरे धीरे धीरे धीरे 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ तो सोचा चलो अकेला में प्रयास करता हूँ, लेकिन 90 मिनट तक इंसान मिलकर खेला 11 आदमी। जब देखा कि अब यहाँ पे गोल की जरूरत नहीं है, अकेला ही करना है, तो इस हिसाब से कर दिया उसने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें हैं और दोनों चीजें लाइफ में।
1: इतना तो है भी नहीं बात करने के लिए, मुझे तो घबराहट होता है कभी कभी बात करने में।
0: अरे क्यों, आप तो इतनी अच्छी बात करते हैं, ये तो पहले शुरू में आप कहते थे जरूर जब नया नया आपने कॉल करना स्टार्ट किया था। अभी तो आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोलते हैं, कितनी अच्छी बात करते हैं, और प्लीज़ घबराइए नहीं। और हम और आप मिलके एक दूसरे से बात करते हैं, सीखते हैं, और हर कोई कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है।
1: खाना बना रहा हूँ।
0: हाँ चलिए, आप अपना खाना अच्छे से बनाइए, इंजॉय कीजिएगा आराम से, इत्मीनान से। जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू कि आपने वक्त निकाला और कॉल किया। ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय। ऑलराइट, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं शहजादा जी आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।

0: सुबह सुबह कौन किसका गला दबा रहा था? रईस भाई का मैं वो सुना जब ऑन किया था, गला दबाने की बात हो रही थी, तो मतलब किसका गला दबा रहे सुबह सुबह? खैरियत तो है?
1: नहीं नहीं, गला नहीं, वो मतलब ऐसे बता रहे थे कि कंपटीशन और कोऑपरेशन के हवाले से कि कुछ लोग एक दूसरे को यू नो बुरी तरह से पुल करते हैं, और मतलब इसी तरह से चीजें उन्होंने कुछ मिसाल भी दी, कुछ बातें भी बताई, लेकिन आपको हर कोई याद कर रहा है। जावेद जी ने भी आपको याद किया, असबा, फिर रईस जी ने भी आपको याद किया, और हाँ मैंने उनसे कहा भी, अभी तक तो जुड़े नहीं है शहजादा जी, फिर उन्होंने आपको सलाम भी कहा, आप सुन रहे थे है ना?
0: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, तमाम प्यारे प्यारे लिस्टनर से, खादिम साहब है, जावेद साहब है, रईस साहब है, सब बेहतरीन और लेजेंड है, अपना एफएम पे पार्टिसिपेट करते हैं और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से होता है। तो बस
1: तो आपको ऐसा नहीं लगता शहजादा जी कि ये लोग अच्छा बोलते हैं, मैं मतलब मेरा इनसे कंपटीशन है, मैं थोड़ा और अच्छा बोलूं, या फिर कोऑपरेट करके चलेंगे हम सब मिलजुल के अच्छा बोलें?
0: मेरा हाँ, मेरा जो मेरा अपना जो नेचुरल है ना, क्योंकि मेरी वालदा अभी तो दुनिया में नहीं है।
1: अच्छा।
0: तो उनका एक ये था, एक मतलब वो ताना बोलो उनका, या उनकी एक मतलब एक बात हमेशा थी कि बल में बल, अपना बल, पराया बल, चूल्हे में जल, ऐसा बोलते थे वो।
1: क्या था, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, बल में बल, अपना बल, पराया बल, चूल्हे में जल,
0: चूल्हे में जल।
1: अच्छा,
0: वो उनका ये रहता था, यानी उनका मतलब ये था, बाद में समझ आई, हम तो छोटे थे ना, कि वो बोलते थे किसी पे डिपेंड, किसी पे मतलब भरोसा होकर, भरोसे पे रह के ना नहीं चलना है, अपने आप को मतलब नहीं करना है। तो ये जो टॉपिक है ना, जो मुकाबले वाला की जो बात है, तो ये मुकाबले में, ये मुकाबले का जो सवाल, ये जवाब तो है इसका, लेकिन इसमें और एक सवाल खड़ा हो जाता है।
1: अच्छा।
0: अगर मुकाबला ही अगर करना है तो हमारी जो नेचर है, हमारे जो सेंस है, जो अपना नेचर है, जो अपनी एक डिसिप्लिन है, और हमारी जो इबादत, हमारी जो नेकियां है ना, तो अगले से देखने का क्या, उसके ऊपर, उससे कम तो नहीं है, या मुकाबला उसमें करना चाहिए कि मैं मतलब उसमें ज्यादा बटोरूं, कोई भी काम, कोई भी सिला रमी या कोई भी, या
1: मतलब बहुत अच्छा,
0: कोई भी चैरिटी, हाँ कोई भी चैरिटी, मैं मुकाबला उसमें ये करके मतलब मैं थोड़ा आगे आ, उसमें मैं आगे आ सकता हूँ थोड़ा क्या, बहुत से बहुत बेहतर से बेहतर। और रही रोजमर्रा की जिंदगी के, अगर कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट कर कर, यही था ना सवाल मेरे ख्याल
1: से? जी जी, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन।
0: हाँ, कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन हम किसको ले, किस पे एतबार करें, या वाकई में हम खुद इतने मतलब मुतमईन है, या हमारा जो पार्टनर है, एग्जांपल कोई बिजनेसमैन पार्टनर है हमारा, और उसके पास कुछ हम बिजनेस, या कोई हमारे चार पांच भाई है मिलकर कुछ एक ये चालू कर दिया, फैक्ट्री चालू कर दिया, तो किसमें कितनी वाकई हिम्मत है कि एक दूसरे को ट्रस्ट करके, कोऑपरेट करके, और उसको एक अच्छे मुकाम पे लेके जाए, एक इंटरनेशनल ब्रांड पे लेके जाए, ताकि दुनिया जाने। तो वाकई हम जो है कोऑपरेट में, जो चार से पांच पार्टनर जो भी है, भले दो हो चार हो, तो वाकई में इतनी हिम्मत है हमारे में, या इतना कॉन्फिडेंस, या इतना यकीन है? क्योंकि बिजनेस, पैसा, ये कोई ऐसी चीज है ना, तो ये कहीं ना कहीं है ना, ये रास्ते ना कटिंग करते, ट्रैक चेंज करने की कोशिश करते हैं सारी चीजें। भले हम एक, हाँ भले हम एक ही उसके नीचे खड़े हो ना, एग्जाम्पल एक छाता है, अगर बारिश हो रही है, अगर हम पांच मिलके एक छाते के नीचे खड़े हैं, तो कोई ज्यादा भीग रहा है, तो कोई कम भीग रहा है, तो वो अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करेगा, वो अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करेगा, मैं जरा बच जाऊं बारिश से।
1: सही बात है।
0: हाँ, तो सब अगर कॉम्पिटिशन बहुत सी इसमें माशाल्लाह, ये जो है मुकाबला तो होना, क्यों नहीं करो ना मुकाबला, है ना? अभी आप स्पोर्ट एक्टिविटी में ले लो,
1: बिना मुकाबले के आप खुद को बेहतर कैसे आप आगे, कैसे आप समझेंगे कि आप बेटर हैं? तो जब दूसरे को रखेंगे आप अपने लिए। हाँ
0: बिल्कुल जी, रोजमर्रा की जिंदगी, जो दुनियाई मौजूदात है, रोज के जो जितने, जब हम दुनिया में है ये रहे ना, तो फिर हम एक दूसरे को देखने के पहले मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ ना, तो उसके बाद है ना, अगर आपको है सामने वाले से अगर कुछ सीखने का मोटिवेशन मिलने का, तो बेशक आप फॉलो करें, दोस्ती बढ़ाएं।

0: फ्रेंडशिप करें और अच्छा मतलब एक उसके साथ है ना रिलेटेड मतलब रिलेशन एक अच्छा लेके जाए, सही है ना। और वरना हाँ वरना अगर ये बात है कि मतलब हसद और ये वाली जो सारी जो चीजें आ जाती है ना बीच बीच में, तो अगर हम ये करें कि यार उसने इतनी मेहनत किया उसका इतना टैलेंट और इतना सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है इसके पास कोई इतनी ब्रांडेड स्किल होगी जो तुम्हारे पास नहीं है।
1: ये एक्सेप्ट करना, नेगेटिव नहीं सोच के ये करना कि मुझे भी अपने स्किल्स को बेहतर करना है, ये सोच बहुत जरूरी है, बहुत
0: कोशिश करना चाहिए। या अगर तुम्हारी अगर वो फील्ड नहीं है जो तुम्हारी अपनी कॉमन फील्ड है रोज की फील्ड है जो आप अपने उसमें एकदम से मतलब बेहतर हो, उसमें से एकदम आपका जो एक वो है आपकी एक अपनी पर्सनल स्किल है जिसके पे आप डिपेंड ही हो, तो उसको और बेहतर से बेहतर करो, देखो दुनिया आपको जानती है।
1: सही बात है, सही काम है, बहुत ही अच्छी बात शहजादा जी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हैव अ फैंटास्टिक डे है, टेक केयर, अल्लाह
0: हाफिज़,
1: अल्लाह हाफिज़। सो या दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन, आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर क्या है और क्यों है। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, हेलो,
2: हेलो, गुड मॉर्निंग,
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग?
2: या आई एम गुड।
1: So, what's your take on today's topic? Is competition truly better than cooperation?
2: No, actually, this competition and this is like a certain lifestyle modification, you know. So, आपको एक field में, for example, personally, आपको achieve करने के लिए आपको competition करना ही पड़ेगा. और else आपका टीम मैनेजमेंट में और बिजनेस स्ट्रेटजी का अंदर आप है तो आपको कॉर्पोरेशन चलेगा। लेकिन एवरीवन टॉकिंग अबाउट कंपटीशन एंड कॉर्पोरेशन फॉर द गुड थिंग्स, ओके, आई विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज,
1: ओके, प्लीज गो अहेड,
2: ओके,
1: या
2: द कंपटीशन में आपको आप पर्सनली आप एक फील्ड में और एक स्पोर्ट्स और एनीथिंग और एजुकेशन स्टडीज और व्हाटएवर आपको कॉम्पीट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको क्या होता है, आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है।
1: अच्छा, बट बिना स्ट्रेस के तो कुछ गेन भी नहीं कर सकते ना, थोड़ा तो स्ट्रेस और प्रेशर वो लेने ही पड़ता है।
2: ओके ओके ओके, सम पीपल मेंटली फिट होता है, सम पीपल मेंटली थोड़ा डिफिट होता है, वो स्मॉल स्मॉल थिंग्स को थोड़ा बड़ा करता है। ओके, वो मैं फॉर एग्जांपल मेरे को फर्स्ट रैंक बनने का वो बहुत मेहनत किया, उसको फर्स्ट रैंक नहीं मिला, सम पीपल ओके आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, बट सम पीपल एवरीवन से डजंट से लाइक द सेम वर्ड्स, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, सम पीपल बहुत स्ट्रेसफुल होता है।
1: ये तो है
2: उसका, सो उससे ये स्ट्रेस के हिसाब से आपको बिहेवियर चेंज होता है, आपका बिहेवियर में थोड़ा सा कोई ना कोई थोड़ा सा आपको चेंजेस आपको मिलेगा। ये तो वो आपको कोई कॉम्पीट करेगा तो उसका लाजिम आ जाएगा आपका बिहेवियर एंड सम बैड बिहेवियर्स एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंट जैसे बहुत सारा चीज इसका अंदर है।
1: तो
2: कोई चीज आपको ड्रॉबॉक्स है और आप दूसरा टॉपिक में जाएगा तो एक कंपटीशन एंड
1: कॉर्पोरेशन
2: कॉर्पोरेशन में जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी बताएगा लेकिन उसका ये जनरली वो डिफरेंट है लेकिन इट विल कम मैनेज। ओके
1: ओके, या
2: एक टीचर ने एक स्टूडेंट्स को बोला आपको कैसे तरीके में क्लास देने का, कंपटीशन और कॉर्पोरेशन, और सब स्टूडेंट्स ने बोला कॉर्पोरेशन।
1: सही,
2: सो द फर्स्ट एग्जाम एवरीवन गॉट पास मार्क्स, एवरीवन गॉट 60 मार्क्स।
1: देखो
2: तो जो आदमी 100 मार्क्स लिया उसका उसका से 25 मार्क्स लेके जो आदमी 45 मार्क्स लिया ना उसको ऐड करके सबको 60 बना दिया।

0: अच्छा ओके तो
1: इसमें प्रॉब्लम क्या है, वन पर्सन डूइंग वेरी हार्ड वर्क फॉर बिकम 100 मार्क्स ओके, बट वन पर्सन ओके मैं इतना दिमाग वाला नहीं है ओके, दिस मेरा मार्क इज इनफ 45 मार्क्स इज इनफ ऐसे सोच के तो आदमी है, तो उसका क्या हो रहा है, सबको आपको 60 मार्क दे दिया तो द कमिंग नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम एवरीवन गॉट फेल, आई मीन जो 100 मार्क्स लिया मैं इतना मेहनत करके मेरे को मार्क नहीं मिला, अभी वो मेहनत वो 45 मार्क लेने वाला वो कुछ भी नहीं किया लेकिन उसको भी मेरा सेम मार्क मिला, तो इसमें क्या होता है आपका ये बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग ब्रेक हो रहा है.
0: And this is also a message कि देखिए अगर आप cooperate कर रहे हैं, if you don't put your efforts and all, तो कहीं ना कहीं जाके आपको failures का सामना करना पड़ेगा. So the cooperation, competition and cooperation together it should go in that way. मुझे लगता है कि मिल के दोनों चीजें जानी चाहिए. What do you say? थोड़ा सा आप cooperate भी कर रहे हैं in the sense कि वो just pass हो जाए instead कि वो fail हो रहा है.
1: For example, एक group में 5% है. आप डेबिट में आएगा तो एक आदमी का आइडिया एक आदमी का आइडिया मतलब 5% का माइंड ऑफ सेट डिफरेंट है. जो एक बोलेगा मेरा आइडिया अच्छा है मेरा आइडिया अच्छा है, इसके हिसाब से आपको एक टेबल बना देता है. इसके वजह से क्या होता है लो पीक परफॉर्मेंस आ जाता है. समवन हाइडिंग द इंफॉर्मेशन तो आपको कोई ये काम तरीका एक वर्क का आइडिया है वो एक आदमी का मालूम है तो वो ग्रुप में है तो वो क्या बोलते मैं क्यों बोलने का वो हाइड करता है.
0: सही बात है.
1: तो इसके वजह से क्या होता है आपको प्रोग्रेस भी स्लो होता है आपको लो पीक परफॉर्मेंस आ जाता है. तो हाइडिंग इससे बहुत सारा चीज आपका अंडर आ जाता है. तो मेरा पर्सनली आपको कोई फील्ड में आप सक्सेस होने दो आप कॉम्पीट करो और आप बिगिनर है और आपको कोई लर्न करने के लिए आपको जा रहा है तो आप किसी के साथ जोड़ के आप कोऑपरेट करो.
0: नाइस
1: ये मेरा पर्सनल बात है.
0: बहुत ही अच्छा कहा कि कंपटीशन और कोऑपरेशन जो है वो हर सिचुएशन में अलग हो सकता है. That's true.
1: Yeah, of course. It's like come with your lifetime modification. ये सारा सिनारियों में नहीं आते. कभी-कभी सिनारियों में आपको लाइफ में आके जैसे.
0: Right.
1: It's coming like a visitor.
0: Guest है हमारा.
1: Okay, Nadia. Thank you for your.
0: Thank you so very much. Topic. Pleasure talking to you always. Have a great day. Take care. Bye. All right, दोस्तों आज बहुत ही interesting सा topic जिस पे हम बात कर रहे हैं. Is competition better than cooperation? And do let me know how. यहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 666-22-107 पर. Call कर सकते हैं 443-443-77 पर. फिलहाल एक छोटा सा break लेंगे. वापस आएंगे तो इस topic पे और further discussion होंगे और बात होगी. थोड़ा सा मेरा भी अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी. लेकिन उसके पहले फर्स्ट गाना हमारा इस शो का वो हो जाए और कुछ मीठा हो जाए. सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो आप, जलेबी हो, दही हो, ब्रेड हो, वाह कितना प्यारा अनहेल्दी ब्रेकफास्ट होगा.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नासिया आपके साथ। और आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, उस पे तो हम कर ही रहे हैं, एंड दैट इज कॉम्पिटिशन बेटर देन कोऑपरेशन। लेकिन इसके बीच में एक छोटी सी अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये बहुत ही प्यारी सी अपडेट है। और कतर से एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो सामने आया है। जी हाँ, कतर ने बताया है कि कंट्री ने अपने पानी और बिजली बचाने में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हासिल की है। जी हाँ, ये कामयाबी जो है वो तरशीद प्रोग्राम की वजह से मुमकिन हुई, जो लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम किया गया, और साथ ही एनर्जी को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की तरफ भी हमारा ध्यान जो है वो या हमारी तवज्जो जो थी वो दिलाई गई। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ऑफिशल्स का कहना है कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सेव करना जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिल्स कम करने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हम सब की अब एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और यहाँ पर ऑफिशियल्स का ये भी कहना था कि पब्लिक अवेयरनेस एंड पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम के चलते लोगों ने ऐसा किया भी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी और रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स ने इस सक्सेस में हमें जो है वो कामयाब, मतलब इस तरह की सक्सेस जो है वो हमें मिल सकी। देखिए, यहाँ पर कितना बड़ा कोऑपरेशन था, ऑफिशियल्स का था, गवर्नमेंट का था, सिटीजन्स का था, सबने एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट किया, एंड दैट्स हाउ वी वर एबल टू अचीव दीज काइंड्स ऑफ रिजल्ट्स। और ये मैं आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम जो है वो कतर के नेशनल विजन 2030 को भी सपोर्ट कर रहा है, और ये विजन जो है वो लोगों को एनकरेज करता है कि वो एवरी डे लाइफ में पानी और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें। तो बस बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में इस प्रोग्राम की कामयाबी, मेरा मतलब है तरशीद प्रोग्राम की जो कामयाबी है वो हमें और आपको ये बताती है कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये इतना कॉमन वर्ड नहीं है, ये रैम्पेंट वर्ड ही नहीं है, बल्कि ये रोज़ाना की हमारी छोटी छोटी आदतों का नाम है। जैसे अगर कहीं किसी रूम में लाइट का इस्तेमाल नहीं है और आप देख रहे हैं अननेसेसरी लाइट जल रही है तो ऑफ़ कर दीजिए, कहीं आपको नज़र आ रहा है कि कोई टैप है या कोई पाइप है, पानी लीक कर रहा है, वेस्ट हो रहा है पानी, ठीक है आपका उससे बहुत खास लेना देना नहीं है, बट फिर भी आपने देखा, आपने नोटिस किया, तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, कह सकते हैं उसे ये ठीक करवाना। तो चलिए, दूर की बात है, अगर आपका नहीं है वो प्रॉपर्टी तो आप कह तो सकते हैं, किसी का ध्यान उस तरफ आ जाए। फिर बहुत से लोगों को मैंने देखा कि एसी दिन रात ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि वो लगता है कि वो ऑफिस का है, ऑफिस में है तो हमारा क्या, कुछ भी हो नहीं। अगर आप अपने घर में भी ख्याल रखिए, प्लस अगर आप ऑफिस आते हैं, आपके रूम में आपको लगता है कि नहीं अभी ज़रूरत है या लाइट की ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे अप्लायंसेज हैं जो अननेसेसरी यूं ही चल रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर स्विच ऑफ कीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारी छोटी छोटी आदत जो हैं वो कहीं ना कहीं हम किसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मुल्क के रिसोर्सेज को बचाने में, यही हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये हिस्सा हमें डालना ही है, यहाँ हमें कोऑपरेट करना ही है विद नो कॉम्पिटिशन। चलिए, ये एक बहुत ही अच्छी सी न्यूज़, और इसी के साथ वी आर बैक टू आवर टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हर किसी ने अपने हिसाब से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर ऐड की, बड़ा अच्छा लगा जान के सुन के। और एक बेस्ट टेक अवे जो मैं कह सकती हूँ, यूनानिमसली सभी का ये कहना है कि कॉम्पिटिशन और कोऑपरेशन ये अलग अलग सिचुएशंस में हो सकते हैं। बस अगर आप मुझसे पूछते हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस में कि कंपटीशन या कोऑपरेशन, तो आई विल गो फॉर कोऑपरेशन। ठीक है, मेरी चॉइस है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखें, बट दिस इज़ माय कम्प्लीटली माय पर्सनल ओपिनियन। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहां मैं कहूंगी अगेन कंपटीशन इज हेल्दी एंड कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन के चक्कर में जैसे किसी ने कहा, जैसे हमारे एक लिसनर जुड़े, ख़ास करके जावेद जी, उन्होंने भी कहा कि कई बार कंपटीशन के चक्कर में और हम जो है कंपीट कर रहे होते हैं और शायद उतने अच्छे डिज़ायर रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते, सो फॉर दैट व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज स्टार्ट पुलिंग अदर्स। तो हम जो है ना बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं, स्टैगनेट हो जाती है हमारी अप्रोच, वहाँ से नेगेटिविटी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने लग जाती है। हम एक दूसरे को पुल करना, एक दूसरे के लिए बुरा बोलना, एक दूसरे के साजिशें करना या मैनिपुलेट करना चीज़ें, ये सारी सीखने लगते हैं, क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या है, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। जैसे कोई कहता है ना कंपीट कर रहे हैं, सो इंस्टेंटली हमें लगता है या तो हार या तो जीत, है ना। तो बस हार तो कोई भी नहीं चाहता ना लाइफ में फिर हार जो है उसे एक्सेप्ट करना और उसके बाद खुद को उस चीज के साथ इवॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं चलिए मैं अपना टेक तो जरूर इस पे दूंगी बट उससे पहले मेरे साथ एक कॉलर यहां पे जुड़ रहे हैं तो उनसे पहले बात कर लेते हैं हेलो वालेकुम अस्सलाम मैं बिल्कुल ठीक हूं कैसे हैं आप शिमोन आज आप बहुत लेट आए हैं
1: मैं बहुत लेट
0: हां आप तो सबसे पहले मुझे कॉल करते हैं बिल्कुल मैं ठीक हूँ खैरियत से आप बताइए हाउज़ योर मॉर्निंग गोइंग
1: अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड बहुत अच्छी जा रही है अल्लाह का शुक्र है मैं एक्चुअली आज का टॉपिक प्रॉपर तरीके से सही से समझ नहीं पाया तो मैंने कहा थोड़ा सा आप बता पाएंगे इसके बारे
0: में हाँ नहीं मैंने दो चॉइसेस ही दी हैं और मैं पूछ ही रही हूँ क्या कभी कहीं ऐसा आपको लगता है कि कंपटीशन इज लाइक फार बेटर देन कोऑपरेशन ऐसी सिचुएशन आपने एनकाउंटर की कभी लाइफ में

0: you're asking for a choice between cooperation and competition.
1: Yeah.
0: Okay. इसके ताल्लुक से तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि भी ये दोनों चीजें अलग नहीं है, आई थिंक.
1: अच्छा, ओके.
0: तो मतलब ये ना ऑपोजिट्स नहीं है, लाइक फॉर दैट.
1: ज्यादा बेटर चॉइस क्या है, कंपीट करें या एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कामयाब, मतलब कामयाबी हासिल करें?
0: वही मैं कह रहा था कि ये जो है ना, ये चॉइस नहीं है ऐसा, इन द सेंस कि भाई ये कंपीट नहीं करती है एक दूसरे से. लाइक इफ यू गिव एन एग्जांपल, जैसे एक ही सपोज करिए इवेंट है, ठीक है, एक है 100 मीटर रेस और एक है 100 रिले रेस, 100 मीटर रिले रेस.
1: ओके.
0: अब अगर 100 मीटर रेस में वो अगर एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे तो चल नहीं सकता वो काम. एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे. आठ लोग दौड़ रहे हैं, अगर एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे तो वो नहीं होगा काम. दे हैव टू कॉम्पीट विद ईच अदर,
1: राइट.
0: लेकिन अब आ गया 100 रिले रेस, 100 मीटर रिले रेस, ठीक है, यानी कि 4x100,
1: राइट.
0: तो उसमें क्या है, उसमें आठ टीम्स होंगी तो आठों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे होंगे, बट विद इन द टीम जो है वो एक दूसरे से कॉपरेट कर रहे होंगे,
1: राइट. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया आपने, जबरदस्त.
0: हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें अलग नहीं है, ये कहीं एक हो सकती है, कहीं दोनों हो सकती है. मतलब कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन,
1: अलग सिचुएशन में अलग तरीके का वो हो सकता है. बट स्टिल डू यू बिलीव दैट कॉम्पिटिशंस जो है वो हेल्दी हैं, होने चाहिए?
0: देखिए, इसमें ना कॉम्पीट, ना जब आप कॉम्पीट करते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं.
1: यस,
0: मतलब इंसान से मतलब सॉरी, जो भी आप स्किल में कॉम्पीट कर रहे हैं तो आप उसमें बेहतर वर्क कर पाते हैं, उसमें करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन जब आप कॉपरेट करते हैं तो आप ज्यादा अचीव करते हैं,
1: आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं,
0: आप ज्यादा. लाइक यू नो, कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें आठ लोग हैं, दस लोग हैं, तो अगर आप ही उसमें आप कॉम्पीट करते रहेंगे, वहाँ कॉपरेट नहीं करेंगे, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग.
1: सही, बिल्कुल सही.
0: तो इट इज ऑलवेज बेटर, यू नो, कि कॉम्पीट टू बिकम बेटर एंड कॉपरेट टू अचीव मोर. तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के, मतलब आई डोंट सी देम एज अपोजिट्स.
1: मतलब आप कहते हैं असल कामयाबी ना कंपटीशन में है ना कॉपरेशन में, बल्कि दोनों के गुड बैलेंस में है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट.
0: एग्जैक्टली. कॉपरेट जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ कॉपरेट करें, और जहाँ नेसेसरी है वहाँ कम्पीट करें. अब आप जहाँ कॉम्पीट कर रहा है वहां भी कॉपरेट करने लगे तो फिर वहां भी काम नहीं चलेगा.
1: वहां भी काम नहीं चलेगा, बिल्कुल.
0: हाँ.
1: अब ऑफिस एनवायरनमेंट में भी आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको कम्पीट करना होता है व्हेन कम्स टू न्यू आइडियाज और गुड आइडियाज, और लोग एक दूसरे से कर रहे होते हैं कि मैं और थोड़ा सा बेहतर आइडिया लेकर आऊँ, या मैं थोड़ा सा और यू नो प्रेजेंटेशन अपने और स्किल्स बेटर करूँ. तो दिस इज गुड, आप मोटिवेट हो रहे हो, आप इम्प्रूव कर रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर ग्रोइंग, तो ये तो बहुत अच्छा है. तो कॉम्पिटिशन इज हेल्दी दैट वे.
0: अगर आपके पास कोई यू नो कोई लाइक यू हैव टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट ऑन अ सर्टेन आइडिया, सर्टेन थिंग, तो उसमें आपकी पूरी टीम जो है वो कम्पीट कर रही है शुरू में, इन द सेंस कि वो आइडियाज लेकर आ रही है, राइट. कैसे करना है या कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, क्या बेहतर तरीका होगा, उसमें आप कम्पीट करें एक दूसरे से.
1: और फिर एग्जीक्यूशन के टाइम यू स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर.
0: एग्जैक्टली. देन व्हेन वंस यू फाइनलाइज कि हां भाई ये चीज अब फाइनल हो गई, देन लीव असाइड योर कंपटीशन, देन यू कोऑपरेट.
1: स्टार्ट कोऑपरेटिंग. बिल्कुल, एग्जैक्टली, यही है जो मुझे समझाना था, जो आपने बहुत अच्छे से बता दिया.
0: जी, एक इसका वर्ड, उसका आजकल नया टर्म भी आता है, इनफैक्ट उसमें तरीके से वो एग्जाम्पल्स देते हैं कि जैसे एयरलाइंस है, राइट, तो वो एक दूसरे से कॉम्पीट करती है टू यू नो गेट बिजनेस, बट दे यूज द सेम नेटवर्क और सेम एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोऑपरेट ऑल्सो.
1: बिल्कुल.
0: तो इस तरीके से ये जो है ये काम चलता है। इसमें एक कंपटीशन से आपको ये पता चलता है कि आप कंपटीशन ये होता है कि

0: कि मैं कैसे जो है ना मैं बेहतर कर सकता हूं दूसरों से,
1: दूसरे से। और ये जरूरी भी है। और अगर देखिए आप सोचिए कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो इनोवेशन भी तो लेकर आया। कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट ही नहीं करती तो नए फीचर्स या नए बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में कभी आते ही नहीं।
0: बिल्कुल,
1: ये भी तो कंपटीशन का ही वो है। बिल्कुल
0: बिल्कुल, कंपटीशन से आप इनोवेशन लाते हैं, नई चीजें आती हैं। और लेकिन अब कॉर्पोरेशन में क्या है कि आप यू अचीव मोर, यू क्रिएट मोर थिंग्स। जो आप अकेले नहीं कर सकते हैं वो आप कॉर्पोरेट करके करते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज हाउ आई वुड लुक एट इट।
1: हां, नहीं बहुत ही अच्छा, इट्स अ परफेक्ट कंक्लूजन। जो मैं शायद इस टॉपिक को कंक्लूड भी इसी तरह से करती जो आपने किया है। सो थैंक यू सो मच। लास्ट में आपने कॉल किया बट वॉज वेरी नाइस कॉल, बहुत ही अच्छे।

0: सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जमाल जी हमारे साथ जुड़ गए, राइट? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, सब खैरियत?
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: और कैसी जा रही है आपकी जॉब, काम वाम सब ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह. नाइस, अच्छा है. चलिए, क्या ऐड करना चाहेंगे? प्लीज गो अहेड.
1: मुसाबका और मोहलत. शायद मुझे लगता है कि आज के दिन ही
0: ये दोनों चीजें चल ही रही है हमारी जिंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है. कम्पीट करके आओ तो लोग कहते हैं कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करते हैं तो व्हाई डोंट यू कम्पीट विद देम. तो बस यही चल रहा है हमारी लाइफ में, तो मैंने कहा चलिए इसी पे बात करते हैं.
1: हालांकि दोनों की अहमियत अपनी जगह पर बिल्कुल, मतलब मुझे तकरीबन लगता है कि तनाजुल है दोनों में. दोनों में एक कामयाब भी लगता है, जरूरत दोनों का लिहाज से होना चाहिए. वो जैसे होता है कि कभी कभी लफ्ज अपने माने बदल देते हैं वक्त और सियाक व सबाक के एतबार से. उसी हिसाब से मुझे लगता है कि ये दोनों लफ्ज भी है. जैसे ये है कि मुसाबके की तो खैर ताकीद भी की गई है और देखा भी गया है, कुछ तारीखी हवाले से भी पता चलता है कि लोगों ने मुसाबका इस लिहाज से किया है कि जिसमें कौम और क्या कहते हैं पूरे समाज को फायदा हुआ है. आपका जाती तौर पर भी सबसे ज्यादा एक बेहतरीन फायदा हासिल हो जाता है. और कॉपरेशन की बात करें तो वो भी एक जरूरी लिहाज से भी है कि भाई उसका भी हुक्म है. आपको जहाँ ऐसा लगे यहाँ कॉपरेट करने से एक बड़े तबके को फायदा होगा या एक अकेले ही आदमी को आपको लगता है कि वो इस लिहाज से है कि उसका कॉपरेशन जरूरी है, मुआवनत जरूरी है, तो उसमें भी देखा जाए तो आपको पशु पेश होती है और उसकी मुआवनत करनी है. तो दोनों लिहाज से मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा सा फलदा भारी होता है मेरे हिसाब से. मेरी अपनी मतलब छोटी सोच या बड़ी सोच जो भी कुछ कहे, जो मेरी अपनी थिंकिंग है उस लिहाज से कि ये जो मुसाबका है, जो पहला लफ्ज आप मतलब बोल रही है कंपटीशन, फलदा हमेशा थोड़ा सा भारी होगा. बहुत सारे उसके फवाइद होंगे. फिर अगर मान लीजिए उसको तफसीली बहस लगाएंगे तो 8.5 बजे आएंगे तो आपको कंक्लूड भी करना है. लेकिन अब मेरी अपनी सोच यही है,
0: बहुत
1: दोनों 41 नहीं बल्कि थोड़ा सा जरा सा मुझे कहना लगता है कि ये पहलू है जो थोड़ा सा भारी है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत ज़बरदस्त. जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच जमाल जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए. आई नो आप कहीं बिजी भी हैं. आर यू ड्राइविंग और व्हाट? आप ड्राइव कर रहे हैं शायद? नहीं, मुझे आवाज़ आ रही थी इसलिए मुझे लगा आपकी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं हो पा रही थी. चलिए, प्लीज़ थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह. आप बिज़ी होने के बावजूद भी टाइम निकालते और हमसे बात करते, ट्रूली मीन्स अ लॉट टू अस. थैंक यू वंस अगेन. अपना बहुत ख्याल रखिए. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. वाओ, कितने अच्छे से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपनी बात रखी, समझाया हमें कि क्या चीज़ कंपटीशन, क्यों, कब, कहाँ एंड कोऑपरेशन किस तरह से इम्पॉर्टेंट है. जैसे मेरे लिसनर्स ने कहा कि हर जगह कंपटीशन ज़रूरी नहीं है और कुछ जगहों पे जो है वो कंपटीशन अहमियत रखता है, वैसे ही कोऑपरेट करना अच्छा है, लेकिन वो भी सोच समझ के साथ. देखिए, कंपटीशन हमें और आपको बेहतर इंसान विदाउट अ डाउट बनाता है. जब हम किसी के साथ कंपीट करने की सोचते हैं या कंपीट करते हैं, मान लीजिए कोई रेस का एग्जांपल आपने दिया, या मैं स्टूडेंट्स की बात बताऊं, बच्चे एग्जाम्स की बात करें, या फिर कोई भी आपका ऑफिस का प्रोजेक्ट है या कोई चैलेंज है, तो वहाँ अगर आप कंपीट करते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की 100% कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं. वैसे जैसे ऑफिस में आपने देखा ना कि कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉई ऑफ द मंथ इस तरह के टाइटल्स दिए जाते हैं, या स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है कि यू नो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड और समथिंग. तो इस तरह के जब टाइटल्स आपको कहे जाते हैं तो हर बच्चा या हर एम्प्लॉई जो है वो फोकस के साथ और डेडिकेशन के साथ उस टाइटल को अचीव करना चाहता है. कंपटीशन यहाँ हेल्दी है, वहीं कंपटीशन आपके एक्सेलेंस को भी प्रमोट करता है. अब कितने मैंने देखा कि स्पोर्ट्स पर्सन है जो मतलब एक टूर्नामेंट के लिए वो पूरे पूरे साल मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं

वो गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो कंपटीशन, इसलिए उनका कंपटीशन उन्हीं के साथ और भी लोगों के साथ होता है जो जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं, तो उनको वो अपना रोल मॉडल बनाते हैं और फिर अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ भी कॉन्फिडेंस जो है, कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत हेल्दी है। फिर मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन से आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब कोई शख्स मेहनत करके किसी कॉम्पिटिशन में जीतता है तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। उसे लगता है कि वो मुश्किल चैलेंजेस भी अब कम्पीट कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मेरे लिसनर्स ने भी कही, जितने भी लोग जुड़े, हमेशा कंपटीशन बुरा है, हमेशा कंपटीशन होना हेल्दी नहीं है। अब यहाँ पे सोच लीजिए कि एक हॉस्पिटल में, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं एग्जांपल के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से कंपीट कर रहे हों और कोऑपरेट ना करें और टीम वर्क बिल्कुल भी ना हो, तो पेशेंट, आप समझ सकते हैं पेशेंट्स का क्या होगा, उनका सख्त नुकसान होगा। वहीं पर जैसे हमने फुटबॉल टीम की बात की, फुटबॉल टीम में देखिए कितने सारे प्लेयर्स हैं, अगर कोई एक प्लेयर ही सिर्फ गोल करना चाहे और फिर टीम मैच हार जाए तो यहाँ क्या चाहिए था, यहाँ जो था वो कंपटीशन नहीं था, यहाँ कोऑपरेशन ज़रूरी था। तो अब हमें अपनी लाइफ की सिचुएशंस को समझना है कि कहाँ कंपटीशन और कहाँ कोऑपरेशन, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बीच जो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी प्रोग्रेसिव माइंडसेट। आप कहीं स्टैग्नेट ना हो, नेगेटिव अप्रोच ना आए, कहीं भी किसी तरह का कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक है तो कैसे हमें उसको पार करना है, ये बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होने चाहिए, कंपटीशन हमें बेहतर बनाते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो कोऑपरेशन हमें मजबूत बनाता है। हम जो है अपने नंबर्स अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं कि मुझे 100 मिलने चाहिए, मुझे, मैं जो है वो और ज़्यादा क्या अचीव कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने 100 के लिए मेहनत करते करते उस सबसे वीक एम्प्लॉय का भी हाथ पकड़ लेती हूँ कि मैं तो चलो 100 की कोशिश कर रही हूँ, तुम इस ऑफिस में सबसे वीक एम्प्लॉय हो और तुम इतना कर लो कि कम से कम 33-35 लेकर पास हो जाओ, तो ये कंपटीशन भी है, कोलैबोरेशन भी है, और इससे सिर्फ आपकी जो है वो ज़िंदगी बेहतर नहीं होती, दूसरों की भी ज़िंदगी बेहतर होती है। कंपटीशन बेटर हो सकते हैं जब हमारे गोल्स बिल्कुल पर्सनल हो, उनका असर किसी और पे नहीं पड़ रहा हो, हमारे अचीवमेंट्स और एक्सेलेंस सिर्फ हमारे लिए हो, उससे दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा हो, हम पॉजिटिव सोच के साथ हों, बहुत ज़्यादा एरोगेंट ना बने, लेकिन कोऑपरेशन, मैं कहती हूँ हर लिहाज से बेहतर है। कोऑपरेशन आपको बेहतर बनाता है, आप भी ग्रो कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करते हैं, सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलता है, सुकून मिलता है, और फिर आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ आसपास की ग्रोथ, आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली जो वीकर सेक्शन है, उनका भी आप ख्याल रख रहे होते हैं। असल कामयाबी सिर्फ कॉम्पिटिशन या कोऑपरेशन में नहीं है, गुड बैलेंस में है। जैसे हमने कहा, कंपटीशन हमें आगे बढ़ा सकता है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, कोऑपरेशन हमें हमेशा मजबूत बनाता है और कहीं ना कहीं वो हमें एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन भी देता है। तो खैर, ये तो मेरा टेक था और हो सकता है आप इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन हाँ, ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ आगे निकल जाना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते बढ़ते दूसरों के हाथ भी थामना है कि वो पीछे ना रह जाए। ये चीज़ अगर हमने सीख ली ना, तो हम असल में ज़िंदगी में कामयाब हैं। चलिए जी, अब इस टॉपिक को तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फोर्सफुली से यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि हर बार हो रहा है कि हमारा गेम सेगमेंट हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो आज हमें कहा गया कि नहीं, आज हमें गेम खेलना ही खेलना है, तो डेफिनेटली हम थोड़ी देर में गेम स्टार्ट करने वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़िएगा ज़रूर एंड गिव योरसेल्फ अ गुड ट्राई। यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिशन भी है और आपको खुद को बेहतर करना है, यानी जितना स्कोर आपने पहले किया था उससे थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना है, जस्ट अ डिसेंट हो। तो कभी कभी खुद से कंपटीशन हो जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो, ऐसे कंपटीशंस जो है वो होने चाहिए और ऐसे चैलेंजेस आपको लेने ही चाहिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. गाइज वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:02।
0: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

Right guys, एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम, खुशामदीद, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड इट्स 8:17 ऑन द क्लॉक. आज मैंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली इस टॉपिक को जो है वो कंक्लूड भी किया. दो हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं जहां लोगों ने अपनी कुछ राय वगैरह शेयर की थी, वो हम शामिल ही नहीं कर पाए तो अब करने वाले हैं. यहां पर एक मैसेज है हमें, इनका नाम है बिकमा और ये कहते हैं कि मैडम मेरे हिसाब से तावन कॉपरेशन हर हाल में इनका मानना है ज़रूरी है. ओके चलिए, ये तो खैर बिल्कुल सही बात है, ये तो हर सिचुएशन में है ही कंपटीशन. हाँ ये बात अलग है, कुछ सिचुएशंस में अच्छा है और कहीं कहीं उतना हेल्दी भी नहीं होता जैसे हमने बात की. ओके यहाँ पर सलाम कहते हैं तौफीक जी एंड विद दिस लवली अमेजिंग सब ब्रेकफास्ट और कुछ तो मीठा भी भेजा है उन्होंने ऊपर. मैं सहारनपुर से हूँ, सलाम कहते हैं. नहीं मैम आप सुना है मुजफ्फरनगर से, नहीं मैं मुजफ्फरनगर से नहीं अलीगढ़ से हूँ. मैं तो वीडियो पूछा है, अच्छा आप शायद उनका वीडियो पूछ रहे हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जावेद बाजवा जी का. चलिए आपको वीडियो मैं भेजती हूँ. किसी और ने भी मुझसे पूछा था वो वाला वीडियो पिजन्स वाला, तो वो मैं उनको तो भेजा था बट आप रह गए. मियाँ बख्श जी हैं और हमें सऊदी अरेबिया से सुनते हुए जज़ाकल्ला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. थैंक यू, इट ट्रूली मीन्स अ लॉट जब लोग सऊदी से भी जुड़ते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेज हमें भेजते हैं. यहाँ पर रमेश यादव जी हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, हैव अ लवली डे, यू टू हैव अ वेरी लवली डे. इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम टू समर मॉर्निंग्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग मंडे वाली आपको भी. जैसा कि हमारे सभी लिसनर्स ने कहा कि कुछ जगह पे कॉम्पिटिशन ज़रूरी होता है और कुछ सिचुएशन में कॉपरेशन, कॉपरेशन और कॉम्पिटिशन दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, दैट्स ट्रू. सलाम मैम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुमताज़ अहमद जी कहते हैं, वेरी नाइस टॉपिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. इसके साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं जावेद जी, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम. और यहाँ पर शाहिद जी हैं, सलाम कहते हैं और मैं कहता हूँ ना कॉम्पिटिशन हो ना ही आज के वक्त में कोऑपरेट करो. अच्छा क्यों, ऐसा क्यों, इतना ज़्यादा दोनों चीज़ों को ना कहने की क्या वजह है? कुछ तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए ना भाई, थोड़ा सा ठीक है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना हो लेकिन कॉपरेशन तो हो, जब जहाँ जैसे जिसकी आप मदद कर सकें, जैसे कॉपरेट कर सकें, ज़रूरी है. और टीम वर्क में क्या होता है, चाहे हार हो चाहे जीत हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो फिर कभी भी कहीं भी आपको कोई गिल्ट नहीं होगा हार का. फॉर एग्जाम्पल जीत तो चलो सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, इन्जॉय करना चाहते हैं, चैरिश करना चाहते हैं, बट व्हाट कम्स टू यू नो डिफीट या हार, उस वक्त कोई लेना नहीं चाहता. लेकिन अच्छी बात ये होती है कि किसी एक के ऊपर जो है वो नहीं आता लोड,

0: अकेले आप कहीं हैं किसी मैदान में तो हारेंगे जीतेंगे, अकेला आपके ऊपर ही है पूरा। लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना मुझे लगता है कि आपके मेंटल स्ट्रेस को, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा चलिए अब हम गेम की तरफ भी बढ़ने वाले हैं और आज का गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगी और यहाँ पर कुछ मैं वर्बली कुछ मैं आपको क्लू दूंगी और आप उनको क्लू सुन के आपको जो वो हिंट जो मैं दूंगी उसे सुन के आपको मूवी गेस करनी है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ हिंट्स बताती जाऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी कि रेस साइकिल सिकंदर समथिंग, अब आपको ये सारे क्लू सुन सुन के मूवी गेस करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कहेंगे नेक्स्ट, तो फिर मैं नेक्स्ट का क्लू दूंगी। इस तरह से आपके पास एग्जैक्टली होंगे 30 सेकेंड्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, कुछ नया है, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं और आपको जुड़ना ज़रूर है। देखते हैं कि आप में से कितने लोग चैलेंज ले पाते हैं। कहीं ना कहीं खुद को कंपटीशन में डालना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ में अरे कम्फर्ट जोन में जी रहे हैं, कुछ हमें करना नहीं, नहीं ये भी ठीक नहीं है। कभी कभी खुद को चैलेंज करना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं होता आप में कितनी कैपेसिटी है, जो कल हम कह रहे हैं ना अपना हुनर ही नहीं पता चलता क्योंकि हमने अपने आप को कभी उस सिचुएशन में डाला ही नहीं होता है। तो कभी कभी अपने आप को उन सिचुएशंस में डालना ज़रूरी है। चलिए बिफोर दैट एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करती हूँ और कतर से ये बहुत ही अहम बिजनेस डेवलपमेंट जो है वो सामने आया है। कतर फ्री जोन अथॉरिटी ने कतर डायमंड एक्सचेंज लॉन्च करने का ऐलान किया है और ये एक नया प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर रफ और जो पॉलिश डायमंड्स के साथ साथ कुछ प्रेशियस स्टोन की ट्रेडिंग भी की जा सकती है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुझे जो है वो खांसी आ गई थी। ओके, ये एक नया प्लेटफॉर्म होगा जहाँ मैंने आपको बताया कि इस तरह की ट्रेडिंग को प्रमोट भी किया जाएगा और ये प्लेटफॉर्म रास अबू फंटास फ्री जोन में कायम किया जाएगा। और कतर डायमंड एक्सचेंज का जो मकसद है वो है कि दोहा को इंटरनेशनल डायमंड मार्केट से कनेक्ट करें और कतर को ग्लोबल डायमंड ट्रेड का एक नया हब बनाया जाए। ये कदम कतर के नेशनल विजन 2030 के इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन गोल्स को भी सपोर्ट करता है। और इस प्रोग्राम पर और इस प्रोग्राम की डिटेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर तरह की माइन्यूट डिटेलिंग पर काम किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग भी होगी, सर्टिफिकेशन भी है, सिक्योर स्टोरेज भी है, इंडस्ट्री की सर्विसेज सब एक जगह आपको मिलेंगी। सिक्योरिटी को बहुत अच्छी तरीके से जो है उसका ख्याल रखा है। सिक्योरिटी के मद्देनज़र मैं आपको बताऊं कि बायोमेट्रिक एक्सेस है, 24/7 सिक्योरिटी है और हर तरह की कस्टम फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अपने आप में ये इनिशिएटिव कतर की इकोनॉमी के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक और पॉजिटिव स्टेप माना जाएगा और इससे ना सिर्फ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, राइज होंगी, बल्कि कहीं ना कहीं दोहा का जो नाम है वो ग्लोबल डायमंड ट्रेड मैप पर भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक फील्ड बची थी जहां अब एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसको सुन के पर्टिकुलरली ये नया डेवलपमेंट मुझे तो बहुत एक्साइट कर रहा है। चलिए जी, इस एक्साइटमेंट के साथ अब आपके पास टाइम है कि आप डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377। मेरे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप इरफान जी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो अब तो आपको गेम खेलना ही पड़ेगा। कोई मसला नहीं,
1: वैसे मैंने तो पहले ट्राई किया फोन करने का, तो एक बार आप ब्रेक पे चली गई और दो बार दो कॉलर ऑलरेडी आपने ले चुकी थी, तो मेरा कॉल नहीं था।
0: अरे आप मुझे मैसेज डाल देते कि आप कुछ कहना चाहते हैं।
1: नहीं, कोई मसला नहीं, सबने अच्छी बातें की, मैं भी वही बातें करता।
0: वाह, आप अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह।
1: बस थोड़ी थोड़ी बहुत कर लेता।
0: नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो बस अब आपके साथ मैं गेम स्टार्ट करूंगी और ये नया गेम है जहाँ पर आपको मूवी गेस करनी है। कुछ क्लू मैं आपको, हिंट्स मैं आपको दूंगी और आपको मूवी बतानी है। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट बोलिएगा, ठीक है? चलिए आपके साथ स्टार्ट करते हैं और 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। ओके, लेट्स सी आप कितना स्कोर करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आप तैयार हैं? आप चैंपियन तो हैं ही, क्योंकि एकदम से नए गेम में आना, पहली बार आना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। मुझे पता है कि ऑन एयर हर किसी में नई हिम्मत होती है, मुझसे भी कोई कहेगा तो मैं भी कई बार सोचूंगी, लेकिन चलिए हैट्स ऑफ। तो स्टार्ट करती हूँ आपके साथ और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये आमिर खान इसमें लीड रोल में थे। रेसलिंग का गेम, बाप
1: दंगल?

0: दंगल इज द राइट आंसर. अच्छा दूसरी मूवी गेस कीजिए. ट्रेन का सफर, शाहरुख खान, सिमरन, हीरो हीरोइन की लव स्टोरी. बिल्कुल सही. तीसरी मूवी आपको गेस करनी है. तीन दोस्त, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑल इज वेल, आमिर खान की एक बेस्ट मूवी थी. अब बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही पहचानी. क्रिकेट लगान, ये तो मैं खुद ही बोल गई. चलो जी चार गुना लगान माफ करने के चक्कर में डायलॉग ही नहीं. बट नहीं, मैं आपको ये एक मौका और दूंगी कि एक और आपका टाइम अप हुआ. तीन आपने सही जवाब दिए हैं, लेकिन एक मूवी आपको और गेस करने दूंगी. ठीक है, ये पहचानिए. चार दोस्त, रोड ट्रिप, स्पेन का सफर, और फ्रेंडशिप लव स्टोरी है, और बुल रन भी है. अच्छा मूवी स्टार्ट होती है जिंदगी के नाम से. क्या बात है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. क्या आपने तुक्का मारा था ना, ये कितना सही
1: था. मेरे दिमाग में आ रहा था पर मेरे को कंफर्म में कंफर्म खुद नहीं था कि यही है. मेरे को नाम थोड़ा
0: आयुष. वाह भाई वाह,
1: फिल्म देखते रहते हैं तो वो दिमाग में एकदम से आ गया.
0: वाह वाह क्या बात है, आपने चार का स्कोर किया. मुबारक हो भाई, आपको तो लग भी नहीं रहा था कि मैं एक भी करूंगा, लेकिन देखिए फोर का स्कोर किया और आप झटपट सारी मूवीज गेस भी कर रहे थे. एक्सेलेंट, अच्छी खासी सही नॉलेज है आपकी, जबरदस्त. ये सारी मूवीज देखी हुई थी. ओके चलिए, थैंक यू, जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला. मूवी वैसे कम देखते हैं ना?
1: नहीं नहीं, ज्यादा देखता हूं मूवी, बहुत ज्यादा देखता हूं.
0: अच्छा ज्यादा देखते हैं वो, तभी तो आप जीते हैं.
1: एक एक बात और मेरे को एक बात शेयर करनी थी आपसे.
0: हां बताइए.
1: वैसे जो अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता है ना, उसका जो मतलब ऑनलाइन में बहुत सारे क्यूबे चला रहे थे, बहुत सारे कंपनियां और शॉप ऑनर्स भी, ज्वेलरी का उसमें ऐड आया मेरे को. मैं क्यूबे था कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड कॉइन का.
0: अरे क्या बात है भाई, मुबारक हो, मबरूक मबरूक. ये देखा जगह जगह ट्राई करने का कितना फायदा हुआ.
1: मांगा था तो बस कमेंट करना था और पोस्ट को शेयर और लाइक करना था बस.
0: देखिए ये होता है कि कई बार आप छोटे छोटे एफर्ट्स लेते ही नहीं, सोच के अरे कौन जीतेगा, कभी तो जीतते नहीं हम, और जीत जाता है इंसान. तो ट्राई करना जरूर चाहिए. ये बहुत
1: आगे का उन लोगों के हाथ में, कब तक वो होगा.
0: नहीं अब मिल जाएगा मिल जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो.
1: मैं परेशान नहीं हो रहा, परेशान हाँ, तो मिलेगा वो हो गया. मैं कौन परेशान करे, बस दो क्लिक करके आदमी गोल्ड कॉइन मिल जा रहा है तो क्या है.
0: नाइस,
1: चलिए पूरा दिन तो उसी पे पड़े रहते हैं हम लोग भी.
0: अच्छा अच्छा और इस तरह की चीजें जो चलती रहती है ना, वो कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेट करते रह कीजिए. यू नेवर नो आप कब लकी हो जाए, है ना. चलो थैंक यू वंस अगेन आरिफ जी, और बहुत बहुत मुबारक हो. पहली बार हमने इस गेम के साथ जो है वो स्टार्ट की थी और आप पहले कॉलर हमारे थे और बहुत अच्छा स्कोर आपने किया. Very well played. Zabardast. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Take care. Allah Hafiz. Bye. All right. तो दोस्तों अभी तक तो आप समझ ही गए हैं कि गेम मैंने बहुत सिंपल कर दिया. चलो गाने वाने हटा दिए, सब कुछ हटा दिया. अब कुछ क्लू दिए जाएंगे एंड जस्ट आपको मूवी गेस करनी है. एक कॉल कॉलर हमारे साथ इस वक्त यहाँ जुड़ रहे हैं. हेलो.
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. फाइनली वेलकम.
2: कैसे हैं
0: आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं यूसुफ जी? तो मैं आपके साथ स्ट्रेट अवे गेम स्टार्ट करूं?
2: जी.
0: गेम आई थिंक आपको क्लियर है. कुछ क्लू मैं दूंगी और आपको मूवी
2: पे. नहीं, अच्छा हो गया.
0: तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. एलियन दोस्त बन जाता है, जादू नाम का एक कैरेक्टर है, ऋतिक रोशन इज द राइट आंसर, बार्बर और सुपरस्टार की दोस्ती हो जाती है, शाहरुख खान इज द राइट आंसर. अच्छा चार दोस्त जो हैं वो रोड ट्रिप पर जाते हैं, स्पेन का सफर होता है, एक
2: फ्रेंडशिप
0: इज द राइट आंसर, हॉकी टीम है, विमेंस स्पोर्ट है, 70 मिनट. क्या बात है, चक दे इंडिया इज द राइट आंसर. स्कूल का बच्चा है, पेंटिंग का टैलेंट है, डिसलेक्सिया का इशू. क्या

0: साथ है और यहाँ पर तारे जमीन के साथ आपका स्कोर बताइए कितना हुआ. 1, 2, 3, 4, 5. क्या बात है, 30 seconds में आपने 5 का स्कोर कर लिया यूसुफ जी. सुपर, जितनी भी मूवीज बताई कोई भी आपने मिस नहीं की ना, सारी की सारी मूवी झटपट. क्या बात है भाई, बहुत ही अमेजिंग आपकी नॉलेज है. और छोटे छोटे क्लू रखे मुझे लग रहा था, पता नहीं आगे मुझे और बताने पड़ेंगे, लेट्स कीप इट शॉर्ट, लेकिन आपने खटाखट सारे बताए. इसे कहते हैं गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड,
1: बेसिक एलिमेंट्स हैं, मतलब
0: हाँ ये सारी पॉपुलर मूवीज हैं, सारी की सारी वो है ब्लॉकबस्टर मूवीज, बट लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं कि नहीं, बट आपने बहुत अच्छा खेला. आएंगे
1: चैंपियन, अभी अच्छे आएंगे
0: इंशाल्लाह. और आप तो हैं, यू टू टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़. सो दोस्तों यहाँ हमारे साथ दो चैंपियंस जुड़े विद द स्कोर 4 and 5. अब हमें देखना है कि हमारे साथ कोई और जो जुड़ेगा वो कितना स्कोर कर पाएगा. गिव योरसेल्फ अ गुड ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं. अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 4434377. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कॉल करूँ तो हाय हेलो लिखकर मुझे भेजिए 666-22-107 पर. और फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए जाने तक आंधी जुबीन नौटियाल की आवाज में दिल का टेलीफोन. एंजॉय कीजिए, स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर दिल से देसी
1: राइट गाइस एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम खुश आमदीद आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स मैं हूँ नासिया आपके साथ 8:46 ऑन द क्लॉक और कितनी प्यारी बात की रमेश जी ने कि जब आपने मिला ही दिया तब तो बात करनी ही करनी पड़ेगी तो मैंने कहा बस आपको अब खेलना ही खेलना है तो हमारे साथ खेलने के लिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं रमेश यादव जी पहले तो बताइए कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका काम
2: सुपर सर मैं बढ़िया मैं एकदम बढ़िया है ऑफिस में ही था बैठा हुआ तब तक फोन आ गया तो मैं तो पहले तो मैं समझा कि हमारे चेक का आ गया फोन क्या लग रहा है
1: कितनी खुशी होती है ना इंसान का कि यहाँ पे इतने सारे लोग बेचारे रोज मुझसे पूछते हैं और आज मैं कुछ वॉइस नोट रिकॉर्ड करवा के लाऊंगी फिर वो मैं आपको फॉरवर्ड करती रहूंगी क्योंकि होता यह कि आप सब लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे निजाम जी हैं एक नसीम भाई उनका मैसेज है मलिक जी का मैसेज है हुसैन जी उन्होंने पूछा है कब मिलेगा और अब आप हैं तो लोग पूछते हैं और डेली ही बेचारे पूछ रहे होते हैं तो आज मैं एक वॉइस नोट या कुछ एक रिटन में कुछ तो हो जिससे और कुछ लोगों को मिल गया देखिए फॉर्चुनेटली कुछ लोगों को मिला और अभी कुछ लोग जो हैं उनको पता नहीं क्यों नहीं मिले हैं खैर जब पूछते हैं वो कहते हैं कि हाँ चल रहा है प्रोसेस है अभी थोड़ा सा बताएंगे कब तक हम बांटेंगे तो ये उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह मिलेगा आपको सूनर और लेटर बट अब देखो कितना लेटर होता है ये एक बात है इंशाल्लाह नहीं मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मिलेगा आपको
2: मिलेगी उम्मीद उम्मीद तो लाजिम आना ही आना
1: है ना अच्छा मुमताज जी भी कह रहे हैं हमको भी नहीं मिला ये बात अच्छी कि हम बोल नहीं रहे कुछ लोग कह रहे हैं हम पूछ नहीं रहे आपसे लेकिन हमको भी अभी नहीं मिला हुआ है चलिए इंशाल्लाह आज मैं अभी टीम से फिर पूछूंगी और कहूंगी कि आप कुछ अपना एक मैसेज हमें बताइए जिसे हम लोगों को भेजें तो थोड़ा सा उन्हें भी हल्का सा यू नो उम्मीद उनको बंधे कि हाँ अब इंशाल्लाह मिलेगा तो चलिए 30 सेकंड्स आपके पास यहाँ पर है कुछ मैं क्लू आपको दूंगी और आपको मूवी गेस करनी है ठीक है चलिए जी और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब सबसे पहले आपके लिए साइकिल रेस सिकंदर आमिर खान मंसूर खान का डायरेक्शन
2: नेक्स्ट
1: 1993 की मूवी शाहरुख खान सानी देओल जूही चावला और जूही चावला का नाम था किरण
2: डर
1: इज द राइट आंसर हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं काजोड़ और शिल्पा ने इज द राइट आंसर बिल्कुल सही पहचाना आपने और यहाँ पर टाइम अनफॉर्चुनेटली अप हो गया बट चलिए फिर भी आपने ट्राई तो किया एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो स्कोर किया ही है
2: जी
1: ये बड़ी बात है कि कुछ
2: मिला दी फोन तो मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं हाँ। मैं ऑफिस में हूँ मैं ऑफिस से बाहर निकला बाहर निकल के आके बैठा हूँ एक साइड पे थोड़ा भले बात कर लूँ
1: हाँ देखिए लोग जो है ना थोड़ा सा झिझक रहे हैं मैसेज और या कॉल उस तरह से हमें नहीं करते पता नहीं क्यों वो झिझक रहे गेम खेलने में बट मैं चाहूंगी कि कुछ लोग थोड़ी सी हिम्मत करके आए एंड लेट्स प्ले लेट्स सी ये तो क्या ही है जी था तो
2: क्या
1: कुछ
2: नहीं है फोन मिलाइए बात करिए थोड़ा एक्सपीरियंस ही मिलेगा इसमें एक्सपीरियंस दीजिए कुछ एक्सपीरियंस लीजिए
1: और
2: जी,
1: क्या
2: जी, तो सही
1: बिल्कुल,
2: है। बिल्कुल बिल्कुल
1: तो मतलब हार जीत तो मैटर नहीं करती बट चलिए थैंक यू आई रियली लव द स्पिरिट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कॉल अपना ख्याल रखिए जी टेक केयर बाय
2: बाय
1: ऑल राइट यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं हेलो
3: क्या चल रहा है ला वीडियो आप उन भी बताओ आप उन भी ट्राई करेंगे क्या
1: ये कौन है रईस जी है क्या हमारे साथ
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: क्या बात है रईस जी
3: ट्राई करेंगे भाई
1: आपको ट्राई करना है और यूसुफ जी का हाईएस्ट है 5 लेट्स सी 5 से ज्यादा
3: अपने को ये नहीं चलने करने का क्या अब उनको बस अपना अपना स्कोर बना के कुमड़ी में कुमड़ी बजा के निकल जाने का
1: चलिए ऑल द वेरी बेस्ट चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं ना अप्रिशिएट योर स्पिरिट हैट्स ऑफ बड़ी बात है
3: इजली कर डालो थोड़ा अपन भी बना के ये करेंगे
1: बढ़िया बढ़िया चलिए ट्राई करते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब क्रिकेट नहीं हॉकी बॉक्सिंग की कहानी प्रियंका चोपड़ा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड
3: नो आइडिया प्लीज
1: अच्छा ठीक है ओके जादू नहीं रोबोट साइंस और एक्शन रजनीकांत लीड रोल में

0: खान ने इस मूवी से डेब्यू किया।
1: हाँ, वो मूवी देखेला है भाई, लेकिन नाम का थोड़ा सा मसला बन रहेला। अरे
0: अरे, अच्छा उसमें एक स्टूडेंट भी आता है, अब बताइए।
1: ये स्टूडेंट अभी देखो, जल्दी जल्दी देखो, मूवी देख के ये उन लोग की शायद फर्स्ट डेब्यू मूवी थी।
0: हाँ, ईयर भी आता है उसमें, ईयर भी आता है वर्ड
1: ईयर ऑफ द स्टूडेंट कुछ करके कुछ ऐसे शायद कुछ इंग्लिश वर्ड उसके साथ
0: स्टूडेंट ऑफ द ईयर। चलिए क्या बात है रही जी, आपने फाइनली दो तो मूवी पहचानी। ये होता है
1: हर चीज में, आदमी का अपना ये नहीं माइंड काम करता,
0: नहीं करता, बट चलिए आपने दो पहचान ली, बड़ी बात है। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं पहचाना।
1: मुंबई का लैंग्वेज आप ना यूज करके थोड़ा आपको भी थोड़ा सिखा रहे ले।
0: मुझे
1: करना थोड़ा सा, हाँ इसके लिए थोड़ा ट्राई करो। आपने तो जो मुंबई साइड के भाई लोग हैं उनको पता चल गया हो
0: मुंबई का,
1: ट्राई कर रहे
0: ट्राई करना
1: क्योंकि हम लोग कुछ सालों तक तो थोड़ा सा मिल गया था ये बोलने का, ये जिधर जो जरूरत पड़ता था थोड़ा बोल के निकल जाते थे टुकड़ी में।
0: हाँ, ट्राई तो करना ही चाहिए हल्का हल्का।
1: सामने वाले को भी रियलाइज नहीं होना चाहिए ना कि ये किधर का यूपी का भैया आ गया, इधर काय को टॉक कर रहा है।
0: सही,
1: थोड़ा सा एक टांग थोड़ा अपन चालू करके रखेंगे ना, तो सामने वाले को भी रियलाइज होता कि हाँ इधर ही एरिया का है भाई, इसके साथ ज्यादा
0: आप लोगों को कंफ्यूज करके रखना चाहते हैं। हाँ, आपको लोग समझे नहीं कहाँ से हैं। चलिए, बट थैंक यू सो मच रही जी, थैंक यू वंस अगेन, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम।

सकती हूँ आज के इस गेम के आप सारे के सारे लोग विनर्स हैं, बट जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो है 5 का यूसुफ खान जी ने, क्या बात है। तो उसके अलावा आरिफ जी, रमेश यादव जी एंड रेस जी, आपको हैट्स ऑफ, आपने बहुत अच्छा खेला। अब मुझे कॉल आ रही है बट मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो कल आपके साथ ये गेम हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग और ईजी मूवीज में लेकर आऊँगी, ठीक है। तो फिलहाल जाते जाते एक छोटी सी अपडेट, कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी QCAA ने रूस की खिलाफ वर्जी करने वालों पर, जिनमें एयर कार्गो एजेंसीज हैं, उन्हें 2 को बंद किया है और 10 एजेंसीज के रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किए गए हैं। आपको बताएं कि एक्शन जो है वो इंस्पेक्शन कैंपेन्स के दौरान सामने आने वाले वायलेशंस के बाद लिए गए। यहाँ पे QCAA का कहना है कि ये कदम एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बेहतर मॉनिटरिंग और रेगुलेशन को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। वहीं अथॉरिटी ने तमाम ट्रैवल और एयर कार्गो एजेंसीज को हिदायत भी दी है कि वो तमाम कानून और रेगुलेशन पर पूरी तरह अमल करें और प्रॉपर लाइसेंस के बगैर किसी भी ट्रैवल या एयर कार्गो एक्टिविटी में हिस्सा ना लें। यह कदम इस बात की भी निशानदेही करता है कि कतर में रेगुलेशंस और सर्विस स्टैंडर्ड्स को बहुत अहमियत दी जा रही है एंड मुसाफिरों और कस्टमर्स के लिए यह जरूरी है कि वो सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड एजेंसी के जरिए ही अपनी ट्रैवल और कार्गो सर्विसेज हासिल करें। वेल, इसी अपडेट के साथ अब दोस्तों वक्त आपसे इजाजत का, कल इंशाल्लाह आपकी हमारी मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: वर्चुअल मुज़ाकरात किए। मुलाकात के दौरान तिजारती नकलो हरकत को बेहतर बनाने, कस्टम्स के तरीक़ेकार को आसान बनाने, लॉजिस्टिक खिदमात की कारकर्दगी बढ़ाने और दो तरफा तिजारत के हजम में इजाफे के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। कतर टूरिज्म ने विजिट कतर के जरिए पर्पल सैटरडे 2026 मनाया, जिसका मकसद मखसूसी अफराद के लिए शुमालियत, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और एक्सेसिबल फैसिलिटीज को फरोग देना है। तकरीब के दौरान कतर टॉय फेस्टिवल में मखसूसी अफराद को कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री और बेहतर तजुर्बात फराहम किए गए, जबकि मुतअद्दिद इमारतों को पर्पल लाइट्स से रोशन किया गया। कतर फ्री जोन अथॉरिटी ने रास अबू फंतास फ्री जोन में कतर डायमंड एक्सचेंज का आगाज किया है, जो हीरों और कीमती पत्थरों की तिजारत, जखीरा और तस्दीक के लिए एक जामे प्लेटफॉर्म होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा कतर की मईशत को डाइवर्स बनाने, सरमायाकारी बढ़ाने और दोहा को आलमी हीरों की तिजारत के मरकज के तौर पर मजबूत बनाने में मदद देगा। कतर फाइनेंशियल सेंटर और कतर फाइनेंस एंड बिजनेस एकेडमी ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी और मालियाती शोबों में नौजवानों की तरबियत के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत तलबा को इंटर्नशिप, तरबियती प्रोग्राम्स, वर्कशॉप और अमली तजुर्बात के मौके फराहम किए जाएंगे, ताकि वो कतर की तरक्की पजीर मालियाती शोबों में बेहतर कारकर्दगी अदा कर सकें। कतर स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स कल इतवार की कारोबारी सरगर्मियों के इख्तिताम पर 28.81 पॉइंट्स कमी के साथ 0.29% नीचे आया और 10,003.67 पॉइंट्स के साथ सतह पर बंद हुआ। कारोबारी सेशन के दौरान तमाम शोबों में मजमूई तौर पर 99,68,63,082 शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई, जिनकी मालियत 21,30,16,562 कतरी रियाल रही। मार्केट में 18 कंपनीज के शेयर की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 24 कंपनीज के शेयर्स में कमी रिकॉर्ड की गई और 7 कंपनीज के शेयर्स बगैर किसी तब्दीली पर बंद हुए। सामीन, खबरों के इस मरहले में समाप्त कीजिए स्पोर्ट्स न्यूज।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
2: कतर बास्केटबॉल फेडरेशन की मेजबानी में दोहा में जारी खलीजी अंडर 18 एशिया कप क्वालिफायर्स में नौजवान टीमें एशिया कप 2026 में जगह बनाने के लिए मुकाबला कर रही हैं। कतर की कौमी टेनिस टीम ने डेविस कप एशिया ओशियाना ग्रुप 4 में तरक्की हासिल कर ली है। कतर ने श्रीलंका के शहर कोलंबो में किर्गिस्तान के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। साइकिलिंग के मशहूर टूर डी फ्रांस के आखिरी मराहिल में दिफाई चैंपियन टेडी पोगाचार मजबूत पोजीशन में हैं और पांचवें मर्तबा टाइटल जीतने के करीब पहुंच गए हैं। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में तैराकी, जिमनास्टिक और दीगर खेलों में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तैराकी में शानदार कारकर्दगी दिखाई, जबकि स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों ने जिमनास्टिक और स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में क्रिकेट समेत कई मकबूल खेल शामिल नहीं किए गए, जिस पर खास तौर पर क्रिकेट शायकीन और एशियाई ममालिक में रद्द अमल सामने आ रहा है।

0: स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स न्यूज में आज के लिए इतना ही, और अब समाप्त कीजिए न्यूज हेडलाइंस।
1: न्यूज हेडलाइंस आरजे सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
2: साहिब समो अमीर ने कल लुसेल पैलेस में इराक की सुप्रीम जुडिकल काउंसिल के सदर डॉक्टर फाइक जिदान का खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान डॉक्टर फाइक जिदान ने साहिब समो अमीर अलवलद शेख हमद बिन खलीफा अल्थानी के इंतकाल पर साहिब समो अमीर से दिली ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो मरहूम को अपनी वसी रहमत में जगह अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को कल ब्रिटेन के वजीर आजम एंडी बुरहम की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने साहिब समो अमीर अलवलद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दिली ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया। साहिब समो अमीर ने ताजियती जज्बात पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान तालुकात में मजीद तरक्की और तआवुन के फरोग की ख्वाहिश भी जाहिर की। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी के सऊदी अरब, मुतहदा अरब एमिरेट्स और तुर्की के आला हुक्काम से टेलीफोनिक राबते हुए, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, कशीदगी में कमी और अमनो इस्तकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत माहौलियात व वजारत तब्दीली ने ओजोन लेयर के तहफ़ से मुतालिक बच्चों में माहौलियाती शऊर उजागर करने के लिए बेहतरीन इलस्ट्रेटेड शॉर्ट स्टोरी लिखने के मुकाबले का ऐलान किया है। ये मुकाबला कतर नेशनल लाइब्रेरी के तहत कतर रीड्स के तआवुन से मुनज़्ज़म किया जा रहा है और इसमें 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। दरख्वास्त 1 सितंबर 2026 तक जमा कराई जा सकती है। सामिन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन नूर, सोशल मीडिया से युसरा महमूद और न्यूज़ रूम से इस्माइल खान, और मुझे यानी सफा सफदर को दीजिए इजाज़त। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: उम्मीद रखो। समझ कर हम चंद जुमलों में हमें सबर का पूरा सबक दे दिया गया है कि अल्लाह ही का है जो उसने लिया और उसी का है जो उसने दिया, यानी हम खुद भी अल्लाह की अमानत हैं, हमारी औलाद भी अल्लाह की अमानत है, हमारा माल भी, हमारी सेहत भी, हमारी जिंदगी भी। जब मालिक अपनी अमानत वापस ले ले तो मोमिन का दिल दुखता जरूर है लेकिन वो अपने रब के फैसले पर राजी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि सब्र करो, बल्कि ये भी फरमाया कि सब्र करो और अजर की उम्मीद रखो। ये बहुत बड़ा फर्क है। समझने की बात है कि कई लोग खामोश तो रहते हैं लेकिन दिल में शिकवा करते रहते हैं, और कई लोग सब्र करते हुए यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला उनके हर आंसू, हर तकलीफ और हर बर्दाश्त पर उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। यही एहतिसाब है। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज अल्लाह के हाँ एक मुकर्रर वक्त तक है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की पैदाइश भी लिखी है और वफात का वक्त भी। न कोई एक लम्हा पहले जा सकता है और न एक लम्हा बाद। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, जब उनका मुकर्रर वक्त आ जाता है तो न एक घड़ी पीछे हो सकते हैं और न आगे। इस तरह सामने किराम, जब हमें यकीन हो जाए कि हर फैसला अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है तो दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन आपकी साहिबजादी ने जब दोबारा पैगाम भेजा कि आप तशरीफ लाएं, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की एक जमात उठ खड़ी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए, बच्चे को अपने गोद में रखा, वो आखिरी सांसें ले रहा था, उसकी सांस टूट रही थी। ये मंजर देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए। साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये क्या है? यानी मतलब इस सवाल का ये है कि क्या आप भी रो रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रहमत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में रखी है। फिर फरमाया, अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों पर रहम फरमाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं। इस तरह सामने कराम, इस्लाम ये नहीं चाहता कि इंसान बेहिस हो जाए। अपनों की जुदाई पर आंखों से आंसू आ जाना फितरी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौहा नहीं किया, तकदीर पर एतराज नहीं किया, शकवा नहीं किया। यानी आंख का रोना रहमत है लेकिन जबान का अल्लाह के फैसले पर एतराज करना जायज नहीं। यही सब्र की हकीकी तस्वीर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर एक और अजीम उसूल बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों पर रहम फरमाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं। सामने किराम, आज के दौर में इस हदीस की बेहद ज़रूरत है कि जब किसी पर मुसीबत आती है, बाज़ लोग ऐसे जुमले कह देते हैं जो उसके गम में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यह सिखाया कि मुसीबत ज़दा को तसल्ली दी जाए, उसे अल्लाह की तरफ मुतवज्जह किया जाए और सब्र और अजर की उम्मीद दिलाई जाए। यही है तरीका सुन्नत का, यानी मसनून तरीका। अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश में सबर अता फरमाए, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहने की तौफीक दे, हमें दुनिया व आखिरत में अपनी बेपाया रहमत से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारते दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात

0: आठ बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
1: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, मुफीद साबित होंगी। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड, सन एंड साउंड। आरजे सफा के साथ, सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फुटबॉलर के बारे में जिसकी पैदाइश इंडिया में लेकिन कतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तहसीन मोहम्मद जमशेद कतर का एक उभरता हुआ फुटबॉल सितारा है जो अपनी रफ्तार, ड्रिबलिंग और अटैकिंग सलाहियतों की वजह से पहचाना जाता है। तहसीन कतर में पैदा हुए लेकिन उनके वालिदैन का ताल्लुक इंडिया के केरला स्टेट से है और इनफैक्ट कन्नूर शहर से है। उनके वालिद जमशेद थालासारी से हैं जबकि वालिदा शैमा बालापट्टनम से ताल्लुक रखती हैं। तहसीन ने फुटबॉल की बुनियादी तरबियत कतर की मशहूर एस्पायर एकेडमी में हासिल की जहां से कई इंटरनेशनल फुटबॉलर्स निकले। इनफैक्ट दोस्तों, तहसीन ने कम उम्र में ही अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया और 17 साल की उम्र में कतर की टॉप डिवीजन लीग में खेलने वाले पहले इंडियन ओरिजिन फुटबॉलर बन गए। वो कतर स्टार्स लीग के क्लब अल दोहेल के लिए खेलते हैं और कतर के मुख्तलिफ एज ग्रुप नेशनल टीम्स की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कतर के फाइनल 26 मेंबर स्क्वाड में उनका इंतखाब एक तारीखी कामयाबी है। इसके साथ तहसीन वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होने वाले पहले मलयाली फुटबॉलर बन गए। उनकी कामयाबी न सिर्फ कतर बल्कि इंडिया और खासतौर पर केरला के फुटबॉल फैंस के लिए भी फख्र का सबब है। तहसीन की कहानी मेहनत, लगन और ख्वाबों को हकीकत में बदलने की बेहतरीन मिसाल है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जानेंगे कि शोर के जो मुज़र असरात हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि गैर ज़रूरी शोर से हम दूर रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मशीनरी या बुलंद आवाज़ वाले माहौल में काम करते हैं तो हिफाजती इकदाम इख्तियार कीजिए। कानों की हिफाजत के लिए ईयर प्लग्स या फिर ईयर मफ्स जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। इस शोर की शिद्दत को कम करके हमारी जो समात है उसे महफूज रखते हैं। मोबाइल फोन्स और हेडफोन्स इस्तेमाल करते वक्त आवाज़ को मुतदिल रखिए, यानी दरमियाना रखिए, उसका बैलेंस में उसे रखिए। माहरीन मशवरा देते हैं कि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक रखी जाए और तवील वक्त तक मुसलसल इस्तेमाल से भी गुरेज किया जाए, यानी आप मुसलसल एक ही तरह की जो आवाज़ है और ज़्यादा है उसे सुनने से गुरेज कीजिए। घर में भी शोर कम करने की कोशिश कीजिए। टीवी या म्यूज़िक की आवाज़ ज़रूरत के मुताबिक रखिए और रात के औकात में ख़ास तौर पर खामोशी का ख्याल रखिए। अगर आपके इलाके में शोर ज़्यादा हो तो खिड़कियों को बंद रखना, कर्टन्स लगाना या शोर कम करने वाले जो कुछ इकदाम हैं वो मददगार साबित हो सकते हैं। वालदैन को चाहिए कि बच्चों को भी बुलंद आवाज़ों के नुकसान के बारे में आगाह करें, उन्हें हेडफोन के महफूज इस्तेमाल और समात की हिफाजत की आदत सिखाइए। अगर आपकी समात में कमी, कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ या सुनने में दुश्वारी महसूस हो तो आप जल्द से जल्द किसी भी जो ENT स्पेशलिस्ट है या किसी भी माहिर अमराज कान, नाक और गला से मशवरा कीजिए। लिसनर्स, शोर की आलूदगी या नॉइस पोल्यूशन एक काबिल तदारक मसला है, इसे हल किया जा सकता है। थोड़ी सी एहतियात और शऊर के ज़रिए हम अपनी समात, ज़हनी सुकून और मजमूई सेहत को बेहतर बना सकते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: products is going to pay the bills, and it's brand awareness and all those great, and it's getting after some of those sustainability strategies for corporations and such, and those are all great things. But I think at the heart of it, of bringing water to places where people are suffering, and that where water is being weaponized, I think that's where I feel is the true success, is to be able to bring it and to deploy our systems to be able to help those in need. That's what I see success for, you know, for SkyDrop.
1: Wow, well, amazing, amazing. And now coming to the closing question, finally, what advice would you give to the aspiring entrepreneurs and, of course, the marketers looking to make an impact here in Qatar?
0: Yeah, I think at the heart of it is you need to solve the problem. And you need to be a serious problem. You really need to attack a problem, and don't get so hyped up about all of this AI and all of the, you know, things that are happening around us. I think that look at a serious problem in society, in our culture, in our technology, and really and try to solve it. I think the most successful businesses are the ones that have that really address like a genuine need, and they create real value, like SkyDrop has. So I think that if an entrepreneur does that, they're going to be successful. So, and just leave the hype out, you know, forget about all these buzzwords and just try to solve a problem.
1: Wow, that's such a meaningful advice. Really, really, truly appreciable. Thank you so much, Ms. Rana, for joining us on Qatar Business 360. And I believe it's truly a pleasure having you with us and gaining such valuable insights about the industry, sustainability, and the brand building in Qatar. Thank you once again.
0: Thank you. Thank you.
1: वेल दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में कतर बिजनेस 360 में हमने बहुत ही इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग बातचीत की. सीईओ थी हमारे साथ SkyDrop सस्टेनेबल वाटर टेक्नोलॉजी की, मिस राना. आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, सिखाई, बताया कि किस तरह से बेवरेज इंडस्ट्री काम करती है, कैसे सस्टेनेबल वाटर इंडस्ट्री में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई जा सकती है. मैं कह सकती हूँ कि यहाँ इंटरव्यू करते करते मैं भी एटलीस्ट 5% ग्रो कर गई हूँ. ये इंटरव्यू ना सिर्फ एक बिजनेस डिस्कशन था, बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, जहां इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और ब्रांड बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो है वो बन के सामने आते हैं. इंटरव्यू का आगाज जब हमने किया, तब हमने उनसे उनकी कंपनी के बारे में जानना चाहा कि कैसे उन्होंने शुरुआत की. उन्होंने बताया कि उनका मिशन सिर्फ एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे मीनिंगफुल इनिशिएटिव क्रिएट करना था जो लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए. उनकी इंस्पिरेशन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और हाई क्वालिटी सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करनी थी. ये उनका विजन ही था जिसने उन्हें कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे बढ़ने में मदद की. फिर हमने और भी चीजें जानने की कोशिश की कि कतर जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनका ब्रांड कैसे स्टैंड आउट करता है. तो आपने हमें बताया कि क्वालिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर आता है ट्रस्ट और फिर इनोवेशन. ये सारी चीजें इनके ब्रांड के स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स हैं. उनका फोकस सिर्फ वाटर सप्लाई पर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ब्रांड क्रिएट करना है जो हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है. जी हाँ, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से आपने बताया कि उनकी कंपनी जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशंस पर काम कर रही है, और SkyDrop सस्टेनेबल जो है वर्ड का इस्तेमाल ऑलरेडी है उनके नाम में, तो ये क्लियर कट है कि बहुत सारे फ्रेंडली सॉल्यूशंस पर काम किया जा रहा है जिससे कि रिस्पॉन्सिबल वाटर सोर्सिंग और वेस्ट रिडक्शन हो. आपने हमें ये भी बताया और इस बात पर भी एम्फसाइज किया कि आज के कंज्यूमर्स एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं, इसलिए ब्रांड को भी रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी हो जाता है. वहीं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करते हुए हमें पता चला कि कतर का मार्केट जो है वो एजुकेटेड और क्वालिटी कॉन्शियस है. लोग अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू, पैकेजिंग और इम्पैक्ट पर भी फोकस करते हैं. इसी वजह से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी मॉडर्न और कस्टमर सेंट्रिक है. वहीं इनोवेशन के रोल पर आपने हाईलाइट किया कि हर सक्सेसफुल ब्रांड के लिए कॉन्स्टेंट इनोवेशन बड़ा जरूरी है. ये वो फैक्टर है जो ब्रांड को रेलेवेंट और कॉम्पिटिटिव रखता है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस. इनोवेशन उनकी स्ट्रेटजी का कोर हिस्सा है. वहीं हर बिजनेस में चैलेंजेस तो आते ही हैं. चैलेंजेस के बारे में आपने हमें बताया और शेयर किया कि ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब मार्केट सैचुरेटेड हो, लेकिन कंसिस्टेंसी, स्मार्ट मार्केटिंग और स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से उन्होंने अपनी पोजिशन

0: स्टैब्लिश की और स्ट्रॉन्ग बनाई. आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ शेयर की कि उनका ब्रांड सिर्फ वाटर नहीं है, प्यास बुझाने का काम नहीं करता, इट्स अ लाइफस्टाइल चॉइस. उनका एम है कि लोग उनके प्रोडक्ट को हेल्थ अवेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी के साथ एसोसिएट करें. वहीं पर मार्केट ट्रेंड्स पर बात करते हुए उन्होंने हमें बताया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और ब्रांड स्टोरी टेलिंग को हाईलाइट करना आज के टाइम में जरूरी है. उन्होंने बताया कि मॉडर्न मार्केटिंग में ऑथेंटिसिटी और इनकरेजमेंट और एंगेजमेंट हर तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है. वहीं अगर फ्यूचर प्लान्स के हवाले से कुछ जानना चाहा तो हमें समझ में आगे बहुत सारे एक्साइटिंग एक्सपेंशंस हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट इनोवेशंस का भी हमें इशारा मिला जो कि ब्रांड को और भी ग्रो करेगा. आखिर में एक अच्छी सी एडवाइस जो हमें मिल सकती थी वो यही कि सबसे पहले अपने पैशन पर फोकस कीजिए, लाइफ में कंसिस्टेंट रहिए और चैलेंजेस से कभी भी नहीं घबराना है. तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ये इंटरव्यू एक क्लियर मैसेज देता है. जी हाँ, कि अगर विजन स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रैटेजी क्लियर हो और इंटेंशन पॉजिटिव हो तो बिजनेस सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं बनता है बल्कि सोसाइटी में बहुत ही पॉजिटिव और मीनिंगफुल चेंज भी लेकर आता है. दोस्तों, मैं कह सकती हूँ कि ये इंटरव्यू जो है वो सिर्फ बिजनेस या फिर वाटर इंडस्ट्री तक महदूद नहीं था बल्कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी देता है कि कैसे लीडरशिप और विजन मिलकर साथ में सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं. वहीं पर हमें हमारी सीईओ से पता चला, जिन्होंने अपने बारे में बताते हुए कहा, बार बार इस बात पर जोर भी दिया कि आज के दौर में कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि एनवायरमेंट और कम्युनिटी के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए. उनकी बातों से ये भी सामने आता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग सिर्फ मार्केटिंग से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से, ट्रस्ट से और रियल वैल्यू क्रिएट करने से होती है. उनकी अप्रोच एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट को इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल बनाकर मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल की जा सकती है. वेल, ओवरऑल ये इंटरव्यू एक इंस्पायरिंग रिमाइंडर था. एक डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और क्लियर पर्पस के साथ जब इंसान मार्केट में कदम रखता है तो वो अपने फुटप्रिंट्स जो है वो आसानी से छोड़ पाता है. और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कतर जैसे फास्ट ग्रोइंग और कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो यस, आपको जो है वो मार्केटिंग के साथ साथ मॉरल वैल्यूज का भी ख्याल रखना है. वेल, बहुत ही कमाल का इंस्पायरिंग इंटरव्यू रहा हमारी गेस्ट के साथ एंड वॉज रियली रियली अ वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट इंडीड. कि बहुत सारी चीज़ें कई बार हम जो है वो ओवरलुक कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं और हम सबको ये लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करना इज नॉट एन ईजी थिंग. लेकिन हाँ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड पर छोटी सी शुरुआत तो करनी होती है. व्हाट आई फेल्ट, हर जर्नी इज नॉट ओनली inspiring but also a powerful reminder that businesses today can create both economic value and positive social impact. Well, I truly wish her continued success and really look forward to seeing her brand grow even further. Well, to my viewers, stay tuned for more inspiring stories and business insights. Of course, if you have interest in business, only on Qatar Business 360. Until next time, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी. हम दोनों को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़.
1: प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहाँ हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
2: आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: आप सुन रहे हैं FM 107.
5: दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
3: हम भी वो हैं जो कभी

0: इश्क में डूबा तेरे इश्क में डूबा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों इस वक्त FM 107 की घड़ी में बज रहे हैं 11:01 और आप सुन रहे हैं सफा के साथ। शो का नाम है,
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: तो भाई सफा के साथ आप जुड़ चुके हैं, सन एंड साउंड शो का नाम है ऑन FM 107 और भाई आपको ढेर सारी खुशामदीद, एक और नया दिन, एक और नई उम्मीद के साथ और एक और नई टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और भाई सबसे पहले तो इससे पहले कि टॉपिक वगैरह डिस्कस किया जाए, आपको ये बता दिया जाए कि भाई मेरा और आपका साथ रहेगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का। वैसे एक बजे के बाद भी मेरा और आपका साथ रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस शो के लिए, सन एंड साउंड के लिए मेरा और आपका साथ रहेगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। और भाई आज का क्या दिन है, आज है मंडे। देखो कोई मेरे पास मंडे ब्लूज लेता हुआ ना आए,

क्योंकि मैंने अपने आप को बड़ी ही अच्छे तरीके से समझाया है, इट्स ओके, मंडेज आर ओके, देयर इज नथिंग ब्लू अबाउट इट. तो भाई उसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ हम संडे को आपसे मुलाकात हुई थी, आज भी उसी एनर्जी के साथ ही हैं. और आपको ये बता दें कि एक इंटरैक्टिव शो है, तो भाई आप इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये जो मोबाइल नाम की चीज़ है जिसको 24 घंटे हाथ में उठा के घूमते रहते हो, कहीं पे भी नहीं छोड़ते, तो भाई इसी को इस्तेमाल करते हुए इसका एक अच्छा सा यूज़ करना है. मतलब हमें मैसेज करना है, हमें कॉल करनी है, और मैसेज करने के लिए नंबर ये है कि आपने अपने अंगूठे को घुमाना है फ़ोन के ऊपर और डायल करना है 666-22107. मैसेज करने के लिए नंबर है 666-22107. और अगर चाहें, अगर दिल कर रहा है इतना ही ज़्यादा बातचीत करने का, कोई सुबह से नहीं टकराया है जिसका दिमाग खा सको, तो कोई बात नहीं, गोभी दिया फुल्लो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, मगज़ फ्राई मेरा खा लेना. 443-443-77 पे कॉल कर सकते हैं, 443-443-77 पे आप कॉल कर सकते हैं. अरे भाई मगज़ फ्राई याद आ गया. देखिए रोज डेली की कोई ना कोई नई डिश याद आ ही जाती है, अब क्या करें, इंसान है, भूख तो लगती है सबको. चलो इससे पहले कि फ्राई शराई के बारे में बात हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें मौसम के बारे में कर लेते हैं. वैसे तो मौसम भी तड़कता भड़कता और फ्राई होने वाला और नहीं करने वाला मौसम है, लेकिन फिर भी आपको बता ही देते हैं कि क्या ही हाल वाल चल रहा है. देखो भाई अब मेरे पास ना दो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, अब इसके ऊपर भी एक अच्छी खासी डिबेट चल सकती है. अब एक ऐप मुझसे कह रही है कि सफ़ा देखो 39 का टेम्परेचर है, ठीक है, और एक जगह मुझे ये बता रहा, नहीं नहीं 41 हो गया, 40 नहीं, दोनों एक जैसी हो गई. अच्छा अपडेट हो गई, अपडेट हो गई, अपडेट हो गई भाई, अपडेट. देखो कितना तो मसले की बात थी, अभी एक मिनट पहले देखो धोखा दे गया, महबूब की तरह धोखा दे गया, ये भी दोनों एक जितनी हो गई. चलो छोड़ो छोड़ो इस बात को छोड़ो, हाँ भाई दोनों एक ही टेम्परेचर दिखा रही है. मतलब ये कि इस वक्त करंटली वेदर दिखा रहा है 42 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि सपा भाई 50 तक पहुंच गई है गर्मी, तो ऐसा कुछ नहीं है. देखो फील्स लाइक 46-47 डिग्री सेल्सियस हो रहा है मौसम, ठीक है, फील्स लाइक हो रहा है. एक्चुअल में थर्मामीटर में ये दिखा रहा है कि 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन फील्स लाइक 46-47 ऐसे चल रहा है. अच्छा ह्यूमिडिटी को ना, ह्यूमिडिटी का मसला पता है क्या है, ह्यूमिडिटी का मसला ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि कल से कम है, कल मेरे ख्याल से 30-31% पड़ती है ना, तो आज का ह्यूमिडिटी का मामला है कि उसको हमारे पर थोड़ा बहुत तरस आ गया है, थोड़ा बहुत आज के लिए, कुछ बेशक कुछ टाइम के लिए, लेकिन आ गया है. तो आज जो है ना ह्यूमिडिटी वो 25% पर है. ह्यूमिडिटी कम हो जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूवी रेज कम हो गई हैं, वही तड़कता भड़कता सनी स्काइज हैं, वही सूरज चाचू जो है वो मुस्कुराकर, सूरज चाचू का पता नहीं कौन सी तो कोई टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जब ये मुस्कुराते हैं तो उनकी धूप जब चिलचिलाती हुई रोशनी हमारे पास आती है, तो इनसे कोई इनकी टूथपेस्ट का ना पता लेना पड़ेगा कि इनकी थोड़ी सी चमचमाहट कम हो, गंदी वाली टूथपेस्ट पकड़ाई है इन्हें ताकि थोड़ी सी धूप तो कम हो भाई. अच्छा फिर क्या देखा जाए, यूवी रेज तड़कती भड़कती वैसे ही चल रही हैं. मामला ये है कि मेहरबानी करके अगर अननेसेसरी घूमने फिरने को दिल कर रहा है ना, वो थोड़ा बहुत जोश आ गया है कि नहीं भाई चलो घूमने चलते हैं, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा. अगर नेसेसरी नहीं है तो घर के अंदर ही बैठो, एटलीस्ट जब तक 3 बजे तक का टाइम ना हो जाए तब तक तो घर के अंदर ही बैठो भाई. तो 3 बजे के बाद धूप थोड़ी थमना शुरू होगी, तो उसके बाद कुछ देख लेना, लेकिन उससे पहले पहले एक काम करो, पानी की बोतलें, हाइड्रेटिंग जो भी मटेरियल होता है अपना, कोई कुछ लोग एफर्वेसेंट्स लेते हैं, कुछ लोग जो है ना वो कुछ हाइड्रेटिंग वाटर ड्रिंक्स वगैरह मशरूबात पी लेते हैं, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो. इन शॉर्ट देखो 60% जो है ना बॉडी का पानी से बना है, तो मेहरबानी करके वो चीज़ें इनटेक करो जिसके अंदर आपको हाइड्रेशन, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, चाहे फिर वो पानी हो चाहे वो सब्जी और फल हो जो आप खाते हैं, तो वो ऐसे वाले कंज्यूम करें जिसके अंदर ऑलरेडी ज़्यादा पानी हो. अच्छा ये जो गर्मियों के दिन होते हैं ना, इसके अंदर बहुत अच्छा होता है कि अगर आप खाने पीने में भी ना कुछ ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं, जिनकी फ्रूट्स के अंदर तो माशाल्लाह से होता ही, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है, फ्रूट के अंदर तो वैसे ही वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो फल और सब्जियाँ कुछ ऐसी

खाएं जो हाइड्रेटेड हो, मतलब क्यूकम्बर खा लिया, मतलब ये कि जो है ना सैलड वगैरह में आपने कैरेट्स वगैरह खा ली, वाटरमेलन अगर हो सके तो ज़्यादा कंज्यूम करें. मुझे पता है लोगों को मैंगो बहुत पसंद है, नो डाउट मैंगो अच्छा होता है, लेकिन मैंगो याद रखें कि गर्म भी होता है, तासीर मैंगो की गर्म होती है. तो कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं भागा जा रहा, आखिरी मैंगो नहीं है खुदा ना खास्ता ये कोई दुनिया का, ना कि आपकी लाइफ का. अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे. लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे खाएं, जैसे वाटरमेलन हो गया, वो हम लोग उर्दू में कहते हैं सरदा हो गया, स्वीट मेलन हो गया, ये वो चीज़ें जो आपको और ज़्यादा हाइड्रेटेड रखती हैं. तो इनको ऑन एंड ऑफ खाएंगे तो आपका तबीयत भी हल्की रहेगी और वाटर की वजह से ना इनकी जो वाटर क्वांटिटी होती है उसकी वजह से आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड ही रहेगी. और अगर जिम में जाने का मामला है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो भाई मेहरबानी करें कि इंडोर जिम चले जाना. ये अभी ना वॉक शॉक का सीज़न इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है, फजूल की डिहाइड्रेशन होगी, फजूल का मामला जो है ना ख़राब होगा. कुछ लोगों को माइग्रेन होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को बॉडी फटीग होना शुरू हो जाता है, और ये सारा मामला इसी वजह से हो रहा होता है कि आप प्रॉपर हाइड्रेशन, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिल रहा होता. और एक और बात ये कि भाई हाँ, विटामिन डी के लिए अगर आपको अपनी बॉडी को विटामिन डी के लिए स्टिमुलेट करना है कि भाई हाँ भाई विटामिन डी भी तो चाहिए होता है ज़िंदगी में, तो उसके लिए वो जो हल्की फुल्की धूप होती है, फजर के टाइम के बाद की थोड़ी सी धूप होती है, वो 10-20 मिनट काफ़ी होते हैं उसके, या मगरिब से पहले की थोड़ी सी ठंडी सी धूप होती है ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा 10-15 मिनट अपना गुजारा कर सकते हैं, वो मोर देन इनफ होती है. तो भाई वेदर फॉरकास्ट का तो मैंने आपको बता दिया, अब एक काम करती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ठीक है? ब्रेक के बाद एक काम करते हैं, वापस आते हैं और आपके साथ ना वो कुछ नॉलेजेबल ट्रिविया भी शेयर कर लेते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करनी है आपके साथ. देखो भाई फन ट्रिविया तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अब वेदर के बारे में इतनी सारी बातचीत करी तो फन ट्रिविया भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आती हूँ और फिर आपके साथ फन ट्रिविया शेयर करूंगी. अच्छा, आज का फन ट्रिविया जो है ना वो थोड़ा मज़े का है ये बता रही हूँ, तो स्टिक रहना रेडियो के साथ ही, यूं ग्लू लगाकर चिपके रहना. फन ट्रिविया आज का मज़े का है. तो भाई एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बातचीत होगी. याद दिलाती चलूँ कि आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन FM 107, और चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं. जब तक मैं ब्रेक पे जा रही हूँ भाई, प्लीज़ अटेंडेंस तो लगवाओ. अटेंडेंस नहीं लगवाते ना जब तक तो मूड सेट नहीं होता. देखो आज वैसे ही मंडे चल रहा है, मंडे तो आप क्या कहा जाए, ये बदनाम है जमाना. मंडे बेचारा ब्लू, इसको नीला पीला हरा कर दो, नहीं नीला नीला नहीं, ब्लू मंडे नहीं रहने दो, पीला लाल नारंगी ऐसे वाले रंग में कर दो भाई. मैसेज रजिस्ट कर दो कोई कहाँ से सुन रहे हो, सलाम दुआ कर लो, फिर प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. माशाल्लाह माशाल्लाह सदके श्रेया घोषाल. चलो भाई वाजिद भाई भी साथ में आ रहे हैं, चलो आप इनको सुन लो फिर वापस आते हैं.

0: इसलिए क्योंकि हमें जिस चीज से बचपन से रोका गया हमने वही तो करनी होती है, क्या करें, दिलाए गधी पर तो परी क्या चीज है भाई।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: तो भाई आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड सफा के साथ ऑन एफएम 107। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, हमने वहीं दिल लगाया, दिल जहां दिल लगाना मना था। वैसे एक बात होता, सच बात है, ये गाना सुन के ना किस किस को ऐसा लगता है कि ये तो मेरी स्टोरी चल रही है भाई। मुझे तो लगता है मामला ये ना कि बचपन से बड़े बड़े हटके रहे हैं हम जैसे लोग, ना बड़े हटके रहे हैं, हमें जिस चीज से प्रिसाइसली उसको टारगेट करके मना किया था ना, बेटा ये काम नहीं करना, बस हमारे अंदर एक रोशनी सी जग उठती है उसी काम को करने के लिए। बस समझ जाओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई, मतलब ये कि अपने शो को शुरू करते हैं, और शो में जैसे कि मैंने आपको बताया एक इंटरैक्टिव शो है, तो भाई 666-22107 पे मैसेज करो 666-22107 पे, अटेंडेंस लगवाओ, कहाँ कहाँ से कौन कौन सुन रहा है, और चाहो तो कॉल भी कर सकते हैं 4434377 इज द नंबर टू कॉल। इससे पहले कि मैं अपने फन ट्रिविया पर जाऊँ, मैं थोड़े से मैसेजेस पढ़ना चाहूँगी, मैसेजेस आए हुए हैं। आरिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। देखिए आरिफ भाई, गुड वाली मॉर्निंग ना तभी होती है जब आप वेकेशन पर होते हो, अभी तो फिलहाल ड्यूटी पर हैं। समझ जाए बस। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, कौन है? अरे आरिफ भाई का मैसेज तीन दफा मैसेज खुला, तीनों दफा आरिफ भाई का ही मैसेज खुल गया, ये क्या हो रहा है भाई आरिफ भाई। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, हे सिस्टर आई एम रोहेल अलसद से, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रोहेल भाई बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं, कैसा गुजर रहा है मंडे? देखें धूप ऊप तो चंगी खासी गुजर रही है, गोभी ने फुल्लो, बाकी सब सुनाओ। अच्छा हुसैन भाई को देखो, कर दी ना हुसैन भाई ने देसी बच्चों वाली बात। अब मामला ये, हम जो देसी लोग हैं ना, इनको जितना भी ज्ञान दे दो, अच्छा इसके अंदर मैं भी आती हूँ, पता हमें सब कुछ है भाई कि ये अच्छा है, ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी, ऐसी बात नहीं है कि हमारे अनएजुकेटेड हैं, लेकिन मामला ये है कि समोसे और तली हुई चीज़ों के ऊपर आकर ना हमारा दिल यूँ फिसल सा जाता है। तो कह रहे भाई समोसे तो खा ही सकते हैं ना, कल ही खाए थे मैंने शाम को चाय के साथ, अरे भाई वो चीज़ वाले समोसे, ओए होए। देखें अगर हेल्दी फूड के बारे में बात की जाए तो दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ेगा ना ना ना बेटा ये ना खाना, लेकिन अगर देसी फूड के बारे में बात की जाए ना भाई समोसे ही खाना फिर तो। और कौन है मेरे साथ, मोहम्मद यूसुफ खान है, क्या कह रहे हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सफा जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह होप ऑल वेल, वेलकम जी सन एंड साउंड दिल से देसी। यूसुफ खान हैप्पी वाला मंडे मॉर्निंग। अच्छा भाई फयाज भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या कह रहे हैं, बेस्ट टीचर जी, बेस्ट फ्रेंड किड्स की। अच्छा जी सफा मैडम, हाँ किड्स की तो बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन आजकल मुझे धक्का देकर बड़ों को तालीम और तरबियत देने के लिए आगे कर दिया गया है, तो आजकल हम बड़ों को ट्रेन कर रहे हैं। तो भाई और कौन है हमारे साथ, और कौन है मैसेज में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आती है ऐसी चीज़ों से, क्या है क्या ये कौन भाई, इसको डीकोड करना पड़ेगा लार। अच्छा मुंह में पानी आ जाता है, कौन कह रहे हैं मुंह में पानी आता है, तो ये समोसे देखने को ना, मोहम्मद मुशीर आलम नाम लिखा हुआ इनका। और हाँ भाई क्या करें, देखो हम जो है ना देसी बच्चे हैं, तो हमारा यही मामला है भाई, हमारा यही मामला है। अस्सलाम वालेकुम।

जी, सफा जी कैसी हैं आप, क्या हाल चाल जी? गोविंद फुल्लो 80 ठीक हैंगे। अब्दुलरहमान आप बताएं आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? तस्वीर में तो माशाल्लाह बहुत खुशबाश लग रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, नूरानी चेहरा रखे। बाकी अभी का हाल बताएं, तस्वीर तो भाई लगाई होगी कहीं पुरानी वाली अच्छी। मैं भी ये काम करती हूँ ऐसे, जब मुझे अपनी डीपी ना, मुझे अपनी डीपी रखना पसंद नहीं है। मैं अपनी डीपी वो रखती हूँ वो वाली, कोई कार्टून शार्टून वाली या कोई अच्छे से कैप्शन वाली। आप लोगों को शौक है तस्वीर वाली डीपी लगाने का? मुझे नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। अच्छा खैर, वापस आते हैं गजनी साहब, वापस आ जाओ। देखो भाई, अब हम चलते हैं अपने फन ट्रिविया के ऊपर। अच्छा, अब जैसे गर्मियों के बारे में बात करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ गर्मियों से रिलेटेड कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोग गर्मी से इतनी नफरत ना हो। देखिए, अब आने वाला है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने के आने से पहले ना हम अगस्त के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। देखो, जब कोई आने वाला होता है ना तो उसके बारे में ऑलरेडी इत्तलाए आम दे दी जाती है ताकि लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगस्त तो आएगा ही, चाहे आपको प्रॉब्लम हो कि ना हो, वो तो आएगा ही। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अगस्त के बारे में, अगस्त के आने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। देखो, अगस्त का मामला ना बड़ा दिलचस्प है। अगस्त का नाम ही सिर्फ अगर ले लिया जाए ना तो कोई मामूली नाम नहीं, उसके पीछे बाकायदा एक हिस्ट्री है। अगस्त के नाम के पीछे एक कहानी है। अच्छा, हम तो बस अगस्त के बारे में इतना जानते हैं ना कि अगस्त में गर्मी होती है, अगस्त में हॉलीडेज होती हैं, कैलेंडर के पेजेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाते हैं, यही जानते हैं हम। लेकिन साथियों, गोविंद फुल्लो, हर महीने का नाम अपने अंदर एक पुरानी कहानी छुपाए हुए होता है। जैसे हमारे दिल के अंदर राज है ना, वैसे इस नाम के अंदर भी राज छुपे हुए हैं। और आज सफ़ा हिस्टोरिकल राज वो आपको बताने आई है। देखो, अगस्त का नाम रखा गया था एंशियंट रोम के एक बहुत बहुत बहुत मशहूर शख्स के ऊपर। अगर आपको उनकी हिस्ट्री नहीं पता तो एटलीस्ट नाम जरूर कहीं ना कहीं आपको सुना हुआ लगेगा, एकदम से घंटी बजेगी दिमाग में। अगस्टिस का नाम याद है आपको? अगस्टिस सीजर के नाम पर अगस्त का नाम रखा गया था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि अगस्टिस कोई आम शख्स नहीं था। कौन था अगस्टिस? जो है ना, वो रोमन एम्पायर का पहला एम्परर था। और मजे की बात ये वही शख्स था जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि इसने जब तक इसने अपनी सल्तनत संभाली, जो भी कुछ मामला था इसकी सल्तनत का, ये कोई मामूली बंदा नहीं था। इसने रोमन पीस के ऊपर काम किया। इसने जो है, बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि ये जो रोमन एम्पायर को कामयाबी हासिल हुई, आप कह लें कि बल्कि उन्होंने रोम के निज़ाम को भी बड़ा मजबूत बनाया था अपने दौर में। तो ही वॉज नॉट अ मामूली इंसान, नॉट अ कॉमन पर्सन। एक तो एम्परर था, ऊपर से एम्परर भी वो वाला जिसने अच्छाई के लिए अपनी जो उसका एम्पायर था उसके लिए अच्छा खासा काम किया। तो तारीख ने इस शख्स की रहनुमाई में एक नया मोड़ लिया था। अब होता यह है कि भाई देखो, जाहिर बात है, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहा है आदमी, तो उसके लिए कुछ तो ऑनर होगा ना। लेकिन अगस्त हमेशा से अगस्त का महीना नहीं था। पुराने रोमन कैलेंडर में इस महीने को किसी और नाम से जाना जाता था, सेलेस्टिक्स नाम से जाना जाता था। और अगर आप लैटिन लैंग्वेज में सेक्सटिलिस का जो, जिस नाम पहले अगस्त का महीना जो है ना, वो पहले सेक्सटिलिस के नाम से जाना जाता था। लैटिन लैंग्वेज में अगर सेक्सटिलिस का मतलब आप ढूंढें तो वो उसका मतलब आता है छठा महीना माना जाता है। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि कैलेंडर में ना कुछ तब्दीलियां लाई गई, क्योंकि भाई इतना अच्छा खासा आदमी था वो, तो उसके नाम पे उन्होंने कुछ तो ट्विस्ट देना था ना। तो फिर भाई 8 BCE में रोमन सेनेट ने ये फैसला किया कि इस महीने का नाम बदल कर अगस्तस के नाम पर रखा जाना चाहिए। तो भाई क्या हुआ? हुआ ये कि बाद में लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस महीने का नाम चेंज कर अगस्त रखा जाएगा। एक कहते ना, एक राजे तहसीन पेश करने के लिए। तो असल में हम हजारों साल पुरानी रोमन हिस्ट्री का नाम लेते हैं जब हम अगस्त बोलते हैं ना, तो भाई हम ये समझते हैं कि इस मंथ में वो एक याद ताज़ा हो जाती है ना। इस मंथ में सिर्फ डेट्स नहीं है, लेकिन असल में इस नाम के पीछे एक पूरी खास शख्सियत का, एक कल्चर का, एक तारीख छुपी हुई है इस नाम के पीछे। अच्छा, मजे की एक बात बताऊं, जुलाई का नाम भी जो है ना, एक रोमन लीडर के ऊपर रखा गया था जिसका नाम था जूलियस।

इसके ऊपर रखा गया था. तो हम लोग जो ना कितने आम तौर से महीनों को ले लेते हैं, ये जुलाई का महीना आया, ये अगस्त का महीना आया. ये असल में कोई आम बात नहीं है, ये वीआईपी ट्रीटमेंट होता है भाई, वीआईपी ट्रीटमेंट. और अब जब आपको ये पता चल ही गया है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने झाड़ ही दी है, एक और इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड कर देती हूँ. पता है जुलाई और अगस्त के महीने में ना, आपने देखा होगा कि जुलाई और अगस्त का दोनों का महीना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जुलाई और अगस्त के दोनों के महीने में डेट्स जो है ना वो 31-31 तारीख की हैं. ऐसा नहीं कि 1-30 का है और 1-31 का है. इसके ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात ये आती है कि क्योंकि दोनों एम्पायर थे, अब इन दोनों के अंदर टसल थी, इनको ये था कि कहीं मेरा महीना कम दिन वाला ना हो जाए. तो इन्होंने डिसाइड किया ना भाई, हम दोनों के मेरे नाम का जो महीना है उसके अंदर भी 31 दिन ही होंगे, इससे कम वाले ना होंगे. तो ये जो जेलेसी वाला सीन है ना, ये तो बहुत पुराना चलता चला आ रहा है भाई. तो 31-31 महीने, दोनों महीनों में 31-31 दिन रखवाए गए, जुलाई में भी और अगस्त में भी. ये एक कहा जा सकता है कि आप कह लें कि एक थ्योरी है जो कि लोग पेश करते हैं कि भाई ये ऐसा था मामला. अब इसके अंदर कितना सच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ तारीखी रिवायतों के मुताबिक ये पढ़ा है, तारीखी रिवायतों के मुताबिक ये पढ़ा था, तो मैंने इसको सोचा आपसे शेयर कर लिया जाए. अब ये कितना सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पढ़ी थी तो मैंने आगे आपको पास आउट कर दी कि अगस्त और जुलाई दोनों 31 के महीने हैं. कुछ तारीखी रिवायतों के मुताबिक ये अगस्त नहीं चाहता था कि उसका महीना जूलियस के महीने से छोटा हो, इसलिए उसने दोनों की तब्दीली कराई. और हालांकि हिस्टोरियंस इस बात को पूरी तरह साबित नहीं मानते, लेकिन ऐसा कहा जाता है. तो भाई ये थी हमारी आज की मज़े की जो फन ट्रिविया था वो था. अब एक काम करते हैं कि छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके दरिया के उस पार मुलाकात करेंगे, उस पार दरिया के. स्विम करते हुए आ जाओ. किस किस को आती है स्विमिंग? मुझे नहीं आती, तभी तो मैं दरिया के उस पार खड़ी हूँ. जिस जिसको स्विमिंग आती है ना, वो तैरते हुए दरिया के उस पार आ जाओ, क्योंकि उस पार हमारा इंतजार कर रहा है सवाल. एक सवाल जो कि आपकी पसंद का होगा, और आपने मुझे उस सवाल में पूरा पूरा पार्टिसिपेशन देना है. पार्टिसिपेशन, ओके? मतलब ये कि आपने पार्टिसिपेट करना है, और आपने जो है वो कॉल करना है 443-443-77 पर. द नंबर इज 443-443-77. चाहे तो आप मैसेज भी कर सकते हैं 666-221-07 पर. मैसेज करने की नंबर है 666-221-07 पर. और जब हम चलो नहीं, वापस आने के बाद ही सवाल करूंगी. सवाल का मज़ा अगर मैंने अभी थोड़ा सा भी हिंट दे दिया ना, तो मज़ा ना आएगा. मजे ना सवाल है, क्रिएटिव सवाल है, और मुझे उसका क्रिएटिव और फन वाला जवाब चाहिए भाई. ऑलरेडी मैं बता दूं, ये जो उदास बैठे हुए ना मंडे ब्लूज लेकर मुंह पे, भाई ये वाला जवाब नहीं चाहिए मुझे. मुझे फन वाले जवाब चाहिए. आज मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, मुझे ना कोई थीसिस चाहिए, ना कोई थ्योरी चाहिए, मुझे आज फन वाला जवाब चाहिए. क्योंकि मुझे मंडे को ब्लू नहीं रहने देना, मुझे उसको नारंगी बनाना है, मुझे उसको पीला बनाना है, मुझे उसको हरा बनाना है, लेकिन नीला नहीं बनाना. तो फन वाले जवाब के लिए, देने के लिए रेडी हो जाओ. सवाल दरिया के उस पार है. अभी थोड़ा सा गाना शाना सुनो. वाटर के बारे में बात कर रहे थे ना, वाटर वाटर, तो भाई पानी पानी. और आप जो हो वो गाना सुनो. सुन रहे हैं आप सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड सफा के साथ। और भाई देखो, वक्त आ गया है जब आपके साथ कुछ हल्की फुल्की सी डिस्कशन की जाए। और देखो, डिस्कशन के लिए टॉपिक भी तो होता है। तो भाई वेलकम बैक गोविंदिया फुल्लो। देखो, दरिया के इस पार तैरते तैरते आ ही गए हो, तो मैं क्यों ना आपको बता ही दूं जो कमिटमेंट था। तो मेरा कमिटमेंट ये था कि जब आप आएंगे तो आपके साथ बातचीत की जाएगी मुद्दे पर। अब मुद्दा हमारा ये चल रहा है, देखो मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया महीनों पर कि भाई महीनों के नाम ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो ये अच्छी अच्छी बातें करते करते मेरे दिमाग में इतना से ख्याल आया कि देखो, पहले ज़माने में तो लोग ये किया करते थे कि अगर किसी को खराज तहसीन पेश करना होता था तो महीनों के नाम उसके पर रख दिए, रोडों के नाम उसके पर रख दिए, अल्लम गल्लम चीज़ों के नाम उसके पर रख दिए। लेकिन अगर आपको, साथियों गौर से सुनो, अगर आपको ये पावर दे दी जाए कि भाई चलो एक महीने का नाम या कुछ कोई एक ऐसा नाम बताओ जो आप चेंज कर सको किसी महीने का नाम, तो किस महीने का नाम चेंज करोगे और क्या रखोगे? कुछ क्रिएटिव आंसर दो ना, कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा होना चाहिए, मार्केट में कुछ नया आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर बात की जाए तो देखो कुछ महीने ऐसे होते हैं ना जो स्ट्रेस फ्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नवंबर को लोग कहते हैं स्ट्रेस फ्री महीना है, तो क्या रखोगे? नो स्ट्रेस नवंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी महीने का नाम चेंज करना हो तो वो कौन सा होगा? फॉर एग्जाम्पल जुलाई का महीने का नाम चेंज करके जुलाई को आप कहो भाई छुट्टियों का महीना। कुछ क्रिएटिव लेकर आओ मार्केट में, कुछ क्रिएटिव, कुछ आज मेरा दिल कर रहा है कुछ क्रिएटिव हो जाए। ओए होए होए होए होए होए होए, जनवरी को कहा जाए चाय और सुकून का महीना। जनवरी में थोड़ी सर्दी वगैरह होती है ना, आय आय चाय की चुस्की, आ महीने का नाम चाय की चुस्की, आ ब्राउन कॉफी। दिसंबर के महीने को नाम दे दे ब्राउन कॉफी, क्या कहते हो? चलो सवाल ये है सिंपल सा कि जरा सोचो, इमेजिन करो, कुछ क्रिएटिव लेकर आओ मार्केट में और मुझे बताओ कि अगर आपको एक महीने का नाम रखने की चॉइस मिलती, चांस मिलता, तो आप उसका नाम क्या रखते? और ऐसा कौन सा महीना था जो आपको, जिसका नाम पसंद नहीं है, आप कहते हो इसका नाम चेंज करो भाई, इसका नाम चेंज करो और कुछ और रखो, जो आप दोगे ना वो वाला नाम रखेंगे, क्या कहते हो? चलो एक, जब तक सोचो आप, मैसेज देख लूँ मैं, मैसेज आए हुए हैं क्या? 6622107 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, 6622107 पे मैसेज कर सकते हैं, और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर। लेकिन कॉल मैं रिसीव करूँगी अजान की ब्रेक के बाद, ठीक है? गोविंद यहाँ फुल्लो, कॉलें आ रही हैं लेकिन ब्रेक के बाद, मतलब अजान की ब्रेक के बाद ज़्यादा बेहतर है, अजी तफसील से बात हो जाएगी। तो भाई मैसेजेस जो आ रहे हैं थोड़े से पढ़ लेती हूँ। तौफीक भाई कहता है, तौफीक भाई यार ना करें, पराठे सामने आ गए, चाय पराठा चीज़, ओए होए। तौफीक भाई अच्छा पुराना मैसेज है लेकिन मेरे दिल पे नहीं, मेरे पेट पे ठा करके लग रहा है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं साथियों, थोड़ा सा एक ब्रेक लेती हूं और ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, आपसे बातें करूंगी। सुनते रहें एफ एम 107 और बताओ कौन से महीने का नाम चेंज करोगे, किस महीने में, किस महीने का क्या नाम रखोगे, ठीक है? क्रिएटिव हो ना, क्रिएटिव। ब्रेक के बाद उस पार।

भाई क्या तो गाना है, क्या कमाल किया शहरयार रेहान ने और जोहा वसीम ने। वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107। और भाई देखें, जाने से पहले बात ये हुई थी, देखो मुद्दे की बात हो रही थी, जाने से पहले बहुत सोचने का टाइम देकर गई थी मैं साथियों आपको। तो भाई मेरा मुद्दा ये था, देखो कैलेंडर में सिर्फ डेट्स नहीं होती, हर नाम के पीछे एक कहानी होती है। तो भाई मैंने आपको ये ऑप्शन दिया था कि अगर आपको एक महीने का नाम रखने का चांस मिले, कोई ऐसा महीना जिसका नाम आपको पसंद ही ना हो, भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे इस महीने का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा लगता, या इसका वैसे ही नाम नहीं पसंद, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बस पसंद ही नहीं होते, बस कोई रीज़न नहीं होता, बस पसंद नहीं होते, बस ये महीना नहीं पसंद मुझे। तो अगर आपको किसी महीने को चेंज करने का मौका दिया जाए, तो महीने के नाम को चेंज करने का मौका दिया जाए, तो ये बताओ ज़रा उसका नाम चेंज करके आखिर रखोगे क्या, क्या नाम रखोगे उस महीने का। मैं इतनी देर से ये सोच रही थी कि अगर मुझे कहा जाए कि किसी महीने का नाम चेंज करो, तो मैं किस महीने का नाम चेंज करूँगी। मैं भी इतनी देर से सोच में ही हूँ, कुछ क्रिएटिव लेकर आओ ना मार्केट में, कुछ मज़ा आए। मतलब कुछ होता है ना, कभी कभी कुछ लोग रखते हैं भाई, बिरयानी का फेस्टिवल महीना, मतलब चाय का महीना, खुशियों का महीना, अचीवमेंट्स का महीना, कुछ क्रिएटिव लेकर आओ भाई मार्केट में। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले आप बोलें। देखिए पहले आप में, इससे पहले कि रेलगाड़ी निकल जाए, इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए, बता दो। कॉल कर सकते हैं हमें 4434377 पर, 4434377 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं 6662107 पर। और हाँ, जो कॉल करेगा भाई वो गेम की लपेट में भी आएगा यानी कि हम इस पूरे हफ्ते गेम खेल रहे हैं, द वर्ड गेम। होगा ये कि आपकी तरफ आपको परोसा जाएगा एक वर्ड, उसके ऊपर आपने एक मिनट तक बात करनी है, आपने कुछ अच्छी सी एक मिनट तक बात करनी है, ठीक है। तो भाई हमें किसका मैसेज आया है, किसका मैसेज आया है, अब्दुल रहमान का मैसेज आया है, क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, ओ मैंने इनकी तस्वीर के बारे में कहा था कि तस्वीर माशाल्लाह बड़े खुशबाश लग रहे हैं, अल्लाह ताला खुश रखे। तो कह रहे हैं थैंक यू सो मच, ये पाकिस्तान में ही ऐसी खुशी होती है। भाई छुट्टियों पर जाते हैं ना, तो छुट्टियों का रंग रूप अलग होता है, छुट्टियों का निखार ही अलग होता है भाई, क्या करें कंट्रोल नहीं होता, वो चेहरे पर नजर आ जाता है। हाँ ये बात मैं मानती हूँ। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, अगस्त में अगस्त में 14 डेट आई है। हट, अगस्त में 14 डेट आई है, हैं 14 तारीख को कोई हिस्ट्री है क्या, अभी निकाल के देखती हूँ, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट समझ में ना आया मुझे। अरे भाई मैंने डेट के बारे में नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि कोई तारीख चेंज करनी है, आपने तारीख नहीं चेंज करनी, आपने किसी महीने का नाम चेंज करना हो, तो किसी मंथ का नेम रीअसाइन करना हो, तो आप फॉर एग्जाम्पल अगस्त का महीना आ रहा है, ठीक है, अब अगस्तस ने नाम चेंज करके रखवाया था अगस्त, ठीक है, अब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको अगस्त भी पसंद नहीं आ रहा, तो आप अगस्त का नाम क्या रखोगे, क्या रखोगे अगस्त का नाम, कुछ क्रिएटिव आइडिया आ रहा है दिमाग के अंदर। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ मैसेज में, ओके दिसंबर का नाम रखूंगा अलविदा महीना, अलविदा महीना, अच्छा अलविदा महीना, हाँ दिसंबर को वैसे लोग पता नहीं क्यों ये इस महीने के सर्द महीना होता है, तो इस महीने से जाना जाता है दिसंबर को, बड़ा सर्द महीना, कोल्ड

0: ऑफ कौन कहां सुना रहा है? आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो गई ना. अच्छा सफा जी, अगस्त का नाम चेंज करना चाहूंगा, वो होगा ह्यूमिडिफायर. अरे भाई ये अच्छा है. अच्छा हाँ, वाकई में रियली अगस्त के महीने को मैं पिछले दिनों यही कह रही थी. मैंने कहा अगस्त का महीना सुनते के साथ ही ना मेरे दिमाग में सिर्फ ह्यूमिडिटी आती है. तो वेरी रिलेटेबल क्योंकि यहाँ कतर में इस महीने में ह्यूमिडिटी अपनी हाइट पर होती है. अल्लाह करम करे, आमीन. यूसुफ भाई, अच्छा यूसुफ भाई, मुझे इंडिया का तो नहीं पता लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हाल होता है. जो अगस्त का महीना होता है ना, अभी जैसे पाकिस्तान में ना सेट वाली, पंजाब साइड पर, बाकी शहर का नहीं पता लेकिन पंजाब साइड पर सेट वाली बारिश चल रही है भाई. पिछले एक हफ्ते से बारिश रुक नहीं रही, सिर्फ एक से दो घंटा रुकती है बारिश और बाकी धनाधन बारिश. सुभान अल्लाह, इतनी अल्लाह ताला की नेमत है, बारिश हो रही है. तो अब अगस्त का महीना आते आते ना ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों का हशर नशर हो जाता है. ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है तो अगस्त के महीने में वाकई में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. तो भाई और देखते हैं हमारे साथ, 4434377 इज द नंबर टू कॉल. देखते हैं कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह. अब देखें ये जो ना सब मुझे अरबी बोलकर ऐसा करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा. कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाई?
1: मैंने कहा वो कल वाला मसला था ना आपका, वो अभी ताजा है, वो जख्म ताजा है, मैंने कहा तभी जो है ना मतलब अब सब यही करेंगे.
0: अच्छा अच्छा बेटा, छोटी छोटी बातें पकड़ने लगे हो. ठीक है, सबका टाइम आता है मेरे भाई, सबका टाइम आता है.
1: हाँ ना, हम हो चुके हैं ना तांगे.
0: चले कोई बात नहीं, मेरा अच्छा वाला टाइम भी आएगा. टेंशन नहीं लें. अच्छा ये तो बताएं कौन बात कर रहा है. वैसे मुझे अंदाजा हो गया है कौन बात कर रहा है, लेकिन बाकी लिसनर्स के लिए बता दें कौन बात कर रहा है.
1: नहीं आपको नहीं अंदाजा, आप गेस करें.
0: मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमजा भाई है. नहीं,
1: फर्स्ट टाइम आया
0: हूँ. अच्छा कहीं ये अब्दुल रहमान तो नहीं है?
1: रुहेल.
0: अच्छा रुहेल भाई कैसे हैं? अच्छा आपकी हमजा भाई से आवाज मिलती जुलती लग रही, क्या हो गया? मैं अल्लाह का करम है भाई, गोभी के फूल की तरह हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए लोग.
1: भाई वो गोभी का फूल जो है ना वो घर में बेहतर रहता है. घर में जाए ना तो बंद गोभी हो जाता है, बाहर जाए तो गोभी का फूल ही बंद.
0: तो भाई देखें सफायदी की चमकार चल रही है लाइफ में, तो हम गोभी के फूल की तरह खुशबाश हैं. फूल के फूल और खाना भाई मजे का. मेरे भाई आपकी आवाज ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ट्रांसमीटर जो है ना वो हबल टेलीस्कोप में कहीं लगा हुआ है और वो बीच में से ना ट्रांसमिशन मिस हो रही है, कट हो रही है, तो मुझे आपकी आवाज प्रॉपर आनी नहीं.
1: ठीक है,
0: हाँ अब बेहतर है. तो भाई
1: इसके पास है सर, इसके पास
0: है. हाँ जी रोहिल भाई ये बताएं कि जिंदगी कैसी चल रही है फिलहाल? तो
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही है. बस काम कर रहे हैं,
0: काम कर रहे हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: सबसे बेहतरीन बात ही होती है बस काम चलता रहे, है ना?
1: ऐसे ही है बस काम चलता रहे. एक देखे ना, एक बंदा अभी यहाँ प्रदेश में हम रह रहे हैं तो
0: मकसद है,
1: अगर
0: मकसद.
1: ये हम थोड़ी सी मुश्किल में रहेंगे तो पीछे घर वाले इजी रहेंगे, बस उनके लिए फिर ना भी अच्छा हो तो अच्छे ही कहना पड़ता है.
0: अरे भाई देखो मैं तो ये कहती हूँ कि जिसने आज इस उम्र में सख्ती झेल ली ना, फिर उसकी आगे की उम्र थोड़ी आसान हो जाती है. सख्ती सबने झेलनी है, अब वो आपके ऊपर है कि आपने अभी आसानी से सख्ती गुजार लेनी है जब हड्डियों में जाना है या बाद में.
1: नहीं देखे ना बहना, हम तब हमने काम स्टार्ट किया था. देखे ना 19 साल की एज में सऊदीया में था, तकरीबन 4-5 साल उधर रहा हूँ, फिर उसके बाद इधर कतर में, रिसेंटली 6-7 महीने में. तो यही उम्र होती है लड़कों की घूमने फिरने की या यशी करने की, लेकिन उसी उम्र में यहाँ तो बंदा सुधरता है या बिगड़ता है. तो हम अल्लाह का शुक्र है चलो सुधरने वाले साइड में हैं.
0: अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह. ये भी ये बात मैं भी कहती हूँ, मैं अपने लिए भी कहती हूँ ये बात कि भाई जहाँ जिस एज में बैठकर लड़कियाँ मजे से घर में बिस्तर तोड़ रही होती हैं, अयाशियाँ कर रही होती हैं, मैंने उस टाइम पे बड़ी मेहनत की है. बड़ी मेहनत की है,
1: कहीं पहुँच भी तो गए हैं ना.
0: तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है बहुत कुछ है जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा भाई ये तो बताएं कि सीखने सिखाने से बाहर निकलते हैं और ये बताएं कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि भाई आप आज आपकी मर्जी का होगा सब कुछ और उसके अंदर पहली चीज ये कही जाए कि भाई एक महीना ऐसा जिसका आप नाम रिकंसिडर कर सको, उसे रीनेम कर सको, तो उस कौन से महीने का नाम चेंज करोगे और क्या नाम रखोगे?
1: दिसंबर का रखेंगे और सिर्फ सोने का नाम रखेंगे बस. स्लीपिंग मोड ऑन रहे वहां
0: स्लीपिंग मोड हाइबरनेशन.

0: अच्छा ये वो बेहतर रहता है।
1: दिसंबर के महीने में ना मुझे वो भालू याद आ जाते हैं, उनके बारे में कहा था ना, दो दो तीन तीन साल हाइबरनेटिंग मोड पे चले जाते हैं।
0: वैसे ही है क्योंकि यहाँ जितनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं ना तो उससे वही बेहतर है। लेकिन यहाँ पे कर भी कह सकते हैं, अब जिस मुल्क में आए इधर है ये तो फिर इसको कबूल करना पड़ता है।
1: मिडिल ईस्ट तो है ही सहरारा, वो है, वो एक फैक्ट है, वो अल्लाह ताला ने कुदरती निजाम ऐसा रखा है, वो एक फैक्ट है। लेकिन ये भी हमारे लिए बड़ी बात है कि एसी से निकलते हैं एसी में जाते हैं, ये भी एक बड़ी बात है।
0: अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना कि जब अपने आप पे कुछ महसूस होना लोगों ने होना कि मतलब आप बहुत कम तरीन इंसान
1: अपने से नीचे वालों को देखो, मेहनत
0: करते हैं इंसान को देखें ताकि आपको अपनी लाइफ का पता चले।
1: एग्जैक्टली। और मैं इस बात को बहुत बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है मेरी लाइफ का कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप ना शुक्र होने लगे हो तो हमेशा अपने से नीचे देखो और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। अच्छा भाई एक और चीज ये कि चलें ये तो आपने बता दी, क्या क्या नाम रखा, स्लीपिंग मोड, स्लीपिंग कुछ कुछ क्रिएटिव ना, कुछ क्रिएटिव, कुछ कुछ क्रिएटिव स्लीपिंग से रिलेटेड। अब जैसे मैं कुछ बोलूं तो मुझे भालू दिमाग में आ रहा है, अब भालू की हिस्ट्री मैं निकालूंगी तो पता चलेगा अच्छा ये जाकर दिसंबर में सो जाता है।
0: फिलहाल
1: ये आ रहा है। चलें अच्छा अब आपसे एक गेम खेलेंगे आपके साथ हम, ठीक है? आपने और क्रिएटिविटी दिखानी है जिंदगी में, करना ये है कि मैं आपको एक रैंडम वर्ड दूंगी, ठीक है? एक मिनट का टाइमर, आपने उस रैंडम वर्ड के ऊपर बात करनी है, बस रैंडम बात करनी है, ठीक है? देखते हैं आपके पास कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी आपकी स्ट्रांग है, ठीक है? तो भाई आपका रैंडम वर्ड है क्या कहा जाए, बर्गर, बर्गर, ठीक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
0: बर्गर खाने से अगर मैं मोटा हो सकूं ना तो यकीन करें मैं दिन में तीनों टाइम बर्गर ही खाऊं उससे मोटा होता रहूं, क्योंकि मैं बिल्कुल स्मार्ट हूं, 58% मेरा वेट है। तो मैं चाहूंगा कि मैं मोटा होना चाहूं तो वो अगर सुनने में ये आया कि उससे बंदा जो है ना ये फास्ट फूड वगैरह इन चीजों से बंदा हेल्दी होता है, लेकिन मैं जितना खा चुका हूँ मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता, वो पता नहीं कहाँ जाता है, कुछ समझ नहीं आती उस चीज की।
1: सही,
0: लेकिन ये है कि ये आजकल जिस तरह की गर्मी बाहर चल रही इसमें रोटी खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता, दिल करता अच्छी तरह की बंदा बाहर से कोई चीज ले और खा के गुजारा करे, यही है, यही चलता है।
1: चले भाई आपका टाइम ओवर हो गया और आपने ब्रेक ले लिया कितने सेकंड में, 40 सेकंड पर। ये क्या किया भाई 40 सेकंड में, हम बताते ना आपको कि एक मिनट पूरा हो गया, लेकिन नॉट बैड 40 सेकंड। ये किसी जमाने में ना मेरे बारे में लोग कहा करते थे कि भाई ये इतना खाती है जाता कहाँ है, एक लार्ज पिज्जा पूरा का पूरा खा लेती है जाता कहाँ है।
0: अच्छा ये बताएं वो जमाना कौन सा था और अब कौन सा है ताकि मुझे भी पता होना।
1: देखिए वो बचपन और पचपन के दिन ये बस ये राज की बातें होती हैं। अब अगर मैंने आपको ये बता दी तो आप मेरी उम्र कैलकुलेट कर लेंगे, मसला ये नहीं कि उम्र कैलकुलेट कर लेंगे, मसला ये है कि फिर बाकी लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये एक राज है, तजस्सुस रखा जाए लोगों के अंदर। किसी दिन मैं ये
0: कभी कभी ना अपनी वाइफ से भी पूछता हूँ, उसकी अक्सर उसको मतलब तंग करना हो तो उसकी एज को पूछता हूँ, तो वो हालांकि शादीशुदा एक बंदा वाइफ मतलब वाइफ है मेरी मैरिड है, लेकिन वो भी एक दफा आंखें घुमा के देखती
1: है। 25 साल की उम्र से ऊपर हम जाते नहीं है, 25 एट मैक्स।
0: चले हम आपसे फिर एक साल बढ़े हैं, आप
1: कैलेंडर की बात कर रहे थे ना, हम तो कैलेंडर देखें, कैलेंडर 25 साल के बाद आके खत्म हो जाता है हमारा।
0: चले फिर इसी तरह से एक साल बढ़े हैं हम आपसे।
1: हाँ ठीक है, ओके गुड हो गया। चले भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें।
0: जी ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं रोज सुनता हूँ आपको लेकिन आज थोड़ा सा टाइम मिला, मैं वो अक्सर ना आपका जो नंबर आप बोलते ना इतनी जल्दी बोलते थे समझ नहीं आता।
1: चले अब मैं आहिस्ता
0: दूसरे फोन के साथ नोट किया,
1: आहिस्ता आहिस्ता नंबर बोलूंगी मैं। चलो ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
0: ओके अल्लाह हाफिज।
1: अच्छा वाकई में नंबर तेजी से बोलती हूँ, चलो आहिस्ता से बोलती हूँ, ठीक है आहिस्ता से बोल देते नंबर। लेकिन इससे पहले कि नंबर मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ, क्यों ना टाइम क्लॉक को थोड़ा सा सेट कर लिया जाए। भाई वैसे तो 2 मिनट लेट हो गए लेकिन फिर भी टाइम क्लॉक को सेट कर ही लिया जाए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 पर सफा के साथ सन एंड साउंड। और मेरा आज का मुद्दा ये चल रहा है कि जरा बताओ कौन से महीने का नाम चेंज करोगे और महीने का नाम रखोगे तो रखोगे क्या? कुछ क्रिएटिव होकर बताओ ना, मजा नहीं आ रहा भाई। देखो मजा नहीं आ रहा, मैंने सोचा तो कुछ अच्छे नाम आएंगे तो मैं अपना जो है ना कुछ अच्छा सा दिमाग बना लूंगी, तो भाई मजा नहीं आ रहा। देखो मजा नहीं आ रहा, मेरा मंडे जो है ना वो नीला ही पड़ा हुआ है, येलो और हरे तक जा नहीं रहा। तो भाई आप मुझे कॉल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं 4434377 पर, 4434377 पे आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज भी भेज सकते हैं 6662107 पर। और भाई कौन है ये हमारे साथ मैसेज में? अदील भाई, अदील भाई चाय और बन खा रहे हो? मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ सुबह से। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ऐसा भाई है देखो चाय और बन खा रहा है अकेले अकेले। चलो भाई कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं
2: जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ?
3: मैं जुनैद खान। आप पाकिस्तान में किधर से?
2: मैं पाकिस्तान, मतलब भाई ने छूटते के साथ कहा पाकिस्तान में किधर से, मतलब ये क्या चल रहा है?
3: हमारा यहाँ पे एक दोस्त है उसके साथ मेरे शर्त लगा, मैं बोला ये पाकिस्तान से है, फर्स्ट टाइम जिंदगी में रेडियो पे कॉल की है।
2: अच्छा, अरे भाई जुनैद भाई वेरी गुड हो गया भाई। अच्छा ये बताएं आप शर्त, आपके शर्त कैसे जीतेंगे ये बता दें। आपने क्या बोला? मैं कहां से हूँ?
3: मैं बोल दूंगा फिर मैं हार जाऊंगा ना।
2: नहीं ना, आप बता दें मैं वहीं की हूँ, आप जहां क्या बोलेंगे हम वहीं के। भाई ने बोल दिया ना, भाई ने बोल दिया। कहां
3: से? इंडियन से।
2: मैं पाकिस्तान से हूँ, हूँ तो मैं पाकिस्तान से।
3: हाँ,
2: अरे पासपोर्ट दिखाऊं क्या? अरे भाई यही तो आप भाई देखो, आपने शर्त जीतनी है ना तो आपके मुताबिक नहीं, पाकिस्तान से तो हम ही है, ये तो पक्का है भाई। ठीक है, अब आपने कौन से शहर पे शर्त लगाई है ये बता दें, क्योंकि भाई को जितवाना तो बहनों का काम होता है।
3: ये थैंक यू सो मच, बस मैं जीत गया, आपने बोल दी कि पाकिस्तान से, मैं जीत गया।
2: है भाई पाकिस्तान से ही है। और मैं अगर बताऊं तो मैं कराची से हूँ। मेरा मेरे आबाओ अजदाद जो हैं, मेरा जो खानदान खानदान सेटल है वो लाहौर में सेटल्ड है। मेरे अम्मा अब्बा जो थे वो, मेरे ददियाल जो है वो कराची में आगे सेट हुआ, मेरी अम्मा जो है वो सिंध साइड की। बहुत बड़ी लंबी स्टोरी भाई, मिक्स प्लेट है पूरा पाकिस्तान अपना है।
3: थैंक यू सो मच, सारा पाकिस्तान हमारा।
2: अब क्या पता आप हमारे पड़ोसी निकल आए तो हम क्या करेंगे फिर?
3: पड़ोसी भाई है तो फिर पड़ोसी क्या?
2: हाँ?
3: भाई पड़ोसी क्यों है?
2: भाई ने बेगम के प्रेशर में आके घर अलग कर लिया भाई है। ये वो वाला भाई है। चले भाई कोई बात नहीं। अच्छा भाई ये बताएं, ये बताएं अभी तो, ये तो आप शर्त जीत गए ना
3: जी।
2: तो आपका दोस्त आपको क्या खिला रहा है बताएं तो जरा?
3: मैकडॉनल्ड लगाया हुआ था।
2: अच्छा चले भाई, बर्गर शर्गर खाएं, खुश रहें। मैं तो ना खाऊंगी बर्गर शर्गर, मैंने कहा कोई देसी फूड होता तो मैं भी कहती है भाई मेरे को भी खिलाओ, लेकिन चले वेस्टर्न फूड खा रहे हैं।
3: बोले तो आपको क्या है, पार्सल भिजवा देते हैं।
2: हाय हाय हाय, ये होता है भाई। देखो देखो सुनने वालों सुनो, भाई ये होता है।

0: पार्सल खाना भेजते हैं। अच्छा जुनैद भाई ये तो बताएं, ये बताएं, मैंने एक सवाल किया था, सवाल ये था कि जरा मुझे ये बताएं कि अगर आपको एक महीने का नाम चेंज करने का मौका दिया जाए, कोई भी ऐसा महीना जो भाई मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद वो, बस आपको उसका नाम नहीं पसंद, उसको रीनेम करना है, तो कौन सा महीना होगा किसके जिसको रीनेम करेंगे और उसका नाम क्या रखेंगे, कुछ क्रिएटिव कुछ मजे का।
1: जून जुलाई को नवंबर और दिसंबर बना दो।
0: क्यों क्यों क्यों क्यों ये उल्टा क्यों क्यों, कोई हिस्ट्री होगी ना, मुझे कोई मामला होगा, कोई
1: दिसंबर खूबसूरत होते हैं, जून जुलाई की गर्मी जहाँ भी जाओ इसमें से वैसे जून जुलाई से बस नफरत है, जून जुलाई कहाँ से गुजरते
0: हैं, वो तो सिर्फ शफल हो गया ना, वो शफल हो गया सिर्फ, वो तो महीना फिर वही रहेगा ना, कुछ कुछ क्रिएटिव अलग सा नाम रखे रखे ना, कुछ कुछ अलग सा नाम। फॉर एग्जाम्पल आपको कौन सा महीना नहीं पसंद, कौन सा महीना नहीं पसंद चले बताएं।
1: मुझे तो सारे महीने बहुत पसंद है, जून जुलाई को छोड़ कर,
0: जून जुलाई को चले, जून को उठा लेते हैं,
1: ठीक है,
0: तो जून को क्या नाम देंगे,
1: जून को क्या,
2: जहन्नम।
0: अल्लाह माफ करे, जहन्नम जहन्नम, कुछ क्रिएटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल जून, भाई देखिए जून और जुलाई ना अगर अच्छे तरीके से देखा जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव में देखा जाए, तो आमों का सीजन होता है। अब देखिए हर नाम के पीछे ना एक हिस्ट्री होती है, लोग बच्चों के नाम भी रखते हैं ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, किसी को नाम का मतलब अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, तो हम कुछ क्रिएटिव होकर बोलेंगे। अब जैसे जुलाई का नाम है, जुलाई का नाम हटाकर मैंगो रख दें, कैसा रहेगा,
1: मिर्ज़ा गालिब की याद आ जाएगी, आम हो
0: और आम हो,
1: आम हो और आम हो,
0: हाँ। अच्छा देखा है आपने वो, सही
1: दे?
0: मैंने कहा वो मिर्जा गालिब वाला वो सीन देखा है आपने,
1: सीन तो नहीं देखा, पढ़ा था सीन, पता नहीं कौन सा है
0: वो, एक मिर्जा गालिब की एक पाकिस्तान का बहुत वो उस जमाने में बहुत पुराना जो है उन्होंने एक प्ले भी बनाया था।
1: अच्छा
0: तो मैंने सोचा आपने शायद वो देखा,
1: हमारी तो मैं कहना 2008 में ही उर्दू की किताबों में गजल में लिखते थे कि मिर्जा गालिब को बोलते थे आम हो और आम हो, वही कोई याद आ रहा है तो थोड़ा बहुत
0: सही
1: पढ़ा तो।
0: चले आपके साथ एक काम करते हैं, अब आम तो हमने नाम रख लिया जुलाई का, बहुत ही आम सा महीना है, अरे वाह, आम बहुत ही आम सा महीना है,
1: बिल्कुल जबरदस्त हो आप भी गालिब के क्या गालिब के रिश्तेदार।
0: अच्छा जुनैद भाई अब चलते हैं गेम पर, ठीक है, आपको मैं दूंगी एक वर्ड, एक मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और आपने करना ये है कि आपने एक मिनट तक उस वर्ड के ऊपर बात करनी है।
1: भाई भी बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर कहना मैं हमारा फालूदा बना रहा हूँ, मैंने खर्च जीतने के लिए किए यहाँ पांच महीनों के नाम चेंज करने के लिए।
0: अच्छा, नहीं ट्राई करते हैं ना, ट्राई करते हैं, देखिए आपकी कम्युनिकेशन

0: पाकिस्तान में कपड़ा कॉस्मेटिक का बेचने का यहाँ पे वुड का काम कर रहे हैं लकड़ी का, उस कस्टमर में कर दीजिए, ऐसे कोई चीज में दे दीजिए।
1: अच्छा चले, कॉस्मेटिक का काम किया हुआ ना आपने?
0: हाँ जी।
1: ठीक है, तो लिपस्टिक फॉर एग्जाम्पल, लिपस्टिक, ठीक है, आपको लिपस्टिक के ऊपर एक मिनट तक बात करनी है, ठीक है?
0: फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर हो, मैं आपको डील कर रहा हूँ,
1: कुछ भी ठीक है, एक मिनट तक। चले मैं आपको कहती हूँ कि ये लिपस्टिक मुझे बेच दो भाई, तो आप कैसे बेचोगे? वन टू,
0: अपना पठान भाई जो हमारे जैसे बेचते हैं उस अंदाज में आपको
1: बेचते हैं। आपने एक मिनट तक बात करनी है, ठीक है, लिपस्टिक के ऊपर।
0: ओके ओके,
1: चलें वन टू थ्री, आपका एक मिनट नाउ। चल लिपस्टिक।
0: हाँ भाई जी, आपको कौन से कलर का लिपस्टिक चाहिए? मैरून कलर आपको दूं, आप पे बहुत अच्छा लगेगा ये लिपस्टिक जो है ना, इसमें आपको कौन सा चाहिए कलर आप बता दीजिए, बाकी आप हमको आपको सेलेक्ट करा देते हैं। लिपस्टिक लगाने से आपकी खूबसूरती और होगी, आपके चेहरे के लिपस्टिक
1: अरे कस्टमर खड़ा हुआ यार भाई, 20 सेकंड सिर्फ, 20 सेकंड, दुकान बंद हो गई भाई, दुकान बंद हो गई, 20 सेकंड ना बात कर पाए,
0: बिजनेस शुरू से पहले खत्म हो
1: गया। 20 सेकंड, ये सेल्समैन चेंज करो भाई, नहीं चलेगा भाई, ये वाला सेल्समैन नहीं चलेगा भाई,
0: चेंज कर दीजिएगा। ऐसी बहना हो जो अपने भाइयों को खुद बात मार के निकाले,
1: अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबकी रोजी रोटी बरकरार रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बहुत अच्छा लगा जुनैद भाई आपसे बात करके,
0: आम में याद रखें,
1: आम एक बहुत ही आम सा महीना है, याद रखिएगा, ठीक है? चले जी, अल्लाह हाफिज। अरे मैंने सोचा भाई मार्केट में लिपस्टिक बिकेगी, जुनैद भाई ने कचरा कर दिया, मरून कलर की लिपस्टिक के आगे कुछ बोला ही नहीं जुनैद भाई ने, लेकिन मजा आया। तो भाई आप भी अगर चाहें तो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल, और चाहें तो हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 6662107 पर। मैसेजेस की भरमार लगी पड़ी है, मैसेज की तरफ आ रही हूँ मैं, एक और कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कौन है हमारे साथ?
2: मैं नुमान शाह।
1: नुमान शाह बात करें, नुमान भाई आपकी आवाज, या आप ब्लूटूथ पर हैं या आप चांद पर हैं, कहीं तो हैं। ब्लूटूथ पे, हाँ। चलें भाई ये बताएं
2: यार, आपकी जो गुफ्तार है ना, आपकी जो मतलब लैंग्वेज है ना, बहुत प्यार है।
1: थैंक यू नुमान भाई, नुमान भाई थैंक यू, बस करें नुमान भाई, रुलाएंगे क्या?
2: बहुत ज्यादा प्यारी बातें नहीं किया करो ना, हम पठान लोग हैं, हम फिर दीवाना हो जाएंगे।
1: नहीं भाई, यहाँ पे चांद नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग नंबर है। अच्छा ये तो बताएं, ये बताएं कि आपको अगर एक महीने का नाम चेंज करना पड़े तो आपके लिहाज से, चले कुछ क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, कुछ क्रिएटिव होते हैं, कोई एक महीना ऐसा जिसका नाम आप चेंज करना चाहोगे और कुछ और रखना चाहोगे, क्या रखोगे? कुछ ऐसा
2: वैसे जो है ना, इसका क्या मैं अभी बोलूं,
1: कुछ अच्छा सा ना, कुछ अच्छा क्रिएटिव हो ना, कुछ मार्केट में कुछ नया लेकर आए ना भाई। वैसे तो देखो हमें वैसे तो कोई अथॉरिटी देता नहीं, आज एक मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम अपनी ढेरों शायरी झाड़े।
2: मेरा तो जो है ना सफनूर, वैसे जो है ना वो कोई मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं ना अभी, तो वैसे जो है ना ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं कहता, क्योंकि
1: भाई रेडियो पे खतरनाक बात करनी भी नहीं है भाई, इज्जत और एहतराम के दायरे में रहकर बात करनी है, नहीं तो मेरा और आपका आखिरी शो होगा। तो एहतराम से, अच्छे से, प्यार से, इज्जत से नाम देने, ऐसी जैसे अभी अभी वो जुनैद भाई थे ना, जुनैद भाई से हमने कहा भाई जुलाई का हटाकर नाम मैंगो रख देते हैं, आम।
2: वैसे सब बस आप जो रख दे बस वो हमें कबूल है।
1: लो ए भाई, ओ कोई मारो मुझे, मारो कोई, ये क्या हो रहा है भाई, ये मजा ना आया। अच्छा चले आपके साथ नुमान भाई दूसरी गेम खेलते हैं, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, ठीक है, वर्ड का वर्ड, उस वर्ड के ऊपर आपने मैक्सिमम एक मिनट तक बात करनी है। अभी तक रोहेल भाई ने 40 सेकंड तक वर्ड के ऊपर बात की है, आपका हुनर आजमाते हैं हम।
2: एक एक एक मिनट की बात कर रहे हैं ना, मैं तो 20 सेकंड भी मुश्किल है कि कर सकूं, क्योंकि गर्मी बड़ी ज्यादा है ना।
1: ये लो भाई पानी की बोतल साथ में रखो, तरबूज वरबूज खाओ, खीरा शीरा खाओ, हाइड्रेटेड रहो और बात करो।
2: है ना आपके लिए कोई गिफ्ट रखा हुआ है सफनूर, आपके साथ कहीं मुलाकात हो जाए।
1: बस भाई बस, ये गिफ्ट जो है ना, गिफ्ट जो है ना, ये गिफ्ट आप एक काम करें,

0: ये घर भेजिएगा गिफ्ट, अम्मा और बहना को भेजिएगा, और कहिएगा बहुत प्यार से लिया था मैंने, बहन को देना था तो बहन को दिया मैंने गिफ्ट.
1: नहीं मैं अपनी सिस्टर सपनूर के लिए रखा हुआ है ना.
0: चले इंशाल्लाह जिंदगी रही, मुलाकात होगी तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे. ठीक है
1: इंशाल्लाह,
0: अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. चलो भाई देखो, मुझे क्रिएटिव लोग चाहिए. देखो ये ना करो ना, मजा नहीं आ रहा मेरे को, ये बहुत गलत बात है. मैसेज की तरफ अगर चलूं तो कि अच्छा मुझे इन्होंने नया नाम दे दिया, सफा नूर हैं. मेरा नाम, मेरे नाम नू कहा लगा, मैं तो सफा सफदर हूं, मुझे तो अभी याद आया है. अच्छा मुझे भी ना पता था, क्या ये बात सफा को पता थी? नहीं सफा को नहीं पता थी, सफा का नाम एक दफा फिर सफा सफदर है. अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है. वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई, कैसे हैं आप? हेलो हमजा भाई की डीपी जो है ना मुझे हेलो कर रही है. हमजा भाई आई लाइक द डीपी, हेलो हाय, वो एनिमेटेड डीपी है. तो भाई और कौन है हमारे साथ, और कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? ये मेरे ख्याल से हाँ जी मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आया, कह रहे हैं सफा जी अगस्त का नाम चेंज करना चाहूँगा, वो होगा ह्यूमिडिफायर. अच्छा इनका तो मैंने मैसेज पढ़ लिया था, ह्यूमिडिफायर का नाम रखना चाहेंगे. ठीक है और भाई और कौन है हमारे साथ मैसेज में? सफा नूर, देखें मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, देखें सफा नूर. अब मैं नया मार्केट में नाम आ गया मेरा और मुझे पता ही नहीं चला. अच्छा भाई देखो और मैसेजेस भी आए हुए हैं, मैसेजेस मैं पढ़ लेती हूँ थोड़े बहुत ताकि आप लोग नाराज ना हो. अहमद भाई ने मैसेज भेजा, क्या कह रहे हैं? मैं एक महीने का नाम रखता बस 5 मिनट और महीना है. ये क्रिएटिव माल आया मार्केट में, क्योंकि हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ होता है बस 5 मिनट और. अच्छा हाँ मोबाइल चलाना होता है तो उसके लिए 5 मिनट और. तो मैं चाहूंगा किसी भी महीने का नाम तब्दील करके बस 5 मिनट और महीना रख दूं. ये क्रिएटिव है, क्रिएटिव है. देखें ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ है. हाँ भाई बस 5 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस 5 मिनट. अब वो किसी भी चीज़ में हो, किसी ने पानी मांग लिया बस 5 मिनट, खाना खा लो बस 5 मिनट, मोबाइल बंद कर दो बस 5 मिनट. तो हाँ ये अच्छा है, नाइस, आई लाइक इट. सना ने क्या लिखा है? मेरा महीना होता चाय का सुकून का महीना. तो कौन सा महीना, कौन से महीने का नाम चाय का सुकून रखेंगी? इस महीने में बॉस भी कहता काम बंद, काम बाद में करो, पहले चाय एंजॉय करो. हैं सच में बॉस ये नहीं कहते, ट्रस्ट मी, बॉस कहते चाय गावा कॉफी सब कुछ छोड़कर पहले काम करो. चलिए भाई 4443-443-77 इज द नंबर टू कॉल एंड 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज. देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: हाँ मैं आपके साथ FM 107. वालेकुम सलाम.
0: अरे भाई कोई काला चश्मा ला कर दो, इतनी रोशनी, इतनी रोशनी. आज तो बहारों फूल बरसाओ, शहजादा सलीम आए हैं. कैसे हैं आप?
2: बेहतरीन, बहुत बेहतरीन हूँ.
0: अच्छा भाई इतने दिनों से आप कहाँ घूमते?
2: मैं असल में मेरा गाड़ी का रेडियो ही नहीं था, मेरे को गाड़ी चेंज मिली, उसका रेडियो खराब है तो
0: वापस कर देते ऐसी गाड़ी को, वापस कर देते.
2: हाँ तो रेडियो से मुझे दूर रहना पड़ा. फिर कैसे कैसे सेटिंग किए सुबह के प्रोग्राम के लिए के हेडफोन लगा के ना मोबाइल में कनेक्ट किए, तो फिर उसमें ऑन ड्यूटी में कॉल, बॉस लोग की कॉल, यहाँ वहाँ की कॉल, तो इसमें जो है ना सारा कुछ है ना गड़बड़ हो गया.
0: अच्छा ये तो एक और काम भी किया जा सकता है कि अगर आपका गाड़ी का रेडियो काम नहीं कर रहा तो मोबाइल के ऊपर भी ऐप में रेडियो चलाया जा सकता है. मोबाइल की बैटरी भी बचानी थी हमने. जाहिर बात है भाई बॉस पहले आता है भाई. नहीं नहीं भाई बॉस पहले आता है, सही बात है, सही बात है. मैं समझ गई. जी, अच्छा जी, ये जी, बताएं कि लाइफ कैसी गुजर रही है? एसी वैसी तो है ना गाड़ी में?
2: गाड़ी में एसी है और फिर भी गर्मी तो गर्मी है, गर्मी तो अपना रोल करना है.
0: देखिए हम मजदूर लोग हैं, अब क्या करें, हम गाड़ी में बैठकर तो काम करना ही है. अब अगर कंप्लेन करेंगे तो क्या ही बच जाएगा जिंदगी में, ऐसे नहीं तो वैसे करना ही है.
2: कंप्लेन करना, झगड़ा करना उससे बेहतर तरीका नहीं, क्योंकि उसे दोस्त बना लिया जाए.
0: ये चीज मेरे अजीज, ये चीज. अच्छा शहजादा सलीम ये बताएं कि अगर एक महीने का नाम आपको चेंज करने का मौका दिया जाए तो वो कौन सा महीना होगा कि जिसका आप नाम चेंज करेंगे और क्या रखेंगे उसका नाम? कुछ क्रिएटिव बताएं ना भाई, अभी तक मार्केट में किसी ने कुछ क्रिएटिव बताया नहीं।
2: अभी हमारे यहाँ है ना बॉम्बे में ना जो जुलाई का महीना है ना बहुत बारिश होती है।
0: ओके
2: बारिश होती है तो ग्रीन हर जगह बाहर निकलो ना बॉम्बे सिटी से थोड़ा हटके, जैसे पास में खंडाला लोना जहाँ चले जाओ वाटरफॉल और सारे ग्रीनी ग्रीनी
0: पूरा
2: ग्रीन
0: ग्रीन। जुलाई के महीने में,
2: जुलाई का महीने में इतनी बारिश होती है। अभी भी आज भी मैंने मेरी खाला को फोन किया था लोना ना तो बारिश बोले फुल जुलाई फुल बारिश है।
0: अरे वाह अरे वाह,
2: अरे घास पत्ते मुरझाए कौन से जमाने के जो दरख्त होते
0: रिवाइव हो गए। अच्छा कौन सी जगह का बता रहे हैं, कौन सी जगह का?
2: पूरे बॉम्बे में आई थी।
0: बॉम्बे में? बॉम्बे में अच्छा।
2: और थोड़ा सा हट के 80 to 1.5 किलोमीटर 90 समझ लो 80 किलोमीटर है ना इस हिल स्टेशन खंडाला वगैरह आपने सुना होगा।
0: हाँ जी हाँ जी, गाने में सुना है।
2: करीब ही है हाँ महाबलेश्वर
0: नाइस। तो उसका नाम क्या रखेंगे, नाम क्या रखेंगे, नाम नाम नाम बताएं।
2: एवर ग्रीन जुलाई एवर ग्रीन। को
0: देंगे। मैंने कहा रखेंगे वो क्या क्या मुझे अरे मेरे दिमाग से निकल गया नाम, रिमझिम रिमझिम नाम रखेंगे रिमझिम।
2: और आप मैंगो जो है जुलाई में होते हैं मार्केट में,
0: जून जुलाई जुलाई के महीने में ना मैं कहती हूँ वो सही वाले। देखिए जून में आ जाता है आम, जून में तो आम आ जाता है।
2: हमारे यहाँ पूरे महाराष्ट्र में ना बॉम्बे जो मेन कैपिटल है उस अप्रैल से लॉन्च हो जाता है मार्केट में और मई तक तो पक्के मतलब बिक के सारा कुछ है ना कितना तो खत्म हो गया रहता
0: है। मौसम मौसम की बात है ना। हाँ
2: इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। फिर जून में अगर जहाँ बारिश पड़ी ना तो फिर लोग नहीं खाते, क्यों मालूम है? उसमें कीड़े पड़ने का
0: हमारे पास जून जुलाई अगस्त का मौसम जो होता है ना भाई ये मेन होता है आम का, हमारे पास थोड़ा सा अलग सिस्टम है। सही
2: हाँ यहाँ हमारे यहाँ तो अप्रैल से मतलब पक जाते हैं अप्रैल और मई अप्रैल में मार्केट में एक्चुअली आ जाते हैं।
0: अच्छा ये मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है आपने, तभी मैं कहूँ ये इंडिया का आम मुझे कैसे नजर आता है मार्केट में। मैंने कहा अच्छा ये इनके पास सीजन है क्या है। अच्छा ये मेरी इन्फॉर्मेशन में पहली दफा इजाफा हुआ है भाई, ये आपने अच्छी चीज बता दी मुझे। मेरा तजस्सुस
2: फुल पीक पे होता है अप्रैल और मई में, कहीं कहीं जगह मतलब लोग मतलब तोड़ के पहली जब कैरी होती है ना ग्रीन
0: हाँ,
2: ग्रीन
0: हाँ, उसको
2: कर करे ना उसको फिर है ना कुछ पाउडर वगैरह मारते हैं तो उससे ना पक जाता
0: है। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए यूज होता है क्योंकि पका हुआ आम। सही सही सही।
2: फूल जो है ना फरवरी से ही शुरू होते हैं झाड़ों में दख में और फिर मार्च से ना लगने शुरू होते हैं और फिर अप्रैल तक तैयार हो जाते हैं।
0: चले भाई अब हम माशाल्लाह से इतनी बातें तो कर ही ली हैं तो सरासरी मुझे लगता है ये राउंड हमारा जीत ही जाएंगे, ये गेम आप जीत जाएंगे आज का, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये गेम यही है बात करने का। तो भाई हम जो है ना वो आपको देंगे एक रैंडम वर्ड और आपको कहेंगे कि एक मिनट तक आपने उस रैंडम वर्ड के ऊपर बात करनी है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर आज का रोहेल भाई ने 40 सेकंड बात की थी। तो आपके लिए हम क्या वर्ड निकालें, सनग्लासेस। ठीक है सनग्लासेस के ऊपर आपने बात करनी है एक मिनट तक के लिए और आपका टाइम शुरू होता है नाउ।
2: सनग्लास वेरी पीसफुल खूबसूरत चेहरा लगता है सूरज की नजरों से बसता हुआ और चेहरे को और आंखों को ठंडक देता हुआ और ये सन ग्लास के क्या कहने, क्या ब्लू कलर, क्या डार्क कलर, क्या ब्लैक कलर, क्योंकि सन ग्लास जो बिल्कुल सूरज के एकदम आफ्ताब के बिल्कुल सूरज और सन ग्लास का क्या कॉम्बिनेशन होता है बहुत जबरदस्त होता है और ये दोनों जब एक खिली धूप में निकलते हैं तो वाकई में एक जो बाहर का नजारा देखने का बड़ा पीसफुल और छाव छाव छाव सब कुछ होता है सन ग्लास का। वेरी ब्रांडेड बहुत ठंडा और कूल वाला बहुत जबरदस्त और बहुत हर एक बिकरे चेहरे को खिलखिला कर जो है अपना मार्केट में और अपने दोस्तों में हर जगह एक नया चेहरा उसको प्रेजेंट करता है और एक खूबसूरती में एक नया इजाफा करता है। तो ये है संगला।
0: चले भैया आपने 59 सेकंड्स बात कर ली, मतलब सही है 59 सेकंड्स आपने बात कर ली। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है सनग्लासेस अगर पहनकर निकला जाए बीच पर तो वो और भी ज्यादा मजा देता है, और पोलराइज्ड अगर बीच पर पहनकर जाए सनग्लासेस तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता भी है और दिखाता भी है चीजें।
2: मैं
0: हमने बताना था ना आपको। चले भाई, वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। ठीक है, आप अभी तक के हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं। तालियां कहाँ गई हमारी? तालियां, तालियां। नाइस नाइस। तो भाई तरबूज खाएं गर्मियों के दिनों में और अपने खर्चे पे खुश रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तो देखो कॉल्स का सिलसिला तो जारी है, मुझे पता है आपकी कॉल ज्यादा आ रही है। मुझे सिर्फ देखो मैं फिर स्लिप ऑफ टंग हो गया, मतलब ये कि मुझे ब्रेक की जरूरत है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें, मैं यूं जाकर यूं वापस आ रही हूं, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह उसके बाद ढेर सारी बातें भी करेंगे। नंबर फॉर कॉलिंग इज 4434377 और मैसेज के लिए नंबर है 6662107। सवाल वहीं खड़ा है, अभी तक मुझे मार्केट में किसी ने कोई अच्छा सा नाम नहीं दिया है, बहुत ही मैं क्या कहूं क्रिएटिव लोग नहीं है भाई। मेरी क्लास में आज कोई क्रिएटिव बच्चा नहीं आया। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को बोलती ना कोई क्रिएटिव नाम बता दो तो वो भी बता देता, अभी तक आप लोगों ने ना बताया। ना ना ना, मेरा दिल तोड़ देता है, दिल तोड़ देता है मेरा। मैंने कहा था कि कोई अच्छा सा कुछ अच्छा सा क्रिएटिव सा नाम रखो ना किसी महीने का तो मजा आए। अभी तक किसी ने कोई क्रिएटिव, हाँ 5 मिनट वाला सीन अच्छा था, वो अच्छा लगा मुझे। किसी ने अहमद भाई ने किया था मेरे ख्याल से, हाँ अहमद ने किया था, और इन्होंने कहा था कि बस 5 मिनट और महीना, बस 5 मिनट और महीना, हाँ ये अच्छा था, ये क्रिएटिव था। तो कुछ ऐसा है तो मार्केट में लेकर आओ ना भाई। 4434377 इज द नंबर टू कॉल एंड 6662107 इज द नंबर टू मैसेज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर।

0: भाई कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके लिरिक्स दिल पे ना ठा करके लगते हैं। हम शायद अपनी पूरी जिंदगी पूरी उम्र गुजार दें और ऐसे लिरिक्स ना लिख पाए, लेकिन जब किसी और के मुंह से बात सुनते हैं तो ठा करके लगते हैं, ठा करके।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: तो भाई वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड और एफएम 107। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई, 12:38 हो रहे हैं। और आपको ये बता रही हूँ कि मैंने जाने से पहले आपसे सवाल ये किया था कि अगर आपको एक महीने का नाम तब्दील करने का मौका मिले, तब्दील मतलब चेंज करने का मौका मिले, तो आप उस महीने का नाम क्या रखोगे। मौका तो मिल रहा है कि किसी महीने का नाम चेंज करो, चलो कोई तो मौका दे रहा है, सफा मौका दे रही है ना, तो बताओ भाई क्या कुछ क्रिएटिव कुछ अच्छा लेकर आओ मार्केट में। 666-22107, 666-22107, 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल, 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल, और 666-22107 वाला नंबर है मैसेज करने का। मैसेज के बारे में बात करूं तो ये भी मुझे अच्छा लगा भाई, ये वाला अच्छा लगा मुझे। मैं अगस्त का नाम बदल कर रखना, यह कौन है, बिलाल भाई, मैं अगस्त का नाम बदल कर रखता एसी का शुक्रिया महीना। कदर की गर्मी में एसी से ज्यादा लॉयल दोस्त भी नहीं होते। दोस्त नहीं चाहिए भाई ने, कोई दोस्त नहीं चाहिए। इतनी गर्मी में ना दोस्तों की शक्ल ही पसंद नहीं आ रही होती बिलाल भाई। इतनी गर्मी में ना दोस्त मिल जाए ना तो हम पहचानने से इनकार कर दें, साइड पर हो, चल एसी में गाड़ी बैठने दो मुझे। ये अच्छा था एसी का महीना। अच्छा हेरा का मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने लिखा है मेरा महीने का नाम होता नो अलार्म मंथ, इसमें सुबह नो अलार्म, मेरा अलार्म नहीं बजता, मतलब अलार्म भी छुट्टी पे चला जाता। अच्छा कोई शायद ऐसे वाले महीने की बात करी जिन्हें छुट्टी लेती हैं, कौन सा महीना भाई ये तो बताओ ना, कौन सा महीना। तो भाई आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे भाई कैसे चल रहे हैं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अल्लाह की रजा में राजी। ये बताएं आरिफ भाई क्या नाम रखेंगे, कौन से महीने का।
2: महीने का नाम तो जैसे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूंगा।
0: हाँ जी,
2: जनवरी तो नया साल होता है तो पिछले गम और नए वो खुशियों में बीत जाती है तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। और फरवरी तो ब्याह का महीना हो गया बोलते हैं लोग तो उसको छोड़ दे रहा हूँ, मार्च से शुरू करूंगा।
0: हाँ ठीक है ठीक है,
2: जैसे नई शुरुआत।
0: अच्छा मार्च से नई शुरुआत।
2: हाँ
0: मार्च से नई शुरुआत
2: मतलब ग्रोथ, और वो ग्रोथ का महीना जैसे अब पूरे साल उधर से आगे जाना है ना।
0: हाँ अच्छा, बाकी सारे महीनों को ठुड्डा मार के साइड पे कर दिया, मार्च का महीना मेरा, मैंने नई शुरुआत, बाकी मैंने महीने जी लिए जो हुआ हुआ, अब नई शुरुआत।
2: मेरा बॉन्ड मंथ है ना इसलिए मैंने उसको चूज़।
0: अरे वाह, बाकी महीने जाए खल्ली वल्ली, बाकी जो हुआ होता रहे भाई, मेरी नई शुरुआत। इससे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मेरी शुरुआत
2: महीने में हुई है इसलिए।
0: अच्छा अच्छा, आपका बर्थडे आता है उस महीने में। अरे वाह अरे वाह वाह वाह वाह, देखो भाई गिफ्ट शिफ्ट रेडी रखो अगले साल के लिए, अभी से पैसे जोड़ना शुरू कर दो, बता दिए इन्होंने अभी से बता दिया है। चले भाई, अच्छा अरे भाई ये अच्छा हुआ, नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट, कुछ क्रिएटिव था, डिफरेंट था। अच्छा ये बताएं कि एक मिनट के लिए रेडी हैं।
2: एक मिनट के लिए रेडी
0: हूँ। चले भाई, आपका आज का वर्ड है तरबूज।
2: क्या?
0: तरबूज, वाटरमेलन।
2: हाँ, तरबूज।
0: हाँ, चले भाई आपका टाइम शुरू होता है नाउ।
2: ओके, तरबूज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कतर में रहने वालों के लिए और खास करके इस गर्मी के महीने में, और तरबूज वैसे तो सबसे ज्यादा इंडिया में उगाए जाते हैं।
0: सही।
2: और तरबूज अंदर से लाल होता है, बाहर से हरा होता है, उसमें 99% शायद पानी होता है।
0: हाँ जी 90%।
2: और उसमें फिर उसको बड़ा करने के लिए भी अब थोड़ा एग्रीकल्चर में जा रहा हूँ, एक मिनट पार करना है ना मेरे
0: को। लो ये हमारे आगे आगे। हाँ
2: उसमें मतलब कुछ दवाई या सुई उसको मार के उसको भी थोड़ा आधुनिक तरीके से जल्दी बड़ा किया जाता है।
0: सही।
2: और तरबूज खाने में बहुत बहुत टेस्टी होता है।
0: सही भाई। नहीं कोई नहीं हुआ, एक मिनट
2: नहीं हुआ। ओके, तरबूज वैसे तो इधर सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं, 20 में शायद उसका प्राइस अभी चल रहा है।
0: चले ठीक है भाई, स्टॉप हो गया, स्टॉप, टाइम हो गया। नॉट बैड, नॉट बैड।
2: आज मैंने स्टार्ट कर लिया।
0: आज आपने एक मिनट पूरा कर लिया, बीच में इधर उधर गप्पे मार के, चुप तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो, क्या मेरी बात के बीच में आ रहे हो तुम। अगले को डांट दिया। अच्छा वैसे आपकी इत्तला के लिए बता दूं, आपकी दुनिया का सबसे बड़ा वाटरमेलन प्रोड्यूसर जो है ना वो चाइना है। पूरी दुनिया का एनुअल प्रोडक्शन रफली 60+ मिलियन टन जो है वो चाइना से आता है।
2: सीजन के हिसाब से बोला जाए तो इंडिया से।
0: और जो दूसरे जो मेजर वाटरमेलन प्रोड्यूसर है ना उसके अंदर आप सही कह रहे हैं कि पहले नंबर पे तुर्की आता है, फिर इंडिया आता है, फिर ब्राजील आता है और फिर मुख्तलिफ कंट्रीज आती है। सही,
2: उसके हिसाब से इंडिया है, पर चाइना तो उन लोगों के पास 12 महीने वाले
0: कह रहे नहीं मैं ना मानूंगा। देखो इंडिया पहले आता है, मैं ना मानूंगा। मैं स्टैट्स को
2: मैं
0: मुस्तरद करता हूँ इस इवैल्यूएशन
2: को। अपने टीचर से कौन जीते।
0: चले नहीं, वैसे इंडिया आता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मेजर प्रोड्यूसर्स में आता है, लेकिन जो सबसे बिगेस्ट है ना वो चाइना है। वो जाहिर बात है, वो चाइना है, इतना बड़ा उनका खेती बाड़ी का सिस्टम है,
2: बड़ा ही इतना बड़ा कंट्री है।
0: हाँ,
2: और उनके पास जमीन भी अच्छा है ना।
0: हाँ,
2: जैसे रशिया इतना बड़ा है पर उनके पास वो उपजाऊ जमीन नहीं है।
0: चले कोई बात नहीं, अरबिक किसी दिन चाइना वाइना का चक्कर लगेगा ना ऐसे ही, तो फिर घूम फिर कर आ जाएंगे, हम भी देख लेंगे क्या है आखिर। सही, अच्छा अच्छा, मेरे चिढ़ा रहे हैं भाई, मुझे तो वीजा चाहिए, मेरा तो वीजा रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने।
2: वीजा हम लोगों को भी चाहिए पर उतना झंझट नहीं है, इजी है। जैसे हम लोग को इंडिया जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे जाओ। मैं जब घर जाता हूँ तो मेरे बॉर्डर ज्यादा नजदीक है, मतलब 20-25 मिनट लगता है।
0: हमें वीजा वीजा चाहिए उसका, हमें वीजा वीजा चाहिए, ट्रांजिट के लिए हमें वीजा चाहिए, तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाई। चलो चिढ़ाओ नहीं, चलो चिढ़ाओ नहीं, चिढ़ाओ नहीं मुझे। अच्छा चलो तरबूज खा करो चाइना में, जाओ चलो।
2: चाइना नहीं कर सकते ना शादी, वो लैंग्वेज और कल्चर पूरा डिफरेंट हो जाएगा।
0: अच्छा चाइना में ना एक तरबूज ऐसा भी मिलता है जो उन्होंने ना वो
2: डिफरेंट कलर के भी मिलते हैं ना,
0: स्क्वायर वाला तरबूज देखा है आपने कभी?
2: हाँ, वो लोग पूरा वो एक बॉक्स बना के
0: हाँ
2: उसको रखते हैं बड़ा होने के लिए और वो अपना शेप चेंज करता है।
0: हाँ भाई, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है जिंदगी में, मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। चले
2: बोला जाता कि वो 2050 में चाहिए।
0: हाँ अभी तो जापान तक मैं पहुंची नहीं हूँ, मेरा ख्वाब है जापान जाना, पता है मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जापान है।
2: जापान भी बहुत आगे है, नेक्स्ट लेवल है जापान।
0: चले फिर इंशाल्लाह चक्कर लेगा, देखते हैं किसका चक्कर पहले लगता है, जापान का आपका कि मेरा, एक दूसरे को कहानियां सुनाएंगे।
2: इंशाल्लाह
0: मेरे भाई, इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जापान के बारे में भी ये कहा जाता है वैसे कि जापान इज लिविंग इन, चाइना के बारे में अगर आप ये कह लो कि 2050 में जी रहा है, तो जापान के बारे में आप ये कह सकते हो कि 3050 में जी रहा है। मैंने ऐसा सुना है लोगों के मुँह से जो जापान जाते हैं ना लोग, वो कहते हैं एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक दफ़ा जापान ज़रूर जाना। मैंने कहा भाई वो वीज़ा तो दे दें पहले। ये भी एक मसला है। अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, अच्छी उम्मीद रखेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। सफा अच्छा सोचो। चलिए भाई, 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और आपने मुझे कॉल करके ये बताना है कि मुझे जरा बताओ कि एक महीने का नाम चेंज करने का मौका मिले तो वो कौन सा महीना होगा और उसका क्या नाम रखोगे। देखते हैं कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह की रजा में राजी। ये बताएं कौन है हमारे साथ? मुदस्सिर भाई, देखें आपकी आवाज चांद से आ रही है मुझे।
3: जी?
0: आप ब्लूटूथ पर हैं?
3: अभी सही है,
0: बेहतर है, पहले से बेहतर है। अच्छा भाई ये बताएं कि कैसे हैं, पहले तो ये बताएं हाल चाल।
3: ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है।
0: तो गर्मी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी एंजॉय कर रहा है।
0: चलें गर्मी के दिनों में आपको एक और शुगल देते हैं कि आप बताएं जरा कि अगर आपको किसी महीने का नाम चेंज करना हो तो वो कौन सा महीना होगा, उसका नाम क्या रखेंगे, कुछ क्रिएटिव।
3: मैं जुलाई का नाम चेंज करूंगा।
0: हाँ
3: उसका नाम होगा मेंटल महीना।
0: मेंटल महीना ये अच्छा है। मेंटल महीना, मेंटल करने मेंटल वाला महीना कि मेंटल महीना।
3: मेंटल महीना यानी मतलब ये ना किसी के साथ बात करोगे ना भाई भाई दिमाग नहीं खराब करो ना,
0: ये ये ये नाम होना चाहिए दिमाग नहीं खराब करो, दिमाग नहीं खराब
3: तो करो। बस मेंटल होता है ना ये वो बोलता ना जून जुलाई ये आदमी से मेंटल होता है, इससे मैं मेंटल नाम रखना चाहता था इसका।
0: सही है बस, अब बस आपने बोल दिया, अब सजेशन बॉक्स में ही जाएगा और हम इसकी जो ना वो पास कराएंगे रिलीज।
3: कल मुझे दो आदमी ने बोला है ना।
0: वैसे तो मेरे साथ भी अभी जुलाई के महीने में किसी से मुँहमारी हो जाती है ना, कोई बहस हो जाती है तो मैं कहती हूँ अभी तो रुक जाओ, रुको जरा सबर करो, अभी अगस्त आने वाला है। जब मुझे कोई कहता है ना, मुझे कोई कहता है अरे भाई जुलाई है इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी, अभी कल परसों की बात है, घर वाले ही कह रहे थे कहते गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, एसी काम नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने कहा रुको जरा सबर करो, तुम लोगों को तब तक नेमतों का एहसास नहीं होगा जब तक अगस्त नहीं आएगा। अगस्त आने दो,
3: है ना तो अगस्त आ रहा है ना,
0: खजूरों के साथ हम भी पकेंगे।
3: अगस्त में गर्मी कम होगा नहीं होगा,
0: खजूरों के साथ हम भी पकेंगे भाई, खजूरों के साथ मुनासिब भाई, खजूरों का मौसम। अच्छा चले ये तो क्रिएटिव नाम हो गया, क्या जुलाई का महीने का नाम क्या रखेंगे, दिमाग खराब नहीं करो, नहीं क्या क्या क्या मेंटल मेंटल महीना, मेंटल महीना, मेंटल महीना, मेंटल महीना। अच्छा चलिए मेंटल होते होते हम थोड़ी बहुत गेम भी खेल लेते हैं एक मिनट की, ठीक है,
3: इतना ओके हम मेंटल हो जाए।
0: नहीं नहीं ये ये ये अच्छा सा है, अच्छा सा। चले हम बात करेंगे एक मिनट के लिए पिज्जा पे, ठीक है।
3: हेलो
0: जी, पिज्जा पिज्जा पिज्जा पे बात करेंगे एक मिनट के लिए।
3: हेलो
0: लो जी
3: आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो
0: लो जी पिज्जा पे क्या ही बात करनी थी, उन्होंने कहा मुझे आवाज ही नहीं आ रही। भाई पिज्जा के ऊपर ना अच्छे अच्छों के कान खड़े हो जाते हैं, ब्लूटूथ से हटाएंगे तो पिज्जा पे बात करेंगे ना, लोग कॉल ही चली गई। उन्होंने कहा मुझसे ना हो पाएगा, पिज्जा मेरी मेरी पसंद की चीज नहीं, मेरी पसंद का टॉपिक नहीं है, बंद करो कॉल, बंद करो। तो भाई साथियों आप सुन रहे हैं FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफा ऑन FM 107 और मैसेजेस की तरफ चलूं अगर तो कुछ मैसेजेस ले लेती हूं क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया है हमारे पास, कॉल्स आ रही हैं लेकिन मैसेजेस वाले फिर बुरा मान जाते हैं कि देखो ये जो है ना गजनी मैडम जो है ना ये भूल जाती है हमारे मैसेज पढ़ना। अच्छा भाई क्या कह रहे हैं, अगस्त को मेरा दोस्त छुट्टी पर आता आता है कि जाता है, छुट्टी पर आता है, छुट्टी पर आता है कि जाता है, वो ठीक है

होता है, मैं अगस्त के महीने का नाम चीकू रखने में ये मैं ठीक है दोस्त के नाम, अच्छा ये महीना अपने दोस्त के नाम करता हूँ चीकू, दोस्त का नाम चीकू, ये मैंने दूसरी दफा किसी को सुना है चीकू नाम बोलते हुए, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे अब्बा मुझे प्यार से चीकू और चूजा कहते हैं, तो ये मैंने दूसरी दफा किसी का नाम चीकू सुना है तो मुझे अपने अब्बा की याद आ गई, और ये कौन है हमारे साथ, हमजा भाई हैं, चीकू चीकू, हाँ मुझे अच्छा लगा सुन के किसी और का भी नाम चीकू है, मुझे मेरे अब्बा नहीं प्यार से चीकू भी कहते हैं और वो भी कहते हैं अब्बा, तो बहुत सारे नाम बोलते हैं, क्या क्या याद दिला दिया मुझे, हाय हाय हाय क्या क्या याद दिला दिया, हाय हाय हाय इमोशनल कर दिया। चलें भाई इमोशनल होते होते आरिफ भाई ने मैसेज किया है, मैंने आपको ठीक है उठकर फॉलो कर दिया, इम्पॉसिबल देन फॉलो बैक, अरे वाह कह रहे हैं, देखो मैंने सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर लिया है, अब आप भी मुझे फॉलो बैक कर लें, वाह भाई ये अच्छी बात है, गिव एंड टेक हो रहा है यहाँ पर। वैसे विराट कोहली को भी चीकू बोलते हैं, अच्छा विराट कोहली को चीकू बोलते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता, अच्छा मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, तो मुझे मैंने आखिरी क्रिकेट कब देखी थी वो इंजमामुल हक के दौर में देखी थी मैंने कहीं, उसके बाद मुझे मज़ा नहीं आया क्रिकेट देखने में तो मैंने छोड़ दी। अच्छा फिर और कौन है हमारे साथ, मोहम्मद एहसान उबैद हैं, क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सफा जी, इफ़ आई गेट अ चांस आई वुड लाइक टू रीनेम द मंथ ऑफ जुलाई सबर, सबर का

बस में हो तो जुलाई का नाम बदल कर बदल के आग आग का गोला रख दूं आग का गोला. अरे वाह बड़ा ही तेजाबी नाम सब बेचारे जुलाई के पीछे पड़े हुए, कोई भी किसी और महीने का नाम चेंज नहीं कर रहा सिवाय आरिफ भाई के, क्योंकि आरिफ भाई कह रहे मेरे मेरे आरिफ भाई ने बड़ा मजे का नाम दिया भाई. अच्छा इन्होंने भी अच्छा नाम दिया आग का गोला. अच्छा भाई और कौन है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सैयद इमरान आपको भी सलाम. अच्छा भाई साथियों देखें जाने का वक्त हो गया है. आप लोगों के एक दो मैसेज और जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ. फैसल भाई ने मैसेज किया मैं रखता वॉलेट का आराम महीना. कौन से महीनों को वॉलेट का आराम बोलते हैं. इस महीने में शॉपिंग एप्स खुद मैसेज भेजती हैं भाई थोड़ा रेस्ट कर लो. अच्छा कौन सा महीना मुझे ऐसा लगता है ये जून जुलाई वाले जो छुट्टी वाले महीने होते हैं ना इन्हीं में से किसी का नाम को चेंज करता है कि वॉलेट का एक आपको जो है ना वो आना शुरू हो जाता है कि भाई बस कर जाओ सब्र करो रुको ज़रा. अच्छा भाई और कौन है. स्माइल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ज़ारा ने मैसेज किया मैं महीने का नाम रखती स्माइल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ हर इंसान रोज़ कम अज़ कम 10 लोगों को स्माइल गिफ्ट करता. अरे सदका जा रही है वैसे सदका जा रही है तो एक महीने का नाम तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई स्माइल से रिलेटेड हो ताकि लोगों को याद हो कि इस वक्री दुनिया में मुस्कुराना भी अच्छी बात है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं जुलाई के महीने का नाम रखता नाम बदल के क्या नाम है ये किस किस्म का नाम है कुछ पूछू रखता ये किस किस्म का नाम है कुछ पूछू चले भाई हम अपने शो के इख्तिताम पर आ पहुंचे हैं तो मैं आपसे अलविदा चाहूंगी. जिन लोगों की कॉल्स नहीं ले पाई माजरत के साथ कॉल लेने का टाइम नहीं रह गया है. तो भाई साथियों आज की इमेजिनेशन का चैलेंज हम सबके लिए बहुत क्लियर हो गया है. देखिए अलग अगर कैलेंडर बनाने का चांस हम में से किसी भी लिसनर को दिया जाता ना तो भाई हमारे बस की बात ना थी वो ना हमसे ना हो पाएगा. कोई कूचू पूचू रख रहा होता कोई पिनोकियो रख देता तो कोई पिकाचू रख देता तो कोई आग का गोला तो कोई नई शुरुआत रख देता. ना ना भाई तभी कहते हैं जिसका काम उसी को सांझे हम में से किसी से नहीं हो पाएगा ये. लेकिन मज़ेदार बात ये कि महीने का नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता साथियों उसके पीछे फीलिंग्स होती हैं उसके पीछे यादें होती हैं और उसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी छुपी होती है. जैसे अगस्त का नाम आप जैसे मैंने आपको बताया था अगस्त के नाम का मामला जो था तो ज़रा सोचिए अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी के एक महीने का नाम बनाने का चांस होता तो आप क्या नाम रखते. ज़रा सोचें जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया वो सोचें. तो भाई इसी के साथ कैलेंडर के पेजेस को आगे पीछे करते हुए हम अब अलविदा लेंगे कट लेंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. मैं हूँ सफ़ा इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी. कितने बजे से लेकर कितने बजे तक. हाँ जी 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में मुलाकात होगी कल. और अभी आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं और स्केप रूम में आधे घंटे बाद फिर मुलाकात होगी मेरी और आपकी. लेकिन लेकिन लेकिन एक स्केप रूम के रिलेटेड ठीक है. तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें. याद रखेंगे जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का ख्याल भी नहीं रख सकता. मेरी तरफ से आई साइनिंग आउट भाई अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय. कहाँ गया मेरा गाना मैं तो ये चला रही थी हाँ ये वाला. चलो जी टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज. सुनते रहे FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: स्टेडियम के अंदर का माहौल ऐसा था जैसे हवा में हर दिल की धड़कन जमी हुई हो. लंदन का अजीम और तारीखी सेंटर कोर्ट, साल 2004 का विंबलडन फाइनल, दुनिया के सबसे अजीम और शानदार टेनिस एरिनाज में से एक, करीब 20,000 से ज्यादा चीखते हुए और चिल्लाते हुए शायकीन से खचाखच भरा हुआ था. हर तरफ रोशनियों का एक समंदर था और ग्रास कोर्ट की ठंडक के बावजूद हर तरफ मौजूद शायकीन के जोश से माहौल गर्म हुआ हुआ था. नेट के एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे अजीम और लगातार दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन खड़ी थी, सेरेना विलियम्स, जिसे पूरी टेनिस की दुनिया अपना आइडियल मानती थी, और दूसरी तरफ खड़ी थी एक 17 साल की लंबी, पतली और शर्मीली लड़की. उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बस एक संजीदगी और बेपनाह फोकस था. स्टेडियम के अंदर का माहौल ऐसा था जैसे वक्त एक लम्हे के लिए थम गया हो. लंदन का तारीखी सेंटर कोर्ट दुनिया के सबसे मशहूर टेनिस एरिनाज में से एक है और वो रोशनियों से जगमगाता रहता था. साल 2004 और विंबलडन का फाइनल अपने अहम तरीन लम्हात में दाखिल हो चुका था. हजारों शायकीन अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे. हर नजर कोर्ट के बीच खड़ी दो लड़कियों पर जमी हुई थी. ग्रास कोर्ट की खुशबू, कैमरास की चमक धमक, रोशनियां और शायकीन की खामोशी मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर रही थी जहां हर सेकंड तारीख लिखी जा रही थी. एक तरफ खड़ी थी सेरेना विलियम्स, दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बेस्ट खिलाड़ियों में से एक. वो दो मर्तबा विंबलडन की चैंपियन रह चुकी थी और उस वक्त टेनिस की दुनिया पर उनका राज था. उनके सामने खड़ी थी एक 17 साल की लंबी, पतली और पुरअज़म लड़की. उसका नाम था मरिया शरपोवा. साथियों, बहुत से लोग उसे एक टैलेंटेड यंग प्लेयर समझते थे, लेकिन किसी ने भी ये अंदाजा नहीं किया था कि ये जवान लड़की आज दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस स्टेज पर एक नई तारीख लिखने वाली है. मरिया के चेहरे पर ना कोई डर की निशानी थी और ना ही प्रेशर का निशान, सिर्फ एक गहरा फोकस था. वो फोकस जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होता है जिन्होंने बचपन से मुश्किलात का सामना किया हो और जिन्होंने अपने ख्वाबों के लिए हर कुर्बानी देना सीख ली हो. जब मरिया ने पहली सर्व के लिए बॉल हवा में उछाली तो पूरा स्टेडियम खामोश हो गया. बॉल उनके रैकेट से निकली और बिजली की रफ्तार से कोर्ट के दूसरे हिस्से में जा गिरी. सेरेना ने जवाब दिया, लेकिन मरिया के हर शॉट में एक अजीब सी ताकत थी. उसकी आवाज, उसका जोश और उसका कॉन्फिडेंस हर पॉइंट के साथ बढ़ता जा रहा था. दुनिया देख रही थी.

एक टीनेजर किसी आम मैच में नहीं बल्कि टेनिस की एक असीम चैंपियन के सामने अपनी पहचान बना रही थी। और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार हर एथलीट करता है। मैच का आखिरी पॉइंट मरिया ने अपनी पूरी ताकत लगाई, बॉल कोर्ट में लगी और सरीना उस तक नहीं पहुंच पाई। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, फिर सेंटर कोर्ट तालियों और शोर से गूंज उठा। मरिया का हाल कुछ यूं था कि वो घुटनों के बल कोर्ट पर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने के नहीं थे बल्कि उन सालों की मेहनत, तन्हाई, दर्द और कुर्बानियों के थे जो उन्होंने इस एक लम्हे के लिए दी थी। वो उठी और सीधा स्टैंड की तरफ देखा जहां उनके वालिद यूरी खड़े थे। एक बेटी और बाप के दरमियान वो नजरों का रिश्ता था जिसमें सालों की मेहनत और उम्मीद छुपी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम कतर, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर पर आपका पसंदीदा शो विमेन इन स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खातून एथलीट की कहानी की जो सिर्फ टेनिस चैंपियन नहीं बनी बल्कि दुनिया भर की लड़कियों के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गई। ये कहानी है मरिया शरिपोवा की। साथियों मुझे जरा ये बताइएगा कि आपके ख्याल में एक चैंपियन को चैंपियन बनाने वाली सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसकी मेहनत, उसका टैलेंट या मुश्किलात के दौर में मुश्किलात का हौसले से सामना करना? अपनी राय जरूर हमें मैसेज कीजिएगा 666-222-107 पर, या आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं जो कि है FM 107 कतर। साथियों मरिया शरिपोवा की कहानी सिर्फ ग्रैंड स्लैम ट्रॉफीज और टेनिस रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जो दुनिया के एक दूर दराज इलाके से निकली और जिसने साबित किया कि ख्वाब देखने के लिए हालात का बेहतरीन होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे मुश्किल हालात ही इंसान के अंदर वो ताकत पैदा करते हैं जो उसे दुनिया से मुख्तलिफ बना देती हैं। मरिया का सफर रशिया के साइबेरिया इलाके से शुरू हुआ जहां जिंदगी आसान नहीं थी। 19 अप्रैल 1987 को पैदा होने वाली मरिया एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जहां मेहनत और सब्र रोज की जिंदगी का हिस्सा थे। उनके वालिद यूरी और वालिदा येलिना ने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी। न्यूक्लियर हादसे के बाद उनका खानदान अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह जा बसा था। साइबेरिया की सख्त सर्दियां, कम वसाइल और मुश्किल हालात मरिया के बचपन का हिस्सा थे। लेकिन इन्हीं मुश्किलात से जिंदगी में एक छोटी सी बच्ची के अंदर एक बड़ा ख्वाब जन्म ले रहा था। जब मरिया सिर्फ 4 साल की थी तो उनके वालिद ने उन्हें पहली बार टेनिस रैकेट दिया। शुरू में तो सिर्फ एक खेल ही था, ये एक मशगला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक जुनून बनता चला गया। मरिया अक्सर बॉल को दीवार से टकराती और दोबारा हिट करती। जहां दूसरे बच्चे खेल और मस्ती में वक्त गुजारते, वहां मरिया रैकेट के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रही थी। उनके वालिद ने जल्दी महसूस कर लिया भाई कि मरिया के अंदर कुछ खास बात तो है। उन्हें पता था कि अगर इस टैलेंट को सही ट्रेनिंग मिल जाए तो ये बच्ची कुछ बड़ा करेगी। लेकिन इस ख्वाब को पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब मरिया 6 साल की हुई तो यूरी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो अपनी बेटी को लेकर अमेरिका चले गए ताकि उसे दुनिया की बेहतरीन टेनिस ट्रेनिंग मिल सके। फ्लोरिडा का सफर सिर्फ एक मुल्क बदलने का सफर नहीं था बल्कि एक ऐसे ख्वाब का सफर था जहां हर कदम पर मुश्किल खड़ी थी। अमेरिका में उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, उन्हें अंग्रेजी जबान नहीं आती थी और सबसे मुश्किल बात ये थी कि मरिया की वालिदा वीजा के मसाइल की वजह से उनके साथ नहीं आ सकी थी, जिसकी वजह से एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ से दूर रहना पड़ा। यूरी ने अपनी बेटी के ख्वाब को अपना ख्वाब बना लिया। वो दिन रात मेहनत करते, छोटी मोटी नौकरियां करते और मुमकिन कोशिश करते कि मरिया की ट्रेनिंग जारी रह सके। ये वो वक्त था जिसने मरिया के अंदर सिर्फ टेनिस की स्किल्स नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक पैदा किया। उन्होंने ये सीखा कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसके लिए सब्र, डिसिप्लिन और कुर्बानी देनी पड़ती है। और यही कुर्बानियां आगे चलकर उस लड़की को दुनिया के सबसे बड़े टेनिस स्टेज तक ले जाने वाली थी। साथियों फ्लोरिडा पहुंचने के बाद मरिया शरिपोवा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक छोटी सी बच्ची

जो साइबेरिया के ठंडे इलाके से आई थी, अब एक नए मुल्क, नए कल्चर और नए माहौल में अपने ख्वाब के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन ये सफर किसी फेरी टेल की तरह आसान नहीं था। हर दिन एक इम्तिहान था, हर प्रैक्टिस एक नया चैलेंज थी। मरिया ने फ्लोरिडा की मशहूर टेनिस एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की। यहाँ दुनिया भर से टैलेंटेड बच्चे आते थे जो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स बनना चाहते थे। हर बच्चा अपने अंदर एक ख्वाब लिए हुए था, लेकिन मरिया का ख्वाब उन सबसे अलग था। उनके पास सिर्फ टैलेंट नहीं था, उनके पीछे एक पूरी कहानी थी। एक ऐसे बाप की कहानी जिसने अपनी बेटी के लिए अपनी हर आसानी कुर्बान कर दी। एकेडमी की जिंदगी बहुत सख्त थी भाई। सुबह जल्दी उठना, फिटनेस एक्सरसाइज करना, घंटों तक कोर्ट पर प्रैक्टिस करना और अपनी हर कमी को दूर करने की कोशिश करना, मरिया के रोज की रूटीन का हिस्सा बन गए थे ये सब। टेनिस सिर्फ उनके लिए एक खेल नहीं रहा था, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बन चुका था। भाई जब दूसरे बच्चे प्रैक्टिस के बाद आराम करते तो मरिया अपने शॉट्स को बेहतर बनाने के लिए मजीद वक्त कोर्ट पर गुजारा करती थी। उनके वालिद यूरी हमेशा उनके साथ ही खड़े रहते थे, कभी कोच की तरह, कभी दोस्त की तरह और कभी एक ऐसे सहारे की तरह जो हर मुश्किल वक्त में उन्हें याद दिलाता था कि हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं है भाई, नो, नॉट अ चांस। लेकिन एकेडमी में मरिया के लिए हर चीज आसान नहीं थी। वो एक ऐसे खानदान से आई थी जहां पैसा और सहूलियात बहुत लिमिटेड थे। कई दफा तो दूसरे बच्चे उनके कपड़ों और उनके बैकग्राउंड की वजह से उनका मजाक भी उड़ाया करते थे, वो उन्हें एक आउटसाइडर समझते थे। लेकिन मरिया ने जवाब लफ्जों से नहीं दिया, उन्होंने जवाब अपने रैकेट से दिया। हर बार जब वो कोर्ट पर उतरती, उनके अंदर एक अजीब सी भूख होती थी। वो साबित करना चाहती थी भाई कि इंसान की पहचान उसकी हालत नहीं बल्कि उसकी मेहनत से होती है। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मरिया फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ मेंटली भी मजबूत होती चली गई। उन्होंने सीखा कि प्रेशर के वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है और मुश्किल वक्त में अपने मकसद पर फोकस कैसे रखे रहना है। साथियों, टेनिस की दुनिया में सिर्फ पावरफुल शॉट्स काफी नहीं होते। एक चैंपियन बनने के लिए दिमाग, सब्र और फैसला करने की सलाहियत बहुत ज्यादा जरूरी होती है और ये मरिया में तमाम क्वालिटीज वक्त के साथ साथ पैदा होती चली गई। भाई जब वो अपनी टीन एज में पहुंची तो उनकी परफॉर्मेंस ने कोचेज और एक्सपर्ट्स की तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी। उनकी लंबी हाइट, पावरफुल सर्व्स और एग्रेसिव स्टाइल उनकी पहचान बन गया। वो कोर्ट पर एक ऐसी खिलाड़ी नजर आती थी जो हर पॉइंट के लिए पूरी जान लगा दिया करती थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में मरिया ने प्रोफेशनल टेनिस में कदम रखा। ये फैसला बहुत बड़ा था क्योंकि प्रोफेशनल टेनिस की दुनिया में हर मैच एक जंग की तरह महसूस होता है। सामने दुनिया की बेहतरीन तरीन प्लेयर्स होती हैं, कैमरास की नजर होती है और हर गलती का हिसाब होता है। लेकिन मरिया के लिए ये नया नहीं था, नॉट एट ऑल। वो बचपन से ही भाई मुश्किलात का सामना करती आ रही थी। उनका सफर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ता चला गया। छोटे छोटे टूर्नामेंट से लेकर बड़े इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स तक मरिया हर मैच के साथ सीखती गई। हर हार ने उन्हें मजबूत बनाया और हर जीत उनका यकीन बढ़ाती चली गई। साथियों, 2003 में मरिया ने अपना पहला WTA टाइटल जीता। ये उनके करियर का एक बहुत अहम मोड़ था। अब दुनिया उन्हें सिर्फ एक यंग टैलेंट नहीं समझ रही थी, नो, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देख रही थी जो फ्यूचर में टेनिस की दुनिया पर अपना नाम लिख सकती थी। लेकिन मरिया को अभी एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना था। दुनिया उनके खेल के साथ साथ उनकी शख्सियत, उनकी लुक्स और उनकी शोहरत पर भी बात करने लग गई थी। कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक ग्लैमरस यंग एथलीट समझते थे, लेकिन मरिया जानती थी कि उन्हें अपनी पहचान सिर्फ एक चीज से बनानी है, अपने खेल से। देखिए, उनका मकसद ये साबित करना था कि वो सिर्फ मीडिया की दिलचस्पी नहीं बल्कि एक असल चैंपियन है। वो रोज अपनी फिटनेस पर काम करती, अपनी टेक्निक्स को बेहतर बनाती और जहनी फोकस को मजबूत करती थी। उन्हें ये बात पता थी कि दुनिया में बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग हिस्ट्री लिखते हैं जो मुश्किल वक्त में भी रुकते नहीं हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स, आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: और फिर क्या होना था भाई, फिर आया 2004 का वक्त। ये वो साल था जब मरिया शरिपोवा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। विंबलडन का नाम टेनिस की दुनिया में एक ख्वाब की तरह लिया जाता है। ग्रास कोर्ट, पुरानी रवायतें और दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस, हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि एक दिन वो विंबलडन की ट्रॉफी अपने हाथ में उठाए। मारिया भी इसी ख्वाब के साथ लंदन आई थी, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये 17 साल की लड़की हिस्ट्री के सबसे बड़े लम्हों में से एक लम्हा क्रिएट करने वाली है। टूर्नामेंट के बाद मरिया ने एक के बाद एक मुश्किल मुकाबले जीते, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, हर मैच के साथ दुनिया उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो देने लगी। और फिर वो दिन आ ही गया, विंबलडन का फाइनल। सामने थी सरीना विलियम्स, दुनिया की नंबर वन प्लेयर्स में से एक। एक तरफ तजुर्बा, शोहरत और पूरी कामयाबियां थी, दूसरी तरफ एक यंग लड़की का हौसला था, मेहनत और वो यकीन जो सालों की कुर्बानियों से पैदा हुआ था। जब मरिया कोर्ट पर उतरी तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये मैच सरीना के लिए आसान होगा, लेकिन मरिया के जहन में कोई डर नहीं था। उन्होंने पहले पॉइंट से ही अपना इरादा क्लियर कर दिया था। हर सर्व में ताकत थी, हर रिटर्न में जज्बा था, हर मूवमेंट में यकीन था। और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया समझने लगी कि आज यहाँ सिर्फ एक टेनिस मैच नहीं हो रहा, आज एक नई चैंपियन पैदा हो रही है। साथियों, विंबलडन 2004 का वो फाइनल सिर्फ मरिया शरिपोवा का करियर का एक मैच नहीं था, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का इम्तिहान था। सामने थी सरीना विलियम्स, एक ऐसी चैंपियन जिन्होंने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को हराया था और जिनके नाम से ही मुख्तलिफ प्लेयर्स पर प्रेशर आ जाया करता था। लेकिन मरिया के लिए सिर्फ एक मुश्किल मुकाबला नहीं था, ये वो मौका था जिसका ख्वाब उन्होंने बचपन से देखा था। मैच शुरू हुआ और मरिया ने पहले ही लम्हे से अपना कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू कर दिया था। उनकी पावरफुल सर्व और एग्रेसिव स्टाइल ने सरीना को हैरान कर दिया। हर शॉट के लिए उनका यकीन बढ़ गया। वो सिर्फ बॉल को हिट नहीं कर रही थी, वो दुनिया को एक पैगाम दे रही थी कि एक लड़की जिसके पास सिर्फ हौसला और हिम्मत है, वो दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन के सामने खड़ी हो सकती है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि सरीना जैसी चैंपियन के खिलाफ खेलना ही किसी भी यंग प्लेयर के लिए बहुत बड़ी प्रेशर की बात होती है, लेकिन मरिया ने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा। उन्होंने हर पॉइंट को एक नया चैलेंज समझा और पूरी तवज्जो के साथ खेला। जब आखिरी पॉइंट खत्म हुआ और मरिया ने जीत हासिल की तो पूरा सेंटर कोर्ट तालियों से गूंज उठा। 17 साल की मरिया शरिपोवा विंबलडन चैंपियन बन चुकी थी। ये लम्हा सिर्फ ट्रॉफी जीतने का नहीं था, नो, ये एक ऐसी कहानी का स्टार्ट था जो साइबेरिया से शुरू हुई थी। एक ऐसी बच्ची की कहानी जो अपनी माँ से दूर रही, जिसके वालिद ने अपनी जिंदगी बेटी के ख्वाब के नाम कर दी और जिसने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। मरिया कोर्ट पर घुटनों के बल बैठ गई, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो आंसू खुशी के भी थे और उन तमाम यादों के भी जो उनके जहन में फ्लैशबैक कर रही थी। वो लम्हात जब उनके पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने तन्हाई महसूस की, जब उन्हें सिर्फ एक चीज पर यकीन था और वो थे उनके ख्वाब। जब उन्होंने ट्रॉफी उठाई तो दुनिया भर के लोगों ने एक नई टेनिस सुपरस्टार को देखा। मरिया शरिपोवा अब सिर्फ रशिया की एक यंग प्लेयर नहीं थी, वो एक ग्लोबल नाम बन चुकी थी। साथियों, विंबलडन की इस जीत के बाद मरिया का सफर और भी तेज हो गया, लेकिन चैंपियन बनना और चैंपियन रहना दो अलग अलग चीजें।

सकती हैं। अब उनके सामने नए चैलेंजेस थे, दुनिया की नजर उन पर थी। हर टूर्नामेंट में लोग उनसे जीत की उम्मीद किया करते थे। हर मैच में प्रेशर पहले से ज्यादा हो गया था। भाई मरिया ने इस प्रेशर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने इसे अपनी मोटिवेशन बना लिया। 2006 में उन्होंने यूएस ओपन जीता और साबित किया कि विंबलडन की कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं थी, वो असल में दुनिया की बेहतरीन प्लेयर्स में से एक बन चुकी थी। फिर 2008 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल भी जीता और अपनी पोजीशन और भी मजबूत कर ली। साथ ही उनकी पर्सनैलिटी भी दुनिया भर में मशहूर होने लगी। टेनिस कोर्ट्स पर उनकी एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल्स और कोर्ट के बाहर उनका कॉन्फिडेंस उन्हें एक अलग पहचान दिला रहा था। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन मरिया के लिए शोहरत का मतलब सिर्फ कैमरास और एडवर्टाइजमेंट नहीं था। वो हमेशा अपने खेल को सबसे ऊपर रखा करती थी। उनका डिसिप्लिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। मैच से पहले वो अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया करती थी। उनके लिए हर टूर्नामेंट एक नया सफर होता था। वो इस बात से तो फुल्ली अवेयर थी भाई कि कल की जीत आज की मेहनत की गारंटी नहीं होती। साथ ही 2012 में मरिया ने फ्रेंच ओपन जीत कर एक और अजीम कारनामा अंजाम दे दिया। इस जीत के साथ उन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम मुकम्मल कर लिया, यानी उन्होंने टेनिस के चार सबसे बड़े टूर्नामेंट्स यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन सब जीत लिए। साथियों ये अचीवमेंट्स तो भाई दुनिया के कुछ ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर्स को हासिल होती है। मरिया ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्रास कोर्ट की चैंपियन नहीं बल्कि हर सरफेस पर अपनी सलाहियत दिखाने वाली खिलाड़ी हैं। लेकिन भाई हर कामयाब कहानी में मुश्किल वक्त जरूर आता है और मरिया शरीपोवा की जिंदगी में भी ऐसा वक्त आया जब उन्हें अपने करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान देना पड़ा, यानी कि 2008 में उनकी राइट शोल्डर में शदीद इंजरी हुई। टेनिस प्लेयर के लिए शोल्डर सिर्फ जिस्म का एक हिस्सा नहीं होता बल्कि उनके खेल की बुनियाद होता है। सर्व, पावर और कंट्रोल सब इसी पर तो डिपेंड करते हैं। डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज के बाद मरिया को लंबा वक्त कोर्ट से दूर रहना पड़ा। दुनिया के कुछ लोगों ने सोचा कि भाई शायद उनका करियर अब खत्म हो गया है, जैसा हर कोई सोचता है नॉर्मली। एक वक्त था जब वो दुनिया की टॉप प्लेयर थी और अब वो दोबारा शुरू से सफर तय करने पर मजबूर थी। लेकिन भाई मरिया शरीपोवा की कहानी कभी हार मान लेने की कहानी नहीं थी। उन्होंने रिहैबिलिटेशन के मुश्किल दिन गुजारे, घंटों तक एक्सरसाइजेस की, अपनी बॉडी को दोबारा तैयार किया और अपने खेल को बदलने की कोशिश की। उन्होंने अपने सर्व्स और टेक्निक्स पर दोबारा काम किया। जहां बहुत से लोग मुश्किल वक्त में टूट जाते हैं, मरिया ने उस वक्त को अपनी वापसी का जरिया बनाया। इसी दौरान उन्होंने एक और पहलू दुनिया के सामने रखा। मरिया ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और अपना कैंडी ब्रांड शुगर पॉफ शुरू किया। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि एक प्रोफेशनल एथलीट कैंडी बिजनेस क्यों शुरू कर रही है भाई, लेकिन मरिया ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी सोच सिर्फ टेनिस कोर्ट तक महदूद नहीं थी। उन्होंने अपने ब्रांड को एक कामयाब बिजनेस बनाया और दिखाया कि एक एथलीट अपने करियर के साथ साथ बिजनेस और लीडरशिप में भी कामयाब हो सकती है। साथियों मरिया शरीपोवा की ये जर्नी उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो समझते हैं कि इंसान की पहचान सिर्फ एक काम से होती है। मरिया ने दिखाया कि अगर आप में सीखने का जज्बा हो ना, तो आप जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन अभी उनकी जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान बाकी था भाई, एक ऐसा इम्तिहान जिसने उनकी शोहरत, उनके करियर और उनके हौसले को दोबारा चैलेंज करना था। तो भाई साल 2016 में मरिया शरीपोवा की जिंदगी का वो साल था जो उनके करियर के सबसे मुश्किल चैप्टर्स में से एक बन गया। एक ऐसी खिलाड़ी जो दुनिया की नंबर वन प्लेयर रह चुकी थी, जिसने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हुए थे, जिसने हर मुश्किल का सामना करके अपनी पहचान बनाई थी, अब एक नए इम्तिहान के सामने खड़ी थी। मरिया ने अनाउंस किया कि उनका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया है और वजह थी एक दवा। मरिया का ये कहना था कि वो दवा वो कई सालों से अपने डॉक्टर के मशवरे पर ले रही थी और उन्हें मालूम नहीं था कि इस दवा को बैन लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ये खबर आते ही दुनिया भर में हलचल मच गई। मीडिया ने इस मामले को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया।

0: आपकी होस्ट सफा आपसे इजाजत चाहती हूँ। याद रखिए, हर बड़ा ख्वाब पहले एक छोटी सी उम्मीद होता है और हर कामयाब इंसान के पीछे बहुत सी अनकही कहानियाँ होती हैं। मेहनत करते रहिए, अपने ख्वाबों पर यकीन रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए भाई, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा। और इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है भाई ठीक 1:30 और आप सुन रहे हैं सफा के साथ स्केप रूम।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
3: तो साथियों आप सभी का ढेर सारा वेलकम है एस्केप रूम में, और इस शो में हम जो है आपसे मज़े की एस्केप रूम की गेम खेलते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। और इस एस्केप रूम में होता यह है साथियों कि मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, एक ऐसी जगह पर जो कि बहुत ख़तरनाक है, बहुत खौफनाक है, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं। और आपने करना ये होता है कि मैं आपको देती हूँ 3 क्लूज, सुनाती हूँ आपको एक बहुत ही अच्छी सी कहानी, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी इंटरैक्टिव भी है, क्योंकि इसमें मैं जो भी सिनेरियो आपको दूंगी आपने आपको दिए जाएंगे उसमें 3 क्लूज जिनको आपने बहुत ध्यान से सुनना है। और ध्यान से सुनने के बाद आपने करना ये है कि जो भी मैंने आपसे पूछा है उसके सही सही जवाबात, उन पहेलियों के सही सही जवाबात आपने मुझे 666-22107 पर लिख कर भेज देने हैं। 666-22107 पर पहेलियों के जवाब लिख कर भेज देने हैं, क्योंकि ये वही पहेलियां हैं जिनको सही से सॉल्व करने की वजह से आप इस स्केप रूम से बाहर निकल पाएंगे। मतलब ये कि जैसे ताले की चाबी होती है ना, वैसे ही इस एस्केप रूम से बाहर निकलने के लिए ये 3 रिडल्स जो कि अलग अलग पूछी जाएंगी, ये होंगी आपकी इस एस्केप रूम से बाहर निकलने की अलग अलग चाबियां। और आज का जो हमारा एस्केप रूम का मंजर है वो कुछ मुख्तलिफ है, वो उस दौर का है जिस जमाने में शायद इंसान एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, लेकिन आप बैठे हैं एक टाइम मशीन में और आपको मिला है एक मौका कि आप उस दुनिया में चले जाएं जहां इंसानों का नाम और निशान भी नहीं था अभी। लेकिन अब जब आप वहां पहुंच गए हैं तो कुछ ऐसा होता है कि पैरों से जमीन निकल जाती है, कुछ ऐसा होता है जहां पर आपको सर्वाइवल मोड या फाइट एंड फ्लाइट मोड पर आना पड़ता है। तो इससे पहले कि मैं अपनी कहानी शुरू करूं, मैं चाहूंगी कि आप एक लंबी गहरी सांस लें और चलें मेरे साथ इस स्केप रूम की जानिब, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर कि आपने ये 3 रिडल्स मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने इन्हें सॉल्व ना किया या मिस कर दिया तो रह जाएंगे आप यहीं पर ही फंसे हुए इसी खतरनाक स्केप रूम में। लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी स्केप रूम की, अपना एडवेंचर स्केप रूम का शुरू करेंगे आपके साथ

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: क्रिकेट हो
4: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स 4 रन।
3: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
5: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
6: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107। दिल से देखिए।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एस्केप रूम विद सफा ऑन एफएम 107। और भाई हम एस्केप रूम में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन आज का हमारा चैलेंज, आज की हमारी ये जो बातें हैं, ये सिर्फ कोई गेम नहीं है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान का कोई वजूद नहीं था, जहां हर कदम

मौत का साया मंडराता रहता था, आज हम वापस जा रहे हैं कहां? करोड़ों साल पहले डायनासोर्स के जमाने में। सोचिए आप खड़े हैं एक ऐसी जगह पर जिसका ख्वाब बच्चे तो बड़े शौक से देखते ही देखते हैं। आप खड़े हैं डाइनो वर्ल्ड में। आप एक हाई सिक्योरिटी टूर जीप में बैठे हुए हैं। आपकी आंखों के सामने एक जिंदा ट्राइसेराटॉप्स है, एक अजीम मखलूक, बहुत बड़ी, डायनासोर्स के जमाने की। जिसका सर इतना बड़ा है कि आप यकीन नहीं कर पा रहे। आप उसे देख रहे हैं और आप कह रहे हैं, ये इतना बड़ा है? आप एकदम से एडवेंचरस होकर कैमरा खींचने के लिए तस्वीर निकालते हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि ये दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन भी बन सकता है। एक तेज, बहुत ही तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और आपकी जीप के ऊपर आकर जोर से एक गरज होती है, जिसके नतीजे में होता यह है कि आपके आसपास के अलार्म्स बजना शुरू कर देते हैं। अजीब सा माहौल हो जाता है, गाड़ी के अंदर की लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं और सब कुछ एकदम से बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिक फेंस ऑफ, सिक्योरिटी लाइट्स ऑफ, कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिस्कनेक्टेड और एक पल में वो जगह जो आपको अभी तक सेफ लग रही थी बन जाती है एक खतरनाक सा कैद खाना। आप जीप के अंदर बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं, बाहर आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है और फिर आपको कुछ सुनाई देता है, कुछ अजीब सा। क्या है ये? ये कोई जलजला आ रहा है या कोई वॉल्केनिक इरप्शन है? ऐसा लगता है जैसे जमीन हिलना शुरू हो गई है, पत्ते कांप रहे होते हैं, परिंदे यहां वहां बावला कर उड़ना शुरू कर देते हैं और जंगल में जो खामोशी हुई थी कुछ सेकंड्स की वो एक शोर में बदली हो जाती है। कोई बहुत बड़ी सी चीज ऐसा आपको लग रहा होता है कि आपके पास आ रही है, बहुत बड़ी सी कोई चीज ऐसी जिससे आपको आपको नजर तो नहीं आ रही लेकिन आप बहुत डर रहे हैं। क्या है ये चीज? पहले आप सर यहां वहां करके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप समझने की कोशिश करते हैं आपको एकदम से दो कदम नजर आते हैं, फिर एक खौफनाक सी आवाज आती है आपको। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये ट्राइसेराटॉप्स नहीं है, ये कोई खामोश जानवर नहीं है, ये एक शिकारी है, एक बहुत खौफनाक शिकारी। ये है क्रेटेसियस, क्रेटेसियस पीरियड का एक जायंट प्रेडेटर और अब आप उसके इलाके में दाखिल हो चुके हैं। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। देखिए, आइलैंड के दूसरे किनारे पर एक एक्सट्रैक्शन जोन है, अगर आप वहां तक पहुंच गए तो शायद आप बच जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं है। आपको जंगल क्रॉस करना होगा, डायनासोर से बचना होगा और तीन एंशियंट क्लूज सॉल्व करने होंगे। वो तीन एंशियंट क्लूज जो आपकी आजादी का सामान बनेंगे। हर सही जवाब आपको जिंदगी के करीब ले जाएगा और हर गलत जवाब आपको इस जायंट क्रीचर की दुनिया में फंसाता चला जाएगा। तो भाई लिसनर्स, आज मुझे चाहिए कुछ ऐसे फियरलेस एक्सप्लोरर्स, एक दो तीन जितने भी हों, ऐसे एक्सप्लोरर्स जो इस डायनासोर नाइटमेयर का सामना कर सकें। अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, अगर आपको आपको लगता है कि आपका दिमाग तेजी से दौड़ता है क्लूज में और अगर आप समझते हैं कि आप डायनो वर्ल्ड से एस्केप कर सकते

तो भाई अपने मोबाइल तैयार कर लें, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको स्टोरी बताती जाऊंगी, आपको क्लूज देती जाऊंगी, आपने मुझे मैसेज करना है, उन रिडल्स को सॉल्व करना है, और मैसेज करना है

0: वेलकम टू द डाइनो वर्ल्ड, जहां सिर्फ एक ही रूल है, स्केप या फिर हमेशा के लिए लॉक्ड अप।
1: इश्क की धूम।
0: फिलहाल के लिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे स्केप रूम की। सुनते रहें FM 107 पर स्केप रूम विद सफा ऑन FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: साथियों इस वक्त FM 107 की घड़ी में बज रहे हैं 2:01 और आप सुन रहे हैं सफा के साथ।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107 दिल से देखो।
2: तो साथियों आप एस्केप रूम सुन रहे हैं और इस वक्त अगर एस्केप रूम के बारे में बात की जाए तो आप फंसे हुए हैं डायनासोर वर्ल्ड में। जी हाँ, डायनासोर वर्ल्ड में। साथियों इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, तो भाई आप जो हैं वो एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर इंसानों की एग्जिस्टेंस उस वक्त नहीं थी, लेकिन आपने एक टाइम मशीन के थ्रू ट्रैवल किया और आप पहुंच गए डायनासोर के वर्ल्ड में। वहां पर आप एक जीप में बैठे हुए हैं और इतनी देर में आप एक बहुत बड़े से डायनासोर को देखते हैं। आप एक्साइटेड हो जाते हैं, आप कहते हैं मैं कैमरा से तस्वीर खींचता हूँ क्योंकि ये मौका मुझे शायद फिर बाद में ना मिले। आप जैसे अपना कैमरा निकालते हैं तो एकदम से वहां पर एक गरज बरस होती है, बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। उस बारिश की जो थंडर है, जो गरज है, वो आकर आपकी जीप से, आपकी बस से टकराती है और इतने में ही अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं वो ऑन एंड ऑफ होना शुरू हो जाती है। मतलब ये कि ऐसा लगता है जैसे भूचाल आ गया हो। इतने में आप अभी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वॉल्केनो फटा है कहीं पर। जमीन हिलना शुरू हो जाती है, पत्ते हिलना शुरू हो जाते हैं, चिड़ियाएं यहां वहां खौफ के मारे भागना शुरू कर देती हैं और एक अजीब सा मंजर फैल जाता है जंगल में जो कि आपके अंदर खौफ और हिरास फैला देता है। अब मामला ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी सी चीज आपकी तरफ आ रही है और वो आपके पास आती चली जा रही है। पास पास पास, बिल्कुल भी आवाज मत कीजिएगा। अब सांस भी बहुत आहिस्ता से लीजिएगा, बहुत आहिस्ता से, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा है जो आपकी जीप के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो चुका है। उसका साया ही इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है जैसे उसका साया ही पूरी की पूरी जीप पर छा गया है। आप आहिस्ता से शीशे से बाहर देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, और जो नज़ारा आप देखते हैं उसे देखकर आपका खून जम जाता है। एक बहुत बड़ा डायनासोर, बहुत अजीम डायनासोर, उसकी आंखें शिकार ढूंढ रही हैं, उसके दांत इतने बड़े हैं कि एक ही वार में वो हड्डियों को कुचल कर रख दें, और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही हैं कि जब वो सांस लेता है तो आपकी जीप का शीशा हिलना शुरू कर देता है। वो भूखा है और इस वक्त उसकी नजर जीप पर है। उसकी नजर अभी तक आप पे नहीं पड़ी है। अगर उसे पता चल गया कि जीप के अंदर कोई जिंदा है तो भाई गेम खत्म यहां पर। लेकिन शायद अगर हम उसका नाम पहचान लेना तो हम उससे भागने का तरीका भी ढूंढ सकते हैं। तो भाई तैयार हैं आप अपने पहले क्लू के लिए, अपनी पहली रिडल के लिए, जहां आपने इस डायनासोर का नाम पहचानना है। मैं डायनासोर्स का बेताज बादशाह हूं। मेरे दांत आरी की तरह तेज हैं और इतने बड़े बड़े हैं कि मैं हड्डियों को कुचल कर रख सकता हूं। लेकिन मेरे हाथ तो भाई इतने छोटे हैं कि मैं ताली भी नहीं बजा सकता। कौन हूं मैं? क्लू नंबर वन है, मैं डायनासोर का बेताज बादशाह हूं। मेरे बड़े बड़े दांत हैं जो कि आरी की तरह तेज हैं, जो कि हड्डियों को सेकंडों में कुचल कर रख सकते हैं। लेकिन मेरे हाथ तो इतने छोटे हैं कि मैं ताली भी नहीं बजा सकता। कौन हूं मैं? साथियों मैसेज कर सकते हैं हम आप हमें 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने जवाब मैसेज कर सकते हैं। जल्दी कीजिए क्योंकि अगर उसे हमारे लंच की खुशबू आ गई ना, जो हमने अपने बैग के अंदर रखा था, तो हमारा और उसका 36 काकड़ा हो जाएगा, मतलब हम उसके लंच बन जाएंगे। 666-22107 पर हमें मैसेज करके जल्दी से बताइए कि क्या नाम है इस डायनासोर का जो कि डायनासोर्स का बेताज बादशाह माना जाता है। सुनते रहें FM 107 पर, एस्केप रूम विद सफा।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखें।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एस्केप रूम विद सफा ऑन एफएम 107 और इस वक्त टाइम हो चला है 2:13। और भाई हम अपना सफ़र जारी रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, हम अब इस वक्त एक ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ या आर है या पार है, हम डायनासोर वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। हम एक टाइम मशीन के थ्रू एक जीप में बैठकर हम गए थे डायनासोर वर्ल्ड में। वहाँ जाकर कुछ मामलात ऐसे हुए कि हम वहाँ पर फंस गए, जीप खराब हो गई, बारिश होने लगी, थंडरस्टॉर्म होने लगा, जिसकी वजह से बहुत मसले पैदा हुए। और अब हाल ये है कि हमें जो जगह सुकून की लग रही थी, जो सेफ लग रही थी, यानी कि हमारी बस जिसके अंदर हम बैठे हुए थे, हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, वो ख़राब हो चुकी है। और अब मामला ये है कि हमने पहुंचना है एक सेफ जगह पर। सेफ जगह पर पहुंचने के लिए मसला ये कि हमें इस बस से निकलना पड़ेगा। और बस से निकलने का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम अपने सामने देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मखलूक जो कि भूखी है, इतनी बड़ी कि उसका साया पूरी जीप को कवर कर रहा है और वो ढूंढ रही है खाना। अब भाई हमने तो उसका लंच बनना नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम बच जाएं। तो जाने से पहले मैंने आपसे एक रिडल पूछी थी।

क्योंकि ये वो चीज है जो हमें आगे बढ़ने पर फोकस करवाएगी। हमें ये जानना है कि ये आखिर कौन सा डायनासोर है। मैंने पूछा था कि मैं बेताज बादशाह हूं डायनासोर्स का, मेरे बड़े बड़े दांत हैं जो कि आरी की तरह तेज हैं, लेकिन मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। तो क्या नाम है इस डायनासोर का, ये पूछा था मैंने। अली ने, सना ने, उस्मान ने, आयशा ने, बिलाल और अहमद ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही। यूसुफ भाई अभी भी कुछ कश्मकश में हैं। यूसुफ भाई, डायनासोर्स के एरा में अगर नोट करने की कोशिश करें ना, तो डायनासोर्स को अगर आप सर्च कर ही रहे हैं इंटरनेट पर, तो जाकर ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसा कौन सा डायनासोर है जिसके सबसे छोटे हाथ हैं और ये बहुत मशहूर है। एंड इट इज नोन टू बी दी मोस्ट, आप कहते हैं ना, तबाही मचाने वाला डायनासोर। ये वो डायनासोर है, बहुत ज्यादा तेज है, बस इसका एक प्रॉब्लम है, इसके हाथ बहुत छोटे होते हैं। और अक्सर औकात तो लोग इसके हाथ देखकर ये भी कहते हैं कि शायद ये कहीं वो वाला डायनासोर तो नहीं जिसको अगर नाक पे खुजली हो तो उसको दूसरों की हेल्प लेना पड़े। तो भाई, इसके हाथ बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने, यानी अली, सना, उस्मान, आयशा, बिलाल, हिना और अहमद ने बिल्कुल सही जवाब दिए। तो चलिए अब अपना सफर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। और भाई, मामला ये है कि जिन्होंने सही जवाब दिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये है डायनासोर जिसका नाम है टायरानोसॉरस, इसे टीरेक्स भी कहा जाता है। भाई, एक बार आपको फिर से बता देती हूं, टीरेक्स जिसे कहा जाता है डायनासोर, ये वो डायनासोर है। फिर क्या होता है भाई, टीरेक्स एक बार और आपकी जीप के पास आकर सूंघने की कोशिश करता है, फिर जोर से धार मारता है, जोर से। उसे भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि देखें, जो बारिश थी ना और जो थंडर चल रहा है, जो गरज बरस हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपको बचा ले रही है। उसके शोर की वजह से टीरेक्स को समझ भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो वो क्या करता है, बेजार होकर आहिस्ता से जंगल की तरफ चला जाता है, धब धब धब करता हुआ। उसके कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ रही होती है कि ये दूर हो रही है, आपका खौफ दूर जा रहा है। आप फौरन मौके का फायदा उठाते हुए ये काम करते हैं कि आप कहते हैं कि भाई, ये चला गया तो अब मैं जल्दी से दरवाजा खोलूं जीप का और भागूं आगे की तरफ। तो आप दरवाजा खोलते हैं जीप का और आप दौड़ लगाते हैं, जितनी तेज हो सके भागते हैं। कुछ दूर एक आपको बड़ा सा पत्थर की बड़ी सी चट्टान नजर आ रही होती है, आपका टारगेट वो पत्थर की चट्टान है, क्योंकि इस वक्त आपको कोई और सेफ जगह नजर ही नहीं आ रही, आप उसके पीछे छुपने जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपका सांस फूल रहा होता है, आप थक रहे होते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज से तेज होती चली जा रही होती है। जैसे ही आप उस पत्थर की चट्टान के पास पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि भाई, इसके ऊपर तो एक बड़ा अजीब सा निशान बना हुआ है, कुछ तो बना हुआ है इसके ऊपर, जो कि समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, और कुछ है जो नज़र भी आ रहा है थोड़ा बहुत, ऐसे जैसे कि पत्थर के ऊपर कुछ तराशा जाए। लेकिन वक्त की वजह से, वक्त की धूल मिट्टी की वजह से वो धुंधला हो गया हो। हाँ, शायद ये कोई सीक्रेट टनल है या किसी सीक्रेट टनल की चाबी तो नहीं है। लेकिन पहले, इससे पहले कि आप आगे जाएं, रुकें जरा, आपको एक और क्लू देती हूँ, आपको एक और रिडल सॉल्व करने को देती हूँ। आप जब ये सेकंड रिडल सॉल्व करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो आपके सामने आती है जो कि हड्डी नहीं है, ठीक है, ये हड्डी नहीं है, किसी चीज की प्रॉपर हड्डी नहीं है, लेकिन ये करोड़ों साल पुरानी किसी मखलूक की निशानी है। मैं हड्डी नहीं हूं,

लेकिन मैं उन मखलूकों की निशानी हूँ जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले इस दुनिया में रहती थीं। वक्त के साथ साथ मैं पत्थर जैसी बन गई हूँ। बताइए ये क्या चीज हो सकती है? अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। एक ऐसी चीज है जो कहती है कि मुझे देखकर साइंटिस्ट्स पुरानी दुनिया के राज मालूम करते हैं। यह हड्डी नहीं है लेकिन इसमें पुरानी मखलूकों की निशानियां छुपी हुई हैं, बल्कि करोड़ों साल पुरानी। और अक्सर औकात जब ये साइंटिस्ट को बरामद होती हैं तो इनको म्यूजियम्स में भी रखा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? जवाब भेजें मुझे 666-22107 पर मैसेज करके। 666-22107 पर मैसेज कीजिए, वापस आकर आपके जवाब मौसूल करूंगी। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी, स्केप रूम विद सफा।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफ़ा के साथ हमारा स्केप रूम और FM 107 है ये। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 2:24। तो साथियों आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। हमें बड़े मुख्तलिफ और कुछ सही भी जवाब आए हैं। खान जसविंदर सिंह और यूसुफ भाई, आप थोड़े से इधर उधर चल रहे हैं, कोशिश करें पहुंच सकते हैं, आप भी पहुंच सकते हैं। आरिफ भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है और हमारे पास एक और भाई हैं खान भाई, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो भाई आगे बढ़ते हैं और हम अपने सफ़र पर चलते हैं। देखें अब हम उस सफ़र पर आ पहुंचे हैं कि भाई हम जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, जवाब है फॉसिल्स। जैसे ही आप फॉसिल का निशान देखते हैं तो भाई आपको चट्टान हिलती हुई नज़र आती है और आप उसके पीछे छुपे हुए एक सीक्रेट टनल को आहिस्ता आहिस्ता खुलते हुए देखते हैं। आप मुस्कुराते हैं, बस आपको ऐसा लगता है कि बस अब बात ख़त्म हो गई, अब मैं बाहर निकल जाऊँगा। ज़मीन पहले से ज़्यादा कांपने लगती है और आपको किसी डायनासोर के कदम भी नहीं सुनाई दे रहे होते। आप आसमान की तरफ देखते हैं तो भाई आपको ऐसा लगता है जैसे दूर आइलैंड के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। नारंगी सी रोशनी सी चमकती हुई उसके से बाहर आ रही है। उसकी छोटे से जगह पर ना, उसी छोटी सी जगह पर कुछ धुआं धुआं सा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ है, उसके बीच में एक सुराख है और नारंगी सी रोशनी निकलती हुई नजर आ रही है, धुआं भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लम्हों बाद राख आसमान से ऐसे उभरने लगती है, ऐसा लगता है जैसे राख नहीं है, बर्फ है। क्या है ये, जरा सोचें। तो भाई हमारी थर्ड क्लू का टाइम आ गया है, थर्ड रिडल का टाइम आ गया। और रिडल ये है कि मैं जमीन में एक बहुत बड़ा सुराख हूं जिसके अंदर उबलता हुआ लावा होता है। जब मैं फटता हूं तो डायनासोर्स भी भागना शुरू कर देते हैं, चाहे कितनी बड़ी मखलूक क्यों ना हो, मैं बेरहम हूं। क्लू जरा सुनिएगा, मैं जमीन में एक बहुत बड़ा सुराख हूं जिसके अंदर उबलता हुआ लावा होता है। जब मैं फटता हूं तो डायनासोर भी भागना शुरू कर देते हैं। क्या हूं मैं? 666-22107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और यूसुफ भाई आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आगे चल रहे हैं आप, गुड, आ रहे हैं आगे, स्केप कर सकते हैं आप इस स्केप रूम से। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और किस किस को समझना है कि मैं जमीन में एक बहुत बड़ा सुराख हूं जिसके अंदर उबलता हुआ लावा होता है, जब मैं फटता हूं तो डायनासोर्स भी दूर दूर भागना शुरू हो जाते हैं। बिलाल, फातिमा, हिना, अहमद, इन सब ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। अली आप भी, गुड, नाइस। तो भाई आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि जवाब क्या है। जवाब है वॉल्केनो। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, जैसे ही आपने वॉल्केनो का जवाब दिया आपने इमरजेंसी सिग्नल एक्टिवेट कर दिया और बिल्कुल सही टाइम पर उसी वक्त आसमान से एक आवाज़ आती है। पता है वो क्या आवाज़ है? सुने ज़रा, ये वाली आवाज़। जी हाँ, आसमान से एक गूंजती हुई आवाज़ आती है, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पायलट ने आपका सिग्नल देख लिया था, लेकिन वक्त बहुत कम था क्योंकि वॉल्केनो जाग चुका था। ज़मीन कांप रही थी, पत्थरों से गर्म गर्म लावा फट के निकल रहा था और हर तरफ लावा ही लावा फैल रहा था। तो भाई होता ये कि हेलीकॉप्टर के थ्रू आपको एक रस्सी फेंकी जाती है, नीचे आती है रस्सी, आप उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं और हेलीकॉप्टर आपको ऊपर लेकर जाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर अचानक ओहो, जंगल के उस बेताज बादशाह टीरेक्स ने आपको देख लिया है। अब क्या होगा भाई? वो टीरेक्स बाहर निकलता है, वो आखिरी बार दहाड़ता है जैसे कह रहा हो कि ये मेरी चीज है, दिस इज फॉर मी। तो भाई लेकिन आपका आसमान से हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जाता है, विक्ट्री आपकी हुई, आप निकल गए स्केप रूम से, मुबारक हो। भाई इसी मुबारकबाद के साथ आज का हमारा स्केप रूम का ये सेशन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, सुनते रहें FM 107 पर स्केप रूम, दिल से देसी।

वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर इको स्विच, जहां हम बात करते हैं उन सिंपल हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट और अपने बिल्स दोनों को इम्पैक्ट करती हैं। आज का टॉपिक है भाई स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी यूजेज हैबिट्स, यानी बिजली को स्मार्ट तरीके से यूज करना। इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ का इनविजिबल हीरो है साथियों। लाइट, एसी, फ्रिज, फोन चार्जिंग सब इसी पर तो डिपेंड करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो हम वेस्ट करते हैं वो इनडायरेक्टली कार्बन इमिशन और नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है। सोचिए, आप अपने घर के एक रूम से बाहर निकलते हैं लेकिन लाइट्स और फैन ऑन रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि भाई सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, कौन सा कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब ये हैबिट रिपीटेड रहती है तो मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। इको स्विच के मुताबिक अगर एक हाउस होल्ड सिर्फ अननेसेसरी लाइट्स और फैंस को 2 घंटे डेली ऑफ करे तो वो अपना इलेक्ट्रिसिटी यूजेज 10% से 15% तक कम कर सकता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे साथियों। देखिए, एक एवरेज एलईडी बल्ब 10 वॉल्ट कंज्यूम करता है, लेकिन अगर वो अननेसेसरी 5 घंटे एक्स्ट्रा ऑन रहे ना तो साल भर में नोटिसेबल एनर्जी वेस्ट होती है साथियों। अगर हम एयर कंडीशनर्स के बारे में बात करें भाई, तो एयर कंडीशनर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का लगभग 10% यूज करते हैं। स्टैंड बाय मोड जो हम ऑफ समझते हैं वो भी अप्लायंसेस की इलेक्ट्रिसिटी का 5% तक कंज्यूम करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हर हाउस होल्ड एक बल्ब डेली 1 घंटा ऑफ करे तो ग्लोबली मिलियंस ऑफ टन्स कार्बन इमिशंस अवॉइड की जा सकती हैं। साथियों, इको स्विच का यहाँ सिंपल सा आइडिया है इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं बल्कि ऑप्टिमाइज करना। जब हम स्मार्ट यूजेज अडॉप्ट करते हैं तो भाई हम सिर्फ अपने बिल्स कम नहीं करते बल्कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हाउस होल्ड अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 10% रिड्यूस करें तो ग्लोबल लेवल पर ये इम्पैक्ट हंड्रेड ऑफ पावर प्लांट्स के इमिशंस के बराबर हो सकता है। मतलब एक छोटी सी हैबिट का बड़ा सारा इम्पैक्ट। खाली सोचिए ना, गर्मियों का वक्त है और एसी तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस पर फुल ब्लास्ट पर चल रहा है, सिर्फ कम्फर्ट के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। आप सोचते हैं क्योंकि हमारा माइंड कुछ ऐसा डिजाइन है कि हम सोचते हैं कि ज्यादा ठंड इज इक्वल टू ज्यादा कम्फर्ट। लेकिन भाई इको स्विच कहता है कि आइडियल टेम्परेचर 24 to 26 यही होता है। हर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करने से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 6 से 8% तक बढ़ जाता है। मतलब सिर्फ 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस आपके बिल और एनवायरमेंट दोनों पर नोटिसेबल इम्पैक्ट डालता है। तभी तो मेरा बिजली का बिल कम आता है क्योंकि मैं तो रखती ही तकरीबन 24 या 26 पर हूँ एसी को। तो भाई आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स की जो हर घर फॉलो कर सकता है। पहली ये कि रूम से निकलते वक्त लाइट्स, फैन और एसी जरूर ऑफ करें। मतलब ये कि आपकी अम्मी जो डांट रही होती है ना कि भाई एसी बंद करो, लाइट ऑफ करो अगर कमरे में नहीं हो, फैंस बंद करो, तो वो बिल्कुल सही कह रही होती है, उनकी बात सुन लिया करें। दूसरी टिप ये कि एलईडी बल्ब यूज करें जो 75% तक एनर्जी सेविंग करते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बल्ब्स। तीसरी बात ये कि अप्लायंसेस को स्टैंड बाय मोड में ना छोड़ें, अनप्लग कर दें भाई उन्हें। चौथी बात ये, नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन को ज्यादा यूज करें दिन के वक्त। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी तरह एसी को 24 या 26 पर सेट करें इंस्टेड ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स, सेहत के लिए भी अच्छा होता है ये। तो भाई इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाना। जब ये हैबिट्स रूटीन बन जाती है ना तो हम बिना सोचे समझे एनर्जी सेव करते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जो हाउस होल्ड एनर्जी मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे मंथली यूजेज चेक करते हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नेचुरली 5 से 12% तक रिड्यूस हो जाता है। आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है साथियों कि बिजली सिर्फ कन्वीनियंस नहीं होती बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर लाइट जो हम ऑफ करते हैं, हर एसी जो हम ऑप्टिमाइज करते हैं, वो प्लैनेट के लिए एक छोटा पॉजिटिव स्टेप होता है। तो भाई अगली बार जब आप कोई स्विच यूज करें, एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। इज दिस एनर्जी रियली नीडेड राइट नाउ? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107 कतर, जहाँ हर स्विच सिर्फ एक लाइट नहीं बल्कि एक ब्राइटर फ्यूचर बनाता है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे तौबा की अहमियत के बारे में। इंसान से गलती होना फितरी बात है, लेकिन कामयाब वो होता है जो अपनी गलती को पहचान कर अल्लाह की तरफ वापस आता है। इसी को तौबा कहते हैं। तौबा सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि दिल से रिग्रेट करना और दोबारा उस गलती को ना दोहराने का इरादा करना होता है। अल्लाह बहुत मेहरबान है और अपने बंदों की तौबा को हमेशा कबूल करता है। अक्सर लोग अपनी गलतियों की वजह से मायूस हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम हमें उम्मीद देता है कि अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आज का अमल ये है कि कुछ लम्हे तन्हा निकाल कर अपनी गलतियों पर गौर करें और अल्लाह ताला से माफी मांगे। यह अमल रूह को हल्का करेगा और जिंदगी में नई शुरुआत देगा। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
1: One step to 2030.
2: और आज दोस्तों जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर जॉब्स वी कांट इमेजिन येट। ऐसी जॉब्स जिनके बारे में अभी भी हमने बात नहीं की या अभी भी हम उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10-15 साल पहले की बात है जब कोई बोलता था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा या मैं ऐप डेवलप करूंगा, पैसे कमाऊंगा, तो लोग हैरान हो जाते थे। लेकिन आज अगर ये बात की जाए तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह आज की दुनिया में बहुत सी ऐसी जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं जो पहले कभी सोची ही नहीं गई थी। अब सोचो 2030 आने वाला है, इस वक्त किस तरह की जॉब्स होंगी। 2030 के वक्त टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ रही होगी कि नई नई फील्ड्स क्रिएट होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम सुन ही चुके हैं, रोबोटिक्स की बात हम करते ही रहते हैं, ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम हमारी लाइफ को इतनी तेजी से चेंज कर ही रहा है। तो ऐसे में कौन सी जॉब्स हैं जो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं या होंगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ पुरानी जॉब्स तो खत्म होंगी, लेकिन उसके बदले कुछ और नई और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। हर जमाने में जब टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ काम खत्म हो जाते हैं और कुछ नए काम बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये चेंज बड़ा फास्ट होता है। कुछ लोग इस चेंज को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ बेचारे रुक के थम के सोचते रह जाते हैं। देखिए, फ्यूचर जॉब्स किस तरफ जा रही हैं ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब हम फ्यूचर जॉब्स को देखें तो मैं आपको तीन डायरेक्शंस जो हैं उनमें आपको समझाना चाहूंगी सिंप्लीफाई करके। एक जॉब जिस पर हमें फोकस करना है वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब्स, जो कि आप और हम मजमू तौर पर जान ही चुके हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट जॉब है सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट रिलेटेड जॉब्स। ये भी आने वाले टाइम में यानी 2030 और इसके आगे वाले एरा को डोमिनेट करेंगी। वहीं तीसरी है ह्यूमन प्लस क्रिएटिविटी प्लस कम्युनिकेशन जॉब्स। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कंप्यूटर या मशीन इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान की सोच, उसकी क्रिएटिविटी और इमोशंस भी फ्यूचर में इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फ्यूचर जॉब्स क्या हो सकती हैं, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। आज ही कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो फ्यूचर में और ज्यादा डिमांड में आ जाएंगी, जिनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं या कर रहे हैं या हमें पता है। AI इंजीनियरिंग, जो मशीन्स को सोचना सिखाता है। डेटा साइंटिस्ट, जो ह्यूज डेटा को समझाता और एनालाइज करता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो डिजिटल सिस्टम को हैकर से बचाता है। वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट, जो सोलर और विंड एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम करता है। ये जॉब्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि दुनिया डिजिटल और इको फ्रेंडली डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि चार डायरेक्शंस या तीन डायरेक्शंस हमें और आपको समझने जरूरी हैं। वहीं ऐसी जॉब्स जो अभी सिर्फ शुरू हुई हैं, जैसे AI प्रॉम्प्ट डिजाइनर, जो AI को सही इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि वो बेस्ट रिजल्ट्स दे। वहीं वर्चुअल वर्ल्ड मैनेजर, जो ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस जैसे मेटावर्स को मैनेज करता है। वहीं पर ह्यूमन मशीन टीम मैनेजर, जो ये इंश्योर करता है कि रोबोट्स और ह्यूमन एक टीम की तरह काम करें। ये रोल्स हमें ये बताते हैं कि फ्यूचर में मशीन्स और ह्यूमन साथ काम करेंगे, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। वहीं ऑटोमेशन का इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत लोग डरते हैं कि मशीन जॉब्स खत्म कर देंगी, बचेंगी नहीं, क्या होगा। हाँ, कुछ जॉब्स रिप्लेस होंगी जरूर, जैसे रिपीटेटिव या सिंपल काम जो मशीन इजली कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिलियन जॉब्स डिसअपीयर भी हो रही हैं, लेकिन मिलियन जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। मतलब फ्यूचर नेगेटिव नहीं है, बस चेंज हो रहा है। अब आज के दौर में स्किल्स और डिग्री क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ डिग्री काफी नहीं होगी। फ्यूचर जॉब्स के लिए स्किल्स का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की आपकी एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, अडैप्टेबिलिटी, कितनी चेंज को आप कितनी जल्दी जो है वो अडैप्ट कर पाते हैं। आज अगर किसी के पास ये स्किल्स हैं तो वो हर फील्ड में सरवाइव कर सकते हैं इवन अगर जॉब्स चेंज भी क्यों ना हो रही हो तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें और आपको अडॉप्ट करना है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट फ्यूचर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती पहले लोग एक डिग्री लेते हैं और पूरी जिंदगी उसी जॉब को लेकर चलते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होता फ्यूचर में इंसान को हर कुछ साल में नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं जैसे मैं एक रेडियो प्रेजेंटर हूँ आज एक रेडियो प्रेजेंटर हो सकती हूँ कल एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकती हूँ और फ्यूचर में शायद एआई बेस्ड इंटरैक्टिव होस्ट भी बन सकती हूँ तो अगर मैं अपने आप को इस तरह से चेंज कर रही हूँ दैट मीन्स आई एम लर्निंग काम करने का स्टाइल भी चेंज हो रहा है अब आने वाले दिनों में लोग जो हैं वो ऑफिस में बहुत ही लिमिटेड होंगे रिमोट वर्क यानी घर से काम ज्यादा होगा फ्रीलांसिंग आप खुद अपने बॉस बनेंगे वहीं बहुत सारे लोग मल्टीपल करियर्स की तरफ बढ़ेंगे एक ही वक्त में दो से तीन काम करना ये सब ट्रेंड्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और 2030 तक और भी ज्यादा कॉमन हो जाएंगे चैलेंजेस हर चीज में है इनमें भी है फ्यूचर जॉब्स के साथ कुछ चैलेंजेस आते ही हैं हर किसी के पास उस तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो होती नहीं है स्किल गैप्स क्रिएट तो करता है लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है समझना ये कि फ्यूचर जॉब का कॉन्सेप्ट सिंपल और चैलेंजिंग है एक साइड पर हमें डर होता है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी लेकिन दूसरी साइड पर ये कि बहुत बड़ा मौका भी है खुद को इम्प्रूव करने का नई स्किल सीखने का और नए करियर्स को एक्सप्लोर करने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो आपको अपने जहन में रखना है वो ये कि सीखना कभी बंद ना कीजिए चेंज को लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और टेक्नोलॉजी उसे अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझिए जब लोग फ्लेक्सिबल होंगे क्यूरियस होंगे नए आइडियाज अडॉप्ट करेंगे वही फ्यूचर में कामयाब होंगे और सबसे इंटरेस्ट

और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ.

0: तो इनको एक तो ये है कि हमें एक्सपीरियंस भी हो गया लेकिन लत भी नहीं लगी है वो अभी तक मैंने बचा के रखा है. लेकिन अब आप देखिए आजकल पीयर प्रेशर बहुत होता है. बच्चे कहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए क्योंकि हमारे दोस्तों के पास
1: ऑफ कोर्स
0: और वो बड़ा मुश्किल है कब तक बच के रहेंगे. बट अभी तक तो बचे हुए हैं.
1: अभी तक चलिए बहुत बढ़िया है. मैं उम्मीद करता हूँ बचे रहे. अच्छा बेटा आप चैतन्य ये बताओ घर पे जो है किसका कंट्रोल ज्यादा लगता है मम्मी या पापा का कंट्रोल ज्यादा है किससे ज्यादा डर है आपको.
2: पापा.
1: अच्छा पापा सामने इसलिए कह रहे हो कि सच में ऐसा है.
2: नहीं सच में ऐसा ही है.
1: अच्छा डू यू एग्री ऐसा ही
3: पापा से तो कम डर लगता है पर मम्मी से थोड़ा ज्यादा लगता है.
1: तो ये बैड कॉप गुड कॉप आप अच्छे से खेल पा रहे हैं समझ में आ रहा है. तो क्या यूजुअली आप बचाने वालों में से है कि कुछ परमिशन दोनों को लग रही है या फिर क्या है भाभी का इसमें ज्यादा हाथ रहता है.
0: आई थिंक माँ के साथ बच्चे ज्यादा समय बिताते हैं तो माँ को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा छूट देता हूँ.
1: अच्छा ओके.
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा
1: सख्ती से
0: पेश आता हूँ. बट कहीं ना कहीं कुछ ये लोग देख के समझ जाते हैं और कुछ हम लोग फिर हाथों से समझा लेते हैं.
1: अच्छा पहले आंखों का डर बहुत हुआ करता था ना आपके हमारे टाइम.
0: आंखों से कोई नहीं डरता.
1: आंखों से अब कोई खौफ नहीं है कुछ भी नहीं है. जिद्दी इनमें से कौन ज्यादा है. वैसे
0: जिद्दी वैसे वो ज्यादा है.
1: अच्छा मुझे लगा चैतन्य का नाम आने वाला है.
0: नहीं नहीं
1: क्या
0: चैतन्य मान जाता है.
1: अच्छा मान जाता है.
0: वो हाथों की नरमी कभी बहुत अच्छे से जानता है.
1: अच्छा तो क्या क्या जिद करने के लिए सबसे पहले अप्रोचेबल ज्यादा कौन है कि पापा के पास जाती हूँ जिद करने के लिए या मम्मी के थ्रू जाना पड़ता है.
3: पहले तो मैं पापा के पास ही जाती हूँ.
1: अच्छा ओके.
3: बट अगर ऐसा हुआ कि मैं पहले मम्मी के पास चली गई तो अगर मम्मी ने मना किया तो मैं उसके बाद पापा के पास जरूर जाऊंगी.
1: हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी ना पहले उधर से जाके उधर जाना पड़ेगा. ये बड़ा यूजुअल ऐसा कॉम्बिनेशन कभी कभार ना कहना कितना मुश्किल होता है बच्चों को आज की जनरेशन.
0: देखिए एक तो ये भी बच्चे समझते हैं कि हम लोग अकेले एक छोटी फैमिली में रहते हैं और छोटी फैमिली में रहने के कारण दिक्कत ये होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आखिर अभी नहीं तो कल तो मानी जाएंगे.
1: एक भरोसा
0: है कि आज नहीं तो कल मानी जाएंगे. और वो भरोसा क्या है कहीं आपके लिए अच्छा कहीं आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपको उनकी हर बात पे कुछ ना कुछ बातों पे ज्यादा तौर पे हाँ कहना ही पड़ता है.
1: कभी सॉरी कहना पड़ा है किसी को.
0: ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है
1: ना. ये आई थिंक है आजकल तो कहना पड़ रहा है बहुत माँ बाप को कि चलो बेटा सॉरी.
0: हाँ जब आप थोड़ा कुछ सख्ती से पेश आए.
1: क्योंकि पहले अगर माँ बाप विलन बन भी गए हैं तो सॉरी का तो नामो निशान नहीं.
0: अरे नहीं संभव नहीं था. और बच्चों से ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी कि वो माँ बाप से कहेंगे सॉरी मुझे सॉरी
1: बोलना पड़ता है. सॉरी बोलना पड़ता है या फिर नाराज होकर चुप बैठ जाती हूँ कह रहा था.
3: ऐसा कम होता है कि वो उनको सॉरी बोलना पड़े क्योंकि हम पहले मान जाते हैं.
1: हाँ मानना ही पड़ेगा.
3: मैं मान जाती हूँ उसका नहीं पता मुझे.
1: अच्छा चैतन्य that's true.
3: हाँ नहीं उसको तो बोलना पड़ता है काफी बार सॉरी.
1: अच्छा ओहो चैतन्य क्या लगता है कि सही कह रही है बहन सही कह रही है.
2: कुछ सिचुएशंस में डिपेंड होता है.
1: अच्छा.
2: जैसे जब एक्सट्रीम चला जाता है तो मानना पड़ता है पर अगर छोटी बात होती है तो अगर मैं नहीं भी मानता हूँ तो वो बड़ी हो जाती है तो सॉरी बोलना ही पड़ता है.
1: ओके बड़ा ही आर्टिकुलेट आंसर था माशाल्लाह आप लगा है. अच्छा मुझे बताओ जैसे होता है ना कि मम्मी पापा जो है उनसे कुछ जिद-विद करना तो अलग चीज़ है मगर कुछ नई चीज़ें सिखाने का मन करता है. आपकी जनरेशन ऑब्वियसली इज फास्ट फॉरवर्डेड एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन तो कुछ सिखाया है ना कि ये भी सीखो ये भी दुनिया में आया है अभी.
3: हाँ ऐसा होता है ऐसा बहुत बार होता है जो नई चीजें सोशल मीडिया पे भी आती हैं जैसे मीम्स या कुछ भी और एनीथिंग जैसे आपका रेडियो भी जब हम सुनते हैं तो अगर कोई मीम आई तो वो सोच रहे होते हैं कि ये क्या है. जैसे बीच में मोए मोए आया था तो वो मैंने उनको बैठ के समझाया था कि मोए मोए क्या होता है. और जैसे मतलब कुछ फोन में कोई नया अपडेट भी आया हो तो उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं.
0: कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा हो. अब ऐसे तो इंटरनेट पे ढूंढ के आप समझ सकते हो पर थोड़ा देर इंगेज करने के लिए इन लोगों को बात करने के लिए कि चलो किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं हम पूछ ही लेते हैं यार ये कैसे होगा. सो उसमें दोनों काम हो जाते हैं प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और बातचीत भी हो जाती है थोड़ी देर.
1: हाँ ये तो है कि चलो बात इसी बहाने से हो जाए. पर आपकी जनरेशन की तरफ से कई सारे ऐसे शोज सीरीज वो सब होता है ना कि हम दिखाना चाहते हैं और बड़ा बेटा ये देखो दिलीप कुमार दे.
0: बिल्कुल सही.
1: डू यू ट्राई दैट इस तरीके से.
0: कई बार कोशिश की जाती है और कुछ कुछ चीजें इन्हें पसंद आती हैं जब उनके साथ में लेकिन उन्हें बैठना पड़ता है और वो एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है वो क्यों ऐसा कह रहा है वो सब पृष्ठभूमि इनको समझानी पड़ती है. अगर आप वो पृष्ठभूमि नहीं समझ में आए तो ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. और कहते हैं नहीं नहीं पापा हमें नहीं जम रहा।

0: लेकिन अगर आप लगातार उनसे बात करते नहीं कि बेटा ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये किस कारण से ऐसा होता है, उस टाइम पे क्या होता था, तब इनका थोड़ा इंटरेस्ट आता है। लेकिन हिस्टोरिक बातें समझने के लिए छोटा वाला ज्यादा इंटरेस्टेड है।
1: अच्छा, ओके।
0: आरना का थोड़ा इंटरेस्ट नए जमाने में है।
1: तो आरना कुछ याद है, पापा ने कुछ दिखाया तुम्हें काफी अच्छा लगा?
2: जैसे पुरानी कॉमेडी फिल्में जो होती थी,
1: हाँ, नहीं,
2: वो हाँ. मुझे बहुत पसंद आती, क्योंकि आजकल की कॉमेडी फिल्मों में इतना मजा नहीं आता।
1: हाँ, that's true, agree,
2: क्योंकि हाँ. मैंने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी कॉमेडी वाली, जैसे हेरा फेरी और
1: मेरे
2: लिए तो ओल्ड ही है।
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, आई टोटली अंडरस्टैंड। वो हमें एहसास हो रहा है ना, अलग किस्म का एहसास होता है। चेतन, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग कुछ पापा ने दिखाया हो, कुछ याद है?
3: जैसे पुराने गाने हो या फिर वही फिल्म्स हो,
1: हाँ,
3: तो वही।
1: अच्छा, तुम्हें याद रहती है चीजें देखते हो, और तुम क्या देखते हो वैसे ये बताओ?
3: मैं तो YouTube के शॉर्ट्स।
1: अच्छा, तो ये काफी देखते हैं YouTube के शॉर्ट्स लगातार?
0: नहीं, आप थोड़ा अगर मौका मिल जाए आप टीवी देखते देखते अगर आप सो जाओ तो फिर बीच में चालू हो जाता है।
2: वैसे मम्मी पापा को दोनों को ही मतलब पुराने गानों का बहुत शौक है, तो वो किसी ना किसी बात पर वो गुनगुनाते रहेंगे। उसकी वजह से मुझे इतने सारे पुराने गाने याद हैं, और अगर उन्हें टीवी पे चला दिया बाय एनी चांस तो मुझे लिरिक्स पता होंगी। फिर ये मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें लिरिक्स कैसे पता है।
1: गाड़ी में अक्सर आप चलाने की कोशिश करते हैं कि चलो थोड़ा इन्फ्लुएंस करूं मैं गाने?
0: हां, गाड़ी में हमारा काफी स्ट्रगल होता है, थोड़ा कभी अंग्रेजी गाने सुनने की कोशिश करते हैं, हम हिंदी गाने सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदी गानों में भी इनको आज के नए गाने पंजाबी गाने चाहिए होते हैं। फिर हमारा थोड़ा इंटरिम लेवल जब खींचतान हो जाती है तो थोड़ा 90s 2000 के भी बीच में कुछ गाने लग जाते हैं।
1: तो वो बीच में इनका तो रखना पड़ेगा।
0: हां, इनका रखना।
2: नहीं, मुझे 2000s के गाने तो बहुत अच्छे से याद हो गए हैं।
1: ऑलराइट, ओके।
2: हां, बट पंजाबी गाने मुझे इतने पसंद नहीं है, बट चैतन्य को बहुत पसंद, बहुत शौक है उसे।
1: क्या बात है चैतन्य, कौन सा गाना पसंद है आजकल, कौन सा सुनते हो, कोई ऐसा गाना है अभी तुम्हारा फेवरेट चल रहा है आज के टाइम में, कुछ याद करने की कोशिश करो, हो सकता है तुमने आसपास कभी सुना हो कोई गाना बढ़िया लगता हो।
3: I mean, बहुत सारे गाने,
1: of course, तो हाँ.
3: बता नहीं सकते,
1: पर तुम्हें पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं आपने? हाँ. डांस वांस करते हो उन गानों पे अकेले में?
3: नहीं।
1: ओके, तुम्हारी जो जनरेशन है बड़ी कमाल की है ना, as you were mentioning के कई सारी चीजें सिखानी पड़ती है ना, you know me, हाँ. you know everything, yes, out and out. सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है तुम्हारी? नहीं अभी,
2: नहीं अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि मुझे अभी फोन नहीं मिला है।
1: अच्छा, वेरी गुड भाई साहब, बहुत बढ़िया काम। तो कब तक का प्लान है इन्हें फोन देने का, कुछ टारगेट है?
0: देखते हैं, हमने तो सोचा कि जब कॉलेज में जाएंगे अभी देंगे, लेकिन अब देखिए कब तक कब हाँ, तक चलता है।
1: सही है आपका आइडिया, आई थिंक उसमें, क्योंकि बहुत बहुत खाली टाइम उसमें जाएगा इनका। हाँ। और फालतू का ही टाइम जाएगा,
0: समय खराब होता है,
1: समय खराब होता है। YouTube देखना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड बीइंग ऑन सोशल मीडिया बहुत अलग चीज हो जाती है। तुम्हारे दोस्तों के पास है, मतलब डू दे यूज?
2: यस, मेरी क्लास में सबके पास फोन है, बट मतलब ऐसे एक दो लोग होंगे जिनको मैं जानती हूँ कि उनके फोन में मतलब कोई सोशल मीडिया नहीं है, बट वो कॉन्टेक्ट कर सकते, बट फिर एटलीस्ट उनके पास फोन है।
1: ये पिच है, ये सेल्स पिच है, समझ रहे हो? ये हिडन सेल्स पिच है।
0: बहुत दिनों से बच रहा हूँ मैं इससे।
3: मेरे क्लास के भी जो बच्चे हैं उनके पास भी फोन है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके पास भी एक फोन है।
1: बेटा ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। अच्छा, तो मतलब
2: नहीं, मतलब इसके दोस्त जब आए थे उसकी बर्थडे पार्टी पे, तो अपने फोन लेके आए थे, एंड मैं उस फोन को देख के बिल्कुल मतलब चौंक गई थी कि मुझे फोन नहीं मिला और इनको फोन कैसे मिल गया।
1: ये बड़ा कमाल का है। तो आप हाउ डू यू हैंडल, बिकॉज आपके सामने आप ये घर पे भी दूसरा बच्चा रहा है फोन लेके, तो थोड़ा एक टेंशन आती होगा ना कि अरे मैं हाउ डू आई डील विद दिस।
0: सो कुछ लाइनें हमने थोड़ी गाड़ी खींची घर में।
1: अच्छा,
0: और ये वो गाड़ी लाइन है कि भैया फोन नहीं मांगना, बस और कुछ जो करना है कर लेना।
1: हाँ, पर बस सही राय नहीं, you know, ये तुमको ना बाद में समझ में आएगा, बिकॉज ही हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा जो तुम्हारे जो पेयर प्रेशर में आ जाता है ना, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दैट इज वन डिस्ट्रैक्शन जो बहुत लंबा तुम्हारा टाइम खींच सकता है। सो ये फादरली एडवाइस जो रखा हुआ है, जो गाड़ी लाइन खींची हुई है, बहुत अच्छी लाइन है, परफेक्ट लाइन खींची हुई है।
2: मैं और चेतन वैसे भी इतना ज्यादा फोन का नहीं करते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जब तक वैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा।
3: हाँ बोलो। जो भी जो दोस्त है उनके पास पैरेंटल कंट्रोल है, पर मेरे क्लास में भी एक दो बच्चे हैं जिनके कोई भी पैरेंटल कंट्रोल नहीं है।
1: हाँ, देखो एक और सेल्स पिच चाहिए आपको, विद पेरेंटल कंट्रोल।
0: विद पेरेंटल कंट्रोल एक थोड़ा रिलैक्सेशन है, थोड़ा आप पेरेंटल कंट्रोल के साथ दे सकते हो।
4: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन FM 107।
1: अच्छा, क्या

0: तुम दोनों में से अभी कुछ सपने बुने होंगे, कुछ बनने की चाहत है, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन, कोई ऐसा प्रोफेशन लगता है कि ना बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे?
1: मैं अभी भी सोच रही हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ. नॉट रियली.
0: अच्छा, अभी कोई इंटरेस्ट?
1: मतलब मुझे सब सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आता है, बट ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है.
0: चलो वो आ जाएगा जहन में. चेतन, कुछ जहन में, कुछ माइंड में बनना है कुछ?
2: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखकर बहुत मन करता है क्रिकेटर बनने का.
0: क्या बात है.
2: और क्या वो साइंस में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मन जो साइंटिस्ट्स करते हैं वो.
0: दोनों बहुत ही अलग अलग फील्ड में इनका मन है.
1: मेरा जैसे मतलब वो हर क्लास चेंज होता रहता है, क्योंकि आई थिंक जब तक मैं सिक्स में थी, जब इसकी एज की थी, तब तक मुझे भी साइंस बहुत पसंद था. उसके बाद से साइंस थोड़ा सा बिगड़ने लग गया. फिर मुझे थोड़ा मैथ्स पसंद आया, फिर मैथ्स भी बिगड़ने लग गया. तो अभी तक जो चल रहा है स्ट्रेट स्ट्रीक में, वो है लैंग्वेज. और लैंग्वेज में मैं काफी अच्छी हूँ, मुझे लगता है.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस. बड़ा ये ऐसी फील्ड है ना लैंग्वेज की, अभी बहुत ओपन हो चुकी है, इसका मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. आई थिंक इसमें कंपेटिटिवनेस भी इजीली हो जाती है. आपका कितना इन्फ्लुएंस है? डू यू नहीं, नॉट फोर्स देम, बट इन्फ्लुएंस देम टू सम एक्सटेंट के?
3: देखिए, शुरू में मैं बहुत विरोधी था कि हमें डॉक्टर इंजीनियर दो चीज नहीं, बच्चों को नहीं पुश करना चाहिए बनने के लिए.
0: राइट.
3: और मैं इनको शुरू से कहता था कि बेटा बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में काम करने के लिए. आप हिस्ट्री देखो, आर्कियोलॉजी देखो, मरीन साइंस देखो, बहुत कुछ देखो, एंड बहुत विस्तृत है, आप जो चाहोगे वो कर पाओगे. लेकिन हमारे जो साथी लोग हैं, वो जब आप देखते हो उनके बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार कहीं हम डिसीजन गलत तो नहीं ले रहे हैं. तो पीयर प्रेशर उधर नहीं, इधर भी है.
0: हाँ, ऑफ कोर्स. ये जो कतर में जो न्यूक्लियर फैमिली है, इसका जब मीटिंग होती है, जब फैमिली फ्रेंड्स बनते हैं, तो एक अलग ही किस्म का पीयर प्रेशर.
3: बिल्कुल बिल्कुल.
0: वहाँ पे लगता है कि इनका बच्चा ये कर रहा है, तो मैं कहीं
3: हम कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं.
0: बट मैं आपको बताऊं, अमित भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, एक बच्चा था सिर्फ, हार्डली आई थिंक दो, जो मास कम्युनिकेशन वाले थे, बाकी सब के सब इंजीनियर और मेडिकल फील्ड के थे. बट कंसिडरिंग द फैक्ट, मुझे लगता है कि कोई बुरा नहीं है, मतलब जो उसमें भी जा रहा है मास.
3: बट आप ये देखिए ना, बहुत सारे आजकल जो बच्चे, मेरे जमाने के भी बच्चे जो है, जिन्होंने मेडिकल या इंजीनियरिंग किया था, बाद में वो लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग करके अपने अपने एरिया में नहीं गए, स्पेशलाइजेशन उन्होंने किसी और एरिया में किया है.
0: राइट.
3: क्यों? और मेडिकल इंजीनियरिंग उन्होंने एज ए बेसिक डिग्री यूज किया है.
0: हाँ.
3: तो पीयर प्रेशर में या पेरेंटल प्रेशर में लोग डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते, फिर वो कुछ और काम करते हैं.
0: हाँ, वो दिल भी तो होना चाहिए ना,
3: दिल होना चाहिए.
0: और मेरे ख्याल में 10 में से किसी एक दो का दिल होता है जो एक्चुअली में वो करना चाहता है.
3: और कई बार आपको बहुत देर से वो मैच्योरिटी आती है कि यार मुझे ये करना चाहिए था, वो समझ में नहीं आता. आप प्रेशर में कर तो लेते हो, लेकिन समझ में नहीं आता.
0: कितने ही लोग इंजीनियरिंग करने के बाद MBA कर रहे होते हैं और मार्केटिंग में चले जाते हैं, कोई HR बन रहा होता है, उनकी पहली डिग्री देखो तो वो इंजीनियर होता है.
3: I agree.
0: तो ये बड़ा कमाल का है. And what do you like the most about your family gathering, family trip? कोई ऐसी ट्रिप याद है तुम्हें जो मम्मी पापा की वजह से तुम्हें मिली है, तो ऐसा कुछ मौका याद है?
1: ऐसा कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं जैसे एक बात मुझे बहुत पसंद आती है कि हम हर हफ्ते वीकेंड कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं. क्योंकि ऑनेस्टली पूरे हफ्ते घर में रहना इस बहुत बड़ा टास्क है. क्योंकि मतलब हम घर में बंद रह जाते हैं, मतलब कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता. और यूजुअली क्या है, हमारी वीक में और वीकेंड में दोनों टाइम इवनिंग में क्लासेस रहती हैं, जैसे क्रिकेट या स्विमिंग. तो वीक के टाइम हमारी स्विमिंग क्लासेस रहती हैं.
0: वेरी नाइस, ये अच्छा है.
1: तो वैसे तो वो दो ही दिन रहती हैं, बट बाकी दिन भी शाम को बस इसी में निकल जाता है कि होमवर्क खत्म करना है और एग्जाम आ रही है उसके लिए पढ़ना है. तो इसीलिए वीकेंड पे ही टाइम मिलता है बाहर निकलने के लिए.
0: वेरी नाइस, ये अच्छी बात भी, इन्वॉल्वड इन सो मेनी थिंग्स. बट अब एक एक टॉपिक है जो भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ. बाहर कंट्रीज में बहुत सारे, आपने नोटिस भी किया होगा, पढ़ा भी होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग हैज कम, है ना. और लोग इसको पहले सीरियसली लेते, बट नाउ इट हैज बीन टेकन रियली रियली सीरियसली, और उसके बहुत सारे रास्ते हैं. क्या आप इसके हक में हैं या हाउ अगेंस्ट आर यू विद दिस कॉन्सेप्ट?
3: देखिए, मैं जो है इसके बारे में काफी सोचा था मैंने बीच में, और मेरा ये पर्सनल सोच है कि बच्चों को थोड़ा बहुत सोशल इंटरेक्शन चाहिए. अगर आप होम स्कूलिंग पे कर देंगे तो वो कम्प्लीटली कट जाएगा. और मैं अपनी खुद की पर्सनल बात बताता हूँ. मेरे बच्चे जब यहाँ रहते हैं, उनका स्कूल बिरला है, तो आने जाने में उनको टाइम लगता है, तो बाकी टाइम घर पे रहते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता. तो कुछ क्लासेस हमने ज्वाइन कराई इनको।

0: स्पोर्ट्स क्लासेस, क्रिकेट हो गया, स्विमिंग हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, कि एटलीस्ट ये एक दो घंटा जाके दूसरे बच्चों के साथ कुछ तो इंटरेक्ट करेंगे और वो इनके बौद्धिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है।
1: हाँ, बहुत
0: बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्यवहारिक जो विकास होता है वो भी बहुत जरूरी है। तो होम स्कूलिंग में बच्चों को एकदम कट हो जाना ठीक नहीं है। या अगर आप ये कहें कि भाई आप 3 दिन होम स्कूलिंग करो, 4 दिन आपको स्कूल आना है, तो बच्चों से
1: ऑनलाइन स्कूलिंग के टाइम पे, ऑफ कोर्स कोविड के टाइम,
0: कोविड के टाइम देखा, और वो फिर काफी मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों का ध्यान लग पाना, देखिए पूरे टाइम तो कोई भी बच्चा ध्यान नहीं दे पाता। तो अगर आप कहेंगे आप घर पे ऑनलाइन पढ़ेंगे या किताबों से पढ़ेंगे तो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो जब थोड़ा इंटरेक्शन होता है, कुछ कुछ बातचीत से क्लू निकलते हैं, आपको चीजें याद होती है, आपको मजा आने लगता है, तो वो जो ह्यूमन एलिमेंट है आप उसको निकाल नहीं सकते। मतलब मुझे लगता है कि इंटरेक्शन चाहिए।
1: तो अभी क्या होता है, ये लोग कैसे जाते हैं, हाउ डू दे कम्यूट?
0: स्कूल का बस से जाते हैं स्कूल, और बस में थोड़ा टाइम आधा घंटा के करीब लगता है, तो थोड़ा वहाँ चिल मारते हुए, कभी सोते हुए, कभी गाते हुए आते जाते हैं।
1: व्हाट डू यू थिंक, तुम दोनों बता सकते हो, चेतन तुम बताओ पहले, तुम्हें लगता है कि बस की जगह पापा ड्रॉप करें तो ज्यादा बेहतर है? व्हाट डू यू प्रेफर, क्या प्रेफर करोगे?
2: आई मीन बस में अपने दोस्तों के साथ जाते तो उनसे बात करते हैं या फिर स्टडीज की बात करते हैं, तो पर इन अ मैटर ऑफ फैक्ट आप थोड़ी धीरे जाते हो क्योंकि बच्चों को पिक करना होता है।
1: ऑफ कोर्स,
2: पर जब पापा ड्रॉप ऑफ करते हैं तो कोई बात करने को नहीं होता
1: अच्छा,
2: है
1: राइट।
2: तो बस सोना ही होता है और पठन जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं
1: राइट राइट।
2: तो वो इट वेरीज। और मुझे लगता है कि बस में जाना सबसे बेस्ट है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब नहीं आज पापा आप छोड़ दो, आज बस में जाने का मन नहीं है। तो जैसे वंस इन वन एकेडमिक ईयर कम से कम दो बार तो होता ही है, या दोपहर को कि पापा आप जल्दी पिक करने आ जाना, क्योंकि जब स्कूल से कोई जल्दी जाता है तो बाकी सब बच्चे देख के बाकी सब बच्चों को बहुत जलन होती है, अरे हमें भी जाना चाहिए था।
1: हाँ, ये बंद तो करता ही होगा वैसे। तो कभी यूजुअली यू पिक देम अप, क्या कुछ ऐसा रहता है या बस?
0: कभी कभी साल महीने में एक आध बार, कभी जब ये लोग बहुत जिद करते हैं तो
1: एक बार एक आध बार
0: ले लेते हैं। बट जहां तक मुझे समझ में आया कि मतलब मेरे फोर्स ना करने के बाद भी ये लोग खुद भी प्रीफर करते हैं कि बस में जाएं, क्योंकि वहां पे उन्हें बच्चों के साथ खेलने को, बात करने को मिलता है।
1: और बस एकदम वो जो जो यहां पे टाइम भी ज्यादा है क्योंकि बसेस में, तो आई थिंक वो टाइम बड़ा जरूरी है इनके सोशल इंटरेक्शन का। वहां से थोड़ा सा इनको और बात करना आता है, और कुछ चीज ऐसी होती है कि वहां से समझ में आएंगी जो क्लासरूम्स और घर से पल्ले नहीं पड़ेंगे राइट। तो दैट इज आल्सो देयर। अच्छा, पीटीएम से डर लगता है जब जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है? हाउ ऑफन आर यू स्केर्ड ऑफ इट?
2: नहीं
1: नहीं लगता
2: मुझे पीटीएम से डर नहीं लगता।
1: वेरी नाइस। अच्छा,
2: क्योंकि मतलब एग्जाम्स में मैं अच्छा कर ही लेती हूँ, बट एक वो है कि क्लास के टाइम मतलब ड्यूरिंग द क्लास, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक क्लास खत्म हुई और उसका कुछ दो सेंटेंस भी बचे होंगे नोट्स लिखने को, और अगर मैंने नेक्स्ट क्लास में लिखना शुरू कर दिया तो मतलब मैं उस क्लास में कुछ और कर रही थी, और मतलब क्लास के बीच बीच में अगर कोई बात हो गई तो क्लास के बीच में बातें करती है, क्लास को सुनती नहीं है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो पीटीएम में फ्रीक्वेंटली रिपीट हुई होती हैं।
1: अच्छा।
2: बट उसके अलावा पढ़ाई में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मुझे पीटीएम से डर नहीं लगता।
1: वेरी नाइस। हाउ डू यू डील विद इट? बस शुरुआत में भी आपने जाना शुरू किया होगा, अभी पीटीएम में जाने का एक नर्वसनेस आजकल माँ बाप को खुद हो जाती है, क्या रहता है आपका?
0: मुझे याद है हमारे टाइम पे जब छात्र अध्यापक सम्मेलन होता था, अच्छा नाम था,
1: बड़ा अच्छा नाम लगता है,
0: तो हमारी बड़ी बैंड बजती थी।
1: हाँ, बहुत ज्यादा।
0: उस हिसाब से मैं देखता हूँ तो इनकी पीटीएम में दम नहीं लगता मुझे बहुत ही पोलाइटली पेश आते हैं और बड़े सलीके से बताते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं, ये क्लास में बात करती है, ये भला करते हैं, ये डिमका करते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत झेलना होता है, बाकी तो बड़ी ही पोलाइट मैंने पीटीएम्स देखी है।
1: क्योंकि अपने टाइम में थोड़ा सा अग्रेसिवनेस
0: ज्यादा होती थी,
1: बहुत सख्ती कह देते मैडम आप तो पीटीएस को, टेंशन नहीं है,
0: ये तो बिल्कुल नहीं पड़ता, तो गया आपके हाथ से गया।

0: पापा और मामा देखते हैं।
1: ये तो बहुत बड़ी प्रिविलेज है, आपको ही लगता?
2: हाँ।
1: बहुत बड़ी प्रिविलेज है, हमें तो नहीं मिली वाली प्रिविलेज के निकल जा रहे हैं उधर, बात चल रही है आराम से। बहुत अच्छा, ये एक एक आखिरी सवाल है मेरा, एक और अभी कल्चर शुरू हुआ है स्लीप ओवर्स का, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे?
2: मैं तो इसे किसी दूसरी दुनिया का शब्द मानता हूँ। अभी तक हमने इसमें
1: एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे।
2: अभी तक हमने इसमें वेंचर नहीं किया, शायद ही हम इसमें वेंचर करें।
1: नहीं नहीं हो पाएगा हमसे।
2: नहीं, और दूसरी बात ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया में दिन भर आप चाहे जहाँ भी घूमते रहें, नींद अपनी खटिया में ही आती है।
1: हाँ, ये तो अपने साथ।

0: होट फाइव से होटल भी आपको नहीं,
1: हाँ, नहीं, नहीं आती आपको लगता है वही चलो होना ठीक है अपना।
0: अरे तुम दोनों के बच्चों क्या क्या सीन है, स्लीप ओवर का भी पिचिंग करी है घर पे?
2: एक्चुअली स्लीप ओवर का तो मैंने मूवीज में ही सुना है,
0: क्योंकि
2: हमारे घर में उसके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं होती और हम ज्यादा परस्यू भी नहीं करते उसको, मतलब मुझे भी ऐसा स्लीप ओवर का कॉन्सेप्ट इतना पसंद नहीं आता।
0: ओके वेरी गुड।
2: लाइक अगर आप मुझे पूरे दिन मेरे दोस्त के घर छोड़ दो तो फिर मैं रात को घर आके सो लूंगी।
0: हां नहीं सही है सही है सही है। चेतन क्या क्या ख्याल है तुम्हारा?
3: सेम, बस चले जाओ वीकेंड पे उनके साथ पूरे दिन खेलो, बट लाइक 9 o'clock या 10 o'clock तक वापस आ जाओ, उधर स्लीप ओवर नहीं करना।
0: अब 5 स्टार देने पड़ेंगे आपको, क्या बात है अभी परवरिश में बैंग हो। तो ये आखिरी आखिरी बात है अमित भाई, आप अपनी ही जनरेशन को क्या एडवाइस देंगे टू डील विद दिस जनरेशन, क्या एडवाइस है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों के साथ ज्यादा ओपन होना चाहिए, छुपाना नहीं, साफ साफ बताना कि अपनी भी कमियां बतानी चाहिए कि हाँ हम गलत थे, हमने अपने जमाने में ये गलत किया।
0: हाँ,
1: तो बच्चों को समझ में आता है कि यार ये हमारे पेरेंट्स ये रास्ता जा चुके हैं,
0: क्योंकि हमने बहुत पहले होता ना कि परसीव इस तरह किया था कि हम बहुत बढ़िया काम करके आए हैं बेटा,
1: ये थोड़ा गलत तरीका है मुझे ऐसा लगता है, अपने आप को बहुत महान बता देना थोड़ी गलती होती है। आप शुरू से अगर सच्चाई बताइए और अपनी कमियां और अच्छाइयां दोनों बताइए और आप बताइए कि कमियों को दूर कैसे किया जाए, अच्छाइयों पे कैसे अमल किया जाए, तो मुझे लगता है बच्चे थोड़ा इधर उधर अगर बहकेंगे भी लेकिन बाद में वो रास्ता सही तय करते हैं फिर वो।
0: नाइस ओके। क्या एक्सपीरियंस है, कैसा लगा बच्चों को स्टूडियो में आके? चेतन कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके बताओ।
3: इट्स वेरी कलरफुल, बहुत अच्छा है।
0: मैं
2: भी यही कहना चाहूंगी कि लाइक द सेटअप इज सो कूल और ऑनेस्टली मुझे ये प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी मुझे।
0: थैंक यू सो मच अमित भाई। क्या कैसा रहा आपकी एक्सपीरियंस मेरे भाई?
1: मैं एक ही बात कहूंगा, सेटअप तो खैर बच्चों ने बोला, ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्या एनर्जी है यार, कमाल है यार। जिस तरीके से आपको मैं देखता हूँ, कुछ आरजे फ्रेंड्स को जानता हूँ, क्या एनर्जी अंदर से आती है। आप एक क्षण आप बैठे होंगे आपको लगेगा कि सामान्य है, और दूसरी क्षण वो जो एनर्जी और जोश आता है काबिले तारीफ है,
0: है ना, वो हो जाता है। ये चार दीवारें में बात करने का मजा ही कुछ और है। तुम दोनों इस करियर को भी देख सकते हो बाद में। नहीं पर थैंक यू सो मच, मुझे दिल से बहुत मजा आया बात करके, बहुत अच्छी परवरिश करी है आपने माशाल्लाह इनकी। तो दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग ऑफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, तो ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

चल बात करें सिर्फ तू और मैं, सवाल सारे जो गलत फहमी में बदल गए वो दूर करें। मोहल्ले में भी शोर है, हो हाय ये कैसा दौर है, सच बता।

0: 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:01।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का और ये शो द रिक्वेस्ट शो जहां पर मेरे साथ आपका 5 बजे तक का साथ रहेगा और आज जो है बड़े ही बेहतरीन गाने प्ले होने वाले हैं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। नए जमाने के ये गाने होंगे और क्योंकि आज का खास दिन भी है, जो नए लोग हैं उनको बता दे द रिक्वेस्ट शो जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने प्ले किए जाते हैं और जब आपकी प्लेलिस्ट भरी हो जिसमें 100 गाने हों 150 गाने हों 200 गाने हों तो समझ नहीं आता कौन सा गाना प्ले करवाएं कौन सा रहने दें। लेकिन ये एग्जैक्ट वही शो है जहां आप ना अपने गाने चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थीम। तो हर रोज एक नई थीम होती है हफ्ते में जहां आप अपने मर्जी के गाने उस थीम से रिलेटेड प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ भाई लोग हैं लेकिन वो हर बार कहते हैं दिल्ली अगल नहीं प्ले कर दो और कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो उनको पुराने ज़माने के ही गाने पसंद है लेकिन उनके लिए भी थीम लेकर हर रोज़ आते ही हैं, जैसे कि कल की थीम लाजवाब थी और लाजवाब गाने भी थे। लोगों की शिकायत भी आ गई उल्टा कि अरे यार 1 घंटे का ही शो है, इसमें तो 2-4 घंटे का होना चाहिए। और मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि रिक्वेस्ट शो में 2-4 घंटा तो होना चाहिए क्योंकि यार फिर वो रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाती। मैं कह रहा हूँ ना कि कल भी जैसे बताया था कि वो 2-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे बेहतरीन गाने जो होते हैं। और उसके अलावा उदित और अलका जी ने जो कल गाने गाए हाय हाय चुम्मेश्वरी, लेकिन आज चुम्मेश्वरी नहीं लेकिन ठुमकेश्वरी जरूर प्ले करवाएंगे क्योंकि आज है खास दिन। इसलिए क्योंकि आज कृति सेनन का है जन्मदिन जो कि है बॉलीवुड की एक्ट्रेस कृति सेनन। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद कृति सेनन, अगर आप मेरा ये शो सुन रही हैं हैप्पी बर्थडे। और आपके ऐसे ही सालों साल हिट मूवीज़ आते रहें, हिट गाने आते रहें, ब्लॉकबस्टर मूवीज़ देते रहें, 100-100, 200-200 करोड़ की ज़बरदस्त हिट दें, चाहे वो मिमी जैसी मूवी हो, भेड़िया हो, लुका छुपी हो, दो पत्ती हो या फिर तेरी बातों में ऐसा उलझा जी, आए हाय जो भी मूवी आप करें उसमें लाजवाब हिट्स आए, 100 करोड़ कमाए और आप ऐसे हिट देते रहे ताकि आपके गाने जो है हमारे FM 107 पे गूंजते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। और अगर आपके मन में कृति सेनन के लिए प्यार है, फैन है अगर आप, तो आप 666-22-107 पे उनके मूवी के गाने या फिर जिस गाने में वो हैं वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: भैया जब से ये फोन आया मैंने देखा ही नहीं 50 से नीचे हो, आज भी 54 है भाई सही है। चलो तो सबसे पहले अगर हम मैसेज देखें तो खदीम भाई का आया मैसेज, सलाम का वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग फजील भाई कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ आप बताएं। यूसुफ भाई का मैसेज, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ओके यूसुफ भाई कैन यू प्ले परम सुंदरी, बिल्कुल क्यों नहीं, मिमी का ये ट्रैक। सबिया फरकान का मैसेज, हेलो फजील ते प्लीज़ प्ले तेरी बातों में उलझा जिया, ओके। तो सबसे पहले यूसुफ भाई की जो रिक्वेस्ट आई है और सबिया फरकान की जो रिक्वेस्ट है वो ही प्ले करते हैं क्योंकि इन दोनों की रिक्वेस्ट सेम ही है, तेरी बातों में उलझा जिया। ये गाना भी बड़ा ही ट्रेंड हुआ था और इस गाने को अपन प्ले करते हैं जिसे गाया है राघव और असीस कौर ने 2024 की ये मूवी। तो चले इसी से शुरू करते हैं, सबसे पहला सॉन्ग ये आएगा, फिर उसके बाद परम सुंदरी रिक्वेस्ट किया है किस भाई ने, नाम असीम बाशा, ओके असीम बाशा की रिक्वेस्ट पे ये गाना प्ले होगा। बाकी एक और मैसेज है, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नाम है इनका जाहिद, ओके जाहिद भाई आपकी रिक्वेस्ट पे ये प्ले किया जाएगा, ठीक है। ये वाला ढूंढना पड़ेगा यार, कभी कभार होता है ना कि गाने की तासीर क्या है वो भी देखना पड़ता है यार, ऐसे नहीं कि बस प्ले कर दो, सब कुछ चेक करना पड़ता है। चल वहाँ जाते हैं, ये कौन सा गाना है भाई, चल वहां जाते हैं, ये तो है भी नहीं उनका यार भाई, थोड़ा सा मूवी अगर बता देते तो आसान हो जाता, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कृति सेनन इस गाने में नहीं है जो आप कह रहे हैं कि चल वहां जाते हैं। फिलहाल राघव और असीस कौर की आवाज में कृति सेनन इस गाने में एंजॉय करिए और बहुत से गाने हैं जो आज प्ले होने वाले हैं, जैसे कि परम सुंदरी है, ठुमकेश्वरी है, कोका कोला है, अखियां देखो लाल पीली अखियां, तेरे मैं तेरा बॉयफ्रेंड, स्वीटी तेरा ड्रामा, तो बहुत से गाने हैं उनके जो आज प्ले होंगे कृति सनन के सुंदर FM 107 दिल से देसी।

0: रहमान और श्रेया घोषाल इस गाने में क्या बात है लाजवाब परम सुंदरी। ये ट्रैक सुना आपने FM 107 पे और इस तरह के गाने आज प्ले होने वाले, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो गाने हैं ये ही गाने आज चलेंगे। श्रेया घोषाल इस गाने में थी और कंपोज किया AR रहमान ने। बिगेस्ट डांस अलोन हिट करियर का जबरदस्त हिट परम सुंदरी ये गाना जो है इन्होंने दिया, यानी कि कृति सेनन ने, मिमी मूवी का ये ट्रैक। अब हम बात कर लेते हैं बाकी के गानों के बारे में। फिलहाल एक कॉल आ रही है, इनसे बात कर देते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फजील भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई, कौन बात कर रहा है?
1: जी मैं आसिफ बात कर रहा हूँ जनाब।
0: क्या बात है आसिफ भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है ठीक होंगे।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं आप भाइयों की ठीक ठाक।
0: क्या बात है, कहाँ का रुख है आज?
1: रुख तो सर हमारा वकरा की तरफ का है।
0: क्या बात है, तो मतलब ऐसे काम से लौट रहे हैं या फिर काम को जा रहे हैं?
1: जी जी नहीं नहीं, लौट रहे हैं। हमारा जो है अल उदैद एयरबेस के अंदर में हमारा जो है जॉब है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो वहाँ से लौट रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब इस तरह से लौटते हुए आपको गाना सुनने का दिल है या मतलब ऐसे बात करने के लिए?
1: नहीं, दिल तो हमारा डेली रहता और डेली जो है मैं आपको सुनता हूँ
0: जी,
1: लेकिन एक शिकायत मैं लेके आया हूँ आपके पास।
0: हाँ बताएं।
1: बस पूरा नहीं मानेंगे?
0: नहीं नहीं, मैं मालूम है, मैंने पीठ मजबूत कर ली है। पता है मेरे घर के बगल मेरा एक दोस्त रहता था, तो उनकी अम्मी जब भी गुस्सा करा करती थी कहती थी, मारती नहीं थी वो, तो वो मालूम है वो अपने मियां से शिकायत करती थी, कहती है बेटा आज पीठ मजबूत करे रहो, अब्बा आएंगे तुम्हारे तब बताएंगे। तो वही हमने काम कर लिया है कि जब शिकायत आती है मैं पीठ मजबूत कर लेता हूँ अब।
1: आपने वहाँ पे जो है एक कोड़ा भी तैयार रखा है?
0: कोड़ा हाँ, हर ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम होता है, हमारे ऑफिस में कोड़ा रूम है।
1: जी हमारे यहाँ भी कॉन्फ्रेंस रूम है, कोड़ा रूम है, सब है। तो मेरी शिकायत ये है जनाब की जो है मतलब फिर मैं बोलूंगा, माइंड नहीं करिएगा।
0: हाँ।
1: ये हमारे कुछ सिंगर है मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार,
0: हाँ।
1: और उदित नारायण,
0: हाँ।
1: मतलब इस तरह के, हाँ। तो इन लोगों की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है?
0: अरे अभी यार देखिए, ये वाला शो शुरू हुआ है जून मई से, तो मई जून जुलाई में इनका तो नहीं आ रहा है ना, इवन अच्छा। मई में भी एंड में तो नहीं, लेकिन जून से शुरू हुआ ऑब्वियसली। हाँ जून से जुलाई, और अभी ये दो महीने में नहीं पड़ा, तो यार मेरी गलती रही है, लेकिन जिन लोगों का जन्मदिन पड़ा तो मैंने प्ले किया है। बाकी अगर ये शो साल भर चलता रहा तो उम्मीद है कि ये लोग आ जाएंगे।
1: साल भर तो खैर आ ही जाएंगे, लेकिन जब से आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया है मैं सोच रहा हूँ शायद आज बोलेंगे, शायद आज बोलेंगे, लेकिन पता नहीं है। मुझे लगा कि इन लोगों का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बट डायरेक्ट ये लोग आए बोले जाओ गाना गाओ।
0: जब ये लोग आए ना तब मेरे ख्याल में सर्च इंजन नहीं था, तो सर्च इंजन वालों को पता भी नहीं है कि कब है कब नहीं है। लेकिन एक बात तो ये है जरूर कि हम क्योंकि लोगों ने रिक्वेस्ट ज़रूर किए हैं 90s के गाने, 80s के गाने, और हर वक्त हम ये भी नहीं प्ले कर सकते, यू नो मिक्स होना चाहिए, अब कभी इधर कभी उधर, कभी नए ज़माने के, कभी 2020 के, 2015, 2010, तो कभी किसी का बर्थडे है या फिर कभी किसी की मूवी हमने ले ली। तो कल जैसे हमने उदित और उनका, कल अगर आपने सुना हो है ना, तो उदित का और अलका का गाना हमने प्ले किया, क्या लाजवाब, कल का दिन था तो वो है।
1: और इत्तेफाक ये देखिए, कल जो है मैं फैमिली को छोड़ने के लिए गया हुआ था, मैं ड्यूटी पे नहीं था, इसलिए मैंने मिस कर दिया उदित और अलका को।
0: अरे तब तो देखिए वही है कि ये तो किस्मत वाली बात है।
1: किस्मत वाली बात हो गई है।
0: सही है, वरना कल तो बहुत ही
1: गरीबों का भी ख्याल कर लिया करें।
0: अरे नहीं मेरा भाई, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी के गाने के लिए ही तो हम यहाँ

0: पर है, लेकिन कोई भी कृति सनन का, मैं समझता हूँ कि आप जो है पुराने जमाने के हीरोइन के फैन होंगे लेकिन कृति सनन के थोड़े थोड़े तो फैन होंगे, देखा कोई मूवी?
1: अब मैं आपको सच बताऊं ये कौन सी मूवी है मुझे पता नहीं है।
0: लो अच्छा
1: कृति सनन हीरोइन है, बोलेंगे भाई ले जाओ इसको खोपचे में थोड़ा कोड़ा दो इसको
0: नहीं एक्चुअली हमारा जो कोड़ा रूम है ना वो सिर्फ एम्प्लॉइज वाला है लिस्नर वाला भी नहीं बना है,
1: लेकिन एक बना है हमारे जैसे लिस्नर के लिए बना है भाई थोड़ा सोचे में आओ
0: नहीं मेरा भाई वो जल्लाद वैसे हंसता नहीं है लेकिन आपकी इस बात पे आज जल्लाद हंस रहा है सामने खड़े होके
1: मैंने जल्लाद को भी हंसा दिया
0: जल्लाद
1: सोचे तो मैंने जल्लाद को हंसाया तो और कितने सारे लोग मेरी इस बात पे हंस रहे होंगे
0: इंशाल्लाह बिल्कुल।
1: तो खैर मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो जो आप चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए और प्लीज किसी दिन जो है इन लोगों को भी बोलिए भाई आज तुम्हारा जन्मदिन है।
0: बिल्कुल मैं जन्मदिन ना हो किसी दिन लता जी को लेकर आऊंगा, ठीक है?
1: हाँ लेके आइए, लता जी के साथ अजीज और शब्बीर कुमार के भी अच्छे अच्छे गाने हैं।
0: चले हाँ नहीं, तो आपने बैलेंस भी कर दिया
1: जी, लास्ट टाइम में जब आपने 90 से गाने जो है बोले थे तो मैं उस दिन फोन किया था आपको, शायद आपको याद ना हो क्योंकि मैं इससे पहले जो हमारी बहन थी जो डियर जिंदगी उनका प्रोग्राम चलता था 4 बजे
0: महावश
1: महावेश खान जी, तो जैसे मैं फोन करता था वो बोलती थी आज आपका क्या डिमांड है बोल दीजिए उसके बाद फिर बात होती थी आगे। मुझे क्या कि 90s से गाने थोड़े अच्छे लगते हैं और आप लोग नए जमाने के हैं, हम भाई पुराने जमाने के।
0: अरे नहीं पुराने जमाने वाली बात नहीं, कल भी हमने पुराने जमाने वाले प्ले किए हैं, उदित और अलका के 90s से प्ले किए हैं, क्या जवाब। कल तो बहुत अच्छा दिन था, आप मिस कर गए, लेकिन आज का दिन भी ऐसे ही होगा, आप अगर नए जमाने के गाने सुनेंगे तो हो सकता है आपको भी पसंद आए।
1: ओके बहुत शुक्रिया आपका जो है फोन उठाने के लिए और टाइम देने के लिए,
0: थैंक यू
1: भाई, ऐसी कामयाबी और तरक्की दे,
0: आमीन मेरा भाई, और आप भी ऐसी कॉल करते रहा करिए इंशाल्लाह, थैंक यू
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, ठीक अल्लाह
0: हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। ठीक है तो ये वाली शिकायत मेरे को चलेगी ठीक है, और एक तो वो शाहनिया वाले भाई की शिकायत पता नहीं ख़त्म हुई नहीं हुई, लेकिन मैंने तो पूरी कोशिश करी थी भाई, अब जल्दी से आ जाते हैं बाकी मैसेज की तरफ। और ये तीन गाने हमारे पास लिस्ट में तैयार हैं, सबसे पहला जो गाना है वो है कोका कोला टोनी कक्कड़ नेहा कक्कड़ और यंग दिसाई की आवाज़ में, इस गाने को रिक्वेस्ट किया है मिस्टर खान साहब ने। ओके तो खान साहब की रिक्वेस्ट पे ये, फिर दिलजीत का नैना ये गाना है, क्रू 2024 मूवी का ये ट्रैक है, दिलजीत दोसांझ बादशाह हैं इस गाने में, शिराज अंजाम ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है, दूसरे नंबर पे नैना आ रहा है। फिर तीसरे नंबर पे है वो गाना जो मैं समझ नहीं पाया था लेकिन ये गाना भी बड़ा ही लाजवाब है, अरिजीत सिंह ने गाया है, शेख इरफान अल कासमी की ये रिक्वेस्ट, इन्होंने बाकायदा तस्वीर भेजी है, एंड दिस सॉन्ग इज चल वहाँ जाते हैं, ये गाना भी बड़ा ही लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं इन तीन गानों से और फिर बाकी लोगों की भी रिक्वेस्ट है ज़रा जल्दी से उनको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है वो आप लोगों की ही प्ले होगी। हेलो सर, हेलो मेरा भाई, दिस इज अब्दुल वहाब, प्लीज प्ले अपना बना ले भेड़िया, भेड़िया मूवी का ट्रैक सुनना चाहते हैं। ओके तो ये तीन गाने सुनिए फिर उसके बाद एक एक करके बाकी सॉन्ग भी आपके लिए रेडी किए जा रहे हैं, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम जन्मदिन यानी कि आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कृति सनन का और कृति सनन के ही गाने यहाँ पर प्ले किए जा रहे हैं, नंबर 666-22-107 इस पे आके व्हाट्सअप करिए, अपन रेडी है ठीक है।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

में ये गाना चल वहां जाते हैं, क्या ही ब्यूटीफुल ये ट्रैक FM 107 पे सुना आपने। ये शो आपके लिए जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो, आपकी अपनी मर्जी के सॉन्ग्स गाने यहाँ पर प्ले होते हैं। और आज हम जन्मदिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कृति सेनन का, और उनके हिट गाने आज हम प्ले कर रहे हैं। और अभी तक आपने परम सुंदरी, कोका कोला, नैना, चल वहाँ जाते हैं ऐसे गाने सुने। और शुरुआत हमने करी थी राघव और असीस कौर की आवाज़ में तेरी बातों में उलझा जिया से। वेल, बाकी जो रिक्वेस्ट है उन पर आ जाते हैं। अगर तुम साथ हो बाय अरिजीत सिंह एंड अलका मैम, पक्का ये हैं, कृति सेनन है इसमें। अगर तुम साथ हो, यही वाला ना। बाकी हेलो सर, दिस इज अब्दुल वहाब, प्लीज प्ले अपना बना ले भेड़िया। हाँ भाई, मैं ये गाना निकाल चुका हूँ, आपका ये गाना आ रहा है, फिर उसके बाद एक और गाना है जो सेम रिक्वेस्ट किया है सबीहा फरकान ने, ये गाना मैंने लगा दिया है। और सेम ये वाला गाना जो भेड़िया का ट्रैक है, अपना बना ले। फिर एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, हम डेली रिक्वेस्ट करते हैं, आज आपकी मर्जी पे प्ले करो चलेगा। देखो मैं अपनी मर्जी पे प्ले कर सकता हूँ, ये कोड़े वाला भाई जो है ना वो अपना बार घड़े लाए। और ये पता नहीं कल क्या कर रहा था, कोड़े में तेल लगा रहा था भाई। मैं कहा ये क्या कर रहे हो, तो कह रहा है कि मैडम ने कहा है। मैंने कहा अरे जब इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, तो कह रहा बहुत जल्दी इस्तेमाल में आएगा। तो मैं कहा अरे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये बात। तो मुझे लग रहा है कि आपकी साठगांठ है इमरान साहब कोड़े वाले से, आप ऐसा मेरे को बरगला रहे हैं कि अपनी मर्जी का प्ले करते चलेगा आज। मैं तो तैयार बैठा, वो कोड़े में तेल लगा के बैठा हुआ। तेल से क्या है, जैसे जिनको नहीं पता उनको बता दे, जो जैसे क्या है, तेल से चीज़ें और मजबूत हो जाती हैं, है ना, जैसे लकड़ी है, जो क्रिकेट बैट होता है ना उसमें ऑयलिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उससे क्या है मजबूती भी आती है, थोड़ा मस्त हो जाता है। बस ये क्या है, उसमें बॉल लगी थी, टूटेगी नहीं, एकदम सूखा नहीं रहता। ऐसे ही लेदर का जो चमड़ा लेकर बैठा है ना भाई मेरा, उसमें तेल लगाया उसने कोड़े में, और मैं कॉन्फ्रेंस रूम में अपने ऑफिस वाले में नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो इमरान भाई हल्का हाथ रखो। बाकी मैसेज ये कौन सा है, ये फिल्म तमाशा का है, इसमें कृति सेनन नहीं है, अगर तुम साथ हो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ यार, ये इसमें तो नहीं है, क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, जबकि ये जो गाना है ना अरिजीत सिंह का, अभी हमने प्ले किया चल वहाँ जाते हैं, मुझे इसमें भी नहीं पता था, ये 2015 का ट्रैक है यार, मुझे लगा कि 2018 में कृति आई है। लेकिन मैं अभी अभी एकदम से लेटेस्ट मुझे एहसास हुआ कि मैं उम्रदराज हो रहा हूँ भाई। मुझे लगा कि ये अभी 7-8 साल पहले ही तो आई है, लेकिन भाई इनको आए हुए 11-15 साल से ऊपर हो रहा है यार, मेरे को अपने उम्र दराज होने का एहसास है, तकलीफ सी हो रही है, थोड़ा दिल थोड़ा सा ऐसा जल सा रहा है। अच्छा कुछ लोग हैं जो सुनने वाले जो 30 के ऊपर आज ही पहुंच रहे हैं ऐसे आसपास में, कोफ्त सी होती है कि यार मेरे को ऐसा बूढ़ा नहीं होना यार, मेरे को यार कमर दर्द नहीं चाहिए, ये अर्थराइटिस और घुटने के दर्द नहीं चाहिए मेरे को, 30 के ऊपर ऊपर का यानी कि 29-28 का ही रखो, यहीं पर रोक दो, मेरा जीवन यहीं रोक दो। खैर शो पर आते हैं, तेल की डिबिया खोल दी थी ना हमारे कोड़े वाले भैया ने। क्या ना और लगाता हूँ जरा। तो ये जो गाना है अपना बना ले, अरिजीत सिंह का गाया हुआ है, ये गाना हम प्ले करेंगे। फिलहाल एक और मैसेज है, सलाम फजील भाई, पाकिस्तानी गाना सुनाओ। खलील साहब, पाकिस्तानी गाने का जिस दिन होगा वो दिन हम जरूर सुनाएंगे, और कभी ना कभी वो वक्त आ ही जाता है यार, आतिफ असलम का भी गाना हम कभी प्ले करेंगे, और सीन हो जाते हैं कभी कभार कि हम गाने वो वाले जो पाकिस्तान के हैं प्ले कर देते हैं। बाकी एक और मैसेज है, ठुमकेश्वरी, ओह वो चलो फाइनली ये गाना आया सुनने के लिए, ठुमकेश्वरी ये गाना भी हम प्ले करेंगे, लेकिन नाम क्या है आपका, नितिन, ओके नितिन भाई की रिक्वेस्ट पे ज़रा आ जाते हैं। ठुमकेश्वरी ढूंढना पड़ेगा यार, इसकी स्पेलिंग का भी मसला है, एक बार में आ गया भाई, 2022 का ये ट्रैक है, अगेन ये मूवी है भेड़िया मूवी का ये ट्रैक है, चलो, और बहुत ही लाजवाब मूवी थी यार ये वाली। तो ये दो गाने सुनिए, फिर उसके बाद क्योंकि वक्त हो जाएगा इन दो गानों को सुनने के बाद, और फिर हम गाना जो है वो प्ले करेंगे पहचान कौन वाला। एक और रिक्वेस्ट वैसे ले सकते हैं, और ये रिक्वेस्ट किस भाई के लिए, मैं वो सोच रहा हूँ कर लूँ, क्या कहते हैं उसे,

अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो कर लूं। यार एक बहुत पुरानी मूवी है, मैं पुरानी नहीं है, थोड़ी सी पुरानी है, कृति सेनन की बरेली की बर्फी, अगर आपको याद हो। बहुत ज़्यादा इसका मुझे याद है 2018 में जब ये मूवी आई थी, 18 में थी, 19 में या 17 में, क्योंकि मुझे पता था मैं दूसरी कंपनी में था वहाँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्रमोशन करवाया था। तो उसका एक गाना है स्वीटी त्रया ड्रामा, ये रिक्वेस्ट किया एक भाई ने, और ये करें प्लीज़ अगर तुम साथ हो। अरे यार दानिश भाई, ये जो गाना है ये इसमें कृति सेनन नहीं है, ठीक है, हो सकता है आप कृति सेनन को गलती से समझ रहे हो कि ये कटरीना कैफ वाला, नहीं ऐसा तो नहीं, हालांकि कटरीना कैफ भी नहीं थी। चलो तो ये नाम नहीं मिल रहा है मेरे भाई का, बरेली की बर्फी कह के बस उन्होंने छोड़ दिया कि बरेली की बर्फी का गाना प्ले कर दो। नाम अगर लिख देते तो बढ़िया है, लेकिन मुझे याद है स्वीटी तेरा ड्रामा, ये गाना मैंने सुना हुआ है, अच्छा गाना है। ये लो मिल भी गया है, यही रखा था। ये तीन गाने अपन बैक टू बैक प्ले कर रहे हैं भाई, अगर स्वीटी तेरा ड्रामा वाले, अगर ड्रामा वाले सॉन्ग की रिक्वेस्ट करने वाले भाई, अगर आप नाम लिखकर भेज दे तो बढ़िया है। बाकी ये जो दो गाने हैं इसे एंजॉय करें एफएम 107 पे। भाई आज की थीम अरिजीत नहीं है दानिश भाई, आज की थीम है कृति सेनन, उनका बर्थडे है आज, हिप्पी वाला।

और प्रवेश की आवाज में बस यही तक था कृति सेनन का दिन।

0: क्योंकि आज हमने सेलिब्रेट किया उनका बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे कृति सनन, आपके जो गाने हैं बड़े ही लाजवाब हैं और हमने यहाँ पर प्ले किए लिसनर्स की जो सुनने वाले हैं अपने भाइयों की रिक्वेस्ट पे। और अब वक्त आ गया है पहचान कौन गेम खेलने का, जहां पर मैं जो है आधा अधूरा गाना प्ले करूंगा, आपको गेस करना है उस गाने का नाम जो मैंने आधा अधूरा प्ले यहां पर किया होगा, इसी का नाम है पहचान कौन। तो क्योंकि आज हम गाने प्ले कर रहे थे कृति सनन के, उन्हीं के गाने अभी मैंने यहाँ पर तैयार करके रखे, बीच से कहीं से भी लिरिक्स जो है वो प्ले होंगी और आपको गाना पहचानना है। हमारा व्हाट्सएप का नंबर 6662107, आप बाहर से खेल सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं 4434377। हम एक बार में एक ही गाना एक शख्स से खेलेंगे या पूछवाएंगे या पहचानवाएंगे, ठीक है? तैयारी कर लिया आपने? चलो, तो अगर आप कृति के फैन हैं वो आज पता चल जाना है। सबसे पहला जो गाना आ रहा है जो कृति सनन के मूवी से है, इस गाने में भी कृति सनन है, बताइए इस गाने का नाम क्या है।

हाँ जी बताएं इस गाने का नाम क्या है। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 666-22-107। कितने परसेंट लोगों को लगता है कि ये गाना कौन सा है? क्या इसका सही जवाब आप बता पाएंगे?

हाँ जी, गाने का नाम बताएं। सबसे पहले जो जवाब आया है वो है अरिजीत। अच्छा, ये पहला है। बिल्कुल सही जवाब दिया है दानिश ने। ओके, फिर उसके बाद तुम मेरा कोई लागे, लाइन तो है इसमें लेकिन यूसुफ भाई गाने का नाम कुछ और है, अभी आपको पता चल जाएगा कुछ देर में। हुसैन भाई ने बिल्कुल सही जवाब बताया, दानिश ने सही जवाब बताया है। फिर एक और ये भाई ने, अच्छा ये बाकी मैसेज हैं अभी उनको भी पढ़ेंगे। ये बिल्कुल सही पहचाना है हमजा शब्बीर ने। फिर ये रिक्वेस्ट करी थी कि अच्छा हाँ, इन्होंने ऑडियो में भेजा था लेकिन हमजा भाई ने जो ऑडियो में भेजा था उसमें कृति सैनन नहीं थी। मैंने इनको रिप्लाई करा, इन्होंने फिर दूसरा गाना कहा टुकुर टुकुर सॉन्ग दिलवाले मूवी से, स्पेशल रिक्वेस्ट हमजा अदील, थैंक यू, इसमें कृति हैं। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोशिश करता हूँ अगर टाइम बचा तो बिल्कुल इंशाल्लाह प्ले करेंगे। टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर, ये गाना है किस मूवी का बताया आपने? दिलवाले। चलो आप जब तक लोग जवाब दे रहे हैं तब तक ढूंढ ही लेते हैं। टुकुर टुकुर दिलवाले 2015 मूवी का ट्रैक है। अगर इसमें हुई तो बिल्कुल आपके लिए ये गाना जो है वो प्ले किया जाएगा। बाकी अब मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं, और कितने लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं इस गाने का। ये रिगार्ड्स मोइन लिखा है, बिल्कुल सही बताया मोइन भाई ने भी। फिर यूसुफ भाई ने कहा है फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रही है, मतलब हुक लाइन कभी कभार लोग भूल जाते हैं। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, सुना दे भाई, देर हो गई, माजरत मेरा भाई, आपने नाम भी नहीं लिखा लेकिन आपने जवाब बिल्कुल सही बताया है। अरिजीत सिंह का गाया हुआ जो गाना है, लोगों ने सही पहचाना है गाने का नाम।

बंदा सही पहचाना है कई लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों का गलत भी हुआ। लेकिन दूसरा सॉन्ग बहुत ही आसान, लेकिन आसान सिर्फ हुक में है, मुश्किल यहां पर होगी।

खूबसूरत सॉन्ग किसी ने आज रिक्वेस्ट नहीं किया इस सॉन्ग को, लेकिन इट्स ओके, अब रिक्वेस्ट करना भी नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास वक्त बचा तो ये भाई के रिक्वेस्ट अपन प्ले करेंगे। नाम है इनका हमजा, टुकुर टुकुर सॉन्ग में सही बताया इन्होंने, कृति है।

0: तो प्ले अपन जरूर करेंगे, लेकिन इस गाने का नाम बताएं जो अभी प्ले किया।
1: हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा।
0: यूसुफ भाई ने सबसे पहले इसका जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। हुसैन ने कहा है बिल्कुल, हुसैन भाई का भी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आसिफ ने भी फाइनली जवाब देना शुरू कर दिया, बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए आसिफ भाई। और फिर दानिश भाई ने भी इसी में सही जवाब दिया है, हिशाम ने गेम में एंट्री मार लिया और हिशाम ने भी सही जवाब दिया। जो भाई कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग नंबर है 4434377, माजरत भाई डायरेक्ट कॉल पर नहीं उठा सकते हम। फिर एक और मैसेज बिल्कुल सही आया है, इनका जवाब हमज़ा शब्बीर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर गेम में एक और एंट्री मारी है शख्स ने, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है फलक, हाँ फलक, इनका नाम फलक है। फिर एक और ये मैसेज, जाहिद भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया, बहुत ही उम्दा। सही जवाब क्या है?

चैलेंज असली चैलेंज तो है अगला गाना। इस गाने को पहचानो तो मैं मानू कि कृति के गानों के कितने बड़े फैन हो आप। लेट्स सी, मोहित चौहान का गाया हुआ ये गाना है एंड द सॉन्ग इज

0: और इसी के साथ चैलेंज को पूरा किया है सबसे पहले हुसैन भाई ने, फिर फलक ने, उसके बाद दानिश आजाद ने। बिल्कुल सही पहचाना, क्या बात है यार। मतलब आप लोगों के लिए तो वो प्ले होना चाहिए कि खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। बहुत ही उम्दा। और फिर एक और मैसेज है कि यूसुफ भाई से तो मिलना पड़ेगा। एमके भाई कह रहे हैं यूसुफ भाई से मिलना पड़ेगा। अरे आप दानिश से देखिए, दानिश से भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो गाना है ये यूसुफ भाई नहीं पहचान पाए। यूसुफ भाई का रह गया मामला इस वाले में। लेकिन दानिश है, फलक है, हुसैन भाई है, ये खिलाड़ी हैं यार ये सब। ओके, फिर उसके बाद हिशाम भाई का भी अभी सही जवाब आ गया है, यूसुफ भाई नहीं पहचान पा रहे हैं। फिर ये एक मैसेज था जिन्होंने डिलीट कर दिया, शिकायत ही थी। मैं कह रहा हूँ भाई उस्मान भाई, मैं मेरी पीठ मजबूत हो गई है, शिकायत थी, मैं मानता हूँ। आपके गाने कभी कभार रह जाते हैं क्योंकि आप थीम पर नहीं रहते, और माजरत के साथ कोड़ा मैन जो है कोड़ा मैन एकदम स्टूडियो के उस पार खड़ा रहता है। कभी वो कड़वा तेल लगा रहा होता है, कभी वो धार लगा रहा होता है कोड़े में, कभी वो एकदम टाइट लेदर का कोड़ा लेकर आता है, मजबूत बना रहा होता है कोड़े में, हर वक्त वो तैयारी कर रहा होता है। तो अगर हमने इधर उधर गाना प्ले किया थीम से हटके, तो वो कोड़े मेरे पीठ पे चमकेंगे। पीठ कितनी भी मजबूत हो भाई, अगर कोड़ा चमका ठीक है। तो अम्मी हमारी कहती थी पता नहीं कैसे आंख बंद रहती है, बड़ा होगा आंख खुल जाएगी। तो मुझे लगता है वही दिन होगा जब मैं इधर उधर के गाने थीम से हटके प्ले कर दूंगा, मेरी आंख खुल जाएगी जब चमड़ा पड़ेगा तो। और ये कोड़ा भी ऐसा वैसा नहीं लेकर आया है, चमड़े वाला कोड़ा है। एमके भाई कह रहे हैं नजर लग गई। हाँ भाई, ये नजर लगा दिया आपने। यूसुफ भाई कह रहे हैं ये छोड़ो, मुझे दानिश भाई से मिलना पड़ेगा। हाँ यार, ये बात तो है, सब के सब एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद खादिर कहते हैं गुड आफ्टरनून फजल भाई, हाउ इज परम सुंदरी भाई। बहुत लेट हो गए आप बहुत दूर से आ रहे हैं होते हुए, लेकिन ये गाना हमने प्ले कर दिया है। अभी फिलहाल जो गाना मैंने प्ले किया, जो आपको पहचानना था, वो गाना था ये।
1: थोड़ी थोड़ी कथई सी उसकी
0: मोहित चौहान का गाया हुआ ये गाना, बिल्कुल सही लोगों ने पहचाना है, बिल्कुल परफेक्ट, एक भी गलत जवाब नहीं।

कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है और हैप्पी बर्थडे टू कृति सरन, उनके जन्मदिन पे आज हमने उनके फेवरेट या कहें हिट गाने प्ले किए हैं। और अब हमजा भाई आपकी रिक्वेस्ट खाली नहीं जाने दूंगा। अरिजीत सिंह का गाना आखिर में मैं प्ले कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एफ एम 107 पे, टुकुर टुकुर ये गाना, कृति सनन जिसमें है, एंजॉय करें, उनके फैंस एंजॉय करें। एफएम 107 दोस्तों आप भी सुनते रहिए और इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे समर स्पोर्ट्स में और शाम 4 बजे शाम 4

0: 888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: FM 107 Time Check.
2: Okay, classroom, silence, silence, please. Everybody, अपने अपने WhatsApp निकालिए, please. एक तो ये क्लास में समझ के बाहर है अभी. हेलो, हाँ, कहाँ है तुम्हारा WhatsApp? WhatsApp निकालो. मैसेज करो जल्दी से. प्रिंसिपल आ रहे हैं अभी इंस्पेक्शन के लिए. बुलाऊं अभी? सर ये मान नहीं रहे. अभी आ रहे, रुको.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 444

इवनिंग आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आजिर भाई साहब. आज मैं मास्टर जी के रोल में हूँ, लेकिन हमारी देसी भाषा में मास्टर जी नहीं कहते, कहते मास्टर जी आ गए. मास्टर जी तो मास्टर जी आ गए. सारे के सारे व्हाट्सएप पे दिखाओ साइन करा क्या है रुपए से 666-22107 नंबर सबसे पहले लगेगी हाजिरी, नहीं तो प्रिंसिपल साहब देंगे सजा. मैं सही बता रहा हूँ. और ये शार्पनर कोई किसी का नहीं लेगा, सब अपने अपने लेके आइए. मैसेज पढ़ूंगा जरा मैं. क्या मैसेज है, क्या हाल चाल है भाई के? पहला ऐसा टीचर है जो बोल रहा है क्लास में व्हाट्सएप निकालो. अलग है जी, हम हुसैन भाई बहुत सारा प्यार भाई को. ठीक है सईद हम सब भाई लिखते हैं सलाम कोई ब्रो, आपके क्या हाल अहवाल है, आपकी स्टोरीज और गपशप के फैन. सईद भाई को बहुत सारा प्यार भाई, मैं आपको फैन. ख्याल भाई को वालेकुम सलाम. खलील भाई लिखते हैं वालेकुम सलाम. स्टोरी बजेगी क्या? अच्छा स्टोरी चले कुछ देर भाई. और मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू सो मच. ये मैसेज क्या है, डीपी भाई ने, डीपी भाई थैंक यू भाई, बट डीपी भी चेंज कर लो डीपी भाई. और गुड आफ्टरनून कबीर सर, वेरी नाइस किड्स, दीज आर वेरी नाइस, सबसे बेस्ट क्लास. मोहम्मद शिव भाई थैंक यू सो मच. यूसुफ भाई लिखते हैं कबीर इज अ गुड टीचर, हाथ में शार्प स्टिक लग रही है. यूसुफ ये मजाक करने की जगह हाथ आगे करो. ये यूसुफ मेरी क्लास में इतना शैतान बच्चा है, इतना शैतान. बाहर खड़े हो अभी के अभी. टीचर से मजाक करते हैं. एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम हमारे असर साहब. वालेकुम अस्सलाम. और अगर जी स्टूडेंट्स हाजिर हैं. ऑलमोस्ट फर्स्ट मैसेज था वो यूसुफ भाई, ऑलमोस्ट. पर वालेकुम अस्सलाम. और एमके भाई वालेकुम अस्सलाम. नियाज भाई लिखते हैं सर कैसे हैं सर, प्रेजेंट लगाई इन्होंने मोहम्मद नियाज भाई ने. अस्सलाम वालेकुम चाचू, ये चाचू पता नहीं क्यों बोलते हैं मेरे को, मेरा आज तक समझ नहीं आया. फिर भी ठीक है मोहम्मद खान साहब, मिस्टर खान साहब. काजिम भाई वालेकुम अस्सलाम. कहते कबीर भाई बहुत सारा प्यार आपके लिए, आपके लिए बहुत सारा प्यार भाई भर भर की. हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद भाई वालेकुम अस्सलाम. और क्या मैसेज, क्या सर यूसुफ भाई को बेंच पे खड़ा कर दो. कौन है ये टीचर को बताओगे? ये हुसैन, इनका नाम लिखो, आज इनका नाम लिखो. ये बच्चे ने मुझे इतना परेशान कर. हुसैन बेटे इधर आओ, इधर आओ. आपको मोर बनना है? नहीं मुर्गा नहीं बनना, मोर बनना है. यहाँ बैठो. टीचर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए बताइए. बदतमीजी बोल रही, कैसी क्लास है ये? अस्सलामुअलैकुम जाकिर साहब. वालेकुम अस्सलाम. मैं बढ़िया भाई. सैयद खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम. वसीम साहब लॉन्ग टाइम नो सी में भाई. मोहम्मद अशफाक भाई वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. उस्मान और अगजई साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, वेलकम कहते हुए. भाई आ गए जी, भाई आ गए. क्या आलम भाई के, ये मोहम्मद हुसैन साहब हैं, इनके बाद मैसेज किया है. सही है, मैं पीछे के बेंच पे ही हूँ, हिलना नहीं है वहाँ से. ये ज़्यादा मस्ती आ रही है. डायरी कल साइन करवा के लाना. कॉल मैसेज, सॉरी सर. क्या कह रहे हैं हुसैन भाई? सॉरी सर मैं मोर नहीं बन सकता, मैं मेल. बात तो सही है इसके बच्चे की, शानदार. शाबाश शाबाश बेटे, इधर आओ. आप फर्स्ट बेंच बैठोगे, ठीक है? वेरी नाइस. इनका रोल नंबर चेक करके वन कर दो. और तब उसमें लिखती हूँ गुड आफ्टरनून सर, रोल नंबर 14 प्रेजेंट हेयर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कुछ बच्चे मतलब इतने माशाल्लाह. बेटे नंबर नहीं आया ना, सारी फिर बताऊंगा. वालेकुम तब बहन. एक मैसेज, सलाम वालेकुम कबीर भाई, आप 107 की चांद हो. तारिक भाई थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम, इतना सारा प्यार देने के लिए. आपका प्रोग्राम सबसे बेस्ट होता है, थैंक यू सो मच भाई. लॉट्स ऑफ लव तारिक भाई को. तारिक अजीज़ आप हमारे अजीज़ हैं. सलाम भाई वालेकुम अस्सलाम. राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया. तो सलाम दो हमने बहुत सारी कर ली है. कुछ चीज़ें बता दूँ. अच्छा आज की कहानी पर कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि आज की जो स्टोरी है जो मैं कुछ देर में सुनाऊँगा आपको, ये भारी स्टोरी है. तो कमज़ोर दिल वाले ये कहानी बिल्कुल ना सुने. इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट यू अ लॉट.

0: मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं ओवन क्या कहता हूँ मैं आपसे, सुनिएगा जरूर सुनिएगा, लाइव सुनिएगा ना। आज की कहानी इज वेरी हैवी, इट्स अ वेरी हैवी स्टोरी। तो दो भाई, अगर आप जो है आपका दिल मजबूत है तो आपके लिए है ये कहानी, नहीं तो आप इमोशनल हैं विच इज़ फाइन, इमोशनल लोग बड़े प्यारे होते हैं, तो अगर आप इमोशनल हैं तो फिर आप देख लो भाई अपना अपना अपना ऐशे का अपना अपना देख। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैंने मैंने कंग्रेचुलेशन हैं हैं नया चाइल्ड। अरे मेरी, ओ माय गॉड, ये किसने अफवाह फैलाई है कबीर साहब जो है फादर साहब बन गए हैं। भाई नहीं बना हुए, किसने भेजा है मुझे, खामा खा मुबारकबाद मिल रही है। एक मैसेज, आई मिस द स्टोरी यस्टरडे, नो प्रॉब्लम भाई, आई विल सेंड यू, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। बढ़िया, तो कमज़ोर दिल वाले आज की कहानी से डिस्टेंस बना के रखें, फिर वरना आप बोलेंगे इतनी भारी कहानी क्या, हम डर जाएंगे, जैन जी नहीं डरेगा। अनीस जामे वाले, जैन जी तो डरते नहीं भाई, जैन जी कहाँ डर रहे हैं। आई एम सिक 25 डेज, अरे 25 दिन से बीमार थे वसीम भाई, तबीयत ठीक है, अल्लाह हाफिज़ना मेरे भाई, ठीक ख्याल रखिए अपना। एक मैसेज है हुसैन भाई का, सर जी हम आपको फॉलो करते हैं, हमारा दिल फौलाद है, फौलाद सबको सुनेंगे। मेरा भाई हुसैन भाई को हाई फाइव। तो ठीक है, आज की स्टोरी इज गोइंग टू बी रिली है, बाद में कोई मुझसे लड़ने ना, क्योंकि मुझसे लड़ने का लोगों को बहुत शौक है। मेरी 4 मरतबा रेडियो बढ़ाई हो चुकी है भाई साहब, रिकॉर्ड है मेरा। तो कोई ना जाए, वैसी कहानी सुनाते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है इससे। तो मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, आज की जो स्टोरी इज गोइंग टू बी हैवी, इफ़ यू डोंट लाइक हैवी स्टोरीज स्टे अवे। ओके जी, ओके, फिर नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना। बाकी कुछ देर मिलते हैं 11 मिनट 2 सेकंड के बाद, शाम के कारण फिर होगी आपसे मुलाकात। मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे कह रहा हूँ स्टे ट्यून्ड, जाना नहीं, बहुत बढ़िया जगह पर हो आप। हाँ,
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज तो कैंची लेके दौड़ रहे हैं भाई।
1: हाँ मैं छुरी लेके दौड़ रहा हूँ, छुरी कैंची नहीं छुरी।
0: और तला भाई क्या चल रहा है, तला भाई जिंदगी कैसी चल रही है?
1: अमन अमन भाई अलहमदुल्ला सब खैर है भाई, तुम बात चल रही है अलहमदुल्ला।
0: अरे अरे
1: आगे
0: अरे
1: क्या बताऊँ अभी यार, अब आगे क्या बताऊँ,
0: बट फिर भी
1: समझ सकते हो
0: किस कैटेगरी में है अभी जिंदगी, कौन सा जॉनरा चल रहा है जिंदगी का?
1: भाई। अभी जो है ना, मैं जो हूँ ना कंफ्यूजोलॉजी फाइनेंशियलॉजी इनमें चल रहा हूँ भाई, ये वाला जॉनर चल रहा है। हाँ भाई ये वाला जॉनर चल रहा है, कुछ
0: अच्छा
1: समझ नहीं आ रही है क्या चल रही है
0: तो समझने की जद्दोजहद जारी है, फिर जान दो यार जो हो रहा है फ्लो में हो जाएगा क्या
1: भाई।
0: टेंशन।
1: नहीं मसला बताऊं कि अपन वो वाले से जॉनरा में, जॉनरा है ना जॉनरा, हाँ
0: हाँ
1: जॉनरा में वो वाले के जो कहा देखा जाएगा
0: हाँ थ्रिलर
1: ठीक
0: चल
1: है,
0: रही है अभी,
1: उस
0: थ्रिलर
1: टाइम
0: चल रही है।
1: उस टाइम कर लेते हैं, और फिर जो हो रहा ना वो अब देखा नहीं जा रहा,
0: हाँ अच्छा ओके, देखा
1: समझ
0: नहीं
1: रहे
0: जा
1: हो
0: रहा।
1: भाई।
0: ओके ओके
1: हाँ अब तो हो रहा है ना वो देखा नहीं, हमने ये बोल बोल के तो बहुत कुछ चल गया, जो होगा देखा जाएगा यार ठीक है।
0: अब
1: अब तो
0: देखा नहीं जा
1: कहानी है, अब
0: रहा।
1: जो हो रहा है, अब वो हो जो रहा है वो देखा नहीं जा रहा
0: तो क्या ट्विस्ट का इंतजार है क्या, कब पिक्चर में ट्विस्ट आ जाएगा?
1: यार। मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाए, कोई अल्लाह का
0: इंशाल्लाह
1: बंदा ना गलती से अकाउंट में कुछ ट्रांसफर कर दे बड़ा अमाउंट, तो
0: हाँ।
1: कुछ कुछ बेहतरी की तरफ चली जाएगा
0: तो
1: मेरी।
0: आपकी पिक्चर के विलन कौन है अभी, मुझे ये बताएं।
1: यार हम खुद है भाई, हम खुद है,
0: अच्छा आप खुद ही विलन है, वेरी नाइस
1: हम खुद है भाई,
0: वेरी
1: बात
0: नाइस
1: आते खुद, किसी के अब्बा की हिम्मत नहीं है लेकिन हम खुद है भाई
0: वेरी
1: अलहमदुल्ला।
0: नाइस, ये अच्छी बात
1: हम
0: है
1: मौका
0: फिर।
1: नहीं देते, हम किसी को मौका नहीं देते भाई, वो बर्बाद होना चाहते हूँ मैं किसी को मौका नहीं दूंगा, मैं सेल्फ बर्बाद, लोग सेल्फ मेड होते हैं, हम सेल्फ बर्बाद है।
0: वे अब मैं खुद के लिए काफी हूँ, ये वाला सीन है।
1: हाँ,
0: वेरी
1: बस
0: गुड
1: बस बस
0: वेरी
1: हम
0: गुड,
1: सेल्फ बर्बाद है,
0: क्या जबरदस्त
1: वो
0: कैटेगरी
1: वाली
0: में है
1: क्या
0: आप,
1: है।
0: ये
1: फिर
0: मज़।
1: माशाल्लाह
0: हाँ
1: आपसे दोस्ती जो है ना वो और डूबी है ना,
0: ये तो किस्मत का खेल है, देखिए ये किस्मत का खेल है। कई कई मरतबा क्या होता है,
1: बस
0: पत्ते
1: भाई।
0: गिराते हैं और उसमें से एक इक्का निकल के आ जाता है, तो ये वो हुआ है आपके साथ, समझ रहे हैं
1: मैं ढूंढ रहा हूँ कोई काली वाली भैंस मिल जाए, उसको रोटी छोटी खिलाऊं फजर को, कोई काम हो बच्चा, यहाँ यहाँ मिलती भी तो नहीं है।
0: उसके लिए तो भाई आपको फिर पाकिस्तान का एक बार टिकट कटवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्कों में मिलेगी, सुबह सुबह रोटी खिलाने ले जाना।
1: रोटी नहीं खाती यार, चलो भाई चल आ क्या
0: तो मैंने कौन से आपके नाम की गुड़िया बना रखी है, दिन रात बैठ के उसमें चुंचे
1: है
0: करे जा रहा हूं।
1: भैया, जो टिफिन चल रहा है ना तुम्हारे दिन में मुझे पता है, तुम
0: थैंक यू। हाय
1: मजनू क्या करो, प्यार जो कर रहा तुझसे बता सकता था तुझे।
0: हाय, यही तो मोहब्बत है, यही तो मोहब्बत है तलावाई तलावाई। और क्या चल रहा है अभी,
1: रोंगा बिल्कुल।
0: ड्यूटी ऑफ?
1: हाँ भाई ऑफ तो हो गई, एक दोस्त हमारा कनाडा जा रहा, कनाडा
0: अच्छा
1: इस वीकेंड पे, तो वो कनाडा जा रहा, सजा हमें मिली हुई है
0: क्या बात हुई,
1: शॉपिंग की भाई। हाँ सजा हमें मिली हुई है ना शॉपिंग की, आफ्टर ऑफिस चल
0: अच्छा
1: भाई
0: अच्छा
1: ये लेना है, चल भाई वो लेना है, चल भाई
0: हाँ
1: यहाँ खुआ रहा है, चल भाई चलो क्या करें क्या
0: अरे
1: करूँ,
0: अरे,
1: दोस्ती हम गले
0: अब
1: पड़
0: तो
1: जाती है।
0: नई नई गाड़ी है भाई, सब कोई तला भाई से मतलब होगा अभी तो, तला भाई यहाँ घुमा दो, तला भाई वहां घुमा दो, क्यों तला भाई?
1: भाई अभी जो नई वाली है ना अपन निकाली नहीं है, अभी अपन पुरानी चलाना है ऑफिस के लिए,
0: अरे गरीब
1: नजरों में नहीं
0: आदमी,
1: आने का,
0: गरीब सोच।
1: नजरों में नहीं आने का रे बाप्पा, नजरों में नहीं आने का, अल्लाह दे फरहासुद्दीन से बचाए अल्लाह ताला।
0: अरे मेरा भाई तो उसे क्यों इतना इतना सोच समझ के क्यों रखा हुआ है, उसे कहीं निकालते क्यों नहीं, नहीं गाड़ी को, व्हाट इज द
1: यार वो
0: प्रॉब्लम?
1: देख बड़ा करीब है, दिल का टोटा है वो, बड़े बड़े करीब है वो अपने, और मैंने यकीन किया 2023 में जब आई थी ना,
0: हाँ
1: 2023 2024 में, 24 में आई थी,
0: हाँ
1: तो तब से मेरा ईमान डगमगाया हुआ था उस पर ना, खराब था दीन, ईमान खराब था उस पर, और
0: हाँ
1: आपकी भाभी जान ने पकड़ के रखा हुआ था मुझे, खबरदार अगर ये ली तो घर छोड़ के भाग जाऊंगी।
0: तो ये
1: मैंने
0: दो
1: कहा
0: साल
1: घर
0: जो
1: से ही
0: लेने में
1: बाहर है, आप
0: लगे
1: और
0: हैं,
1: कहाँ बाहर जाएंगी।
0: 2 साल उसको आपने सपना पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहम करम, और
1: हाँ
0: 2 साल अभी चलाने में लगाएंगे,
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: 2 साल चलाने में
1: हाँ नहीं नहीं
0: लगाएंगे।
1: नहीं चलाएगा आपका भाई चलाएगा, टेंशन नहीं लो इंशाल्लाह, क्योंकि वो बेगम अभी बेगम बच्चे गए ना पाकिस्तान,
0: हाँ
1: तो मैंने कहा घर से तो बाहर निकली थी और कितना बाहर निकलेगी, मुल्क से बाहर जा चुकी है, अब किस बात की धमकी, अब ले लेता हूँ।
0: कौन तला, कौन तला रे पहले तो जॉन
1: हाँ
0: तला।
1: हाँ बस बस, और आपको मजे ही बताता हूँ, आपकी भाभी को नहीं पता,
0: अच्छा उन्हें नहीं पता है इस बारे में कि आपने गाड़ी ले
1: नहीं
0: ली है,
1: पता है, नो बेबी नो।
0: इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन जो लोग बिना क्या कहते हैं घर की सीईओ के मुताबिक नहीं लेते हैं, वो मैं उनको समझ नहीं पाता हूँ कैसे कर लेते हैं यार आप।
1: उनको आप कहते हैं जो वो लोग होते हैं साइंसोलॉजी के अंदर चले जाते हैं,
0: यार ये कैसे कर लेते हो,
1: वो बस भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर चुका हूँ देखा जाएगा के चक्कर में। अब मुझे हो रहा है कि अब मैं कैसे देखूंगा जो होगा, मुझसे देखा ही नहीं जाएगा वो
0: क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन और भाभी को नहीं पता है। मैं बस सोच सकता हूँ कि वो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा।
1: बिल्कुल
0: वेरी नाइस।
1: मैं हैबत में हूँ अभी ना, मैं ये सोच सोच के रोज ट्रॉमेटाइज हो रहा हूँ, अब क्या होएगा।
0: अच्छा इसलिए नहीं चला रहेगा
1: होएगा हाँ अब जो होएगा ना, अब मैं ना वही ना मैं घबराहट में कुछ उसके साथ कर रहा हूँ ना, सीन में उसको रखा हुआ है कि वो नजर बट्टू आ जाए हमारी, वो देख ले आरती उतार ले उसकी
0: भाई। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
1: फिर चलाएंगे भाई।
0: मैं समझ सकता हूँ कि गाड़ी
1: किस बात के लिए।
0: वो अगर पूछेंगे तला तो मेरे बिना कितनी मर्तबा इस गाड़ी में बाहर गए हो, तो आपके पास जवाब होना चाहिए।
1: किलोमीटर दिखा दूंगा, किलोमीटर दिखा से ऊपर नहीं खा पाए अभी तक।
0: डर के मारे आदमी जो है एक किलोमीटर भी नहीं चला रहा।
1: मैं यकीन सर, अबे भाई यकीन नहीं करेगा।
0: हाँ
1: जब से लिया रोज जाके नहीं है, पार्किंग में बैठ के गाड़ी में बैठ रहा हूँ।
0: उसके टायर धोते रहो, टायर धोते रहो, नए लगने चाहिए जब भाभी आए।
1: किलोमीटर मैंने नफिल बोल दी है वो माँ की दुआ बुलबुल है माँ की दुआ वाला जो नहीं था, कल भाई ने कमेंट सजेस्ट किया था।
0: हा, हा, हा।
1: वो लिख लूंगा मैं, अल्लाह देखो माँ की दुआ लगेगी कुछ नहीं को
0: भाई। ऑल द बेस्ट। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ। वैसे भाभी कब आएंगी, अगले महीने आ रही है, इस महीने आ रही है, कब आ रही है
1: भाई? मैं यार अगले महीने आएगी।
0: अल्लाह ताला बस भाई मुझे बताइएगा, खबर दीजिएगा, अपडेट देते रहिएगा जिंदगी की।
1: भाई अगर देखो तुम्हें तुम्हें खबर मिल जाएगी, दोनों ही मिल जाएंगी, अल्लाह ना करे वो वाली ना मिले जो मैं सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह तुम्हें अच्छी खबर मिलेगी।
0: इंशाल्लाह
1: दोस्त तो मेरा हूँ, सोचो में तो है मेरे कुछ ना कुछ।
0: ये जो आप थ्रिलर रोमांटिक मूवी से थ्रिलर बनाई फिर अभी हॉरर की तरफ जा रहे हैं, सच में यार ग्रेट एक्टर, यार ग्रेट एक्टर, सैल्यूट, इंस्पिरेशन।
1: बाकी आप जो है ना, आप मेरे ऊपर एक कहानी लिख दो
0: तो बनती है।
1: कहानी मैंने सुनाऊंगा ना, लिख देना मेरा थॉमस थॉमस नाम रख देना।
0: नहीं मैं बोलूंगा ये कहानी 2024 से शुरू है, एक लड़के ने गाड़ी देखी थी वहां से कहानी शुरू होगी। वेरी गुड,
1: ऐसा कुछ कर गए ना बस। थ्रिलर भाई अच्छा लगे भाई। ओ तुम मेरी कहानी नहीं बताना, तुम मार दे तो बंदा कहानी में भाई।
0: नहीं मैं एंड में बचा लो, अस्पताल बचा दूंगा बस, अस्पताल
1: में। ठीक है नहीं भाई, नहीं भरोसा, नहीं नहीं इस पर भरोसा नहीं। तू बंदा मारता है भाई, तू की कहानी ही बंदा मारने के लिए बनती है, क्या करूं मैं।
0: नहीं मैं
1: अच्छा खासा बंदा जा रहा होगा, अरे हाँ। वो धप्पा हो गया फिर मार गया।
0: आपके लिए मैसेज
1: धप्पा हो गया भाई,
0: आपके लिए मैसेज आया नाजिया, मैंने लिखती ऑल द बेस्ट टू दिस भाई हु हैज टेकन दिस डिसीजन। तो आपके लिए ऑलरेडी वो डर रही है ये मैसेज।
1: अरे ये तो मुझे भी डर आ रही है ऐसे तो। ऑल द बेस्ट तो ये क्या वार्निंग है, तो ऑल द बेस्ट तो ये तो दिल दहला दिया मेरा।
0: ये देखिए
1: मतलब बंदा क्या भाई, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, ये तो कह रही ऑल द बेस्ट मतलब क्या होता है
0: इसमें, आसानी छुपी हुई है इसी में, आसानी
1: नहीं लग रही
0: भाई। नहीं लग रही,
1: लग नहीं रही भाई, लग रही थी, लग रही थी, बिल्कुल फील नहीं हो रहा।
0: तो नाजे में ना दुआ करे तला भाई के लिए सब। तला भाई ऑल द बेस्ट टू यू मेरा भाई, अल्लाह ताला आपको बचा के रखे और बताइएगा फिर क्या हुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह,
1: हां भाई इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी तुम्हारे पास न्यूज़।
0: डन डन डन, बताइएगा भाई।
1: चलो भाई
0: ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिएगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तो तला भाई का सीन आप समझ गए, तला भाई ने जो है डिसीजन ले लिया है बगैर भाभी को बताए, वो भी डिसीजन इतना बड़ा कि गाड़ी घर पे ले आए हैं। अब दुआएं काम आएंगी और तो क्या है, कोई स्किल सेट तो बचा नहीं सकता तला भाई को। अब आई डोंट थिंक सो क्योंकि डिसीजन एक छोटी सी चीज का नहीं है, गाड़ी लेके बैठा बंदा बताओ। एक होता है रिस्क उठाना, एक होता है रिस्क तले दब जाना। भाई ने अपने ऊपर रिस्क गिरा लिया है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फलक भाई। एक मैसेज है कबीर भाई, आपका प्रोग्राम इज़ वेरी गुड। जोजी भाई थैंक यू सो मच। जोजी पराचा भाई ने मैसेज किया है, खलील उर रहमान पराचा, थैंक यू सो मच। और एक भाई मैसेज करते हैं कि तला भाई को मेरी ये एडवाइस है कि कोई एडवाइस मैं दे नहीं पाऊंगा। कह रहे यही एडवाइस है, कोई एडवाइस मैं दे नहीं पाऊंगा। जकी भाई ने एडवाइस दी तला भाई आपको, वो कह रहे हैं कि मस्जिद में ऐलान करवा दीजिए भाई गाड़ी ले ली है। एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, इन्होंने काले रंग की बड़ी वाली गाड़ी ली है, अभी तक 1 किलोमीटर नहीं चलाई इन्होंने। जैसा कि भाई घर पे खड़ी हुई गाड़ी, इन्होंने दुआ निकल नहीं रही है, ऐसा रिस्क कौन लेता है, तब भी अल्लाह ही बचाए। नाजिया बहन ने काफ़ी पेसिमिस्टिक रिप्लाई दिया है आपके प्रति। वो कह रही देखो दुआएं तो अब निकल नहीं पा रही हैं, बट बस अल्लाह ही बचाए, देख लो तला भाई। ठीक है, तो मैंने पूछा था ना कि आपकी ज़िंदगी कौन से जॉनरा में है अभी, क्या वो हॉरर चल रही है लाइफ, थ्रिलर चल रही है, रोमांटिक चल रही है। तो भाई की लाइफ रोमांटिक थी, वो थ्रिलर उन्होंने बना दी है, और जब भाभी वापस आएंगी कतर में तो फिर एक हॉरर जॉनरा शुरू हो जाएगा, और हॉरर के एंड में क्या होता है ये आप सब समझ

0: जाने बताने जरूरत नहीं, एक कॉल उठा लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। अरे कबीर भाई किधर हैं आप भाई?
0: मैं तो इधर ही चे भाई, मैं किधर जाएगा भाई, मैं इधर ही। मैं खैरियत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार। आप सुनाइए
1: भाई, आजकल जो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस जो आ रही है ना,
0: हाँ,
1: वो जंतर मंतर के मीम्स देखने में आ रही है।
0: बिल्कुल आएगी, आनी भी चाहिए भाई। हाँ
1: तो ये आजकल लोग जो है ना वो इसमें इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा।
0: बिल्कुल करना चाहिए। आप बताइए कैसे हैं?
1: बस बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह यार। कभी तो यार से मुलाकात नहीं हो पा रही है, बस सुबह में जाते हैं, आप शाम में ड्यूटी है।
0: अरे भैया मेरे भाई, कुछ लोग सुबह की तरफ खींच रहे हैं, टग ऑफ वॉर चल रही है, कुछ लोग कह रहे नहीं शाम में ही ठीक हो, तो मैं खुद भी मझदार में फंसा हुआ हूँ। बट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। इतनी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तमाम लोगों को जो सुबह भी चाहते हैं। हैं
1: और सब खैरियत है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब खैरियत, सब खैरियत, सब खैरियत भाई।
1: तो कब को मुलाकात हो पाएगी
0: भाई? अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इंशाल्लाह हो ही जाएगी। अभी तो हमारा भी ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता हमारी क्या शिफ्ट कब लग जाएगी, पर इंशाल्लाह हो जाएगी मुलाकात भी, ऐसी कोई बात। हाँ वैसे किधर रहते हैं आप, कतर में कहाँ रहते हैं आप?
1: मैं तो वक्रा में हूँ ना, आ जाइए किसी
0: दिन, तो आ जाइए भाई साहब। इतना मंसूरा वालों को वक्रा बुलाइए आप, इतनी तो मेरे लिए तो चांद पे जाने जैसा है मेरे भाई।
1: अरे सर हम आ जाते हैं वहाँ पर, तो आपसे मुलाकात ना नहीं हो पाती है ना, हम तो आपके ऑफिस में बैठ के आ जाते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह जरूर मिलते हैं मेरे भाई, आपने कॉल करी इसके लिए। मैं ऐसे डेट नहीं दे सकता, बता दूंगा आप, लेकिन आपको इंशाल्लाह आप मैसेज में जुड़े रहे, है ना?
1: चलो ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। मुझे सेंड कर दीजिएगा वो
0: कहानी। हाँ जरूर जरूर जरूर सेंड करूंगा, मैसेज कर देना मुझे बस। ओके ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद एक मैसेज क्या है, ये हया भाई लिखते हैं, यस्टरडे स्टोरी वाज रियली वियर्ड इंसिडेंट एंड द क्वेश्चन रिमेंस हाउ इज इट पॉसिबल, ऑनेस्टली वेटिंग फॉर टुडे स्टोरी। और तरह भाई के लिए एडवाइस, बाय अ फ्लावर बुके विद अ नाइस गिफ्ट फॉर वाइफ व्हेन पिकिंग हर अप फ्रॉम एयरपोर्ट फॉर एंगर टू बी रिड्यूस्ड व्हिच ऑब्वियसली विल रिमेन। कह रहे गुस्सा तो नहीं जाएगा भाभी का, लेकिन कोशिश कर सकते हो तलहा। बुके से क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या हाल है भाई के, क्या हाल है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ कैसे हो? ठीक हो?
0: मैं बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह।
2: भाई आपके लिए ना ट्रैप बिछाया हमने।
0: मेरे लिए ट्रैप बिछाया?
2: आपके लिए ट्रैप बिछाया। आप वैसे तो मिलते नहीं हो, तो चलो हमने सोचा किसी ना किसी तरह मिला ले भाई को।
0: अच्छा,
2: बिरयानी का शौक हो गए, दिल्ली वाले हो?
0: हाँ, पर हमारी दिल्ली वाली बिरयानी देखो फिर अलग है, प्रॉब्लम ये आ जाती है, समझ रहे हो? तो हम लोग मसाले वाली खाते नहीं है भाई, हमेशा घर पे मेरी यही बहस रहती है।
2: अच्छा सुनो, आज इत्तेफाक ऐसा हुआ,
0: हाँ,
2: कि ना मैं काफी टाइम से मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बिरयानी के स्पाइस जरा ढूंढता हूँ, स्पाइसी बिरयानी हो।
0: हाँ,
2: ठीक
0: है। हाँ,
2: तो वो आपके मंसूरा में ये नजमा है, मंसूरा है, ये कंफर्म नहीं होता, वो कराची रेस्टोरेंट नहीं है।
0: हाँ, हाँ,
2: उनका पहले एक बार टेस्ट किया था तो इतना मजा नहीं आया, लेकिन आज बिरयानी खाई ना भाई।
0: हाँ,
2: ओए, यकीन करो एक एक बाइट ना कराची की याद दिला रही थी।
0: ओहो, उधम कट गया, उधम कट गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
2: यकीन करो आज मैंने स्पेशल एक एक्स्ट्रा लेके खाई उधर।
0: ओहो, तो थोड़ी और एक्स्ट्रा ले लेते क्योंकि आज की कहानी बहुत हैवी है मेरी जान, आज के लिए तो आपको जरूर खाने की जरूरत पड़ेगी।
2: बस मैं पहले ही पेट फुल करके बैठा हुआ, और ये जो तलाब भाई है हमारे,
0: हाँ,
2: इनकी खुशी तो बता रही होती है कि वाइन करते नहीं है। पहले इतना खुश होता है,
0: बस कुछ दिन की बात है, बस कुछ दिन की बात है।
2: हाँ, और अच्छा देखो, अपने आप को ट्रैप से बचाने के लिए,
0: हाँ,
2: भाई साहब बोला मैं तो गाड़ी चलाते ही नहीं हूँ।
0: हाँ,
2: फिर जाके बैठता हूँ रोज रात गाड़ी में।
0: आप देखो क्या होता है, इनका गाड़ी चलाते तो नहीं है अभी
2: वाला भाई,
0: वक्त बताएगा वक्त,
2: आता नहीं है नाउ टाइम टू इंटरवल।
0: हाँ,
2: वो ट्विस्ट आने वाला इनकी लाइफ।
0: अभी अभी इंटरवल हो चुका, इंटरवल पे उन्होंने गाड़ी ले ली है।
2: क्या नहीं है, इंटरवल से पहले गाड़ी ली थी ना, अब गाड़ी के साथ जो बीतनी है वो इंटरवल में आएगा ना भाई।
0: हाँ, अभी क्लाइमेक्स बहुत दूर है इनका, अभी क्लाइमेक्स बहुत दूर है, जब आएगा तो पता लगेगा, शोर हम तक आएगा जरूर। हाँ, और अभी वो मैसेज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुमसे शेयर करके घबराहट हो रही है। खुशी बर्दाश्त थोड़ी है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं बताऊंगा लेकिन तला भाई मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, मैं तो चाहता हूँ कि फंसो, बहुत दिनों से मुझे कुछ मसाला नहीं मिला है गॉसिप करने के लिए।
2: आप चाहोगे ना, अब हमें ये कंफर्म नहीं है आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई।
0: हाँ,
2: लेकिन पप्पा जरूर कर रहे हो आप दूसरे चौथे में, आज भी कांग्रेचुलेशन मिला।
0: अरे खामखा कांग्रेचुलेशन मिल रहा है भाई, खामखा।

0: लॉन्ग कांग्रेचुलेशन।
1: अच्छा मुझे ये समझ
0: नहीं
1: आ रहा,
0: इतने फास्ट तरीके से पप्पा बना पा रहा है। पता नहीं आ रहा है, पता नहीं किसने अफवाह फैलाई है, कुछ और अफवाह फैला देते यार तो ये सीन है। तो जना सरदार
1: भाई ने कहा था कि चाची हुआ मेरे, चलो वो समझ में आता।
0: हाँ
1: ठीक है यार कोई नहीं, इससे छोटे भी चाचू होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है।
0: नहीं वो मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नंबर दे भाई को मेरा, फौरन नंबर भाई को कह रहे हैं आपका, आपको नंबर दे दूं मैं।
1: बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उनको मेरा नंबर दे दो या मेरा, मेरे को उनका नंबर सेंड कर दो भाई, मैं अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूं भाई।
0: डन डन डन, मैसेज करो व्हाट्सएप पे, नंबर देता हूं मैं।
1: हां लेकिन लेकिन पहले बता दूं, बचने के तरीके महंगे होते हैं भाई।
0: इट इज और क्या, इट शुड बी कॉस्टली ब्रो, ऐसे थोड़ी यार, ऐसे थोड़ी अभी इतना गाड़ी का खर्चा कर लिया तो थोड़ा और हो जाए, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही,
1: ये बात तो है
0: बिल्कुल ठीक। अरे बाप,
1: सवाल वगैरह नहीं रखा
0: भाई, सवाल ये हो गया अपने आप ही, क्योंकि अब मैं कहानी की तरफ बढ़ाऊं सीधा। आज की कहानी बहुत हैवी मेरे जान, बहुत हैवी कहानी है और आपको मजा आएगा इंशाल्लाह।
1: ठीक हो गया, तो भाई हमारे ट्रैप में आओगे कि नहीं आओगे?
0: आऊंगा भाई, बिल्कुल आऊंगा आपके ट्रैप में मेरी जान, ऐसी मोहब्बत के ट्रैप्स में हमेशा आपका भाई तैयार है, कोई टेंशन नहीं भाई, आएंगे, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है,
1: ओके
0: मेरा भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो अब मैं जल्दी से मैसेज पढ़ दूँ, लास्ट में जल्दी से कहानी की तरफ पढ़ूंगा। यूसुफ भाई कहते हैं कबीर सवाल पूछने वाला है ही नहीं, सभी को पता है कि सारे मैरिड लोगों के हॉरर जॉनर में चल रही है और बैचलर लोग रोमांटिक। यूसुफ भाई आपने बची कुछ उम्मीद को खत्म कर दिया। यूसुफ भाई कह रहे अरे मत करो, कोई एडवाइस कोई फायदा नहीं है। और मैसेज किया है ये अरबाज भाई, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कारी मौलाना कबीर सर साहब। आए लिखते हैं सर बस कहानी से पहले 6 समोसे और 1 रसगुल्ला खाया हूँ। ये बस है बेटे, ये शुगरी चीज़ है ये। एक मैसेज है, चाचा इस भाई को बोलो रेस्टोरेंट का नाम बताओ, मुझे नहीं मिल रही अच्छी बिरयानी। ओके अब्दुल करीम साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं बताता हूँ हर एक चीज़। और अभी शुरू करते हैं स्टोरी, तो मैं बिल्कुल मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिनके दिल कमज़ोर हैं प्लीज़ इस कहानी से दूर रहें, ये कहानी थोड़ी सी इमोशनली हैवी है, सो आई हैव टू गो इन द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी। सो अगर आप मुझे लाइव सुन रहे हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मुझे जानना है क्योंकि आज आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ऑडियंस में कौन कौन है, तो कहानी सुनाने में और मज़ा आता है, यू नो आई फील कि सामने आप बैठे हुए हैं, सो इट मेक्स इट मोर पावरफुल फॉर मी। बस एक रिक्वेस्ट है, कर सके तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई गल नहीं वीर जी, कोई गल नहीं, फिर भी मैंने सुनानी तो है ही कहानी। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोमो एंड देन हम शुरू करते हैं, किधर गया, छोटा सा ही प्रोमो चलाते हैं, प्रोमो क्या है, रेडियो की लैंग्वेज में से बम्पर कहते हैं, ये चला देते हैं, ये लो।
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
0: ओके सो आई होप कि आप सब तैयार हैं, बिकॉज दिस स्टोरी इज रेडी। एक मैसेज है, हुसैन भाई क्या कह रहे हैं, हाँ भाई हमें आज है, हम हैं राजी खुशी, सॉरी मास्टर जी, हाँ ओके सो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ सबसे पहले। तो सो इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये बहुत हैरत अंगेज़ है एंड इट इज़ अ हैवी स्टोरी। सो अगर आप इमोशनली थोड़े से आपको ट्रिगर कर जाती हैं चीज़ें, तो प्लीज़ 1 आवर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो जो आज का किस्सा है इसे सुनाने के लिए मैं कई साल आपको वक्त में पीछे ले जाना चाहता हूं। आज का किस्सा शुरू होता है 1890 से, 1890। एक शख्स था जिसका नाम था टीडियो फुलंशियो महीजा। सो टीडियो जो था वो अपने मेंशन में बैठा हुआ था, मेंशन लिटरली बहुत ही खूबसूरत लेविश लग्जरियस मेंशन। ये जो मेंशन था उसने कुछ दिनों पहले ही खरीदा था और ये मेक्सिको में खरीदा था, गुआनाहातो नाम की एक जगह थी जहां पे ये मेंशन उसने लिया था। लेकिन इस वक्त 1890 में जनवरी का महीना था और वो बीमार था काफी अपने मेंशन में, और फीवर हुआ था, बहुत तेज बुखार था, वो करवटे बदल रहा, सोने की कोशिश कर रहा, कप कपी छूट रही थी, बुरी हालत थी उसकी। इतने में उसकी जो वाइफ है मरिया, वो उसके कमरे में आई और उसके हाथों में चाय का कप था, वो लेकर आई चाय उसके लिए, साइड टेबल पर रखी और फिर बैठ के साइड में बैठ के बात करने लगी। शी कुड लिटरली सी कि उसका हस्बैंड टेडियो फिजिकल पेन में है, बुरे

हाल है उसके, कांप रहा है कंबल में, अपने आप को पकड़े हुए, पसीना पसीना निकल रहा है और बुरे हाल है उसके। और टिडियो ऑन द अदर हैंड, टिडियो जैसे बुखार था, फिजिकल पेन था, लेकिन जब उसने अपनी वाइफ को देखा तो एक मेंटल पीस मिला उसे, एक सुकून सा मिला, क्योंकि इन दोनों की रिसेंटली शादी हुई थी। टिडियो जो था वो पूरी तरह से दीवाना था, दीवाना अपनी वाइफ का। मरिया से वो बे इंतहा मोहब्बत करता था, इट वॉज अ लव मैरिज। जब से मरिया को देखा वो ही जस्ट लॉस्ट हिमसेल्फ कम्प्लीटली। मरिया जो थी वो उसकी नज़र में काफ़ी स्मार्ट, लविंग, फन, केयरिंग, बेतहाशा खूबसूरत, और वो उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखता था। तो जब वो कमरे में आई, ऑब्वियसली चाय दी उसे ला के, तो उसकी उसका ये केयरिंग करना, उसके लिए फिक्र करना, एंड ऊपर से उसका प्रेजेंस टिडियो के लिए बहुत बड़ी बात थी। ही वॉज कम्प्लीटली इन लव विद मरिया, और उसने बहुत मेहनत करी मरिया से मिलने से पहले। वो दिलो जान से मेहनत करता था, क्योंकि वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत करी। उसके बाद वो एक माइनिंग इंजीनियर बना। माइनिंग इंजीनियर बनने के बाद जब खूब पैसा बनाया उसने, और वो पैसा उसने मरिया से शादी करने के लिए बनाया, तो मरिया से उसकी शादी हुई, और मोहब्बत, फिर एंगेजमेंट। कोई टाइम वेस्ट नहीं किया उसने, ऐसा नहीं कि एंगेजमेंट करके रुक गया या एंगेजमेंट बाद में करेंगे, सब कुछ फटाफट, चटमंगनी पट बिया टाइप। और जहां तक ये मेंशन की भी बात है, ये मेंशन उसने इसलिए नहीं खरीदा कि उसके पास बहुत दौलत है तो खरीदना है, ये मेंशन उसने शादी के दिन अपनी वाइफ के नाम पर उसे एक तोहफे के तौर पर दिया था, एज अ वेडिंग गिफ्ट। और ये मेंशन भी कोई ऐसी हल्की जगह पर नहीं था, ये मेंशन एकदम परफेक्ट था, इट वॉज लेविश। मतलब आप बाहर से अगर इसे देखें तो आपको लगेगा भाई साहब ये तो महल है। इट वॉज वाइट, दो तीन जगहों पे ग्रे शेड्स, एक जैसा एक एक मिनी वर्जन एक किले का लगता था। गोना हाँ तो मैक्सिको में ये बना था, और जहां पर ये था ये परफेक्ट लोकेशन थी, क्योंकि इसी जगह पे मरिया का जो मायका था, मतलब उसके जो माँ बाप थे, वो पास में ही रहते थे, वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते थे। और आसानी टिडियो को भी थी, क्योंकि वो यही काम काज भी करता था, तो दोनों चीजें आसानी थी। तो मरिया को मन करेगा तो वो मायके जा सकती है लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे, और उसका काम भी था, तो इससे बढ़िया लोकेशन मिल नहीं सकती थी। और जो आस पड़ोस था, जो नेबरहुड था, वो भी काफी साफ, काफी सिक्योर्ड, काफी सेफ और एकदम शांति वाला। हम कहते हैं ना कि यार ये तो पॉश एरिया है, ये बिल्कुल वैसा एरिया था। सारे के सारे लोग आसपास के लोग अपर क्लास प्रोफेशनल्स थे, सबके बड़े बड़े काम थे, बड़े बड़े लोग थे। एंड टिडियो की लाइफ कुल मिला के एक सक्सेसफुल शादी, एक बड़ा मेंशन, घर भी नहीं मेंशन, और आसपास की जिंदगी देख के कोई भी कह सकता था कि दिस इज द सिंबल ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए इंसान को। इसलिए बीमार तो पड़ा था अपने मेंशन में भी, लेकिन ही वॉज रियली रियली प्राउड एंड ही वॉज सेटिस्फाइड विद लाइफ। मरिया जो थी वो उसके लिए चाय लेकर आई थी, और बैठी हुई थी साइड में, बातें कर रही थी, स्माइल एक्सचेंज हुई, मरिया ने उसके माथे पे किस करी, उसे बोला यू विल बी फाइन, और फिर मरिया ने एक ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि वो कुछ रिक्वेस्ट करने वाली है अभी टिडियो से, और टिडियो उसके एक्सप्रेशन को रीड कर पा रहा था कि वो कुछ बोलने वाली है। तो उसने बोला बोलो बोलो मरिया, क्या बात हो गई? एंड उसने बोला कि मुझे डिनर पे दरअसल घर जाना है, मैं वहीं से तुम्हारे लिए पैक करा के लेकर आऊँगी। तो मरिया जो थी, क्योंकि उसका मायका वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो अक्सर मरिया और टिडियो दोनों मियाँ बीवी जाया करते थे पैदल चल के, और घर खाना वहीं पे खाते थे मोस्टली। जहां पे मेंशन था वो तो जगह बहुत सेफ थी, लेकिन जो पैदल चल के जाना था और मायके तक पहुंचना था, उसके बीच में एक काफी वल्नरेबल एरिया आता है, वो ऐसा नेबरहुड था जो ज्यादा सेफ नहीं था, क्योंकि वो मेंशन से थोड़ा सा दूर था, भले ही वॉकिंग डिस्टेंस है, मगर दैट वॉज नॉट अ सेफ एरिया। और जब उसने सुना कि मरिया जो है वो अकेले जाएगी, क्योंकि आमूमन गया हर बार टिडियो ही मरिया के साथ जाता था ताकि वो सेफ रहे, मगर इस बार मरिया को अकेले चल के जाना है, एंड वो डर गया। वो इस बीमारी में कपकपी लेते हुए भी अपनी बीवी से बोला मरिया नो यू कैनॉट गो, तुम जानती हो मगिंग होती है, लोग आते हैं उस तरफ, लूटपाट बहुत होती है, मत जाओ। मरिया ने उसको बोला रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी, मैं देख लूंगी और मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके? और मरिया पे तो हेड ओवर हील्स दीवाना था वो अपनी वाइफ का, तो ऑब्वियसली

उसे लगा कि अभी गहरी तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, आई कैन नॉट स्टॉप हर. उसके घर पे उसके माँ बाप ने खाना वाना बनाया है, मैं कैसे. उसने बोला ओके जस्ट बी सेफ और जल्दी आ जाना. मरिया मुड़ी, उसने बैग उठाया और वहां से चली गई. कुछ घंटों बाद टेडियो अपने बिस्तर में जब था और कच्ची नींद में था, बीमारी से उसकी हालत खराब थी, उसके दरवाजे पे दस्तक हुई मेन गेट पे. वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया कि यार इस टाइम कौन है, हो सकता है मरिया हो. लेकिन वो जो दरवाजा था, जो नॉक हो रही थी, वो कोई दरवाजा बहुत लगातार जोरों से पीट रहा था. देखा ये क्या हुआ. और इस बीमारी में भी वो उठा फटाफट और दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे को खोला. और जब उसने दरवाजा खोला मेन गेट, तो उसके सामने मरिया तो नहीं थी, लेकिन उसके नेबरहुड में रहने वाले काफी सारे लोग खड़े हुए थे और उन सबके चेहरे उतरे हुए थे. एक उनमें से आगे आया और नजरें झुका के वो बात करने की कोशिश कर रहा था टेडियो से, जो टेडियो बेसिकली बीमार हालत में खड़ा था. और इस नेबरहुड में इस नेबर ने कहा, टेडियो हमारे साथ जरा आगे तक चलेंगे आप प्लीज इफ यू कैन. और टेडियो ने बोला, पर हुआ क्या है, आप लोग बताते क्यों नहीं है. और लोगों ने बोला, टेडियो प्लीज कैन यू प्लीज कम. और टेडियो उनके साथ फिर बाहर निकला. उसने लिटरली पूरी शॉल वॉल ओढ़ रखी थी दो, और पूरा वो बुखार में कपकपाता हुआ जा रहा था. कई सारे लोग थे उसके आगे पीछे. फिर वो इस जगह पे पहुंचा जहां पे लोग ले जाना चाहते थे. ये एक एली थी, एक गली थी, और ये गली उसके नेबरहुड के पार थी. जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कई सारे लोग हैं, और ये कई सारे लोग टिडियो को देखकर उसे रास्ता दे रहे हैं, अपने आप हटते चले जा रहे हैं, और टिडियो आगे बढ़ता चला जा रहा है. सब लोग हट रहे हैं, टिडियो आगे बढ़ रहा है. टिडियो का दिल जो था वो तेजी से धड़क रहा था, उस पाउंजिंग जैसे छाती से भी बाहर आ जाएगा. सबके सब अपनी नजरें झुकाए हुए थे. और फिर टिडियो ने देखा बहुत सारे पुलिस वाले हैं वहां पे. और फिर जब पुलिस वालों ने रास्ता दिया और वो हटे, तो क्लियरली उस गली में जो उसे दिखा, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक था. उसकी वाइफ मरिया वॉज डेड, वो जमीन पे पड़ी थी. क्लियरली जिस बात का डर इतने वक्त से था टेडियो को, वैसा ही हुआ. अब ये देखकर इतना तेज बुखार, पहले से उसका दिमाग कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा है. उसे तो ऐसा लग रहा है ये सब कुछ फेक है, मैं सपना देख रहा हूं, मेरा बुखार तेज है, शायद इसलिए ये सब हो रहा है. एंड पुलिस उससे सवाल पूछ रही है कि आप विक्टिम के हस्बैंड हैं, और वो जवाब नहीं दे पा रहा है, और बस अपनी गर्दन को हां में झुका रहा है. समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे. और वो सीधा मरिया की तरफ देख रहा है जो अभी जमीन पर पड़ी हुई है, उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा है. तो सब कुछ, बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, बट उसके अंदर पावर ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि कुछ भी प्रोसेस कर पाए. उससे पूछ रही पुलिस, आप कहां थे, किधर थे, बट वो गर्दन झुकाए हुए बस अपनी वाइफ को देखे जा रहा था. He was shivering, almost like freezing to death. बुरा हाल था. उसे लोग पकड़ के ख्याल से उसके घर पे ले गए. जब वो घर गया, उसे पता भी नहीं कि वो घर कब आ गया. He was stunned. और घर पे उसे सोफे पे जब लिटाया, तो उसे भी नहीं पता चला कि उसकी बॉडी कब शट डाउन हो गई कंप्लीटली. And he fell unconscious. मगर फिर उसे एक सपना आया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फीवर ड्रीम. सपने में उसने देखा कि लिविंग रूम से खिड़की है लिविंग रूम की, और खिड़की से उसे नजर आ रही है अपनी बीवी मरिया, जो उसकी तरफ चलती हुई आ रही है लेकिन लड़खड़ाते हुए, और उसके पीछे पूरी एक ब्लड की ट्रेल है, पूरा ब्लड ही ब्लड है पीछे, और वो उससे मदद मांग रही है, टेडियो का नाम ले लेकर मदद मांग रही है. जब ये ख्वाब देख रहा था, एकदम से जोल्ट, एक झटके के साथ उठा, और एक झटके के साथ जब उठा, लंबी सांस खींच के पसीना हो चुका था उसका, तेजी से दिल धड़क रहा था जैसे भी सीने से बाहर आ जाएगा. वो इधर उधर देखने लगा घबराहट में. इतना भारी सपना आया उसे कि वो कुछ भी रजिस्टर नहीं कर पा रहा था. और अभी भी जगने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि दूर से, डिस्टेंस से, उसकी वाइफ उसे पुकार रही हो.

एंड ही कुड नॉट फिगर आउट कि आवाज़ आ क्यों रही है, ये मैं सपना देख रहा था, वो सपना था या जो हुआ वो सपना था, एंड ही वॉज जस्ट कन्फ्यूज, और सभी भी उसकी आवाज़ आ रही थी। एक दो दिन में उसका फीवर, उसका बुखार तो उतर गया, पर उसके बुरे सपने जिसमें उसे उसकी वाइफ नज़र आ रही थी वो सपना नहीं जा रहा था, बार बार यही हो रहा था, और ये सपना एकदम क्लियर था, और वो जब जागता तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्यों अपनी वाइफ की आवाज़ें आ रही हैं। वो रोज पुलिस के पास जाता था, रोज पुलिस के पास कि मुझे बताइए क्या आखिर हुआ, क्या आपका कानून क्या कर रहा है। भाई पुलिस के पास अनफॉर्चुनेटली नो आंसर्स। उसने पूछा मेरी वाइफ का बैग था उसके पास, वो बैग कहाँ है, उन्होंने बोला वी डोंट नो, वहां पे नहीं था बैग। और पुलिस वालों ने कहा कि मे बी एक चोरी का नतीजा है कि कुछ चोर आए, उन्होंने उसे लूटा एंड मार के चले गए, बट वी कुड नॉट गेट होल्ड ऑन टू देम, हमें नहीं पता, अभी हम पकड़ नहीं पाए, वी हैव नथिंग टू टेल यू राइट नाउ। लेकिन टिडियो फिर भी जाता रहा, पर वो ये सब सुनने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन चाहता था। वो बोला नहीं आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रुकने नहीं चाहिए, मुझे इसकी जड़ तक जाना है, फाइंड देम। पुलिस वाले देवर कमिटेड, पर कुछ मिल नहीं रहा था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन कोई अपडेट नहीं आई। टिडियो के मन में यह चल रहा था कि कोई इंसाफ नहीं है क्या, कहीं से कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा क्या। एंड फिर उसने अपने आप को जैसे कैद कर लिया हो, ये गम उसके लिए बहुत भारी था, वो मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा था। ही वाज सो ओवरवेलम्ड विद ग्रीफ, एक गुस्सा, गम, पुलिस की नाकामयाबी, और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट उसको एक गिल्ट था। वो पछतावा कर रहा था कि मुझे उस दिन बुखार क्यों हुआ, और अगर बुखार था तो मुझे फिर भी चल के जाना चाहिए था, उसके साथ जाना चाहिए था, अगर मैं जाता तो ऐसा नहीं होता। फिर एक और उसे गिल्ट हो रहा था इस बात का कि ये मैंने मेंशन यहां पे लिया ही क्यों, मैं कुछ और भी तो खरीद सकता था, ये मेंशन मैं इस जगह पे नहीं लेता, कोई सेफ जगह पे रहता तो शायद वो आज मेरे साथ होती। और ये सारा गिल्ट एक हॉरिबल फीलिंग उसके दिल में पैदा कर रहा था कि कोई आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। टेडियो वॉज लूजिंग हिज माइंड कंप्लीटली, उसने काम पे जाना बंद कर दिया था। वो पूरे दिन लिविंग रूम की उस खिड़की के पास जो उसे सपने में दिखती थी अपनी, वहां बैठा रहता था और सामने देखता रहता था, सुबह दोपहर शाम रात उस खिड़की के बाहर देखता रहता था कि कभी ना कभी हो सकता है कि मरिया चलती हुई आएगी उसकी तरफ, उसे दिख जाएगी, उसे उसकी आवाज सुनाई देती थी इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग। एंड क्लियरली वो खुद जानता था कि ही इज लूजिंग हिज माइंड कॉन्स्टेंटली। उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी, ना खाना, ना पानी, ना कहीं जाना, बस उसकी बीवी। ही वॉज ऑल कंज्यूम्ड कंप्लीटली। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा अपने आप को लूज करने लगा था कि उसे यह लगने लगा कि कहीं मेरी वाइफ की रूह मुझसे बात तो नहीं करना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी रूह हो सकता है कि मेरे पास आना चाहती हो, मुझसे चाहती है कि मैं ये सॉल्व करूं, हो सकता है मुझे वो बताए किसने उसकी जान ली, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो खुद से ये बातें करता रहता था ऑन रिपीट। वो इस तरह से ये बातें करता था कि जो लोग उसे जानते भी थे वो उसके करीब आने से डरते थे, बिकॉज ही वॉज नॉट स्पीकिंग नॉर्मली, पर ही वॉन्टेड टू सॉल्व कि क्या हुआ, उसे जानना है। वो खुद निकला, उसने फैसला किया कि नहीं मैं जगह जगह जाके पूछूंगा एंड आई विल सॉल्व दिस कि मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ। उसने पूरे नेबरहुड में हर किसी का इंटरव्यू घर घर जाके लिया, वो सॉल्व करने को निकला, जगह जगह गया, बट नो क्लूज, नथिंग, डेड एंड। मगर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीजें होती रही। एक चीज क्लियर थी, गुआनाहातो की जो जगह है मैक्सिको की, ये सेफ नहीं है। एक बंदा था ड्रिफ्टर, उसकी किडनैपिंग का केस सामने आया। अब क्या ये केस कनेक्टेड था टिडियो की वाइफ से? नो क्लियर कनेक्शन। फिर एक हफ्ते के बाद फिर एक औरत की किडनैपिंग हुई एंड शी डिसअपीयर्ड, नहीं पता लगा, एंड पुलिस वाज इन्वेस्टिगेटिंग एवरीथिंग बट नो आंसर्स। फिर एक आदमी गायब हुआ एंड नोबडी वाज फाउंड, एंड मीनवाइल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उस पे भी चल रही है, इस पे भी चल रही है, टीडीओ खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई भी इस केस सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और वो सबसे बात कर रहा है, एंड जिनसे भी बात कर रहा है लोग

केस को सॉल्व करने का उसका तरीका उसने बदलने का फैसला किया। और ये आइडिया जो उसके दिमाग में आया ये बेहद एक्सट्रीम था। और इस आइडिया को मुकम्मल करने के लिए टेडियो इस वक्त एक स्ट्रीट पे था गुआनाहातो की, और इस घर के सामने खड़ा था जो काफी एक्सपेंसिव स्प्रॉलिंग बेतहाशा खूबसूरत घर था। उसका दिल इस घर में दाखिल होने से पहले जोरों से धड़क रहा था। ही वाज फीलिंग रियली रियली हैवी और ठंड लग रही थी उसे। उसने अपने हाथ अपनी जेब में डाले, जेब में उसके पास एक गन थी। और ये जो आइडिया उसके दिमाग में आया था एक शख्स से मिलने के बाद आया था, और उसी शख्स ने पूरी तरह से जो अप्रोच थी टेडियो की बदल दी थी इन्वेस्टिगेशन में। अभी वो घर के पास था एक के, और इसलिए उसकी उसने गन ली, फ्रंट डोर पे गया, फ्रंट डोर अनलॉक्ड था, और उसने चुपके से अंदर जाने का फैसला किया, दरवाजे को बंद किया बिना नॉक किए, और फिर डायरेक्टली वो एक स्टेयर केस पे खड़ा हुआ था। ये जो सीढ़ियाँ थीं ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी बेसमेंट में, वो बेसमेंट की सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ था और डर रहा था, सोच रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ही वॉज कंटेम्पलेटिंग, सब कुछ चीज़ें सोच रहा था। फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, यही एक रास्ता है, और फिर उसने अपनी गन को निकाला और यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगा अपने सारे इमोशंस को दबाते हुए। वो जानता था कि उसे केस सॉल्व करना है, उसे चैन नहीं आएगा। फिर वो नीचे गया, और जब वो बेसमेंट के नीचे पहुंचा तो ये जो सीन था उसके सामने ये किसी हॉरर मूवी से निकला हुआ सीन था। इट वॉज लाइक डायरेक्टली टेकन फ्रॉम मूवी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सीन था, जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा ये कहानी कुछ लोगों के लिए बहुत हैवी हो सकती है। जब वो नीचे पहुंचा बेसमेंट के, तो फ्लिकरिंग हो रही थी, लाइट्स जल बुझ रही थी, बल्ब खराब थे। एक साइड में इस कमरे के ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कुछ बॉडीज पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ एक अजीब सा अकल्ट चल रहा था। एक लंबा सा चाकू वहां पे रखा हुआ था, एक किताब रखी हुई थी, और एक चैलेंज था जिसमें क्लियरली ब्लड था, और दीवार पर उस ब्लड से बहुत कुछ लिखा हुआ था। टेडियो जब यहां पे पहुंचा वो हर चीज को घूर रहा था। घूरते घूरते उसके बाद एक गन शॉट की आवाज आई। इस गन शॉट की आवाज को सुनने के बाद जो नेबरहुड था, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने सुना, क्योंकि इट वॉज अ क्वाइट एरिया। और पुलिस ने नेबरहुड वालों के पड़ोसियों के बताने के बाद इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू करे, वो तुरंत इस जगह पे पहुंचे। जब वो इस जगह पे पहुंचे, ये जगह एकदम शांत थी, एकदम सिक्योर थी, यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर एक पुलिस ऑफिसर ने बोला कि सर बेसमेंट की तरफ हम अभी तक नहीं गए, तो पुलिस वालों ने बोला ठीक है लेट्स गो। और जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने वही देखा जैसे मैंने कहा, स्ट्रेट आउट ऑफ द हॉरर मूवी। और उन्होंने फिर एक चीज देखी और वो हिल गए। दरअसल हुआ क्या, सो टेडियो वो जब इन्वेस्टिगेशन में हार चुका था, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, उसे जानना था कि उसकी वाइफ को किसने मारा। वो फ्रस्ट्रेटेड होने के साथ साथ बहुत जिद्दी बन चुका था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, और उसने फैसला ये किया कि वो एक लोकल विच के पास जाएगा और एक औरत से मिला जो उसके हिसाब से उसकी मदद कर सकती है, और उल्टे सीधी बातें करने लगा। उसने जाके बोला कि मैडम आप मेरी मदद कीजिए, मेरी वाइफ के साथ ये सब हो चुका है, एंड मुझे लगता है मुझसे बात करना चाहती है, मुझे पूरा यकीन है, आप उससे मेरी मुलाकात कराइए, अब मुझे बात करनी है उससे, मुझे जानना है, मुझे पता है मुझसे मिलना चाहती है। और जो ये विच थी उसने कहा ओके जरूर, एक रिचुअल है उसे फॉलो करना पड़ेगा। इसने कहा ओके, और वो इस रिचुअल को फॉलो करने लगा। एक लिस्ट दी उसने टेडियो को, बोला कि तुम्हें कुछ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कुछ लोगों को मानना पड़ेगा। और फिर हुआ क्या, एक ड्रिफ्टर गायब हुआ इसी इलाके से जिसको टेडियो ने ही मारा। उसके बाद एक औरत वहां से गायब हुई, उसको टेडियो ने मारा। इन दोनों को मारने के बाद उसे लगा हो सकता है इस सेक्रीफाइस के बाद वो अपनी बीवी से बात कर पाए, लेकिन दोनों ही मर्तबा उसकी बात नहीं हुई। फिर उसने एक तीसरे शख्स को उठा लिया, उसकी भी जान ले ली, फिर भी बात नहीं हुई। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्यों नहीं हो पा रही मेरी। इस विच ने तो कहा था कि मैं लोगों को अगर ह्यूमन सेक्रीफाइस दूंगा तो मेरी बात अपनी वाइफ की रूह से हो पाएगी। वो जाने अनजाने में एक सीरियल किलर बन चुका था। वो वापिस विच के पास पहुंचा और उसने बोला कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है,
मैडम मैं तीन लोगों की जान ले चुका हूं, कुछ नहीं हुआ है।

अभी तक मेरी वाइफ की रूम मुझसे बात नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? और फिर विच ने उसे कहा कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो, तब तुम्हारी बात हो जाएगी। एंड उसके बाद टिडियो ने एक गन ली और वो जो बड़ा सा लग्जरियस घर था वो उसी का घर था, वो बेसमेंट जो था वो उसी का बेसमेंट था, उस बेसमेंट के अंदर जो भी था वो सब कुछ रिचुअलिस्टिकली टिडियो ने ही रखा था और टिडियो ने फिर आखिर में अपनी जान ले ली। केस सॉल्व हुआ उसकी वाइफ का, पर केस में ये सामने आया कि इट वॉज अ रॉबरी गॉन रॉन्ग, किसी ने चोरी करने की कोशिश करी थी और हाथापाई में मरिया की जान चली गई, लेकिन टिडियो अपना दिमाग पूरी तरह से खो चुका था। एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग एंड बिकेम समथिंग जो वो कभी था ही नहीं। दिस वाज वन ऑफ द सैडेस्ट केसेस दैट केम अक्रॉस। एंड उसके बाद से मेक्सिको में एक रूल भी लागू हुआ कि किसी भी किस्म का कोई ऐसा बंदा या बंदी जो आपको एडवाइसेस दे कि आप ऐसे करके किसी से मिल सकते हैं, जस्ट डू नॉट फॉलो। और आज की तारीख में इट इज इलीगल टू इवन टॉक टू सच पर्संस। तो ये किस्सा था, मैंने आपसे कहा था इट्स गोइंग टू बी हैवी, एंड आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं 666-22-107 पे, 666-22-107 पे। आपके मैसेजेस के इंतजार में हूं मैं, दोहा वाला कबीर, ठीक है 666-22-107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ तो जी 6:07 हो चुके हैं, आज की कहानी मैंने आपको सुना दी है, आई होप आपको अच्छी लगी हो। एक जरा मैं कॉल उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
3: हाँ जी भाई बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब बढ़िया।
4: अरे भाई स्टोरी सुनी काफी जबरदस्त, काफी मजा आया। स्टोरी से एक बात याद आ रही है आशिकों के लिए, मरहूम गालिब का एक शेर है, कौन सा एक शायरी थी यार, इश्क ने कर दिया निकम्मा ए गालिब वरना हम भी आदमी काम के थे।
3: वाह वाह वाह वाह, ये जो आपने सैड स्टोरी में फिट किया है ये वाह जी वाह वाह वाह, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड शेर था ये इस पे। हाँ
4: उसने मतलब उसकी वाइफ मरी, सही बात है, उसने उसको मतलब उस हिसाब से जज किया ही नहीं, वो इतना सोच में पड़ गया कि उसने 3-4 और मर्डर कर दिए।
3: हाँ
4: एकदम साइको बन गया वो, मतलब क्योंकि वो इतना शिद्दत वाला प्यार करता था उससे, वो सोच ही नहीं पाया नॉर्मल चीज कि वो कुछ रॉबरी हुआ, क्योंकि जब सबको पता था कि वो एरिया खतरनाक है, खतरों से भरा है, मतलब चोरी और रॉबरी वगैरह होती रहती है, वो सोच नहीं पाया।
3: ऐसा ही है भाई,
4: इस चीज को लेकर
3: ऐसा ही है भाई,
4: भाई सब काफी काफी इमोशनल स्टोरी, लेकिन बहुत मजा आया सुन के मुझे।
3: थैंक यू भाई, थैंक यू।
4: मुझे तो अच्छा लगा, कितने लोग रो रहे होंगे भाई, मैं तो ये भी

0: नहीं, मैंने जानबूझ के मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा देखो भाई ये हैवी स्टोरी, फिर बाद में मेरे से नहीं कहना कि वो फेयर वार्निंग नहीं थी, तो मैंने पहले ही बोल दिया था इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। तो
1: ऊपर से इसमें तो वो बाबा भी खेल गया, तीन को मारो चार को मारो फिर खुद को भी मार लो जाओ।
0: तो ये भाई 1800s वाज वेरी डार्क ब्रो, बहुत कुछ हो रहा था 1800s में, तो वो चीज है, वो दौर ही बहुत अलग था भाई, वो बहुत दौर अलग था। हम हमारी तरफ तो ठीक है अंग्रेजों का राज था, लेकिन उस तरफ किसी और चीज का ही राज चल रहा था।
1: सही, वहाँ तांत्रिक लोगों का ही राज चल रहा था, मतलब जो कर रहे हैं।
0: तो इसलिए तो आज मैंने इसलिए कहानी चुनी, मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी हैवी है तो चलेगा।
1: कहानी तो भाई बहुत अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। इस पे भी अगर डॉक्यूमेंट्री हो या शॉर्ट मूवी हो तो देखने में बहुत मजा आएगा, मतलब इंटरेस्टिंग है, जोड़ के रखने वाली।
0: हाँ।
1: क्या हुआ आखिर में, क्या है माजरा।
0: हाँ, नहीं इस पे
1: मैं भी यही सोच रहा था, मुझे लगा कि लड़की वाले के परिवार में से कोई मर्डरर निकलेगा।
0: हाँ नहीं भाई, सीधी कहानी तो आपका भाई सुनाते ही नहीं ना, सीधी कहानी तो सुनाते ही नहीं।
1: मसला यही है, हाँ, सीधी कहानी सुनाते नहीं है,
0: सीधी कहानी नहीं सुनाने का भाई, मैं थोड़ी घूम फिर गए।
1: अलग ही ट्विस्ट होता है आपके कहानी का, मतलब अनएक्सपेक्टेड एंडिंग।
0: हाँ अनएक्सपेक्टेड एंडिंग ही रखता हूँ मैं, वही वही ऐसी कहानी में ढूंढता हूँ जहाँ पे लगे कि एंडिंग आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आई एम प्रीटी श्योर इसकी एंडिंग किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की होगी, और मुझे काफी डिटेल्स छुपानी पड़ती है क्योंकि शुरुआत में, हालांकि कहानी सीधी सीधी है, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा सा घुमा फिरा के सुनाते हैं।
1: कहानी सीधी सीधी, मतलब कहानी सिंपल थी, लेकिन आप जो सुना है उस हिसाब से, लेकिन बहुत मजा आया कि हाँ, अभी मैं मतलब सोच ही रहा था कि क्या होगा क्या होगा। अब थोड़ा सा सुन लिया तो मुझे पूरा सुनने का मन था कि नहीं एक्चुअल में क्या होने वाला है आखिर में, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कातिल कौन होगा। लेकिन कातिल एक नॉर्मल मतलब रॉबरी चोरी का केस है, क्योंकि वो बैग लेके निकली थी।
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, अच्छे लगे आपको, मुझे भी अच्छा लगे जान के, जज़ाकअल्लाह।
1: बहुत बहुत बहुत अच्छी लगी,
0: थैंक यू भाई, थैंक यू।
1: यार आपकी कहानी अच्छी ना लगे यार सर जी, यार आप तो फिर तो वही वाली बात,
0: बहुत प्यार भाई को, थैंक यू सो मच मेरी जान, लॉट्स ऑफ लव।
1: चले भाई,
0: ओके मेरे
1: भाई,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद एक कॉल और आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल चाल है
0: भाई? एकदम शानदार शानदार
2: शानदार तो हो गए भाई साहब, क्योंकि एक में तो तुम्हारा दिल भर नहीं रहा, पहले एक दो निपटाते करे, अब चार पांच को निपटाने लगे तुम।
0: क्या करें यार, वो थोड़ा सा क्या है अभी प्रमोशन चाहिए ना
2: यार, इतना प्रमोशन भाई के चार पांच को लपेट रहा हो तुम।
0: हाँ तो मैंने आज सोचा था, मैंने कहा दिस इज गोइंग टू बी रियली इमोशनल, तो आज मैं कोई इमोशनल कहानी सुना देता हूँ।
2: अरे भाई मतलब के यार, एक तो थ्रिल था, सस्पेंस था, हम तो सोचे कि एक दो महीने बढ़ जाएंगे, मगर तुमने तो भाई साहब चार पांच दिन
0: मेरे पास एक्चुअली में बहुत हैवी स्टोरी और मिस्टीरियस स्टोरी रखी हुई है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसमें सुनाऊं कैसे। जिस दिन मुझे क्रैक डाउन कर लिया ना, तो वो मैं जरूर सुनाऊंगा, वो तो भाई डबल ट्रिपल है वो, इसका टेन फोल्ड है वो, पर उस पर काम चल रहा है। हाँ वो हो सकता है वेंसडे को सुना दूं मैं, वेंसडे को या प्रोबेबली थर्सडे को या संडे को।
2: नहीं नहीं नहीं थर्सडे थर्सडे भाई,
0: थर्सडे थर्सडे के लिए तो अलग रखिए भाई।
2: नहीं अरे ये सुनो, क्योंकि थ्रिल होना चाहिए ना और ज्यादा, क्योंकि पब्लिक जो है ना थोड़ा खुशी में रहेगी जाने की, कि भाई छुट्टी है छुट्टी है, और जब और ज्यादा सस्पेंस रहेगा ना तो भाई साहब मजा आ जाएगा।
0: बिल्कुल भाई रखेंगे भाई, थर्सडे को देखना उनको हिला डालेंगे क्या।
2: या भाई इवन में चार पांच तो उसमें दस बारह होने चाहिए कम से कम।
0: सुनाएंगे सुनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे, एंटरटेनमेंट
2: पूरा रहेगा। और बाकी सब बढ़िया कबीर भाई,
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम एकदम शानदार भाई,
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: हाँ बस
2: चलो इंशाल्लाह होती मुलाकात।
0: ओके मेरा भाई,
2: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और क्या है कि भाई के बाद अच्छा एक और कॉल ले लेते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मेरा भाई,
3: जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं।
0: बिल्कुल,
3: हजारों सुधर गए लाखों तैयार बैठे हैं।
0: बिल्कुल मेरा भाई, तब से
3: अरे वाह क्या ये क्या करा क्या है आप, ये आपने वो कहते ना क्या कहते हैं हिंदी में, चेतावनी दी है किसी को।
0: जब मैंने भाई शुरुआत में चेतावनी दी थी, मैंने कह दिया था आपसे पहले
3: भाई, शुरुआत में कहानी का एड करके भी तो आपने यही काम किया। भाई इश्क की कुछ हद में नहीं जाना है भाई।
0: हाँ ये भाई उस टाइम पे इंसान के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं थे ना, आज तो आदमी फोन पे चार रीले स्क्रॉल करके शांत हो जाता है, पहले आदमी कहाँ भागता, पहले मोहब्बत हो जाती थी तो हो जाती थी, फिर उसके वो कोई सवाल नहीं।
3: मेरी बात तो समझो ना, वो कहने की बात ये है बेगम से प्यार करो मोहब्बत करो, लेकिन इस हद का करो कि आपको गाड़ी चलानी पड़े, आपको इंतजार करना पड़े,

0: तो भाई जब भी मैंने भाई पहले लोगों को बोल दिया था, मैंने देखो भाई ये ट्रिगरिंग स्टोरी है, सो इफ इट ट्रिगर्स यू एट ऑल तो दूर रहे।
1: लेकिन यार वो बात आपकी ठीक है कि इंसान जिस वक्त प्यार में अंधा हो जाता है ना, ठीक है, और इनफैक्टली प्यार में अंधा एक अलग कहानी है, जब अपने फैमिली पे बात आ जाए ना फिर इंसान को समझ नहीं आता, और ऊपर से वो बीमार था और बीमार के बाद को आजकल वैसे भी देना, आजकल क्या काफी टाइम से ये काम चलता आ रहा है के बाबा बंगाली बंगश महबूबा आपके कदमों में
0: हाँ,
1: ये वो वाला काम बेचारे के साथ हुआ,
0: हाँ, वो
1: निपटा दिया साथ
0: तो
1: यार
0: पर कुल मिल गया अच्छी लगी
1: होगी, चली होगी यकीन करो मैं उसको कहा अपना ये चीजें सोच के
0: तो पर आने अच्छी लगी ना, जम गई ना आपको, बढ़िया लगी,
1: मजा आया, लेकिन बात कहने के बंदे से टपका दिया, आपने पांच बंदे मार दिए यार।
0: आई एम सॉरी शक्तिमान। चलो अच्छा,
1: ये ऑफर भी है बाबा बंगाली बंगश, ऑफर भी है आवाम को बता दिया जाए कि बाबा बंगाली बंगश महबूब आपके कदमों में, आपको रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, बाबा जी खुद सब कुछ करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई इनसे दूर रहे जो ऑटो ऑटो में लिख के घूमते हैं हमारे यहाँ तो। नहीं भाई बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आई होप के लोग तैयार रहें क्योंकि इसके 10-fold जो है स्टोरी थर्सडे को आएगी तो बहुत मजा आने वाला है।
1: भाई मैं अभी तक सिर्फ आपकी एक दो स्टोरीज हॉरर मुझे जना वो लगी है कि हाँ बाकी फॉरन थी, बाकी तो फिलहाल मेरे मेरे लिहाज से फनी चल रहा सब कुछ भाई।
0: आएगा मजा आएगा थर्सडे को, बहुत आएगा मजा, देखना तुम।
1: मजा बहुत आता है, ये नहीं कि मजा नहीं आ रहा, मजा बहुत आता है, लेकिन बात वही है ना कि जिसको आवाम हॉरर समझती है वो हमारे कंडीशन के लिहाज से फनी सीन चल रहा होता
0: है। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, वो है वो देसी परेशानी है, वो देसी चिप लगी हुई है हमारे अंदर तो वो नहीं जाएगी। नहीं इस बार हॉरर नहीं होगी, कुछ और होगा, पर वो होगा बहुत बढ़िया।
1: और भी ये चेतावनी बाकियों के लिए भी कहानी सुनने के बाद कि अपनी बेगमात से इतना प्यार मत करें क्या बंदे हैं।
0: अरे नहीं यार करने दो भाई, एक तो मजनू भी मोहल्ले में अच्छा लगता है, ऐसी बात थोड़ी है।
1: करो हक बनता है, लेकिन थोड़ा सा डर भी रखो, इतनी मोहब्बत मत करो कि डर खत्म हो जाए और ये काम करने
0: पड़े। मेरा भाई अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो भाई अगला जो गाना है ये गाना आज की स्टोरी पे एकदम फिट बैठता है, और तबसम मैंने भी कहा वही मैं चलाने ही वाला हूँ क्योंकि ये गाना एकदम फिट बैठता है आज की स्टोरी पे। ये गाना टेडियो के नाम जिसके ऊपर ये पूरी कहानी थी, इसकी असली कहानी मैंने आपको सुनाई है, बाकी मैसेजेस मैं इस गाने के उस पार पढ़ने वाला हूँ। और ये गाना आज की स्टोरी के लिए एकदम फिट बैठता है। से ये आवारा

इस गाने को लेकर दो फैक्ट्स हैं. अरिजीत सिंह ने इसके लिए कोई रकम नहीं ली है. अमान मलिक की मोहब्बत में ये गाना उन्होंने दे दिया और प्लेबैक सिंगिंग के लिए वैसे भी वो पैसे ले नहीं रहे. सो अरिजीत सिंह इज ऑन अनदर लेवल. आदमी अभी साइड क्वेस्ट कर रहा है गेमिंग में.

शाबाशी, तो आपने पूरी पूरी दी है, माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं। और हुसैन भाई थैंक यू सो मच, आपके मैसेज ऐसे मैं पढ़ भी नहीं सकता अभी। हाय, एक मैसेज हाय हेलो भाई लिखते हैं अरिजीत इज बैक। अरिजीत कभी गया ही नहीं भाजी, मेरा कब्बू भाई बेगम से प्यार करो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तला भाई कह रहे हैं आई एम मजनू आई लव माई वाइफ। हाँ बेटे, हाँ सही है, अभी रिस्क उठा रहे तो बोलना ही पड़ेगा। तबसुम मैंने लिखा है दिस वॉज टू मच फॉर मी कबीर भाई, कल ही टिकटॉक पे अचानक से एक वीडियो फॉर यू पे आया था, वो इंसान काला चांदो पता नहीं क्या क्या कर चीज़ों में चलता था, सो डिस्टर्ब, हैड टू सर्च फॉर रोमांटिक सॉन्ग्स 10-15 टाइम टू गेट आउट। और अच्छा ओके चलो ठीक है, तबसुम मैन अच्छा लिखी आपको कहानी, कुर्मला की समझ में आ रहा है। मैसेज लिसनिंग टू अ स्टोरी आई रिमेंबर वन थिंग, लड़की का चक्कर बाबू भैया। वेरी इंटरेस्टिंग ये मैसेज किया है मुझे एहसान उबैद कुरैशी भाई ने। खादिर अब्दुल अदीब लिखते हैं कबीर भाई मिथिकल एक्टिविटीज स्टिल एग्जिस्ट इन मेहिकेव, व्हेन नेगेटिव डोपामाइन एग्जिस्ट द रिजल्ट एंड्स विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स। एक और मैसेज है, गुड स्टोरी कबीर भाई, थैंक यू सो मच। ये आरिफ भाई ने मैसेज किया है, आरिफ भाई के बाद फलक भाई लिखते हैं जबरदस्त कहानी, थैंक यू सो मच। यूसुफ भाई लिखते हैं अच्छी थी स्टोरी, वेरी इमोशनल। एक बंदा इतना कैसे अपनी बीवी को चाहता है कि गलत तरीका अपनाने की अपनी जान ले रही। स्टोरी का फर्स्ट हाफ फिल्म प्यार का साया जैसी लगी, लेकिन सेकंड बिल्कुल अलग। इस फिल्म में भी राहुल रॉय अपनी वाइफ के कातिल को ढूंढता है और एक विच के पास चलाता है, जो अमृता सिंह का रोल प्ले कर किया उन्होंने।

अमृता सिंह ने रोल प्ले किया, और आगे लिखते हैं कबीर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो ट्रस्ट क्यों नहीं किया, नहीं कर पाया बेचारा यार, क्या करें अब अंधा था प्यार में, लिखते हैं और उसका इतना भी मालूम नहीं हुआ कि खुद की सेक्रीफाइस देने के बाद आई मीन क्या भाई दिमाग लूज कर दिया था इसमें उसने, मोहब्बत है मोहब्बत यूसुफ। आमिर साहब वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं, कबीर कमांडो आगे लिखा कमांडो, थैंक यू भाई। फिर हॉरर स्टोरी लिखते हैं, ब्लाइंड लव कैन टर्न अ नॉर्मल पर्सन इनटू अ साइकोपैथ एंड योर नैरेटिव इज सुपर ब्रो। सिद्दीकी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, देन अच्छी स्टोरी थी लेकिन मेरे ख्याल से तो इंसान को मूव ऑन करना चाहिए, ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए। ख्याल से आपके क्या तैमूर भाई, सबके ख्याल से ही है मोहम्मद तैमूर रहमान भाई। एंड देन मैसेज किया एक भाई ने, दिस इज मुदस्सर खान, एज यूजुअल टुडे स्टोरी इज आल्सो ग्रेटेस्ट एंड हाउ यू रीचेस अस इज दैट इज अमेजिंग। ये सही बात है कबीर भाई कि जो इंसान क्या है, जो इंसान हमको जितना प्यारा होता है जिंदगी वहीं हमसे छीन लेता है। टू वीक अगो वी लॉस्ट अ ग्रेट स्वीट अंकल एंड वी वर वेरी क्लोज टू अवर हार्ट, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाया। आगे लिखते हैं, ये दुनिया और ऐसे ही चलती रही है भाई, तो दुनिया का निज़ाम है मेरी जान। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, नाइस आई मिस द मेजर पार्ट ऑफ द स्टोरी, अबू फातिमा जरूर मैं भेज दूंगा, अमेजिंग स्टोरी चार्ज, थैंक यू। और उस मंजी ने मैसेज किया, इस बीच को गोली मारनी चाहिए, शी इज़ द विलन ऑफ द स्टोरी एज वेल, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू इतनी इतना प्यार देने के लिए। ओके फिर मिलते हैं कुछ देर में, जाना नहीं है आपने, अभी तो अजान का वक्त है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसके बाद। ओके किधर भी जाने का नहीं।

हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

आज ही पूरी पूरी सवासी मिलेगी। पहली बात तो सवासी मिल लीजिए कतर यूनिवर्सिटी को, वहां पे एक रिसर्च चल रही थी बहुत टाइम से, उन्होंने अनाउंस किया है कतर यूनिवर्सिटी ने कि वो डेवलप कर रहे हैं एक स्मार्ट वेरेबल डिवाइस, बिल्कुल जैसे हम लोग पहनते हैं ना घड़ियां और अपने ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। सो इस बार जो वेरिएबल डिवाइस बना रहे हैं वो एस्टिमेट कर पाएगा आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, और इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फिंगर प्रिक्स और ब्लड सैंपल्स चाहिए, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और साइकोलॉजिकल सिग्नल एनालिसिस का भी। जो डिवाइस है इसका नाम रखा गया है ग्लूको वॉच, एंड जैसे मैंने कहा इट वॉज अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट एम्ड एट क्रिएटिंग इनोवेटिव हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, और इसे डेवलप किया है कतर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, एंड इन्वेंटर डॉक्टर खालिद अबू अल सऊद और उसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन जो उनकी टीम में है कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट नोरा अल बर्दीनी, मजून अल शहवानी, फातिमा अल काबी और सारा अल महानदी। तो ये बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है और इसका जो पेटेंट है पब्लिश हो चुका है, तो इसका पूरा नंबर भी आ चुका है। सो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये मार्केट में होगी, और बहुत कमाल की डिवाइस है ग्लूको वॉच। अभी प्राइस मेरे से नहीं पूछना, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। बाकी 666-22-107 एक और आप इस मैसेज कर सकते हैं, मैं एक और खबर बताता हूँ। मीनवाइल एक हाला समर कैंपेन चल रही है और उसी का हिस्सा बनते हुए विजिट कतर ने लॉन्च किया था हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल। पूरे महीने ये शॉपिंग फेस्टिवल चलेगा और डाइनिंग एक्टिवेशन भी है जो कि ऑन रहेगी। सो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरे एक महीने ये फेस्टिवल जारी रहेगा और कतर की लीडिंग शॉपिंग मॉल्स में होगा, रेस्टोरेंट्स में होगा, और जो कतर का जो नेटवर्क है ये बेसिकली ऑफर करेगा रेसिडेंट्स विजिटर्स को एक्सक्लूसिव प्रमोशंस। उसमें मेन्यूज भी होंगे, उसमें शॉपिंग के लिहाज से भी काफी कुछ है, और वैल्यू एडेड एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों को, स्पेशल डिस्काउंट 70% तक थ्रू आउट द कैंपेन पीरियड। सो ये होगा प्लेस वंदोम में, दोहा फेस्टिवल सिटी में, मॉल ऑफ कतर, विलाजो सिटी सेंटर, लैंडमार्क, दोहा मॉल, वेस्ट वॉक, जवान आइलैंड, हायत प्लाजा, अल हजम, और ये फेस्टिवल इन तमाम जगहों पर रहेगा। सो गेट रेडी, 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा मामला। वीकेंड पे तो मुझे जाने से भी डर लगता है किसी फेस्टिवल में, बिकॉज इतनी भीड़ भाई साहब, इतनी भीड़। वीकडे में मैं प्लान करने वाला हूँ, आप भी देख लो भाई इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डिस्काउंटेड शॉपिंग आइटम्स भी हैं, डाइनिंग के लिए भी है, और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट सेक्शंस भी बनाए गए हैं ताकि कंप्लीट शॉपिंग एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस मिल सके हर किसी के लिए। सो बी रेडी, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई इस चीज़ के लिए। पिछली 2-3 चीज़ें मैंने मिस कर दी थी, जैसे वो जो परफ्यूम वाला सिस्टम हुआ था, बढ़िया भाई क्या परफ्यूम लेके आए लोग तगड़े। एक तो मैंने अपने दोस्त से मार लिया, वो बात दूसरी है, लेकिन क्या मज़ेदार था वो भी। इसके अलावा टेम्परेचर्स विल राइज, गर्मी जारी है, गर्मी कह रही मैं नहीं जाऊंगी। 36 डिग्रीज फॉर नाउ, पर 47-48 डिग्रीज मैक्सिमम रहेगा, एंड 31 डिग्रीज द लोएस्ट, जो कभी होता नहीं है। पार्टली क्लाउडी टेम्परेचर है, और जो भी चश्मे पहन के चल रहे हैं आज, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, सल में आगाह कि आज चश्मों पे धुंध आ जाएगी। 55% ह्यूमिडिटी के साथ आज तैयार रहिए, क्योंकि जो जो जो गस्ट ऑफ विंड है वो भी ज़्यादा नहीं है, 26 किलोमीटर पर आर के हिसाब से है, सो इट्स नॉट दैट मच। बेसिकली वो आउटस्कर्ट्स के एरिया में हवा महसूस होती है, वरना यहाँ तो कौन सी केड़ी हवा भाई साहब। तैयार हो जाइए, गर्मी के सीज़न अभी भी बाकी है। अगर आपको लगा था कि अभी थोड़ा सा अच्छा हो रहा है मौसम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वैसा का वैसा ही है क्या। 666-22-107 इज द नंबर, एंड हर रील में ये गाना चल रहा है भाई, हर रील में, तो मैं कैसे ना चलाऊं। बूम शाकलाका, क्या डॉलर साइन और

भाई का गाना अजीब बढ़िया चल रहा है भाई, क्या हाल है। 6:43 हो गए, मैं जी दुआ वाला कबीर FM 107 पे। आज भी कुछ इंटरनेशनली मार्क्ड दिन है, बड़े बड़े कमाल के दिन है भाई, कमाल के दिन है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, नेशनल आज है चिकन फिंगर डे है आज, और आज है स्लीपी हेड डे। अगर आपको नींद आ रही है, सही दिन पा रही है, आज आप सो के इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं टाइम पे। अभी तो खैर कौन सोएगा सब काम पे, मगर जो भी जिनके पास बहुत टाइम है भाई, आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। आज स्लीपी हेड डे है, आज है लव इज काइंड डे, और आज के दिन मैंने इतनी सैड स्टोरी सुना थी। लव इज काइंड डे, और एक बड़ा फ्रेंच में नाम है क्रे में बुरेले दे, आई डोंट नो ये क्या है भाई, कुछ फ्रेंच डिश होगी, आई डोंट नो। एक तो ये फ्रेंच लैंग्वेज के साथ परेशानी क्या है कि उसमें मुंह बना बना के बात करनी पड़ती है यार। मैं पता है मेरे सामने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज आते हैं लैंग्वेज वाले, और उसमें जब फ्रेंच का आता तो मैं फौरन स्किप कर देता हूँ। ये कोई बात है बीच में आ रहा है तो घा पढ़ो उसको, क्यों पढ़ें भाई हम, एक जहाँ पे आ रहा है वो घा पढ़ते हैं उसको। एक वर्ड था RENOIR, तो मैंने कहा रेनवा, तो बोले नहीं रेनवा। क्या बात है, ये कोई बात होती है। तो दोज आर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, सलाम है आपको। फ्रेंच तो हमारे बस का नहीं है भाई, ये समझ में आ गया, फ्रेंच लैंग्वेज हमारे बस की कोना भाई। और दूसरी भाषा पे थोड़ा हाथ बिठाने की कोशिश है, विच इज़ स्पेनिश एंड अरेबिक, तो उस पर कोशिश जारी है, पता नहीं कब पूरी होगी। मगर फ्रेंच ना जी ना, हमसे नहीं हो पाएगा भाई। एक मैसेज आया है, सलाम आई एम बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार आपको भी। फैन वैन नहीं भाई, भाई बोलते रहो। और जो लोग फ्रेंच स्कूल में सीख रहे हैं, मेरी तरफ से सलाम है आपको। आई डोंट नो हाउ यू आर डूइंग इट, बिकॉज मेरे समझ में नहीं आता ये क्या चक्कर है यार। आखिरी में ION आ गया तो क्या पढ़ते हैं उसका, टेंशन, तो पता नहीं क्या टेंशन को पता नहीं क्या ही बोलते हैं वो लोग, और फिर जहाँ आ रहा है वो घा लगा देते, ये कोई बात है यार। और उसमें घा में भी प्रॉब्लम है, बोलेंगे ना जी ना घा ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, गरारे करवा दिए मुझको भाई। और मेरे सामने वीडियो भी वही आते हैं, परेशानी है। और ये वीडियो कब आते हैं, रात को 2:30-3 बजे कहते हैं लैंग्वेज सीखो, आओ सिखाते हैं आपको फ्रेंच के आसान शब्द। ये आसान है, ये कोई आसान है, वंजो से आगे नहीं बढ़ सकता मैं। और हमारे ऑफिस में माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त लोग हैं, वो लोग अरेबिक और फ्रेंच मिला के बोलते हैं, फिर बोलते हैं कुछ समझ में आया। ये कोई बात होती है, ये आप अपने आप से पूछिए, समझ में आया कुछ नहीं, कैसे आ जाएगा यार। What is this? बट ऐसा ही है। एक मैसेज है, कबीर भाई ट्राई अरेबिक एंड विद डुओलिंगो, देयर आर अदर लैंग्वेजेस टू, बिकॉज तबसुम मैन यू आर एक्चुअली राइट, आई एम ट्राइंग टू लर्न स्पेनिश एज वेल एज अरेबिक। मुझे इतना यकीन है कि उर्दू मीडियम से हूँ तो अरेबिक में थोड़ा बहुत तो हाथ साफ में कर लूँगा, मुझे वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। आई एम ट्राइंग स्पेनिश एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है कि स्पेनिश इज़ मच ईजियर देन द फ्रेंच लैंग्वेज, दिस इज़ जस्ट माई टेक। बाकी कोई बच्चे अभी आके मुझे ट्रोल कर देंगे जो 8-10 साल के हैं बालक, वो बोले हमारे स्कूल में तो है फ्रेंच, हम तो सीख रहे हैं बोनजों। SSS6222107 इज द नंबर भाई, कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर सीख लेना, काम आती है ऐसा सुना है मैंने, मैं तो सीख ही नहीं पा रहा, तो काम की तो बात ही नहीं। 6622107 is the number, or agla gana manj paaji da music nindi khor raftar they call you bling bling singer khor aaj hi punjabiyo singer tu hai tor kathe 6:40 ho rahe gaddi pe।

0: हाँ जी मिस्टर सिंह निंदिखोर मैं जपाजी का म्यूजिक के साथ में रफ्तार मैं कहा जी दो हवाला कभी एफएम 107 पे क्या रहे हैं बढ़िया देखो घड़ी में देखते देखते टाइम कब निकल गया पता भी नहीं लगा इट्स ऑलरेडी 6:50 बाय द क्लॉक 7 बजे न्यूज़ बुलेटिन आप सुनेंगे एक घंटा और मिल जाता मजा आ जाते पर क्या करें वक्त के दिक्कत है किल्लत है तौकीर अहमद भट्ट साहब लिखते हैं कभी जानी गुड इवनिंग गेट आउट ऑफ योर वर्क एंड ट्यून इनटू गेट आउट ऑफ वर्क मैंने कहा मुझे क्या रहे गेट आउट ऑफ योर वर्क गो फ्रॉम हियर एंड ट्यून इनटू लिसन टू योर प्रोग्राम अच्छा मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आई एम ट्राइंग टू सी ऑडियो में कुछ दिक्कत है तो आज भेज दूंगा वरना मैं कल तो भेज दूंगा पूरी की पूरी कहानी बिकॉज मैं अभी ऑडियो देख रहा था कहानी का उसमें कुछ दिक्कत है लेवल्स की आई डोंट नो सम टेक्निकल डिफिकल्टी बट यू विल गेट दिस डोंट वरी डोंट वरी आज नहीं तो कल इकट्ठे दोनों भेज दूंगा मैं फिकर नहीं करने का मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 से आपसे ज़्यादा चाहूँगा इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ इंटेंसिटी कहानों की बढ़ाता चला जाऊँगा कहानी बढ़ती चली जाएंगी कोशिश रहेगी कि आपको हर रोज़ एंटरटेन किया जाए सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर FM107 कतर और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें सो दोहा वाला कबीर FM107 कबीर की स्पेलिंग रहेगी के बी आई आर ज़रूर जुड़ें बिकॉज इस पर बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनने को मिलने वाली जल्दी जो अभी तक आपने नहीं सुनी है यस मैं पोस्ट करना चालू करने वाला हूँ बस उन सब जगहों पे जो कहानी आपको मिलेंगी भाई साहब आप बोलेंगे ये कहानी तो बहुत ही बढ़िया तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे रख सकूँ एंड आपको मजे आ सकें सो प्लीज़ जुड़िएगा ज़रूर बट फॉर नाउ दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं मास्सलाम
1: म्यूजिक MG तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शौके शौके इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों

0: कहीं होके जरूर आना, क्योंकि कतर में स्टेकेशंस आर गोइंग वंडरफुली वेल. अगर आप कहीं दूर निकलना चाहते हैं, थोड़ा टाइम बिताना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, सो टेक देम आउट, कुल मिला जुला के चले जाओ भाई, मौज करो, खुश रहो प्लीज. एक ही दिन मिलता है, मुझे ही पता है, और ये शिकायत रहती है अपने आप से, क्या नींद भी पूरी नहीं होती, आई अंडरस्टैंड. किसी एक हफ्ते हो जाओ स्टेकेशन, जरूरी नहीं है कि फैमिली है तभी जाना है, दोस्तों के साथ जाइए, तीन चार दोस्त मिल के मौज करके आओ, क्योंकि कतर में जो होटल्स हैं दे आर गिविंग डेफिनेटली द बेस्ट ऑफर्स दिस समर्स एज वेल. अगर आप स्टेकेशन भी नहीं करते हैं तो उनके जो जो ब्रंचेस के हैं, जो बूफे के जो प्राइसेस हैं, उनमें बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स हैं. सो ये सर्च करने का टाइम आपका है, ये मैं काम आपको छोड़ता हूँ, लेकिन डेफिनेटली गो आउट एंड हैव समथिंग डिफरेंट इन कतर, क्योंकि वरना आप वो मोनोटोनस उसमें जीते रहेंगे तो फिर इन चीज़ों का मजा नहीं ले पाएंगे. और शर्माना कभी नहीं भाई कि यार हम तो बैचलर, मैं ही बैचलर रहा हूँ. दोस्तों को पकड़िए, जाइए, मौज करिए, ठीक है. अब जरा आगे बढ़ते हैं.
1: Qatar 2026
0: कुछ आने वाले इवेंट्स पे जरा नजर बनाए रखते हैं, और जो रनिंग इवेंट्स हैं, तो क्योंकि जो चल रहे इवेंट्स उनके बारे में पहले बात कर ली जाए, तो मॉल ऑफ कतर चलते हैं पहले. तो मॉल ऑफ कतर में इस बार गर्मियों में, और गर्मियों को बीट करने के लिए बहुत बढ़िया चीज शुरू हो चुकी है, मतलब चल रही है अभी. इट इज इन द हार्ट ऑफ द वाइब्रेंट मिस्टिकल रेन फॉरेस्ट. इनटू द जंगल नाम दिया गया है. ये एक बहुत ही जबरदस्त स्पेक्टेकुलर फैमिली फ्रेंडली लाइव एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस है. जो ओएसिस स्टेज है ना मॉल ऑफ कतर का, वहां पर ये जारी है और 1 अगस्त तक चल रहा है. सो अगर वहां पे जाएंगे तो आपको एक लश ग्रीन दुनिया नजर आएगी, नेचर, फैंटेसी. और जो ओएसिस स्टेज है, ऐसा लगेगा भाई जिंदा हो गया है, तो पूरे साल भर में देख रहा था, आज लग रहा है अलाइव है. लार्जर देन लाइफ जंगल कैरेक्टर्स वहां पर आपको नजर आएंगे, बहुत कमाल की डेजलिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं उनकी, थिएट्रिकल पपेट्री वहां पर आपको नजर आएगी, डायनेमिक डांस हो रहे हैं, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा जो सर्कस से इंस्पायर्ड एक्ट्स हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं. फिर इसके साथ साथ हर ऑडियंस को, ताकि यू नो कैप्टिवेट रखा जाए, इंटरेक्टिव चीजें रखी जाए, तो उनके लिए भी अलग अलग चीजें हैं जिसमें स्टोरी टेलिंग को ब्लेंड किया गया है बहुत सारे एक्ट्स में. इसके अलावा जो बच्चे अगर आपके घर में, तो उन्हें लेके आप पहुंचेंगे तो उनको बहुत मजा आएगा, दोस्त नए बनाने का मौका मिलेगा, आपके साथ इन इवेंट्स को देखने का मौका मिलेगा, आपका उनका बॉन्ड बेहतर होगा. दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव राइट नाउ. और 1 अगस्त तक ये जारी है. सो इनटू द जंगल मॉल ऑफ कतर में शाम को 5:30 to 7 ये अभी भी जारी है, और 8:30 भी है ऑन अदर डेज. सो मॉल ऑफ कतर पहुंचे एंड हैव अ ब्लास्ट भाई. ये जो टाइम है इसका आपको मजा करना चाहिए, एंड बिल्कुल मत सोचिए कि अभी जाऊंगा, कल जाऊंगा, पढ़ जाऊंगा. 1 तारीख आने वाली भाई, अब तो हो ही आओ. और जब आप सुन रहे होंगे ये शो, आई एम प्रिटी श्योर कि 1 तारीख बहुत ही करीब होगी. तो प्लीज हैव अ गुड टाइम. 5:30 से शाम तक 8:30 to 8:00 आपको मॉल ऑफ कतर में कई सारे इवेंट्स मिलने वाले हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर इवेंट.
1: Qatar 2026.
0: देखो, दोहा तैयार हो चुका है एक ऐसे कॉमेडियन के लिए जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं भाई, बहुत लोग उनके बहुत बड़े फैन हैं, और आ रहे हैं मैक्स अमीनी. मैक्स अमीनी परफॉर्म करने जा रहे हैं कतर में. आई रिमेम्बर के बहुत सारे कॉमेडियंस यहाँ पर आ चुके हैं, मुझे रसल पीटर्स की उम्मीद भी नहीं थी, पर रसल पीटर्स भी आके गए. एंड डेफिनेटली मैक्स अमीनी का नाम सुनते ही पढ़ते के साथ ही मैंने कहा भाई ये यहाँ तो जाना भाई. सो अभी टिकट की प्राइसिंग तो नहीं आई है, मगर ऐसा कॉमेडियन जो जाना जाता है अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए और यूनिक इनसाइट्स के लिए हर दिन की, तो वो कॉमेडियन आपके सामने आ जाए, परफॉर्म करे, हो सकता है कि वो आपको मौका दें अगर आप स्टेज के आसपास हैं बोलने का. वैसे तो वो सबको मौका देते हैं, किसी को भी बीच में पकड़ लेते हैं, और क्राउड वर्क बहुत कमाल का है मैक्स अमीनी का. सो ही इज गोइंग टू परफॉर्म इन कतर रियली रियली सून. जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो टिकट्स वो खुल चुके हैं, तो आप जाके जहाँ पे टिकट्स मिलते हैं बहुत सारे इवेंट्स के, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा. आई कैन नॉट टेल यू द वेबसाइट बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस कमर्शियल रीजंस एंड बाउंड्रीज, मगर मैक्स अमीनी कतर जब आप टाइप करेंगे सो आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पर आप प्री रजिस्टर कर सकते हैं फॉर टिकट्स. राइट नाउ द प्राइस आई बिलीव इट्स नॉट अवेलेबल एज इफ नाउ, बट एज सून एज यू प्री रजिस्टर आई थिंक दे आर गिविंग यू द प्राइस. सो आप जाके टिकट्स बुक कर लीजिएगा, बिकॉज ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जब आएंगे और बताया जाएगा क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे ही टिकट्स बिक जाएंगे सारे के सारे, सोल्ड आउट हो जाएंगे, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी. सो मैक्स अमीनी की अगर आपने एक भी वीडियो देखी है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों उनकी तारीफ कर रहा हूँ इतनी. ही डिजर्व्स ऑल द अटेंशन एंड ऑल द अटेंशन ऑफ कोर्स एंड ऑल द लाइक्स एंड प्रेजेस. सो वो परफॉर्म करने वाले हैं कतर में. सो आई एम एक्साइटेड, मैं जरूर जाऊंगा मैक्स अमीनी को देखने के लिए, एंड उनका क्राउड वर्क

0: देखने के लिए स्पेशली, बिकॉज जो कॉमेडियन स्टेज पर आके सिर्फ जोक ना करें और साथ में उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी रखें, ऐसे कॉमेडियंस भाई मुझे बहुत पसंद है. सो आई एम नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन दिस वन, दिस इज डेफिनेटली ऑन द लिस्ट. तो ये जरूर देखिएगा मैक्स अमीनी लाइव इन कतर, ही इज गोइंग टू परफॉर्म एन अनफॉरगेटेबल कॉमेडी शो. प्री रजिस्ट्रेशन इज नाउ ओपन. Okay, आगे बढ़ते हैं.
1: Qatar 2026.
0: तो देखिए आगरा जो इवेंट है ये मेरा फेवरेट है और इसमें मैं अभी होके भी आऊं रिसेंटली, बहुत बहुत कमाल का है कतर टॉय फेस्टिवल. जब ये आने वाला था आपको याद होगा चंद महीनों पहले मैंने आपको बताया था मैं कितना एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई एब्सोल्युटली अडोर दिस इवेंट. इन्होंने लॉन्च किया है समर कैंप फॉर सेकंड सक्सेसफुल ईयर, एक वाइब्रेंट डायनेमिक प्रोग्राम है इनका जो बच्चों के लिए और प्री टीन्स के लिए बनाया गया है. इस पूरे सफर में मतलब पिछले साल भी और इस साल भी काफी क्रिएटिविटी एक्सप्लोरेशन और खुशी का मौका दिया उन्होंने. दिस इज रनिंग फ्रॉम 5 to 30th of July. सो अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं सो प्रॉब्ली आपके पास चांस होगा, आई बिलीव सो, तो आप इसका फायदा जरूर उठाइएगा. सो 30 जुलाई तक इवेंट है, सिर्फ फ्राइडे सैटरडेज नहीं है, दो दिन की इसकी भी छुट्टी है. मगर जो कैंप है वो किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है वो आप ध्यान रखिए, 4 to 12 years के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली है. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मगर जो एक्टिविटीज हैं वो 4 to 12 years के बच्चों के लिए हैं और उनके हिसाब से टेलर्ड एक्टिविटीज यहाँ पर मौजूद हैं. काफी मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों को कह दिया बेटा ये कर लो खेल लो, नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव एनवायरमेंट एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. इसके अलावा दोहा एग्जीबिशन में, क्योंकि ये हो रहा है दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, सो जो वहां पर हैं जो कैंपर्स बनेंगे उनके लिए एक पूरी अलग दुनिया है, एक अलग साइड है कतर टॉय फेस्टिवल की जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है एक डीपर डिस्कवरी के लिए. और उसमें हैंड्स ऑन फन एक्टिविटीज है एंड जो इनकी एक्टिविटीज होती है वो ऐसी नहीं है कि ऊपरी बस किया जाओ बेटा हाँ इधर से ये बॉल उधर फेंक दो हो गया काम, नहीं, काफी इमर्सिव है बिकॉज इट लेट्स योर किड लर्न अ लॉट विच इज बियॉन्ड द यूजुअल फेस्टिवल विजिट. तो आप जाएंगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जो कैंप लगा है इसका वो बड़ा अच्छा है, कैंप सच में बहुत प्यारा है, मैंने कुछ वीडियोस देखे एंड आई लव्ड इट. सो ये जो दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में है टॉय फेस्टिवल, ये 5 to 30 July तक है, सुबह के 8 PM से दोपहर के 1 PM तक. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन फ्राइडे सैटरडेज ऑफ है और जो चौथा वीक है इसका जो लास्ट वीक है जिसमें आप जा सकते हैं, इसमें बिल्डिंग डिजाइन और रिसर्च स्किल्स हैं जो कि एम्पावर करती हैं बच्चों को, सिखाती हैं कि किस तरीके से टीम वर्किंग बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क होता क्या है, और उनको मौका मिलता है कि अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को आगे लेके आएँ. क्योंकि एक सेक्शन है साइंस स्ट्रीट मिनी एक्सपो, ये बच्चों के लिए है स्पेशली ताकि वो अपने आइडियाज़ भी आगे रख सकें, उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें इमर्सिव एक्टिविटीज़ हैं. एंड ऑफकोर्स बच्चे जब ऐसे कैंप्स में जाते हैं तो ना सिर्फ उनका दिमाग खुलता है, उनका जहन खुलता है, वो नए दोस्त बनाते हैं, लाइफ का एक POV चेंज होता है, पर्सपेक्टिव चेंज करते रहना चाहिए, ये हमने भी सिखाया है. लोग कहते हैं ना इवन हमारे इस्लाम में भी कहते हैं कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका परसेप्शन बदलता है, चेंज होता है, आप खुलता है आपका दिमाग. सो ट्रैवल करें और बच्चों को, क्योंकि ऑफकोर्स आप उनको भी ले जाना चाहेंगे उनका भी जहन खुले, वो भी उनका पर्सपेक्टिव बदले. सो कीप चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव, यू नेवर नो कि आपका बच्चा इन समर कैंप्स की वजह से हो सकता है कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी चीज डिस्कवर कर ले जो शायद आपको भी नहीं पता. यू नो देयर आर टाइम्स जब आपको लगता है कि बच्चा जो है कुछ और चीज में उसका शौक रखता है, लेकिन द मोमेंट यू हैंड हिम अ पेंट ब्रश, यू हैंड हिम सम ब्लॉक्स टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, वो बच्चा उसमें बहुत इंडल्ज हो जाता है एंड यू रियलाइज कह रहे वाह ये तो पेंटिंग भी कर लेता है, ये तो ये भी कर लेता है. सो वो जो परसेप्शन है, वो जो POV चेंज करने का तरीका है वो यही है. ऐसे ही एक्टिविटीज हैं, ऐसे ही समर कैंप्स हैं. सो कतर टॉय फेस्टिवल का पूरा पूरा फायदा उठाइए. एज ग्रुप फिर से बता दूं 4 to 12 years के बच्चों के लिए है एंड इट्स जस्ट अमेजिंग. सो DECC 5 to 30 July, आई बिलीव जब आप सुन रहे होंगे तो लास्ट वीक होगा, तो लास्ट वीक का मैंने बता दिया क्या एक्टिविटीज हैं, सुबह के 8 to 1 PM के बीच में. और बड़े भी जा सकते हैं, नॉट इन द कैंप, मगर आप टॉय फेस्टिवल जरूर घूम सकते हैं. तो आप जरूर जाएं, यू माइट फील नॉस्टैल्जिक एंड ऑल्सो आपको बहुत सारे वहां पे जो कॉस्ट्यूम में मिलेंगे आपको, इट्स लाइक कॉमिक कॉन टाइप का चीज है ये और बहुत बहुत प्यारा है, तो जरूर होके आइए. ओके, मूविंग ऑन. आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी. देखो जब म्यूजिक की बात आती है ना और बैकग्राउंड स्कोर की, तो मैं एक बंदे का बहुत बड़ा फैन हूँ. आई स्टिल रिमेम्बर एक मूवी देखी थी मैंने जिसका नाम है

डंकर्क, डंकर्क में म्यूजिक जो बैकग्राउंड का है वो बड़ा कमाल का है. जो साउंड है, जो म्यूजिक है, बीजीएम है, वो ऊपर की तरफ जाता है, डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग, और पूरी टेंशन बना के रखता है. उन्होंने भाई ये क्या आइडिया है, आपको लगेगा आप शायद म्यूजिक ड्रॉप होगा लेकिन म्यूजिक ड्रॉप नहीं होता, एंड इट क्रिएट्स टेंशन. फिर एक उसमें मैंने साउंड सुना था, ठीक ठीक, घड़ी के साउंड के साथ जो म्यूजिक क्रिएट किया गया है, ऐसे बहुत कम लोग सोच पाते. मेरे जहन में एक ही नाम है जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बैकग्राउंड स्कोर के मामले में और म्यूजिक देने के मामले में इन जनरल जब बात आती है इंटरनेशनल आर्टिस्ट की. सो हैंस ज़िमर इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस. सो हैंस ज़िमर टूर पे निकले हैं, पिछले साल मैंने सुना था, आई थिंक पता नहीं हुआ नहीं हुआ, मुझसे मिस हो गया था. तो इस बार भी ही इज रेडी टू सेट न्यू स्टैंडर्ड्स अपने इलेक्ट्रॉनिक साउंड एलिमेंट्स के साथ और एक इमर्सिव लाइट प्रोडक्शन के साथ वो आएंगे कतर में. और इस बार भी बड़ा यूनिक स्टेज तैयार किया जाएगा ताकि उनकी जो सक्सेस स्टोरी है अपने प्रीवियस प्रोडक्शन की, नेक्स्ट लेवल जो वो कहते हैं उनके लाइव प्रोडक्शन का नाम है द नेक्स्ट लेवल, वो हैंस ज़िमर की रिलेंटलेस ड्राइव को शोकेस करता है. किस तरीके से उन्होंने आर्टिस्टिक बाउंड्रीज को पार किया है. क्या होता है कि आप अपने काम में बहुत माहिर होंगे, ठीक है, बट समटाइम्स यू फील कि मैं अभी इतना माहिर हूं कि मुझे कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू क्रॉस द आर्टिस्टिक बाउंड्रीज, और फिर आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं. बट हैंस ज़िमर इज टोटली डिफरेंट. He is one crazy artist. होते हैं लोग कहते हैं भाई आर्टिस्ट सन की होते हैं. He is the prime example who constantly pushed his artistic boundaries and did something else. हमेशा explore करते आए हैं वो नए parts of music and evolve करते आए हैं उस sound को. आप कभी भी हैंस ज़िमर जब लिखा है music by हैंस ज़िमर, automatically आपके दिल में आता है यार ये बंदे ने कुछ तो किया होगा इस बार. And that is how he has created his image. तो एक नए vision के साथ इस बार वो दोहा भी आ रहे हैं. And he has tons of fans like me as well. So, तैयार हो जाइए एक Sonic World Beyond Imagination feel करने के लिए, क्योंकि this is their theme and globally recognized है उनका music. बहुत सारे movies में हैंस ज़िमर ने बड़े बड़े काम किए हैं, और जब मैं नाम बताऊंगा किन किन चीजों में उन्होंने काम किया है तो आप खुद समझ जाएंगे कि बंदा तारीफ के लायक है. वो म्यूजिक कंपोजर रहे हैं लायन किंग में, ग्लैडिएटर को उन्होंने स्कोर दिया है, एंड माय फेवरेट विच इज एब्सोल्युटली अ बैंगर वो है डार्क नाइट ट्रिलॉजी, बैटमैन बिगिंस, डार्क नाइट एंड डार्क नाइट राइजेस, सबका म्यूजिक दिया है ज़िमर ने. विद द लास्ट समुराई, अगर आपने नहीं देखी लास्ट समुराई का म्यूजिक उन्होंने दिया है. इंटरस्टेलर ब्रो, मतलब और क्या एग्जांपल. इंटरस्टेलर का म्यूजिक उन्होंने दिया है, इंसेप्शन का दिया है, ड्यून पार्ट वन का दिया है, और बहुत ही रिसेंटली उनकी एक मूवी आई थी जोसेफ कोइंस्की की F1 द मूवी, हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्पोर्ट्स फिल्म है वो ऑफ ऑल टाइम. उसमें भी अवार्ड जीता है हैंस ज़िमर ने, अ गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन. दिस इज एन अवार्ड फॉर हिम नो. और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी का हिस्सा बनने के बिना भी वो बहुत बड़े बन चुके हैं इंडस्ट्री में. सो उनकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग अप्रोच है म्यूजिक के कंपोजिशन के लिए, वो मॉडर्न सिनेमैटिक साउंड को बदलती आई है. लोग उनको देख के रिस्क लेना चाहते हैं जो बैकग्राउंड स्कोर देते हैं, बिकॉज पीपल फील कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप कोई टेंशन वाला सीन है तो बैकग्राउंड म्यूजिक में ढूंढू ढूंढू ढूंढू, आई एम सॉरी फॉर माई साउंड इफेक्ट्स सस्ते वाले करो, पर आप समझ गए ना, टेंशन के भी अलग अलग किस्म के साउंड इफेक्ट साउंड एलिमेंट्स डाले जा सकते हैं. तो कुल मिला के एक्सपेरिमेंटिव, ही इज अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है. हैंस ज़िमर अपने आप में हैंड्स डाउन वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी, एंड वो दोहा आ रहे हैं 974 स्टेडियम प्रिसिंक्ट परफॉर्म करेंगे. एंड ये अभी आने में टाइम है, 6 नवंबर को आएंगे, बट ही इज गोइंग टू परफॉर्म शाम में 6 बजे से रात के 12 बजे तक. तो 4 घंटे का बहुत कमाल का इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा हैंस ज़िमर जब यहाँ पर आएंगे. अगर आप हैंस ज़िमर को नहीं जानते हैं, कभी सुना नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा आप जाइए. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कतर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा वाले कहीं परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो उनके परफॉर्मेंस को कभी मत छोड़िएगा. वैसे ही आई वुड से कि हैंस ज़िमर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई बनता ही नहीं आपका छोड़ना. ओके, मूविंग ऑन. अब अगला जो है, अगला स्टोरी टेलिंग पर है. मैं ये समझता हूँ कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसा आर्ट है, क्योंकि मैं खुद स्टोरी टेलिंग करता हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो मैं बहुत बड़ा स्टोरी टेलर हूँ, नहीं, बट स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट फॉर्म जहाँ पर आप बहुत छोटी सी बात को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बात को आप बहुत आसान करके किसी के भेजे में भी चिपका सकते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. और जब बच्चे स्टोरी टेलिंग से मुखातिब होते हैं
तो उनके लिए को

कोई बड़े से बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज उन्हें परेशान नहीं कर सकती कुल मिलाकर. सो दे अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड जो दिमाग की ग्रोथ है वो स्टोरी टेलिंग के जरिए होती है. समटाइम्स आप कुछ चीजें देखते हैं और आपको वो चीजें याद करने के लिए कहानी बुननी पड़ती है जो आपके दिमाग में आप बुन लेते हैं. एंड दैट्स हाउ आवर ह्यूमन ब्रेन वर्क. तो एक स्टोरी टेलर के तौर पे ये इवेंट को प्रमोट करते हैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जो कि 18 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा. ये एक छोटी बच्ची की कहानी है, लायला, जो जाती है अपनी ग्रैंड मदर के पास विजिट करने के लिए. एंड उसे रस्ते में एक बहुत ही चालाक वुल्फ मिल जाता है, भेड़िया, जो उसे धोखा देने की कोशिश करता है. डिसेप्टिव है काफी ज्यादा. और इस स्टोरी हाईलाइट करती है टेंशन बिटवीन इनोसेंस एंड डिसेप्शन, मतलब मासूमियत और धोखाधड़ी के बीच का जो रास्ता होता है उसको अच्छे से दिखाती है. और ये जो कहानी है काफी काफी ज्यादा पॉपुलर है. टाइम ऑनर्ड टेल, वक्त जिस कहानी की इज्जत करे उसकी इज्जत तो हम क्यों ना करें. तो जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन हैव एंजॉयड दिस स्टोरी. एंड ना सिर्फ बच्चे, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं जिन्होंने ये कहानी देखी है पहले, नाउ देयर एडल्ट्स, दे आल्सो लव द स्टोरी. तो आप विजिट करिएगा थिएटर अपने बच्चों के साथ एंड एक लॉन्ग लास्टिंग फैमिली मेमोरीज आप जरूर बनाएंगे. एक नहीं दर्जन बनाएंगे. मेमोरीज बोला है मैंने जब प्लूरल, तो मेमोरीज, सिर्फ मेमोरी नहीं. तो लैला एंड द वुल्फ ये कहानी का नाम है एंड इट इज रिकमेंडेड फॉर 4 to 11 ईयर्स ओल्ड किड्स. और ये परफॉर्मेंस इसकी जो होने वाली है ये अरेबिक में होगी, बट आपको समझ में आ जाएगी. अगर आपने यहाँ पर रहे हैं, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी. बाकी अगर आपको अरेबिक समझ में आती है तो ये लोग ज़्यादा डिफिकल्ट डायलेक्ट यूज़ भी नहीं करते. इट इज़ डन इन अ वेरी नाइस एंड सटल वे, जिसका डायलेक्ट भी ईजी है समझने के लिए. एंड इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म इन अरेबिक एज आई मेंशन. सो ये परफॉर्मेंस, आफ्टरनून परफॉर्मेंस रखी गई है 18 अगस्त से 22 अगस्त तक शाम के 4 बजे. ठीक है, शाम के 4 बजे. लोकेशन है दोहा प्लेयर्स कम्युनिटी थिएटर ग्रुप, 18 अगस्त 22 अगस्त तक शाम के 4 से 4:40 के बीच में. सो ये कुछ इवेंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बिकॉज ये अगर आपसे छूट गए तब तो पीर जी दिक्कत हो जानी है. तो आप इन इवेंट्स पे जरा ध्यान रखिएगा. बाकी कोई ऐसा इवेंट आपको लगता है कि भाई हमसे छूट गया और आप बताना चाहें तो प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज बताएं, प्लीज प्लीज नो. एंड इसके अलावा मैं आपकी नज़र ले जाना चाहूँगा वाटर पार्क्स की तरफ भी. जो वाटर पार्क्स हैं कतर में, वहाँ पे भी कई सारे डिस्काउंट्स हैं, वहाँ पर भी आप ज़रूर ज़रूर होके आएँ, बिकॉज दे हैव ओपन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी हैं, सिंगल्स के लिए भी हैं, जो सिंगल नहीं है उनके लिए भी हैं. और ये चल रहे हैं अभी इवेंट्स, कई जगहों पर ख़त्म हो जाएंगे इस हफ्ते, कुछ कई जगहों पर चलेंगे. एंड इसके अलावा PSCC की तरफ से भी एक इवेंट जारी हुआ है, केयर समर प्रोग्राम, जो कि फ्री फील्ड ट्रेनिंग है स्टूडेंट्स के लिए कतर में. ये भी काफ़ी काफ़ी अच्छा इवेंट है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके जरिए 12 से 18 साल के बीच में जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको इस प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे रेसिडेंट्स हो. और कंडक्ट किया जा रहा है एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम, लेकिन बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम, ताकि बच्चे जो हैं अपने एनवायरमेंट से जुड़ें, हेल्थ सेंटर से जुड़ें और हिस्सा लें अलग अलग हेल्थ सेंटर्स के कामों में. और हो सकता है दे माइट एज वेल वॉन्ट टू वर्क फॉर हेल्थ सेक्टर्स. ये एक ट्रेनिंग है और ये जो चलेगी ये 3 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगी, 3 दिन हर हफ्ते, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, और 2 शिफ्ट्स में चलेगी, मॉर्निंग सुबह 10 से 1 और फिर शाम को 5 से 8. ये अलसद अलवजबा उम सिलाल की तरफ ये इवेंट्स रखे गए, मतलब ये प्रोग्राम रखा गया और सारे स्कूल्स को जोड़ने की कोशिश है, एंड विच इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव. तो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं. इसके अलावा विजिट कतर का एक इवेंट है जो आने वाला है. दे आर प्रेजेंटिंग पार्टनर फॉर कतर गुडवुड फेस्टिवल 2026, जिसका काफ़ी काफ़ी भारी भरकम इनाम भी है. सो इट्स गोइंग टू टेक प्लेस 28 जुलाई से 1 अगस्त तक वेस्ट ससेक्स यूनाइटेड किंगडम में. ये हमें देखने को मिलेगा, तो मैंने इसलिए इसको लास्ट में रखा बिकॉज इट इज़ नॉट हैपनिंग इन कतर, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन वॉच ऑन डिफरेंट चैनल्स एंड दिस कैन बी ऑल्सो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. इसके अलावा जो है समर क्लासेस कतर में जारी हैं, अगर आप स्विमिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी हैं, ये समर क्लासेस जगह जगह पे दी जा रही हैं. और अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं, भाई तैरना सीखो क्योंकि यही मौका है. हैमिल्टन एक्वाटिक्स में है, स्पीडिया स्पोर्ट्स में है, एक्सेलरेट स्पोर्ट्स सेंटर में है, होब्स स्पोर्ट्स सेंटर में है, रेनबो कलर स्पोर्ट्स अकेडमी दे रही है, स्पोर्ट्स कासल दे रहा है, स्पार्टा स्पोर्ट्स में है, बहुत अलग अलग जगहों पे, इवन पर्ल स्पोर्ट्स एकेडमी जो मेरे घर के पास में, वहां पर भी स्विमिंग क्लासेस चल रही है. सो आप बच्चों के साथ इस भी एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ चांस फॉर यू टू

have that communication with your kid and ye aap iska hissa zarur ban sakte hain. Baki kuch aur chote mote events hain jo bade scale par hain, bachcho ke liye bhi hain, bado ke liye bhi hain. Abhi kya football gaya na jab se, tab se log jo hain thoda sa soch rahe hain ki ab kya dekhen. Abhi bhi bahut kuch hai. जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल, कलर वर्स एक्सपीरियंस. मैंने आपको बताया था कलर वर्स एक्सपीरियंस आपको मिलेगा 20 जुलाई से, ये शुरू हो चुका है रिसेंटली और 15 सितंबर तक है. तो ये जो दुनिया बनाई गई है कलर वर्स की, कला ये कलर रामा एक इमर्सिव एनवायरनमेंट है. लेट मी टेल यू दिस इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज. तो काफी इंटरेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स हैं, लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं और ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो बच्चों को बहुत मजा आएगा. इसमें कैरेक्टर मीट एंड ग्रीट भी रखा गया है और ये साउथ पार्क कतारा कल्चरल विलेज में रखा गया है 20 जुलाई से 15 सितंबर. तो अभी भी टाइम है, जरूर जाइए. टेंटेटिव ओपनिंग डेट तो उसकी 20 को तो खुल चुका होगा अभी तक तो. और इसकी टाइमिंग है वीकडेज में शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक और 4 बजे से 11 बजे तक. ये वीकेंड्स पर रहेगी. प्राइसेस इसके देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आपको पता लग जाएंगे. एंड इसके अलावा जो समर कैंप्स हैं वो तो लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे. आईकेए लिटिल स्टार्स भी जारी है. आई थिंक जब ये आप शो सुन रहे होंगे तो मे बी इट्स गॉन नाउ. 31 जुलाई तक वो भी रहा है. एंड मॉर्निंग जो जॉगिंग सेशंस हैं वो भी रखे गए हैं दोहा फेस्टिवल सिटी में, जो कि 31 अगस्त तक हैं. सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल. अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, यू नो समटाइम्स यू फील लाइक कि मैं रनिंग करूं, जॉगिंग करूं, कहीं से तो अपनी सेहत का ख्याल रखूं. सो जो इनिशियल कहते हैं ना लोग, इनिशियल 1-2 किलोमीटर्स जो है वो मायने रखते हैं. तो आई थिंक कहीं से शुरुआत होगी तो आपकी यहाँ से हो सकती है. इंडोर है, सबसे अच्छी बात यह है. और इंडोर में तो भागने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, एक्सरसाइज सब कुछ कराई जाएंगी. सो 5 किलोमीटर का रन है और ये एक रनिंग क्लब बनाया गया है दोहा फेस्टिवल सिटी में, जो फ्राइडे मॉर्निंग्स को आपकी तैयार करेगा, वर्जिश करा देंगे, आपकी तैयार कर देंगे एकदम आपको बढ़िया तरीके से. तो यहाँ का भी आप हिस्सा बन सकते हैं. इसके अलावा एक हेरिटेज और ट्रेडिशनल क्राफ्ट समर वर्कशॉप भी जारी है. और ये जो समर वर्कशॉप है ये रखी गई है सिर्फ लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए. 9 साल से 14 साल की बच्चियां सुन रही हैं तो बेटा स्वीट हार्ट दिस इज फॉर यू. और ये बिल्डिंग 46 में है साधु एग्जीबिशन कतारा में और ये 4 अगस्त तक ये चलने वाला है. एंड दिस इज फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 12 PM एंड एंट्री फ्री है. तो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं. इसके अलावा ऑल द म्यूजियम्स अराउंड यू, स्पेशली ये जो अपना कौन सा म्यूजियम है, अरे ये नेशनल कतर नेशनल म्यूजियम, तो नेशनल कतर म्यूजियम, कतर नेशनल म्यूजियम, हाँ मैं आगे पीछे हो जाता हूँ. बट म्यूजियम्स अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए कतर के, दिस इज योर टाइम टू डू इट. बिकॉज हम कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और सारे के सारे म्यूजियम्स हमने अभी तक नहीं देखे, क्योंकि हमारे जहन में होता है म्यूजियम देखे जगह जगह बोरिंग से होते हैं. कतर के म्यूजियम्स आर डिफरेंट ब्रो. यहाँ म्यूजियम्स भी बोरिंग नहीं है, उनमें भी एंटरटेनमेंट का फुल मसाला झोंका गया है. तो आप जरूर जरूर देखें. सबसे पहले तो आप MIA से शुरू कर सकते हैं. MIA जाइए, नेशनल कतर म्यूजियम जाइए और इसके अलावा जो मशहब म्यूजियम वहां पे नहीं जाना है, मुशारिब जाइए. आपको हर जगह हर म्यूजियम में कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव मिलेगा. और अभी तो ऑटो वर्कशॉप्स भी शुरू होने वाली हैं. काफी सारी चीजें हैं जो इनडोर्स रखी गई हैं आपकी सहूलत के हिसाब से. सो उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए. दिस इज योर चांस टू गो आउट. ये बहाना ना बना के कि गर्मी और कौन जाएगा, हमको पैदल नहीं चलना है कोई, नोबडी इज फोर्सिंग यू. बट बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स. और कोई इवेंट अगर आपने विटनेस किया एंड यू वांट टू टेल अस, प्लीज प्लीज बताइएगा. एंड वी वुड लव टू नो, वी वुड लव टू ऐड दिस ऑन द लिस्ट. फुटबॉल के बाद से लोगों ने बाहर इवेंट जरा क्या कहते हैं देखने के लिए बाहर जाना थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि पहले वो था ना चस आ रही है जी बाहर देखेंगे फुटबॉल का मैच, वो भी बंद हो गया है. तो पीपल आर फाइंडिंग वेज टू जस्ट गो आउट एंड स्पेंड सम टाइम. तो रादर देन गोइंग जस्ट टू बीचेस, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि लोगों का बाहर जाने का मतलब सिर्फ एक ही है, मैं तो जी बीच पर आ जाऊंगा बस. बीच के अलावा भी बहुत कुछ है तो जाइए. एंड ऑल्सो जीवान आइलैंड पे भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, पर अल्टीमेटली आप जरूरी नहीं कि कुछ वहाँ पे खरीदने के लिए ही जाएंगे. जीवान आइलैंड आप वैसे भी जा सकते हैं. पार्किंग का जरा ध्यान रखिएगा. एंड अगर आप वीकडेज में जाते हैं वीकेंड के अलावा तो ये बहुत बढ़िया है. बस ये वाले जो इवेंट्स मैंने बताए ये सब के लिए हैं. आप कोई मुझसे ये ना बोलिए आप तो बैचलर्स के लिए बता, मैं बता रहा हूँ हर किसी के लिए भाई, हर किसी के लिए. एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो मैंने शुरुआत में कहा था वो मैं फिर से दोहराऊंगा,
वो ये कि जो स्टेकेशन का मामला है कतर में वो अभी गर्मा गर्म चल रहा है, इसका फायदा उठाइए बिकॉज टंस ऑफ होटल्स आर ऑफरिंग लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें

0: स्टे भी शामिल है. हो सकता है कि आपको स्टे ना करना हो, जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली के साथ नहीं, आप दोस्तों के साथ जाइए वहाँ पे जहाँ बूफे ऑफर्स जारी हैं, जहाँ पर आपको ब्रंच के, लंच के, ब्रेकफास्ट के, डिनर के तमाम तरीके के ऑफर्स हैं. और क्या ये जो समर एक्टिविटीज हैं, इनका समर में ही मजा है. आई नो हमारा दिमाग ये कहता है कि अरे जब थोड़ा मौसम बढ़िया हो जाएगा तब जाके कहीं ना कहीं कुछ देख लेंगे, लेकिन गुरु ये वाले जो अभी इवेंट हो रहे हैं उनका फायदा भी है. जैसे आधे लोगों ने मैंगो फेस्टिवल मिस कर दिया होगा, कोई सेंस है इस बात का? मतलब मैंगो फेस्टिवल ऐसा है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए था. और अब इसके अलावा इवेंट से जुड़ी हुई एक और बात, लास्टली भाई साहब नई नई चीजें ट्राई करने का मौका है आपके पास. रिसेंटली मैंने एक हमारे भाई हैं पाकिस्तान से, तो उन्होंने भी बताया फालसे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आपने ये सब भी नहीं खाया जो गर्मी के मौसम में मिलता है तो कुछ नया ट्राई कीजिए. बहुतों को फालसे भी नहीं बताऊंगे, तो फालसे ट्राई कीजिए ब्रो, फालसे. तो मैं समझा देता हूँ, फालसे क्या है, जामुन के क्लोज कजन है, छोटे कजन है बेसिकली. जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, पाकिस्तान में भी फालसे लोगों को पता है, पर जिनको नहीं पता है मिस कर रहे हैं आप कुछ बहुत बढ़िया चीज. मेरी इस बात तो इग्नोर मत कीजिएगा, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली और फालसे के मजे लीजिए, चटकारे मार के, क्योंकि गर्मी के बाद, गर्मी के सीजन के बाद आपको नहीं मिलने के. अब कहाँ मिलेंगे ये तो मैं भद्दे को प्रमोट नहीं कर सकता, मगर आप फालसे जब टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा. इंग्लिश में नाम मत पूछना, मुझे भी नहीं पता फालसे का, बट दे आर एब्सोल्युटली अवेलेबल इन इन कतर. और कुछ खाने जैसे मैंने कहा कि सिर्फ सीजनल होते हैं, तो उनका फायदा उठाइए. ऑन दैट नोट आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है. सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. प्लीज गेट इन टच विद अस, और आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, दोहा वाला कबीर FM107, कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR. एंड इसी के साथ साथ अगर आप कुछ इवेंट्स बताना चाहें जो आने वाले हैं, आप इवेंट्स का हिस्सा बने हैं, किसी भी बताए हुए इवेंट में जाएं या अपने किसी इवेंट में गए, तो हमें जरूर टैग कर दीजिएगा अपनी स्टोरीज में, स्टोरी बनाएं FM107 Qatar, FM107 Qatar, हमें टैग जरूर कीजिएगा. इफ यू वांट टू टैग मी ऑल्सो दोहा वाला कबीर FM107. और आपसे मैं चाहूंगा इजाजत, दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक इवेंट्स में भर भर के जाइए, दोस्तों के लिए जाइए, फैमिलीज को लेके जाइए, सब इवेंट्स का भरपूर फायदा उठाइए. एंड अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मासलामा.
1: Qatar 2026. Qatar 2026. Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको.
5: टॉप 10 काउंटडाउन.
4: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: सच्चे शख्स पर नजर डालो, तुम सुखी हो जाओगे, परेशान नहीं होगे। लेकिन अगर शौक हो ऊपर देखने का, तो फिर दीन में जो आपसे ऊपर हैं, उन पर नजर डालो। अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करने की सआदत अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام

की पहली जमानत है। मजीद उन्होंने कहा कि कभी तन्हा तैराकी न करें, क्योंकि इंफरादियत की हालत में अगर आप अकेले हों तो मसाइल पेश आ सकते हैं, और समंदर का मिजाज आपको पता है कि ये चंद लम्हों में बदल जाता है, और यानी कभी खिंचाव, कभी लहर तेज़, यानी भाव जो है ना ये पानी का कभी भी इंसान को किसी भी मुश्किल में डाल सकता है, यानी पोटेंशियल या फिर एहतमाल मौजूद है, एहतमाल वारिद। अच्छा तो इसी साथ अगर आपके साथ कोई दूसरा मौजूद होगा तो आप फौरी मदद भी तलब कर सकते हैं, ठीक है, इब्तदाई जो इमदाद वो फराहम कर पाएगा। इस वजह से ये पहली बात है कि अच्छा अकेला तैराकी न करें। अच्छा अब तीसरी हिदायत की तरफ आते हैं जो उन्होंने हमें कहा कि हालत तक्स या मौसम की जो सूरत हाल है ये ज़रूर आप मालूम करें समंदर में जाने से पहले। आजकल मोबाइल वगैरह मुख्तलिफ ऐप्स वगैरह मौजूद हैं, आप ख़ुद पता कर सकते हैं कि अब क्या है मौसम की क्या सूरत हाल है। आप दोहा में बैठे हुए हैं लेकिन साहिली जो इलाका है उसका मौसम कुछ अलग भी हो सकता है, लिहाजा उस डिज़ाइनेटेड एरिया या फिर फिक्स जो एरिया है उसके यानी मौसम की जो सूरत हाल क्या है उसे आप यकीनी तौर पर उसकी मालूमात हासिल करें, फिर आप उसका रुख करें। और जैसे कि मौसमी सूरत हाल या मौसमियाती इत्तलाआत, इसकी जो इसका जो अहम फ़ायदा है वो ये कि जैसे हवाएं तेज़ चल रही हैं वहाँ पर आपको ज़रूर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर वहाँ ये लिखा मिलेगा आपको, लहरें बुलंद हों, मौसम ख़राब होने का इम्कान हो, तो बेहतरीन फ़ैसला यही है कि समंदर में जाने का जो फ़ैसला है इसको मुअख्खर कर दिया जाए। सामने किराम मज़ीद उन्होंने हमें यह भी बताया कि अगर आपको थकन महसूस हो रहा हो, बाज़ औक़ात ये है कि बंदा बुखार है, जिस्मानी तौर पर कुछ थकन है, बीमार है, तो समंदर में न उतरें। यानी ये गलत है कि बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि पानी में जाकर तबीयत बेहतर हो जाएगी, ये नहीं, बल्कि वो तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर आपके यानी थकन महसूस हो तो पहले से एहतियात करें और समंदर में आप न जाएं, क्योंकि कमज़ोरी, बुखार, जो भी इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं, ये अगर शदीद थकन अगर हो तो पानी में जो इंसान की जो सलाहियत होती है उसे कमज़ोर कर देती है, कम कर देती है, फिर मामूली सी दुश्वारी भी पेश आ जाए तो ये बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें। और आखिर में उन्होंने बच्चों के हवाले से भी कहा कि बच्चे अगर जाएँ तो जैसे कि उन्होंने कहा कि सुतरत नजात लाइफ जैकेट, ये काफ़ी ज़रूरी है कि लाइफ जैकेट का इस्तेमाल बच्चों के लिए। उन्होंने कहा कि आपको ये लग सकता है कि भाई मौसमी सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल सही है, यानी कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जैसे कि हमने शुरू में भी कहा समंदर का मिजाज उसका कोई ठिकाना नहीं है, अचानक कुछ से कुछ हो सकता है, तो इस वजह से बच्चों को ज़रूर लाइफ जैकेट पहनाइए चाहे पानी कम गहरा ही क्यों ना हो। यानी ये आपकी तरफ से एहतियात है, जैसे कि हमने कहा कि एहतियाती इकदाम ये ज़रूरी है, और एक लम्हे की बेहतियाती ये बड़े से बड़े हादसे का बायस बन सकती है। तो लाइफ जैकेट इसको हर वक्त आप बच्चों के लिए ज़रूर यानी इसका इंतज़ाम करें, इसकी पाबंदी करें। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो वाटर स्पोर्ट्स के जो ऐसे स्कूटर्स हैं दर्राजात अलमाईया के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि आप उनके लिए जो डिज़ाइनेटेड एरियाज हैं उनसे आप दूर रहें, तो ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप ये पता कर लेंगे शुरू में जाकर कि भाई यहाँ तैराकी के लिए कौन से मुंतखब एरिया हैं, मखसूस एरिया कौन से हैं, तो जब आप इसका पता हासिल कर लेंगे तो फिर आपको यानी इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी, आप वो स्कूटर्स के लिए जो ख़ास उनके एरियाज उसमें आप कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये बात ज़रूरी है कि आप पहले पता कर लें कि आपकी स्विमिंग के लिए मखसूस करदा एरिया कौन सा है। यानी मज़ीद उन्होंने तंबी के लिए ये भी बताया कि भाई हमें मुतनब्बे किया है कि आप ये स्कूटर्स के जो एरिया हैं इनके लिए अलग जोन मुकर्रर किए जाते हैं, उस जोन में आप कभी भी न जाएं, क्योंकि अगर आप चले जाते हैं तो किसी भी हादसा का सामना कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, तो ख़ुद भी महफूज रहें दूसरों को भी महफूज रखें। तो हर शख्स को ये ज़रूरी है कि अपनी सर

शहर दूत आज फिर शहर बारिश ने तर किया जॉइंट जला धुआं बातें करे तंजिया दिल किया लिखने को थोड़ी शायरी बूंदों की गायकी ने लफ्जों को खर दिया बार गाए हुसन के जमे गफीर में क्या गुजरे कभी नजर से इस भीड़ में तेरी आंखें हमें देखें इतना बहुत है वरना तो तिश्नगी ऐसी के दिल को चीर दे रोज तेरी मुस्कान का उठाते नुकसान होश ही ना रहे जूंदे तारीफों के पुल बांध धूमधाम छोड़ तेरी खामोशी में रह ले आकर लेना सांस भी

0: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी, देसी।
1: साथियों जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठें और आपके आसपास के लेक्स यानी झीलों का रंग एक दिन से दूसरे दिन बिल्कुल बदल गया हो, कैसा लगेगा आपको? लगेगा ना मैजिकल सीन। ये फिनोमिना किसी कहानी या मिथ का हिस्सा नहीं है, ये एक्चुअली में साइंस का एक रियल और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है जो नेचर की क्रिएटिविटी और बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रूफ करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं शो एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन एफएम 107। साथियों, लेक्स का रेड, पिंक या ऑरेंज होना अक्सर वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया गया है और साइंटिस्ट के लिए ये एक नेचुरल लेबोरेटरी का काम करता है। अक्सर ये फिनोमिना ऐसे रीजन्स में होता है जहाँ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, सनलाइट इंटेंस हो और टेम्परेचर और पीएच कंडीशंस स्पेसिफिक हो। ये लेक्स ये शो करते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंटरैक्ट करके विजुअल मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेड लेक्स का कलर कैसे बनता है। ये कलर बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का नतीजा होता है। माइक्रोब्स जैसे एल्जाई और बैक्टीरिया पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। मिनरल्स और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कलर एम्पलीफाई करता है और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे सनलाइट और इवेपोरेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। लेक्स का रंग बदलना सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है, बल्कि ये इकोसिस्टम की हेल्थ और वाटर केमिस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स फील्ड ऑब्जर्वेशंस, वाटर सैंपलिंग और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये फिनोमिना स्टडी करते हैं और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं।

कुछ लेक्स तो परमानेंटली रेड ही रहते हैं, कुछ सीजनल या टेंपरेरी रेड होते हैं और हर लेक के कलर चेंज का रीजन स्लाइटली डिफरेंट होता है। जैसे दुनिया के फेमस एग्जांपल्स में लेक हिलर जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, लेक रेटबा जो कि सेनेगल में है, और भाई स्पेन में भी तो एक ऐसा दरिया मौजूद है जिसका नाम है सेलिना दी तोरे बिका। साथियों पाकिस्तान के रेयर केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जहां लोकल कम्युनिटीज ने नेचुरली रेड हो जाने वाले लेक्स ऑब्जर्व किए हैं। ये लेक्स सिर्फ विजुअली स्टनिंग नहीं होते, ये साइंस और क्यूरियोसिटी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये हमें सिखाते हैं कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। माइक्रोस्कोपिक लाइफ, मिनरल्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इंटरैक्शन एक कलरफुल और डायनेमिक स्पेक्टिकल क्रिएट करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे रेड लेक्स के बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस काम करते हैं, लिमनोलॉजी और हाइड्रोकेमिस्ट्री का रोल, ग्लोबल केस स्टडीज और लैब बेसिस ऑब्जर्वेशंस, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट और वे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को और समझते हैं ये ओवरनाइट वाटर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे और क्यों होते हैं। आप सुन रहे हैं शो एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी विद सफा, ओनली ऑन FM 107। साथियों अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेक्स इतने अचानक रेड या पिंक कलर के कैसे हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कलर का सोर्स क्या है भाई। अक्सर ये फिनोमिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्जाई और बैक्टीरिया की वजह से ही होता है जो वाटर में स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये पिगमेंट्स यूजली कैरोटीनाइड्स जैसे बीटा कैरोटीन या एस्टेक्स एंथिन होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके रेड, पिंक या ऑरेंज हुए रिफ्लेक्ट करते हैं। लेक्स में कलर की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी मौजूद है, यानी हाई सॉल्ट लेवल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं माइक्रोब के लिए जो अपने सर्वाइवल के लिए पिगमेंट्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। फिर भाई वहीं पर सनलाइट इंटेंसिटी भी अपना रोल प्ले करती है, यानी स्ट्रॉन्ग सनलाइट पिगमेंट्स को एक्टिवेट करती है और फोटोसिंथेसिस के साथ केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट होता है। हाँ, हम टेम्परेचर और पीएच को भी नहीं भूल सकते, यानी वार्म और स्लाइटली एल्कलाइन या एसिडिक कंडीशंस पिगमेंट प्रोड्यूस इनहेंस करते हैं। अच्छा साथियों इसके अंदर माइक्रोबल रोल भी मौजूद है भाई। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दुना लीला सेलिना, एक टाइप की ग्रीन एल्जाई जो एक्सट्रीम सॉल्टी लेक्स में ग्रो करती है। जब स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, ये एल्जाई रेड कैरोटीनाइड पिगमेंट्स प्रोड्यूस करती है और लेक का पूरा सरफेस एक पिंक रेड शेड में दिखाई देने लगता है। ये पिगमेंट उनके यूवी प्रोटेक्शन और स्ट्रेस रेजिस्टेंस का काम करता है। और तो और रेड कलर सिर्फ माइक्रोब्स की वजह से नहीं होता, कभी कभी वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड आयरन कंपाउंड्स और हैलाइड क्रिस्टल्स भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और कलर एम्पलीफाई करते हैं। लेक का शेलो नेचर और काम वाटर सरफेस भी रिफ्लेक्शन और पिगमेंट कॉन्सेंट्रेशन को हाई करता है। साथियों बहुत सी रेड लेक्स सीजनल फिनोमेना होती हैं। समर या ड्राई सीजन में वाटर इवेपोरेट होता है, सॉल्ट और मिनरल्स कॉन्सेंट्रेट होते हैं और माइक्रोब्स को हाई सॉल्टी और सनलाइट एक्सपोजर मिलता है जिसकी वजह से वो पिगमेंट्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। रेनी सीजन या कूलर मंथ्स में डाइल्यूटेड वाटर और रिड्यूस्ड स्ट्रेस की वजह से कलर फेड हो जाता है। अच्छा भाई सिर्फ यही नहीं, विंड्स और करंट्स भी पिगमेंट्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करते हैं। लेक के एजेस और सेंटर का कलर स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है ड्यू टू माइक्रोबल डेंसिटी एंड सॉल्ट ग्रेडियंट्स। साथियों सैटेलाइट इमेजेस और ड्रोन फोटोग्राफी से ये पैटर्न्स बहुत ही इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ये पिगमेंट्स और माइक्रोबल एक्टिविटीज लेक के इकोसिस्टम के लिए क्रूशियल हैं। ये माइक्रोब्स हाई सॉल्ट और एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और फूड चेन का बेस प्रोवाइड करते हैं जैसे ब्राइन श्रिम और स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। साथियों लेक्स का रेड होना एक विजुअल इंडिकेटर होता है कि इकोसिस्टम हेल्दी और एक्टिव है। और एक और मजे की बात तो ये है कि कुछ लेक्स का कलर इतना वाइब्रेंट होता है कि उनके इमेजेस स्पेस से भी देखी जा सकती हैं, जैसे लेक रेटबा जो कि सेनेगल में मौजूद है और लेक हिलर जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है।

भाई ये नेचुरल स्पेक्टिकल्स सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं बल्कि साइंटिफिक स्टडी और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी वैल्यूएबल हैं। चलिए साथियों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा अंदर की तरफ नजर डालते हैं, मतलब लेक के इंटरनल स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों लिम्नोलॉजी का काम ये है कि लेक्स और पॉन्ड्स के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करें। रेड लेक्स सिर्फ सरफेस का फिनोमेना नहीं है बल्कि उनके अंदर भी फैसिनेटिंग इंट्रैक्शंस चल रही होती हैं। अगर बात करें थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की तो भाई शेलो लेक्स में सनलाइट पूरी डेप्थ तक पेनिट्रेट कर रही होती है, लेकिन डीप लेक्स में थर्मोक्लाइन क्रिएट होता है, एक लेयर जहां टेम्परेचर रैपिडली चेंज होता है। ये लेयर माइक्रोबिकल डिस्ट्रीब्यूशन और केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल एल्जाई और बैक्टीरिया ज्यादातर एप्लिमिनॉन यानी अपर वार्मर लेयर में ग्रो करते हैं जहां सनलाइट और ऑक्सीजन ज्यादा होती है। अच्छा अगर बात करें ऑक्सीजन ग्रेडियंट्स की तो लेक की डेप्थ के साथ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। सरफेस के पास फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन ज्यादा होता है और बॉटम लेयर्स में ऑक्सीजन कम या जीरो भी हो सकता है। ये माइक्रोबिकल कम्युनिटीज को शेप देता है, यानी एरोबिक बैक्टीरिया टॉप लेयर में और एनएरोबिक बैक्टीरिया डीपर लेयर्स में। अच्छा साथियों रेड लेक्स अक्सर हाइपर सेलाइन होते हैं। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ सरफेस पे नहीं बल्कि डेप्थ के साथ भी वेरी करता है। सॉल्ट ग्रेडियंट्स वाटर डेंसिटी क्रिएट करते हैं जो मिक्सिंग और कन्वेक्शन को कंट्रोल करता है। माइक्रोब्स इन डेंस लेयर्स में कॉन्सेंट्रेट होते हैं और पिगमेंट प्रोड्यूस इंक्रीज करते हैं। इसी के साथ साथ पीएच और केमिकल कॉम्पोजिशन भी जरूरी होती है। अल्जाई और बैक्टीरिया स्पेसिफिक पीएच रेंज में ज्यादा एक्टिव होते हैं। बहुत से रेड लेक्स एल्कलाइन या स्लाइटली एसिडिक होते हैं। साथियों डिसॉल्व्ड मिनरल्स और आयरन्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन भी कलर इंटेंसिटी को इन्हेंस करते हैं। ये केमिकल मेकअप स्पीशीज सिलेक्शन और इकोसिस्टम हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं भाई। और अगर बात की जाए माइक्रोबल मैट्स और बायोफिल्म्स की तो शेलो और काम एरियाज में माइक्रोब्स एक मैट या बायोफिल्म फॉर्म करते हैं। ये मैट्स सरफेस के कलर और टेक्सचर को डायनेमिक बना देते हैं। माइक्रोबल मैट्स सनलाइट को ट्रैप करते हैं और पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो लेक के रेड या पिंक कलर को क्रिएट करते हैं। अच्छा साथियों सीजनल डायनेमिक्स भी इस मामले में हिस्सा लेती हैं। यानी लेक का रेड कलर अक्सर सीजनल होता है भाई। समर या ड्राई सीजन में सनलाइट और इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है जो सेलिनिटी और पिगमेंट प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। रेनी या कूलर सीजन में वाटर डाइल्यूट हो जाता है भाई और कलर फेड हो जाते हैं। ल्यूमिनोलॉजिस्ट ये पैटर्न्स मॉनिटर करते हैं ताकि इकोसिस्टम और क्लाइमेट के इंटरैक्शन समझ पाए। साथियों मॉनिटरिंग और रिसर्च टेक्निक्स भी इसमें बहुत हैंडी आती हैं। मतलब मॉडर्न ल्यूमिनोलॉजी में सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन्स, वाटर सैंपलिंग और स्पेक्ट्रल एनालिसिस यूज की जाती हैं। इससे साइंटिस्ट्स एल्जाई की ग्रोथ पैटर्न्स, पिगमेंट कंसंट्रेशन और सीजनल चेंजेस ट्रैक करते रहते हैं। रेड लेक्स के स्टडी से क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंट इंसाइट्स मिलते हैं भाई। और एक और मजे की बात बताऊं, लेक रेडपा जो कि सेनेगल में मौजूद है उसका कलर एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से भी ऑब्जर्व किया है भाई। ये रेड लेक सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल नहीं बल्कि माइक्रोबिकल एडेप्शन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का लाइव एग्जाम्पल है। साथियों अब हम अपनी जर्नी को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं और समझते हैं कि कैसे ओशनोग्राफी और सॉल्ट वाटर डायनेमिक्स रेड लेक्स के फॉर्मेशन और उनके यूनिक कलर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो भाई जब हम रेड लेक्स की बात करते हैं अक्सर ये हाइपरसेलाइन या सॉल्ट रिच लेक्स होते हैं जो ओशन के केमिकल प्रोसेसेस से सिमिलरली बिहेव करते हैं। बहुत से रेड लेक्स एरिड रीजंस में होते हैं जहां हाई इवेपोरेशन और लिमिटेड फ्रेश वाटर इनफ्लो से सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये हाइपरसेलिनिटी डेंसिटी और ब्यूयंसी ग्रेडियंट क्रिएट करता है जो माइक्रोबिकल ग्रोथ और पिगमेंट प्रोडक्शन के लिए आइडियल एनवायरनमेंट बनाता है।

0: देता है। साथियों, ये लेक्स अक्सर हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बड़े होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया और एल्जाई हैं जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं। इसकी एक फेमस एग्जाम्पल है दुनालीला सिलाना, जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है और लेक का रेड या पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। इसका फंक्शन सिर्फ कलर क्रिएशन नहीं, बल्कि ऑर्गेनिजम्स को यूवी रेडिएशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना भी है। साथियों, अगर हम कंपैरेटिव ग्लोबल लेक्स के बारे में बात करें तो लेक रेटबा, जो कि सेनेगल में मौजूद है, ड्राई सीजन में सनलाइट और हाई सैलिनिटी की वजह से ब्राइट रेड हो जाता है। लेक हेलर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, माइक्रोबिकल पिगमेंट्स और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के कॉम्बिनेशन की वजह से परमानेंट पिंक कलर का रहता है। और वहीं अगर बात करें लेक्यूना कोरोआडा की, जो कि बोलिविया में मौजूद है, रेड हुए सेडिमेंट और हेलोफिनिक एल्जाई दोनों से बनता है और मिनरल्स का यूनिक कॉम्पोजिशन इसको डिस्टिंक्ट बनाता है। ये एग्जाम्पल्स हमें ये दिखाते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस और लोकल माइक्रोबिकल स्पीशीज इकोसिस्टम स्पेसिफिक एडेप्शंस क्रिएट करते हैं। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के

0: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों,

आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों अब हम रेड लेक्स की सबसे इंटरेस्टिंग और वाइब्रेंट वजह को एक्सप्लोर करेंगे उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पिगमेंट्स। ये लेक्स अपनी ब्यूटी और यूनिकनेस काफी हद तक इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से पाते हैं जो हाई सेलिनिटी और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं। रेड लेक्स में अक्सर हेलोफिलिक यानी सॉल्ट लविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें से सबसे कॉमन है दुनालीला सलीना, एक ग्रीन माइक्रो एल्जाई जो हाई सॉल्ट और सनलाइट से स्ट्रेस होने पर बीटा कैरोटाइन प्रोड्यूस करता है। ये पिगमेंट एल्जाई को यूवी प्रोटेक्शन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और साथ ही लेक को वो पिंक या रेड कलर देता है। अपार्ट फ्रॉम एल्जाई, लेक्स में हेलो बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया रेडिश पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे बैक्टीरियो रूबेरिन जो उनके सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और लेक के कलर को और इनहेंस करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और सेलिनिटी में ज्यादा रहने की कैपेबिलिटी रखते हैं। साथियों ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरोटीनॉइड्स और रोडोफिन्स प्रोड्यूस करते हैं। बीटा कैरोटाइन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल के फ्री रेडिकल्स को प्रोटेक्ट करता है। हेलो बैक्टीरिया के पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक नहीं होते लेकिन उनका रोल एनर्जी कन्वर्जन और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन में क्रूशियल होता है। साथियों साइंटिस्ट्स इन पिगमेंट्स को स्टडी करते हैं क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी और कॉस्मेटिक्स के लिए प्रॉमिसिंग है। बीटा कैरोटाइन और बैक्टीरियो रूबरिन को एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल डाइज के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये रेड लेक्स सिर्फ नेचुरल वंडर नहीं बल्कि साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के सेंटर्स भी बन गए हैं। साथियों अक्सर टूरिस्ट सोचते हैं कि ये लेक कलर चेंज करते हैं ओवरनाइट लेकिन असल में तो ये पिगमेंट प्रोडक्शन और वाटर केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता है जो रैपिड विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है यानी एक डायनेमिक और लिविंग इकोसिस्टम की निशानी। साथियों चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे क्लाइमेट और ह्यूमन एक्टिविटीज रेड लेक को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह साइंटिस्ट उनके फ्यूचर और प्रिजर्वेशन को स्टडी कर रहे हैं। रेड लेक्स का कलर वाटर केमिस्ट्री क्लाइमेट कंडीशन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। हाई टेम्परेचर एल्जाई और हेलोफिक बैक्टीरिया के पिगमेंट प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करते हैं। लो टेम्परेचर में पिगमेंट लेवल्स कम हो जाते हैं और लेक का कलर डल या पेल हो जाता है। मॉनसून या हैवी रेनफॉल से लेक का सेलिनिटी ड्रॉप होता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और रेड कलर टेम्परेली फेड हो जाता है। गर्म और ड्राई सीजन में इवेपोरेशन से सेलिनिटी इंक्रीज होती है, पिगमेंट प्रोडक्शन पीक पर हो जाता है और लेक का कलर इंटेंस रेड या पिंक दिखाई देता है। साथियों रेड लेक्स एनवायरमेंटल सेंसिटिव हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज का इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है यानी ज्यादा टूरिस्ट से लेक के शोरलाइंस डिस्टर्ब होते हैं और माइक्रोब का हैबिटेट स्ट्रेस में आता है। केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के फ्लो से वाटर केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और एल्जाई और बैक्टीरिया का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। और तो और इरिगेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर एक्सट्रैक्ट करना लेक के सेलिनिटी और डेप्थ को अल्टर करता है जिससे पिगमेंट प्रोडक्शन और कलर इंटेंसिटी अफेक्ट होती है। साथियों साइंटिस्ट ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि कलर चेंज नेचुरल पिगमेंट्स की वजह से हो रहा है या फिर कॉन्टेमिनेंट्स या केमिकल्स की वजह से। ऑथेंटिक रेड लेक्स का कलर हमेशा नेचुरल माइक्रोबल पिगमेंट्स और हाई सेलिनिटी का रिजल्ट होता है ना के पॉल्यूटेंट्स का। साथियों कई रेड लेक्स को प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल जोन डिक्लेयर किया गया है जहां ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिटेड हैं। साइंटिस्ट्स रेगुलर वाटर सैंपलिंग और माइक्रोबल एनालिसिस करते रहते हैं ताकि इकोसिस्टम हेल्थ मेंटेन कर सकें। लोकल कम्युनिटीज और टूरिस्ट को गाइड किया जाता है कि लेक्स को डिस्टर्ब ना करें और वेस्ट ना डिस्कार्ड करें। फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को प्रेडिक्ट करना क्रूशियल है। साथियों अगर इवेपोरेशन रेट और टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाए तो लेक्स का कलर और माइक्रोबिकल बैलेंस परमानेंटली शिफ्ट हो सकता है। रेड लेक्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बायोएक्टिव कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल डाइज एक्सट्रैक्ट करने की रिसर्च ऑनगोइंग है अभी तक। और तो और सेटल

0: सैटेलाइट इमेजेस और ड्रोन्स का यूज करके लेक्स के कलर और सैलिनिटी चेंज को कंटीन्यूअसली मॉनिटर किया जा रहा है। और एक और मजे की बात यह है साथियों कि रेड लेक्स देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन उनका इकोसिस्टम डायनेमिक और हाईली एडेप्टिव है। एक लेक का रेड कलर जो आप कल देखें शायद आज के माइक्रोबिकल एक्टिविटी और क्लाइमेट कंडीशन की वजह से बन गया हो। ये एक लिविंग ब्रीदिंग लेबोरेटरी है जो हर ऑब्जर्वर को क्यूरियोसिटी से भर देती है। साथियों जिंदगी के इस रंगीन सफर में कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों को हैरान कर देते हैं और उन्हीं मनाजिर में से एक है रेड लेक्स। सोचिए जब एक सुबह आप झील के किनारे जाते हैं जहां कल तक पानी नीला था आज वही पानी खूबसूरत लाल रंग में चमक रहा है। ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंस का एक अनोखा करिश्मा है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये लाल रंग ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एल्गी की वजह से ही होता है जो पानी में केमिकल रिएक्शन करते हैं जब टेम्परेचर सनलाइट और मिनरल्स एक परफेक्ट बैलेंस में मिलते हैं। जैसे ही ये टाइनी लिविंग क्रीचर्स पानी में बढ़ते हैं पानी का रंग बदल जाता है कभी लाल कभी नारंगी और कभी गुलाबी। ये प्रोसेस एक रिमाइंडर है कि हमारी नेचर कितनी ज्यादा एक्टिव है। मगर साथियों ये सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है। कभी कभी पानी का लाल होना पोल्यूशन और इम्बैलेंस का साइन भी होता है जब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स पानी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब जहां ये मंजर एक तरफ से हसीन लगता है वहां ये हमें याद दिलाता है कि नेचर के सिस्टम के साथ हम कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो साथियों अगली बार जब आप किसी झील के पास जाएं और उसका रंग बदला हुआ देखें तो डरिएगा मत बस नेचर का सलाम कबूल कीजिएगा। ये झीलें हमें ये सबक देती हैं कि तब्दीली हमेशा बुरी नहीं होती कभी कभी वो खूबसूरती का नया रूप होती है और यही तो हमारी दुनिया का हुसन है। हर रंग हर झील और हर लम्हा एक कहानी कहता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से सफा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से न सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
0: FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस मुबारक हलके में आपका खैर मकदम है। पिछले चंद हलकों से हमारी गुफ्तगू जारी है दिल की सलामती के हवाले से, आज भी हम उसी मौजू पर कंटिन्यू करेंगे, चूँकि दिल की सलामती एक अहम मौजू है। दिल की सलामती के साथ हमारे तमाम सलामती का ताल्लुक है, तमाम सलामतियों का दारो मदार हम इसे कह सकते हैं। तो इंसान के दिल की असल सलामती उसी वक्त मुमकिन है जब वो अल्लाह ताला के लिए खालिस हो जाए। दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी मोहब्बत हो, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो, अल्लाह पर एतमाद हर खौफ से ज़्यादा मजबूत हो। जब दिल सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है तो अल्लाह ताला इंसान के मामलात को संभालता है, उसके ज़ख्मों पर मरहम रखता है, उसे अंदरूनी सुकून अता करता है और उन परेशानियों में भी उसके लिए रास्ता पैदा फरमाता है जिनका उसे बज़ाहिर कोई हल नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि मोमिन को ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं पहुँचती, उसे भी दुख होता है, उसे भी नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ता है, लोग उसे भी नाराज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उसका दिल लोगों के रवैयों का कैदी नहीं बनता, वो अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करना जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर नहायत सख्त तंबीह फरमाई, फरमाया ए वो लोगों जो ज़बान से ईमान ले आए हो मगर जिनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों के पोशीदा हालात की खोज न लगाया करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के राजों के दर पे होगा अल्लाह उसके आयबों के दर पे हो जाएगा, और अल्लाह जिसके आयबों के दर पे हो जाए तो उसे घर बैठे रुस्वा कर देता है। समझने के नाम, आज का ज़माना तो ऐसा है कि किसी की एक गलती, एक निजी गुफ्तगु, एक पुरानी तस्वीर या एक पर्सनल मिस्टेक को पूरी दुनिया के सामने फैला दिया जाता है, लोग इसे एक्सपोजर कहते हैं, लेकिन दरअसल ये तो जुल्म होता है। कभी कभार ये हक गोई नहीं बल्कि किसी की इज्जत को तबाह करने की ख्वाहिश होती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर किसी में गलती देखो तो मुमकिन हो तो

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फुटबॉलर के बारे में जिसकी पैदाइश इंडिया में लेकिन कतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तहसीन मोहम्मद जमशेद कतर का एक उभरता हुआ फुटबॉल सितारा है जो अपनी रफ्तार, ड्रिबलिंग और अटैकिंग सलाहियतों की वजह से पहचाना जाता है। तहसीन कतर में पैदा हुए लेकिन उनके वालिदैन का ताल्लुक इंडिया के केरला स्टेट से है और इनफैक्ट कन्नूर शहर से है। उनके वालिद जमशेद थालासारी से हैं जबकि वालिदा शैमा बालापट्टनम से ताल्लुक रखती हैं। तहसीन ने फुटबॉल की बुनियादी तरबियत कतर की मशहूर एस्पायर एकेडमी में हासिल की जहां से कई इंटरनेशनल फुटबॉलर्स निकले। इनफैक्ट दोस्तों, तहसीन ने कम उम्र में ही अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया और 17 साल की उम्र में कतर की टॉप डिवीजन लीग में खेलने वाले पहले इंडियन ओरिजिन फुटबॉलर बन गए। वो कतर स्टार्स लीग के क्लब अल दोहेल के लिए खेलते हैं और कतर के मुख्तलिफ एज ग्रुप नेशनल टीम्स की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कतर के फाइनल 26 मेंबर स्क्वाड में उनका इंतखाब एक तारीखी कामयाबी है। इसके साथ तहसीन वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होने वाले पहले मलयाली फुटबॉलर बन गए। उनकी कामयाबी न सिर्फ कतर बल्कि इंडिया और खासतौर पर केरला के फुटबॉल फैंस के लिए भी फख्र का सबब है। तहसीन की कहानी मेहनत, लगन और ख्वाबों को हकीकत में बदलने की बेहतरीन मिसाल है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जानेंगे कि शोर के जो मुज़र असरात हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि गैर ज़रूरी शोर से हम दूर रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मशीनरी या बुलंद आवाज़ वाले माहौल में काम करते हैं तो हिफाजती इकदाम इख्तियार कीजिए। कानों की हिफाजत के लिए ईयर प्लग्स या फिर ईयर मफ्स जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। इस शोर की शिद्दत को कम करके हमारी जो समात है उसे महफूज रखते हैं। मोबाइल फोन्स और हेडफोन्स इस्तेमाल करते वक्त आवाज़ को मुतदिल रखिए, यानी दरमियाना रखिए, उसका बैलेंस में उसे रखिए। माहरीन मशवरा देते हैं कि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक रखी जाए और तवील वक्त तक मुसलसल इस्तेमाल से भी गुरेज किया जाए, यानी आप मुसलसल एक ही तरह की जो आवाज़ है और ज़्यादा है उसे सुनने से गुरेज कीजिए। घर में भी शोर कम करने की कोशिश कीजिए। टीवी या म्यूज़िक की आवाज़ ज़रूरत के मुताबिक रखिए और रात के औकात में ख़ास तौर पर खामोशी का ख्याल रखिए। अगर आपके इलाके में शोर ज़्यादा हो तो खिड़कियों को बंद रखना, कर्टन्स लगाना या शोर कम करने वाले जो कुछ इकदाम हैं वो मददगार साबित हो सकते हैं। वालदैन को चाहिए कि बच्चों को भी बुलंद आवाज़ों के नुकसानात के बारे में आगाह करें, उन्हें हेडफोन के महफूज इस्तेमाल और समात की हिफाजत की आदत सिखाइए। अगर आपकी समात में कमी, कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ या सुनने में दुश्वारी महसूस हो तो आप जल्द से जल्द किसी भी जो ENT स्पेशलिस्ट है या किसी भी माहिर अमराज कान, नाक और गला से मशवरा कीजिए। लिसनर्स, शोर की आलूदगी या नॉइस पोल्यूशन एक काबिल तदारक मसला है, इसे हल किया जा सकता है। थोड़ी सी एहतियात और शऊर के ज़रिए हम अपनी समात, ज़हनी सुकून और मजमूई सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
3: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर इको स्विच, जहां हम बात करते हैं उन सिंपल हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट और अपने बिल्स दोनों को इम्पैक्ट करती हैं। आज का टॉपिक है भाई स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी यूजेज हैबिट्स, यानी बिजली को स्मार्ट तरीके से यूज करना। इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ का इनविजिबल हीरो है साथियों। लाइट, एसी, फ्रिज, फोन चार्जिंग सब इसी पर तो डिपेंड करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो हम वेस्ट करते हैं वो इनडायरेक्टली कार्बन इमिशन और नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है। सोचिए आप अपने घर के एक रूम से बाहर निकलते हैं लेकिन लाइट्स और फैन ऑन रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि भाई सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, कौन सा कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब ये हैबिट रिपीटेड रहती है तो मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। इको स्विच के मुताबिक अगर एक हाउस होल्ड सिर्फ अननेसेसरी लाइट्स और फैंस को 2 घंटे डेली ऑफ करे तो वो अपना इलेक्ट्रिसिटी यूजेज 10% से 15% तक कम कर सकता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे साथियों। देखिए, एक एवरेज एलईडी बल्ब 10 वॉल्ट कंज्यूम करता है, लेकिन अगर वो अननेसेसरी 5 घंटे एक्स्ट्रा ऑन रहे ना तो साल भर में नोटिसेबल एनर्जी वेस्ट होती है साथियों। अगर हम एयर कंडीशनर्स के बारे में बात करें भाई, तो एयर कंडीशनर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का लगभग 10% यूज करते हैं। स्टैंड बाय मोड जो हम ऑफ समझते हैं वो भी अप्लायंसेस की इलेक्ट्रिसिटी का 5% तक कंज्यूम करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हर हाउस होल्ड एक बल्ब डेली 1 घंटा ऑफ करे तो ग्लोबली मिलियंस ऑफ टन्स कार्बन इमिशंस अवॉइड की जा सकती हैं। साथियों, इको स्विच का यहाँ सिंपल सा आइडिया है इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं बल्कि ऑप्टिमाइज करना। जब हम स्मार्ट यूजेज अडॉप्ट करते हैं तो भाई हम सिर्फ अपने बिल्स कम नहीं करते बल्कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हाउस होल्ड अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 10% रिड्यूस करें तो ग्लोबल लेवल पर ये इम्पैक्ट हंड्रेड ऑफ पावर प्लांट्स के इमिशंस के बराबर हो सकता है। मतलब एक छोटी सी हैबिट का बड़ा सारा इम्पैक्ट। खाली सोचिए ना, गर्मियों का वक्त है और एसी तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस पर फुल ब्लास्ट पर चल रहा है, सिर्फ कम्फर्ट के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। आप सोचते हैं क्योंकि हमारा माइंड कुछ ऐसा डिजाइन है कि हम सोचते हैं कि ज्यादा ठंड इज इक्वल टू ज्यादा कम्फर्ट। लेकिन भाई इको स्विच कहता है कि आइडियल टेम्परेचर 24 to 26 यही होता है। हर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करने से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 6 to 8% तक बढ़ जाता है। मतलब सिर्फ 2 to 3 degrees का डिफरेंस आपके बिल और एनवायरनमेंट दोनों पर नोटिसेबल इम्पैक्ट डालता है। तभी तो मेरा बिजली का बिल कम आता है क्योंकि मैं तो रखती ही तकरीबन 24 या 26 पर हूँ एसी को। तो भाई आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स की जो हर घर फॉलो कर सकता है। पहली ये कि रूम से निकलते वक्त लाइट्स, फैन और एसी जरूर ऑफ करें। मतलब ये कि आपकी अम्मी जो डांट रही होती है ना कि भाई एसी बंद करो, लाइट ऑफ करो अगर कमरे में नहीं हो, फैंस बंद करो, तो वो बिल्कुल सही कह रही होती है, उनकी बात सुन लिया करें। दूसरी टिप ये कि एलईडी बल्ब्स यूज करें जो 75% तक एनर्जी सेविंग करते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बल्ब्स। तीसरी बात ये कि अप्लायंसेस को स्टैंड बाय मोड में ना छोड़ें, अनप्लग कर दें भाई उन्हें। चौथी बात ये नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन को ज्यादा यूज करें दिन के वक्त। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी तरह एसी को 24 या 26 पर सेट करें इंस्टेड ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स, सेहत के लिए भी अच्छा होता है ये। तो भाई इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाना। जब ये हैबिट्स रूटीन बन जाती है ना तो हम बिना सोचे समझे एनर्जी सेव करते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जो हाउस होल्ड एनर्जी मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे मंथली यूजेज चेक करते हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नेचुरली 5 to 12% तक रिड्यूस हो जाता है। आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है साथियों कि बिजली सिर्फ कन्वीनियंस नहीं होती बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर लाइट जो हम ऑफ करते हैं, हर एसी जो हम ऑप्टिमाइज करते हैं, वो प्लैनेट के लिए एक छोटा पॉजिटिव स्टेप होता है। तो भाई अगली बार जब आप कोई स्विच यूज करें, एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। इज दिस एनर्जी रियली नीडेड राइट नाउ? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107 कतर, जहाँ हर स्विच सिर्फ एक लाइट नहीं बल्कि एक ब्राइटर फ्यूचर बनाता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: FM 107
0: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे तौबा की अहमियत के बारे में। इंसान से गलती होना फितरी बात है, लेकिन कामयाब वो होता है जो अपनी गलती को पहचान कर अल्लाह की तरफ वापस आता है। इसी को तौबा कहते हैं। तौबा सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि दिल से रिग्रेट करना और दोबारा उस गलती को ना दोहराने का इरादा करना होता है। अल्लाह बहुत मेहरबान है और अपने बंदों की तौबा को हमेशा कबूल करता है। अक्सर लोग अपनी गलतियों की वजह से मायूस हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम हमें उम्मीद देता है कि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। आज का अमल ये है कि कुछ लम्हे तनहा निकाल कर अपनी गलतियों पर गौर करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। यह अमल रूह को हल्का करेगा और ज़िंदगी में नई शुरुआत देगा। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: और आज दोस्तों जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर जॉब्स वी कांट इमेजिन येट, ऐसी जॉब्स जिनके बारे में अभी भी हमने बात नहीं की या अभी

उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10-15 साल पहले की बात है जब कोई बोलता था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा या मैं ऐप डेवलप करूंगा, पैसे कमाऊंगा, तो लोग हैरान हो जाते थे। लेकिन आज अगर ये बात की जाए तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह आज की दुनिया में बहुत सी ऐसी जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं जो पहले कभी सोची ही नहीं गई थी। अब सोचो 2030 आने वाला है, इस वक्त किस तरह की जॉब्स होंगी। 2030 के वक्त टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ रही होगी कि नई नई फील्ड्स क्रिएट होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम सुन ही चुके हैं, रोबोटिक्स की बात हम करते ही रहते हैं, ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम हमारी लाइफ इतनी तेजी से चेंज कर ही रहा है, तो ऐसे में कौन सी जॉब्स हैं जो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं या होंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ पुरानी जॉब्स तो खत्म होंगी, लेकिन उसके बदले कुछ और नई और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। हर जमाने में जब टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ काम खत्म हो जाते हैं और कुछ नए काम बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये चेंज बड़ा फास्ट होता है। कुछ लोग इस चेंज को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ बेचारे रुक के थम के सोचते रह जाते हैं। देखिए, फ्यूचर जॉब्स किस तरफ जा रही हैं ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब हम फ्यूचर जॉब्स को देखें तो मैं आपको तीन डायरेक्शंस जो हैं उनमें आपको समझाना चाहूंगी सिंप्लीफाई करके। एक जॉब जिस पर हमें फोकस करना है वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब्स, जो कि आप और हम मजमूई तौर पर जान ही चुके हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट जॉब है सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट रिलेटेड जॉब्स। ये भी आने वाले टाइम में यानी 2030 और इसके आगे वाले एरा को डोमिनेट करेंगी। वहीं तीसरी है ह्यूमन प्लस क्रिएटिविटी प्लस कम्युनिकेशन जॉब्स। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कंप्यूटर या मशीन इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान की सोच, उसकी क्रिएटिविटी और इमोशंस भी फ्यूचर में इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फ्यूचर जॉब्स क्या हो सकती हैं? चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। आज ही कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो फ्यूचर में और ज्यादा डिमांड में आ जाएंगी, जिनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं या कर रहे हैं या हमें पता है। AI इंजीनियरिंग, जो मशीन्स को सोचना सिखाता है। डेटा साइंटिस्ट, जो ह्यूज डेटा को समझाता और एनालाइज करता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो डिजिटल सिस्टम को हैकर से बचाता है। वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट, जो सोलर और विंड एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम करता है। ये जॉब्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि दुनिया डिजिटल और इको फ्रेंडली डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि चार डायरेक्शंस या तीन डायरेक्शंस हमें और आपको समझने जरूरी है। वहीं ऐसी जॉब्स जो अभी सिर्फ शुरू हुई हैं, जैसे AI प्रॉम्प्ट डिजाइनर, जो AI को सही इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि वो बेस्ट रिजल्ट्स दे। वहीं वर्चुअल वर्ल्ड मैनेजर, जो ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस जैसे मेटावर्स को मैनेज करता है। वहीं पर ह्यूमन मशीन टीम मैनेजर, जो ये इंश्योर करता है कि रोबोट्स और ह्यूमन एक टीम की तरह काम करें। ये रोल्स हमें ये बताते हैं कि फ्यूचर में मशीन्स और ह्यूमन साथ काम करेंगे, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। वहीं ऑटोमेशन का इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत लोग डरते हैं कि मशीन जॉब्स खत्म कर देंगी, बचेंगी नहीं, क्या होगा। हाँ, कुछ जॉब्स रिप्लेस होंगी जरूर, जैसे रिपीटेटिव या सिंपल काम जो मशीन इजली कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिलियन जॉब्स डिसअपीयर भी हो रही हैं, लेकिन मिलियन जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। मतलब फ्यूचर नेगेटिव नहीं है, बस चेंज हो रहा है। अब आज के दौर में स्किल्स और डिग्री क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ डिग्री काफी नहीं होगी। फ्यूचर जॉब्स के लिए स्किल्स का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की आपकी एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, अडैप्टेबिलिटी, कितनी चेंज को आप कितनी जल्दी जो है वो अडैप्ट कर पाते हैं। आज अगर किसी के पास ये स्किल्स हैं तो वो हर फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, इवन अगर जॉब्स चेंज भी क्यों ना हो रही हो। तो देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें और आपको अडॉप्ट करना है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट। फ्यूचर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। पहले लोग एक डिग्री लेते हैं और पूरी ज़िंदगी उसी जॉब को लेकर चलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में इंसान को हर कुछ साल में नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं।

0: रेडियो प्रेजेंटर हो, आज एक रेडियो प्रेजेंटर हो सकती हूँ, कल एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकती हूँ और फ्यूचर में शायद एआई बेस्ड इंटरैक्टिव होस्ट भी बन सकती हूँ। तो अगर मैं अपने आप को उस तरह से चेंज कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम लर्निंग। काम करने का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। अब आने वाले दिनों में लोग जो है वो ऑफिस में बहुत ही लिमिटेड होंगे, रिमोट वर्क यानी घर से काम ज्यादा होगा, फ्रीलांसिंग आप खुद अपने बॉस बनेंगे, वहीं बहुत सारे लोग मल्टीपल करियर्स की तरफ बढ़ेंगे, एक ही वक्त में 2 से 3 काम करना, ये सब ट्रेंड्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और 2030 तक और भी ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। चैलेंजेस हर चीज में है, इनमें भी है फ्यूचर जॉब्स के साथ कुछ चैलेंजेस आते ही हैं। हर किसी के पास उस तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो होती नहीं है, स्किल गैप्स क्रिएट तो करता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है समझना ये कि फ्यूचर जॉब का कॉन्सेप्ट सिंपल और चैलेंजिंग है। एक साइड पर हमें डर होता है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन दूसरी साइड पर ये कि बहुत बड़ा मौका भी है खुद को इम्प्रूव करने का, नई स्किल सीखने का और नए करियर्स को एक्सप्लोर करने का। सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो आपको अपने जहन में रखना है वो ये कि सीखना कभी बंद ना कीजिए, चेंज को लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और टेक्नोलॉजी उसे अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझिए। जब लोग फ्लेक्सिबल होंगे, क्यूरियस होंगे, नए आइडियाज अडॉप्ट करेंगे, वही फ्यूचर में कामयाब होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि आज जो बच्चे स्कूल में हैं, शायद उनकी फ्यूचर जॉब्स के नाम भी अभी दुनिया ने नहीं सुने हो, यानी फ्यूचर सिर्फ अनप्रेडिक्टेबल नहीं बल्कि फुल ऑफ एक्साइटिंग और पॉसिबिलिटीज भी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैन अलर्ट। एक अच्छा सही दिखने वाला

ही प्राइस में, बेटर प्राइस में एक कोई ज्वेलरी या क्लोथ या ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसकी हमें नीड हो तो मजा आए। और ऐसे में पॉपअप होता है आपके सामने या सोशल मीडिया पे एक एडवर्टाइजमेंट आती है और आप करते हैं ऐसे में उस पर भरोसा। ले हो गया स्कैम। अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 पे मैं हूं फजील इस्तकबाल, आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही फ्रॉड के बारे में, ऑनलाइन स्टोर। आपने देखा होगा बाजार में आप कहीं जाते हैं तो वहां पर आपको एक्चुअल में स्टोर दिखता है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन कोई स्टोर दिखे, क्योंकि आप तो होशियार हैं, हम और आप होशियार हैं, समझ जाते हैं कि भाई क्या स्कैम है क्या नहीं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी तरह का बूस्ट किया हुआ कोई पोस्ट हमारे सामने आता है तो हम उस प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। जब देखते हैं कि अरे कई सारे पोस्ट हैं जो वो सेल कर रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिनल बंदा है, लेकिन ये स्कैम हो सकता है। कैसे, सुनिए दोस्तों। ये स्कैम होता है ऐसे, कोई एक प्रोफाइल है जिस पे किसी तरह की ज्वेलरी की या क्लोथ्स की या फिर किसी फर्नीचर की पोस्ट पड़ी हुई है, कम पैसे में, सही पैसे में, लेकिन ये स्कैमर एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर खोलता है सोशल मीडिया पे। आप जब पोस्ट देखते हैं आपको वो बेहतर लगता है, आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, खरीदारी करने के बाद वो आपसे कहता है कुछ 10 से 15 दिन में आपके पास वो आइटम पहुंच जाएगा। आप इंतजार करते हैं लेकिन वो आइटम नहीं पहुंचता, लेकिन आप जब देखते हैं उस पेज पे तो वो पेज एक्टिव होता है, आपको लगता है ये पेज एक्टिव है, किसी तरह का कुछ भी इसमें फ्रॉड नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो स्कैमर शॉर्ट पीरियड के लिए उस स्टोर को खोलता है, मिसाल के तौर पर 1 महीना, 15 दिन, 25 दिन, 20 दिन उस स्टोर को ओपन करता है, उसे रन करता है, ऑर्डर आ जाते हैं 20 से 25, उसके बाद वो पेमेंट लेता है लोगों से और फिर वो गायब हो जाता है। ऐसे में इस तरह के स्कैम से बचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो शॉर्ट टर्म के लिए खुले होते हैं, क्योंकि कई बार हम 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने पुराने किसी ऑनलाइन स्टोर पर भरोसा कर लेते हैं, सोचते हैं कि कोई स्कैमर अगर है तो अगर हमें स्कैम करता है तो मैक्सिमम वो शायद 1 महीना, 15 दिन या 10 दिन अपना ऑनलाइन वाला जो पेज है वो चलाएगा, लेकिन 3 महीने, 4 महीने कैसे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 3-4 महीने तक इस तरह के पेज चलाते हैं, रेगुलर पोस्ट करते हैं, उन पे कमेंट्स भी होते हैं, ये कमेंट्स बॉट से खरीदे हुए होते हैं, ये कमेंट्स उन मार्केटिंग वालों से खरीदे होते हैं जिनका काम है कमेंट करवाना, लाइक बढ़वाना ऑनलाइन पेजेस पे, तो आपको और भी भरोसा हो जाता है कि इस तरह के कमेंट हैं, अच्छे कमेंट्स हैं कि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं भाई, तो आप इस बात पे भरोसा करते हैं कि ये जेन्युइन बंदा है, आप पेमेंट करते हैं और जिस गेटवे से पेमेंट करते हैं वहां से आप किसी भी तरह के स्कैमर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो 2 से 4 रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा होशियार रहना है, बहुत ज्यादा समझदार रहना है कि इस तरह के स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। वेल, इस तरह के स्कैम्स के लिए रेड फ्लैग्स क्या है? रेड फ्लैग्स है, हो सकता है कि स्कैमर्स आपसे अर्जेंसी यानी कि जल्दी से जल्दी पेमेंट करने की बात कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो आपसे कहे कि आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू ही हमें पेमेंट करिए, या फिर हो सकता है कि वो आपसे किसी और तरीके के पेमेंट के बारे में बात कर रहा हो कि मेरा एक बंदा आएगा वो आपके पास प्रोडक्ट लेकर आएगा। इस तरह से भी हो रहा है कि वो सच में आपके पास प्रोडक्ट लेके आता है, दफ्ती में पैक्ड होता है, आप उसे पेमेंट करते हैं, वो आपको डिलीवर करता है और फिर वो गायब। जैसे ही वो गायब होता है आप उस दफ्ती को खोलते हैं, उसमें निकलता है कुछ भी नहीं, कागज या फिर कपड़े, इस तरह के आइटम निकलते हैं और आपके साथ हो जाता है स्कैम। उसके अलावा रेड फ्लैग्स में हम बात कर सकते हैं कि किसी भी तरह की ज्यादा डिटेल उस अकाउंट में नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में डिटेल नहीं है, उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, ये सारी चीजें रेड फ्लैग मानी जानी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज के फ्रॉड के बारे में बात, लेकिन आपको होशियार रहना है, सतर्क रहना और नजरें खोल कर रखना है कि इस तरह के फ्रॉड में ना रहे और ना ही पड़े। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक इसी तरह के फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। लेकिन अगर आपके साथ इस तरह के कोई भी फ्रॉड हुए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662210 पे बता सकते हैं और हम करेंगे आपके साथ हुए फ्रॉड के बारे में बात और बाकी जनता को कराएंगे आगाह। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पर ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक नई कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से, एफएम 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। तो दोस्तों, आज के सफर में मैं ले चलूंगा आपको ऊंचाइयों की तरफ, बर्फ से ढके पहाड़ों, पतली हवाएं और एक ऐसी खातून के ख्वाब के साथ जो हर चोटी को पार कर चुकी हैं। ये कहानी है शेखा अस्मा बिन थानी अल थानी की, कतर की पहली माउंटेनियर, एक ऐसी लेडी जो नामुमकिन को छू गई और अपने साथ कई लोगों की उम्मीदें भी ले गई। चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड के साथ। कतर में पलना, जहां रेगिस्तान और समंदर है, वहां एवरेस्ट, धौलागिरी, मनासलू चढ़ाई या पोल्स तक एक्सपीडिशन का ख्याल आम जिंदगी का हिस्सा नहीं होता, लेकिन शेखा आसमा ने इस चैलेंज को अपना जज्बा बना लिया। शेखा आसमा अल थानी एक पायनियर हैं स्पोर्ट्स और वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड्स में कतर के अंदर। उनकी माउंटेनियरिंग में कामयाबियां सिर्फ एक मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया के लिए एक नया रिकॉर्ड है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है या माउंटेन पीक है, और शेखा अस्मा अल थानी पहली कतरी लेडी बनी जो इसकी चोटी तक पहुंची, 8849 मीटर सी लेवल से ऊपर। उनकी यूथ वर्क के लिए उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ हिज एक्सेलेंसी सालेह बिन गानिम बिन नासिर अल अली ने जीसीसी एक्सेलेंस डेकोरेशन से नवाजा है। इस माउंटेनियर ने सिर्फ पुराने जेंडर बैरियर्स को चैलेंज नहीं किया बल्कि नई नस्ल को ये दिखाया कि कैसे नामुमकिन चीजों को भी हासिल किया जा सकता है। शेखा आसमा और उनकी टीम ने 210 किलोमीटर का सफर 1 महीने और 10 दिन में तय किया ताकि वो दुनिया की सबसे ऊंची पीक तक पहुंच सकें। उन्हें और उनकी टीम को फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर के लिए ऑफिशियल मैच बॉल दिया गया था उनकी एडवेंचर के स्टार्ट में। इस बॉल का नाम था अर रहला या अल रहला, जिसका मतलब था या जिसका मतलब है द जर्नी। ये गिफ्ट उनके साथ पूरे माउंटेन एवरेस्ट क्लाइम के दौरान था। ये बॉल कतर की कल्चर, आर्किटेक्चर, मशहूर बोट्स और फ्लैग से इंस्पायर्ड थी, और अर रहला पहली अरबिक मैच बॉल थी जो वर्ल्ड कप में यूज हुई थी। दोस्तों, शेखा आसमा के लिए एवरेस्ट चढ़ना सिर्फ उनके एडवेंचर जर्नी का आगाज था, अब वो एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने के मिशन पर हैं, और उनका मकसद है औरतों को इंस्पायर और मोटिवेट करना।

जून 2022 में माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के बाद शेखा असमा अलसानी ने कहा, जब मैं अपनी लिमिट्स को पुश कर रही थी और चोटी तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, वो लाखों रेफ्यूजीज जो अपनी जान को खतरे में डालकर सिर्फ अमन की तलाश में सफर करते हैं। जुलाई 2022 में जब वो K2 की समिट तक गईं, तो उन्होंने कहा, मैं उन लाखों रेफ्यूजीज और फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए चढ़ रही हूं जो दुनिया भर में मुसीबत का सामना कर रहे हैं। UNHCR और शेखा असमा ने एंटार्कटिक विंटर एक्सपीडिशन से पहले पार्टनरशिप की। उन्होंने माउंट विजन चढ़ा जो कि साउथ पोल का सबसे ऊंचा पीक है 2022 के स्टार्ट में। दोस्तों, किसी भी अरब ने अब तक माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और लोत्सी दुनिया के चार सबसे ऊंचे पीक्स को 2 महीने से कम के वक्त में क्लाइम नहीं किया। शेखा असमा ने हर पीक पर UNHCR का फ्लैग लहराया ताकि रेफ्यूजीज के लिए सपोर्ट और उनके राइट्स के लिए सॉलिडेरिटी दिखाई जा सके। वो पहली अरब वुमेन बनी जो किसी 8,000 मीटर को बिना ऑक्सीजन के क्लाइम करने में कामयाब हुई। जब उन्होंने माउंट मनासलू की चोटी तक पहुंच की जो दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा माउंटेन है। मनासलू समिट पॉइंट दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। लोकल लोग इसे किलर माउंटेन कहते हैं उसकी डेंजरस स्लोप्स की वजह से। नेपाल की बूढ़ी गंडकी रिवर वैली की पाइन फॉरेस्ट के ऊपर वेस्ट सेंट्रल रीजन में माउंट मनासलू वाके है जो 8,163 मीटर सी लेवल से ऊपर है। इसका समिट पॉइंट इतना नैरो है कि एक वक्त में 2 से 3 क्लाइंबर्स भी साथ नहीं खड़े हो सकते। अपनी सोशल मीडिया पर शेखा असमा ने लिखा कि ये जर्नी बहुत चैलेंजिंग थी और हर लेवल पर उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन सारी मेहनत के बाद शेखा असमा ने एक ऐसा टाइटल हासिल किया जो हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा। द कतर फ्लैग हैज बीन रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द टॉप ऑफ मनासलू, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बताया। रोजाना 2 तरफा ट्रेनिंग करना, क्लेयर मर्फी और पैरी डेनियल के साथ और मेंटली तैयार होना एक ऐसे गोल के लिए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब तक निर्मल पूर्जा ने मेरा गोल तोड़ा, उन्होंने बताया कि समिट पुश के वक्त उन्हें नींद नहीं आई, लेकिन सब कुछ वर्थ इट था। उन्होंने कहा कि जब समिट पुश स्टार्ट किया तो उनके जहन में सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलसानी के वर्ड्स ऑफ विजडम घूम रहे थे। सितारों की तरफ देखना मत भूलना जब रुकावटें इतनी ज्यादा हों और कामयाबी के चांसेस इतने कम, तो हम कोशिश क्यों करते हैं? क्यों ना सब कुछ छोड़कर घर चले जाएं? हमारे गोल्स और चैलेंजेस ही वो चिंगारी हैं जो हमारे अंदर का जादू जगाते हैं। हम सिर्फ तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम खुद से कहें कि हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे हर चैलेंज को पार करते हुए ये कतरी वुमेन पहली अरब वुमेन बनी जो 8,000 मीटर समिट तक बिना ऑक्सीजन के पहुंची। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, डोंट डाउनग्रेड योर ड्रीम जस्ट टू फिट योर रियलिटी, अपग्रेड योर कन्विक्शन टू मैच योर डेस्टिनी। और उन्होंने अपने सब दोस्तों और फैमिली का शुक्रिया अदा किया जो उनके साथ इस एडवेंचर में रहे, और उन्होंने कहा, सब कुछ बदल गया, मेरे ख्वाब अब थोड़े और बड़े हो गए हैं। शेखा असमा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एक ऐसा शख्स जो ख्वाब की ताकत को समझता है वो उसे उस हद तक ले जा सकता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। कतर ओलंपिक कमेटी ने अपने ट्वीट में शेखा असमा की अचीवमेंट को प्रेस किया, जिसमें उन्होंने माउंट मनासलू जो दुनिया का 8th टॉलेस्ट माउंटेन है की समिट तक पहुंचकर कतर के लिए एक नया अरब रिकॉर्ड हासिल किया। वो पहली अरब वुमेन बनी जो 8,000 मीटर को बिना ऑक्सीजन के क्लाइम करने में कामयाब हुई, और जहां बड़ी कामयाबी होती है वहां और बड़े ख्वाब भी पैदा होते हैं। माउंटेनियर शेखा असमा बिन थानी अलसानी पहली कतरी वुमेन बनी जो माउंट डेनाली की समिट तक पहुंची जो कि नॉर्थ अमेरिका का सब

सबसे ऊंचा पीक है और सेवन समिट्स का हिस्सा है। 6,190 मीटर की हाइट पर इस अचीवमेंट के बाद शेख आसमा सिर्फ एक समिट दूर हैं एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने से, जिसमें दुनिया के सब सेवन समिट्स और नॉर्थ और साउथ पोल्स तक पहुंचना शामिल है। अदर ओलंपिक कमेटी ने ट्वीट किया, अचीवमेंट्स कीप कमिंग, माउंटेनियरिंग लेजेंड शेखा असमा बिंत थानी अल थानी बिकम्स द फर्स्ट कतरी वुमन टू रीच द समिट ऑफ माउंट डेनाली, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका एंड वन ऑफ द सेवन समिट्स विद अ हाइट ऑफ 6,119 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट की समिट तक पहुंचने वाली पहली कतरी वुमेन होने के अलावा शेखा असमा अभी हाल ही में पहली अरब बनी जो माउंट कंचनजंगा की समिट तक गई, जो दुनिया का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। नेपाल और इंडिया के दरमियान वाके 8,586 मीटर की एलिवेशन पर। दोस्तों, जनवरी में शेखा असमा पहली कतरी बनी जो नॉर्थ और साउथ पोल्स तक स्किंग करके गई और माउंट एवरेस्ट की समिट तक पहुंचने के सिर्फ 24 घंटों बाद शेखा असमा ने माउंट लोत्से जो दुनिया का फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन है 8,516 मीटर भी स्केल कर लिया। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों, शेखा असमा बिन थानी अल थानी ने अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफर जारी रखा है और अभी हाल ही में उन्होंने नंगा पर्वत की समिट सक्सेसफुली कंप्लीट की, जो कि पाकिस्तान में वाकई है और दुनिया का 9th हाईएस्ट माउंटेन है 8126 मीटर की हाइट पर। इस अचीवमेंट के बाद शेखा असमा ने अब तक दुनिया के 14 में से 9 पीक्स क्लाइम कर लिए हैं जो 8000

0: मीटर से ऊपर है और ये उनकी अचीवमेंट्स के लिस्ट में एक और रिमार्केबल फीट है। फिलहाल शेख आजमा पाकिस्तान में हैं और अपनी एक्सपीडिशन कंटिन्यू कर रही हैं और अब उनका गोल है गेशर बर्म 1 और गेशर बर्म 2 और ब्रॉड पीक की समिट तक पहुंचना। अगर ये सफर कामयाबी से मुकम्मल होता है तो उनके पास सिर्फ शिशा पेंगमा और चौ वायु बचेंगे और फिर वो दुनिया की पहली औरत बन जाएंगी जो सब 14,800 मीटर पीक्स क्लाइम करेंगी और एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करेंगी, जो माउंटेनियरिंग की दुनिया में एक अनप्रीसीडेंटेड माइलस्टोन होगा। शेख आजमा के सफर सिर्फ माउंटेन्स चढ़ने तक महदूद नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो लोगों के नजरियात को चैलेंज करती हैं और पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करती हैं। अपनी जर्नीज के जरिए वो औरतों और यूथ को मोटिवेट करती हैं कि वो बैरियर्स को तोड़कर अपने ख्वाब पूरे करें। दोस्तों, शेख आजमा के पास अचीवमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है और वो पूरे रीजन की औरतों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है। 2012 में उन्होंने माउंट किलिमंजारो की चोटी तक पहुंचकर 2 मिलियन कतरी रियाल रेज किए ताकि गाजा में स्कूल्स बनाए जा सकें। अप्रैल 21, 2018 को वो पहली कतरी बनी जो नॉर्थ पोल तक गई। उन्होंने 8 दिन स्किंग करने के बाद कतरी फ्लैग नॉर्थ पोल की चोटी पर लहराया। वो उन पहली कतरी औरतों में से एक हैं जो माउंट किलिमंजारो क्लाइंब कर चुकी हैं। इसके अलावा वो पहली कतरी वुमेन हैं जो माउंट अकनकागुआ क्लाइंब करने में कामयाब हुई। ये एक्सपीडिशन उन्होंने अर्ली 2020 में कंप्लीट किया। नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए शेख आजमा पहली अरब शख्स बनी जो 8,000 मीटर समिट तक बिना ऑक्सीजन के पहुंची जब उन्होंने मनासलू क्लाइम किया। वो पहली अरब और पहली कतरी वुमेन हैं जो लीडर अंडर 40 क्लास ऑफ 2018 का हिस्सा बनी। उन्हें हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल में से सिलेक्ट किया गया था। इम्प्रेसिव कहना कम होगा, शेख आजमा बिन थानी अल थानी को कतर ओलंपिक कमेटी के हेड ने ऑनर किया क्योंकि वो पहली अरब बनी जो 2,800 मीटर समिट बिना ऑक्सीजन के क्लाइम कर चुकी हैं। अपनी सोशल मीडिया पर आजमा ने लिखा, आई एम बियॉन्ड हम्बल्ड एंड ओवरफ्लोइंग विद ग्रेटिट्यूड टू बी ऑनर्ड बाय हिज एक्सीलेंसी शेख जवान बिन हमद अल थानी प्रेसिडेंट ऑफ द कतर ओलंपिक कमेटी एंड द QOC फैमिली। आजमा ने अलहौद से क्लाइम किया जो दुनिया का 4th हाईएस्ट माउंटेन है जो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर वाकई है। दोस्तों, माउंटेन्स हमें टेस्ट करते हैं सिर्फ चढ़ाई में नहीं बल्कि इस बात में कि हम क्या करने की हिम्मत रखते हैं। शेख आजमा का सफर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हमारी सबसे ऊंची चोटियां बर्फ और पत्थर की नहीं होती बल्कि वो रुकावटें होती हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। वो उम्मीदें होती हैं जिन्हें हमें बढ़ाना होता है और वो ख्वाब होते हैं जिन्हें हमें जिंदा रखना होता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप कतर में पहली बार देखना चाहेंगे, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा करते हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-221-07। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर फर्स्ट से साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
2: एफएम 107। दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
4: सेहत की बात हो तो एतमा चाहिए माहिरीन की राय पर. माहिरीन की राय पर लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड. हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात. स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक. इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी. दिल से देसी. याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत.
3: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं. ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है. इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है. ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
5: Oh,

ये सब अल्लाह ही के इज़्ज़न से था, और अल्लाह ने ये इज़्ज़न इसलिए दिया ताकि फासिकों को जलील व खार करे, और जो माल अल्लाह ने उनके कब्जे से निकाल कर अपने रसूल की तरफ पलटा दिए वो ऐसे माल नहीं हैं जिन पर तुमने अपने घोड़े और ऊंट तोड़ाए हों, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है तसल्लुत अता फरमा देता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है।

तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मुनाफिकत की रविश इख्तियार की है। ये अपने काफिर अहले किताब भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग कतई झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ हरगिज न निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी हरगिज मदद न करेंगे, और अगर ये उनकी मदद करें भी तो पीठ फेर जाएंगे और फिर कहीं से कोई मदद न पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो किला बंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर। ये आपस की मुखालिफत में बड़े सख्त हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनका ये हाल इसलिए है कि ये बेअक्ल लोग हैं। ये उन्हीं लोगों के मानंद हैं जो इनसे थोड़ी ही मुद्दत पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक आजाब है। इनकी मिसाल शैतान की सी है कि पहले वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, और जब इंसान कुफ्र कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुझसे बरी जिम्मा हूं, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। फिर दोनों का अंजाम ये होना है कि हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएं, और जालिमों की यही जजा है।

वो जो ईमान लाए हो, अगर तुम मेरी राह में जिहाद करने के लिए और मेरी रजा जोई की खातिर वतन छोड़कर घरों से निकले हो, तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम उनके साथ दोस्ती की तरह डालते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है उसको मानने से वो इनकार कर चुके हैं। और उनकी रविश ये है कि रसूल को और खुद तुमको सिर्फ इस कसूर पर जिला वतन करते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम छुपा कर उनको दोस्ताना पैगाम भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो अलानिया करते हो, हर चीज को मैं खूब जानता हूँ। जो शख्स भी तुम में से ऐसा करे वो यकीनन राह रास से भटक गया। उनका रवैया तो ये है कि अगर तुम पर काबू पा जाएं तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें और हाथ और जबान से तुम्हें आजार दें। वो तो ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। कयामत के दिन न तुम्हारी रिश्तेदारियां किसी काम आएंगी न तुम्हारी औलाद। उस रोज अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा और वही तुम्हारे आमाल का देखने वाला है। तुम लोगों के लिए इब्राहिम और उसके साथियों में एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया, हम तुमसे और तुम्हारे उन माबूदों से जिनको तुम खुदा को छोड़कर पूछते हो कतई बेजार हैं। हमने तुमसे कुफ्र किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत हो गई और बैर पड़ गया जब तक तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान न लाओ। मगर इब्राहिम का अपने बाप से ये कहना इससे मुस्तस्ना है कि मैं आपके लिए मगफिरत की दरख्वास्त जरूर करूंगा और अल्लाह से आपके लिए कुछ हासिल कर लेना मेरे बस में नहीं है। और इब्राहिम अस्हाबे इब्राहिम की दुआ ये थी कि ऐ हमारे रब, तेरे ही ऊपर हमने भरोसा किया और तेरी ही तरफ हमने रजू कर लिया और तेरे ही हुजूर हमें पलटना है। ऐ हमारे रब, हमें काफिरों के लिए फितना न बना दे और ऐ हमारे रब, हमारे कसूरों से दरगुजर फरमा, बेशक तू ही जबरदस्त और दाना है। उन्हीं लोगों के तर्ज अमल में तुम्हारे लिए और हर उस शख्स के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह और रोजे आखिर का उम्मीदवार हो। इससे कोई मुनहरिफ हो तो अल्लाह बेनयाज और अपनी जात में आप महमूद है। बाइद नहीं कि अल्लाह कभी तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान मोहब्बत डाल दे जिनसे आज तुमने दुश्मनी मोल ली है। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और वो गफूर और रहीम है।